0: मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

0: पढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व? पितृ विसर्जन अमावस्या से राहु का क्या है संबंध और क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या के नियम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
5: सिर्फ 7 सेकंड और दुश्मनों का खेल खत्म।

0: झुंड में हो खतरा, फिर भी नहीं कोई टेंशन। दुश्मनों को राख करेगी सेना की ज्वाला। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: आज है महालया देवी पक्ष का शुभारंभ। दुरात्माओं से मुक्ति के लिए माँ दुर्गा के धरती पर आगमन के लिए आवाहन का दिन, कल से शक्ति पूजा होगी शुरू। सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर आज पितृ विसर्जन के साथ पितृपक्ष का समापन, पवित्र नदियों में तर्पण के साथ पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। माँ वैष्णो देवी के धाम पर नवरात्र के लिए शानदार तैयारी, बाजार से लेकर भवन तक सजावट का काम तेज, इस बार और बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। आज विधि विधान से बंद होंगे उत्तराखंड में पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, दोपहर 12:30 होगी अरदास। वडोदरा में खेल महाकुंभ 2026 का रंगारंग शुभारंभ, लोक संस्कृति के दिखे रंग, खेल भावना और एकता का संदेश दिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना।
3: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

0: जीवन तो चलने जैसा है, और जीवन की सच्चाई को जो जान पाया वो जीवन को समझ पाया। हम लोग फंसे रहते हैं वर्तमान की परिस्थिति में, पर कई बार ऐसा होता है कि जिस परिस्थिति में आप फंसे हैं वो परिस्थिति तो बड़ी छोटी है और बड़ी आने वाली है, वो दिखाई पड़ती नहीं। कल के विपत्ति को कोई समझ ही नहीं पाता, आज के झंझट में वो इतना फंसा रहता है। पर साधु कहते हैं कि आप जीवन के उस राज को जान जाएं कि जीवन एक खेल है और यहां कुछ भी स्थायी टिकता नहीं, तो शायद आपका दुख आधा हो जाए। क्योंकि व्यक्ति ज्यादा दुखी इस बात से है कि उसको लगता है कि भाई हम मिटे, अब गए, अब गिरे, अब लुट गए, अब हमारा कोई है ही नहीं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, हमारे सब विपरीत हो गए। और दुनिया में ऐसा कोई पक्की बात नहीं है कि ऐसा होगा ही, क्योंकि पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ आता है तब भी पेड़ अपनी हार थोड़ी मानता, खड़ा रहता है। अब पतझड़ हो जाए, पत्ते टूट के गिर जाएं और पेड़ रोने लगे कि हाय दैया मरे, छाती पीटे कि अब तो सूख गए, बर्बाद हो गए, अब कौन आएगा हमारे पास, अब छाया कहां से आएगी और कहां से हवा बहेगी, और वो सूख जाए और गिर जाए तो शायद पेड़ का अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन वो पेड़ पतझड़ के बाद भी अपने आप को खड़ा रखे रहता तो परिणाम ये निकलता कि जैसे ही पतझड़ जाता है, बसंत आता है, फिर से पेड़ में नए पत्ते आ जाते। इतना सहना किसी के जीवन में आ जाए वो आदमी जीवन जीना सीख जाएगा, वो आदमी सदा दुखी ना रह पाएगा। और उस आदमी को कोई दुखी कर भी नहीं सकता जो इतना धैर्यवान हो जाए, जिसे पेड़ों की तरह पतझड़ के जाने से बसंत के आने तक का इंतजार होना आ जाए। उसके जीवन में विपत्तियां आती रहेंगी पर उस आदमी को कोई ज्यादा दुखी ना कर पाएगा। मेरे पागलो, एक बात बहुत समझने जैसी है और वो सीधी सी है कि यहां कुछ भी पक्का नहीं है। अरे आदमी की छोड़ो, भगवान ही पक्के नहीं। देखो तुम पहले साईं बाबा कितने पूजे, आजकल तो भगवानों का भी ट्रेंड आता है। साईं बाबा का ट्रेंड आया, फिर उसके पहले वैष्णो देवी का ट्रेंड आया, फिर साईं बाबा का ट्रेंड आया, फिर खाटू वाले बाबा का आया, फिर सांवरिया सेठ बाबा का आया, फिर महाकाल भस्म आरती का ट्रेंड आया, फिर वृंदावन का आया। ये चलता रहता है, यहां तुम देखो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब ऊपर नीचे होता रहता है। कल तक जिसे बहुत माना जाता था आज नहीं माना जा रहा है, कल तक जिसकी बहुत बात होती थी आज कोई बात नहीं करता है। तो आप परेशान इसलिए हैं कि आप चाहते हैं कि लोग हमें जाने, देखें, माने, और लोग महात्मा गांधी को भूल गए। तुम कौन से खेत की मूली हो? लोग सुभाष चंद्र बोस को भूल रहे, भगत सिंह को भूल गए, तुम तो फांसी पे लटके नहीं हो आज तक। तुम मानो कि तुम्हें कोई दुनिया जाने, ऐसा मन का खेल तुम्हारा दुख का कारक है। ये दुनिया किसी को नहीं जानती, उसी को जानती जिससे काम होता है, जो मतलब का होता है। बिना मतलब के दुनिया को कोई लेना देना नहीं, और सच भी है तो होना भी चाहिए, कोई बुरी बात थोड़ी है, बात ठीक ठाक है। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। जितनी गहरी रात होगी उतना तेज प्रकाश होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि शेर चार कदम पीछे जाता है, तो चार कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर डर गया है। लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे जाना ही पड़ता है, दौड़ लगाना है, छलांग मारनी है तो पीछे जाना पड़ेगा। रनिंग के लिए उड़ान भरनी है तो रनिंग करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा जितनी बड़ी हवाई जहाज होती है उतनी ज्यादा रनिंग लेती है, उतनी ज्यादा रनवे पर दौड़ती है, तब वो ठीक से उड़ान ले पाती है, वो ठीक से टेक ऑफ कर पाती है, वरना ठीक से टेक ऑफ ना कर पाएगी। तो जिंदगी में एक बात समझने जैसी है, यहां जो भी है वो सब कच्चा है, सिवाय परमात्मा के और सिवाय आनंद के कुछ भी पक्का नहीं है। पक्का है तो आनंद है और पक्का है तो परमात्मा है, बाकी सब कच्चा है। जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, घने बाल हैं तो झड़ेंगे, चमक है तो ढलेगी, सम्मान है अपमान तो पक्का मानो। और पर तुम तो आदमी हो, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, तुम तो आम हो, जब राम को नहीं छोड़ा तो आम को हलवा छोड़ देंगे। इसलिए मेरे पागलों, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी न था न है न रहने वाला, तो उस परमानेंट के चक्कर में मत पड़ो जिसके लिए तुम पाना चाहते। एक बात बहुत मानने जैसी है, शायद तुम्हें समझ आए तो मान लेना, और तुम्हारे जीवन में काम आ सके तो भला है, ना काम आवे तो भी भला है, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी छोटी सी और सीधी सी बात है, तुम कल के चक्कर में आज बर्बाद मत करो और आज के चक्कर में अभी को बर्बाद मत करो। जो है जिस पल में है उस पल में जियो, बाकी धैर्य रखो, इंतजार करो, सच्चाई तो आती ही है, थोड़ा रुक के आएगी पर आएगी। और तुमने तो सुना ही होगा कभी गंग को, वो तो कहते ही हैं तारा की ज्योति से सूर्य छिपे नहीं, तारा की ज्योति से सूर्य छिपे नहीं। वो कहते हैं कि तारों की ज्योति से सूर्य कब छिप सकता, और बादल की आहट से चंद छिपे ना बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे ना दाता छिपे ना घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे ना प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, गंग कहें सुनो शाह अकबर करम छिपे ना भभूति लगाए। तो यहां कुछ छिपता तो है ही नहीं, आज नहीं तो कल निकलेगा, और कल नहीं तो परसों तो हकीकत आएगी। तुम कब तक बनावटी बने रहोगे और कब तक बनावटी तुम जियोगे, एक ना एक दिन तुम्हारी पोल और कलई खुलनी है, ढोल बजना है, पक्का है। तुम्हें आनंद लेना सीखना है तो हमारे पास एक बड़ा प्यारा रास्ता है, कमरे पर और कैमरे पर एक जैसे हो जाओ, कमरे पर और कैमरे पर एक जैसे हो जाओ, जैसे हो तुम वैसे हो जाओ, बाकी सब गुजर जाएगा। आदमी का प्रभाव जाता है, स्वभाव कभी नहीं जाता है। स्वभाव तो जैसा है, अब कुत्ता का स्वभाव भौंकना है तो वो भौंकेगा, अब तुम कितना भी एसी में रख दो, डबल रोटी खिलाओ, नमकीन का नाश्ता दो और चाउमीन का लंच कराओ तो क्या वो भौंकना छोड़ देगा, भौंकेगा। सांप का काम काटना और फुफकारना है, तुम चाहे जो करो वही करेगा। साधु का काम साधुता है, वो साधुता में ही रहेगा। तो जो जिस आदमी का स्वभाव है वो रहेगा, और जिसको मौका मिलता है वो स्वभाव दिखाने लगता है। तुम देख लो कितने भी अंग्रेजी सीख लें लोग, अंग्रेजी हाउ डू यू, हाउ आर यू, आई एम नॉट बेटर देन यू, यू कम हियर, वेयर आर यू फ्रॉम, और उनके पीछे जब कुत्ता पड़ जाता तो वो भी कहते हट हट हट। चाहे जितनी अंग्रेजी सीखो कुत्ता तो हट हट में ही भगेगा। तुम उसको ये थोड़ी नो नो नो नो नो नो नो नो से थोड़ी मानेगा कुत्ता, वो तो हट हट से ही मानेगा। चाहे जितनी अंग्रेजी सीखो, स्वभाव तो स्वभाव है, मूल स्वभाव कहां जाता है। इसलिए मेरे पागलो, माना कि तुम दुखी हो, माना कि तुम परेशान हो, माना कि तुम्हारे पास संकट है, पर घबराओ मत, हमारे पास संकट मोचन भी तो है। तुम्हारे पास मुसीबत है तो बालाजी भी तो है। थोड़ा देर से सुनेंगे, उन्हें देर से सुनने की आदत है भैया। करो मिन्नत और मन्नत है, करो प्रार्थना, हो तो जाओ उनके, सुनेंगे आज नहीं तो कल सुनेंगे, वरना बदनामी तो उनकी ही होगी, अपनी थोड़ी होगी। अब तुम कहीं भूत भूतैयों के चक्कर में पड़ जाओ तो भला कहां। एक बात बताओ, इनसे बड़ी सत्ता कोई होती है क्या? राम जी से और बालाजी से बड़ी क्या सत्ता है? तो पकड़ो उनके चरण। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कौन ऐसा है जो संकट मोचन नाम ना जानता हो? इसलिए मेरे पागलो, हम एक बात कहें, सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ। मछली पकड़ते हुए देखा तुम लोगों ने कभी? है मछली पकड़ते देखा? हाँ, तो जब मछली पकड़ने वाला जाता है तालाब में या नदी में कहीं भी, तो वो सीढ़ी पे खड़ा होता है किनारे पे, ऐसे दाना लेता है फेंकता है, दाना खाने पूरी मछलियां ऊपर आती, फिर वो जाल फेंकता, तो कुछ दाने क्या होते हैं उंगलियों के नीचे से पांव के पास गिर जाते हैं। तुम कभी देखना जब पांव के पास गिरते हैं तो छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं वो बीच में दाना खाने नहीं जाती, पांव के पास वाला गिरे हुए दाना खा लेती, और बड़ी बड़ी मछली दाना बीच में खाती। लेकिन उसी वक्त मछुआरा जाल फेंकता है, बड़ी बड़ी ताकतवर बलिष्ठ मछलियां पकड़ी जाती, पर जो पांव वाली मछलियां होती हैं बच जाती। बात समझ आई आपको क्या? संसार में भगवान माया का दाना फेंकते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उस दाने में जाल में फंस जाते हैं, पर जो भगवान के पैरों के पास चरण शरण में आ जाते हैं वो बच जाते हैं। बात समझ आ गई? बोलो बोलो हाँ या ना। हाँ, चलो तीसरा उदाहरण सुनो। एक हमारा चेला था, घरवाली का गुलाम, लुगाई को बहुत मानता था, लुगाई भी बड़ी समझदार थी, हमारे ही गांव की हुथी, नाम था उसका छगन बाई, चेला का नाम चंगीलाल। एक दिन बाजार जा रहा था, पत्नी बोली सैया कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार जा रहे हैं। तो बोली सुनो महाराज, स्वामी जी, पति देव, हाँ क्या लेने जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, कुछ खरीदेंगे, सब्जी पानी खरीदेंगे, ले आएंगे। बोले सुनो बलमा, बरसात आ गई, छाता खरीद लाओ। बोले ठीक है, पर जैसे ही पति जाने लगा तो बोले सुनो, जा तो रहे हो, बाजार में सब ठगने वाले ठगुआ बैठे हैं, वो जो रेट बोले वो मत देना, आधे रेट पे खरीदना। ये था पत्नी का आज्ञाकारी पति, पत्नी व्रतधारी था, परम पत्नी व्रतधारी था। इसने कहा देवी जो आज्ञा। अब संज्ञा बलमा गया, चंगीलाल छगनबाई का पति, बाजार मार्केट में बाजार से दुकान के पास गया, सुबह सुबह के टाइम दुकान वाले से कहा छाता दिखाओ। दुकानदार छाता लाया, काला लाल कलर उठा लाया, दुकानदार मुस्कुराया, चंगीलाल को एक अच्छा छाता भाया, चंगीलाल भी मुस्कुराया,
1: बोला भैया बताओ क्या दें दाम, बन जाए काम छाता को, छाता हमें मिले बरसात में मिल जाए आराम। दुकानदार बोला सस्ता जमाना रुपया 16। दुकानदार बोला सस्ता जमाना रुपया 16। इसको पत्नी की बात याद आई, क्योंकि घरवाली कह कर के बात सुनाई, जो दाम बोले उससे आधे दाम में लेकर आना है। इसने कहा रुपया 16, दुकानदार तुमने जो बोला बड़ा महंगा है, रुपया तो देंगे 8, पढ़ो देने का पाठ। दुकानदार बोला 8 तो बहुत ही कम होता है, एक काम करो तुम्हारी ना हमारी 14 रुपया दे दो। बोला तब तो हम 7 में खरीदेंगे। दुकानदार थोड़ा झल्लाया, चिड़चिड़ाया, सुबह सुबह का टाइम है, चंगी लाल भाई काय को हमारी बोनी खराब कर रहे हो, एक काम करो आए के आए दाम दे दो, 1 रुपया अब हम कम ना लेंगे, रुपया 12 ही लेंगे। बोले फिर तो हम 6 देंगे। अब तो दुकानदार और चिड़चिड़ाया, बड़ा भन्नाया कि हम घट रहे तो तुम भी घट रहे, तुम्हें बढ़ना चाहिए, शर्म नहीं आती है, आए के आए दाम लगा दिए, अब तो ले जा रुपया 12 दे जा। चंगीलाल बोला ना रुपया तो 6 ही दूंगा। अब दिमाग खराब, दुकानदार बोला सुबह सुबह कहां से तुम आ गए दुकान, हमारा सब काम बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं 2 रुपया घाटा से 10 दो बस जाओ। बोले फिर तो हम 5 देंगे। अब तो दुकानदार का पारा हाई, बोला सुन भाई फ्री में ले जा। चंगीलाल ने सिर खुजाया, बोले तब तो हम 2 लेंगे। पूरे दिन भर बाजार में घूमता रहा, एक छाता ना खरीद पाया। शाम को घर आया, पत्नी बोली कहो बलमा सब ठीक ठाक है, छाता कहाँ है? बोले वो तो दुकान ही में। तो बोले खरीद क्यों नहीं पाए? बोले तुम्हारी सलाह के कारण, तुमने कहा था आधे दाम में लाना, अब बताओ एक छोटी सी वस्तु छाता नहीं खरीद पाया, क्यों? क्योंकि ये एक भाव पे नहीं टिका रहा, इसलिए इसको एक वस्तु छाता नहीं मिली। वैसे ही तुम भी यदि एक भाव पे नहीं टिकोगे तो तुम्हें परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकता है?
2: क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व? पितृ विसर्जन अमावस्या से राहु का क्या है संबंध, और क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या के नियम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: सिर्फ 7 सेकंड और दुश्मनों का खेल खत्म। झुंड में हो खतरा फिर भी नहीं कोई टेंशन, दुश्मनों को राख करेगी सेना की ज्वाला। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: आज है महालया देवी पक्षी का शुभारंभ, दुरात्माओं से मुक्ति के लिए मां दुर्गा की धरती पर आगमन के लिए आवाहन का दिन, कल से शक्ति पूजा शुरू होगी। सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर आज पितृ विसर्जन के साथ पितृपक्ष का समापन, पवित्र नदियों में तर्पण के साथ पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। माँ वैष्णो देवी के धाम पर नवरात्रि के लिए शानदार तैयारी, बाजार से लेकर भवन तक सजावट का काम तेज, इस बार और बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। आज विधि विधान से बंद होंगे उत्तराखंड में पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, दोपहर 12:30 बजे होगी अरदास। वडोदरा में खेल महाकुंभ 2026 का रंगारंग शुभारंभ, लोक संस्कृति के दिखे रंग, खेल भावना और एकता का संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
9: आज है महालय का पावन दिन। धरती पर आगमन के लिए मां दुर्गा के आवाहन की तिथि। आज से देवी पक्ष का शुभारंभ। महालय के ही दिन देवी देवताओं ने किया था मां दुर्गा का आवाहन। महिषासुर के आतंक से मुक्ति के लिए प्रकट हुई थी मां दुर्गा। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कहते हैं महालय। पितृपक्ष के समापन का पावन दिन है सर्वपित्र अमावस्या। महालय के अवसर पर है पितृ विसर्जन की परंपरा। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष का ये है अंतिम दिन। आज पवित्र नदियों के किनारे पितरों को तर्पण और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। स्नान दान और पूजा पाठ करते हुए पूर्वजों को याद कर रहे हैं लोग। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी के धाम में तैयारी जारी। बाजार से लेकर भवन तक फूलों, लाइटों और तोरण द्वारों से की जा रही है सजावट। वैष्णो देवी धाम में दिव्यांगों, बुजुर्गों और बच्चों को सौगात। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पात्र श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, पोनी की निःशुल्क व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए अर्धकुंवारी से भवन तक निःशुल्क बैटरी कार सेवा, विशेष दर्शन, आरती में शामिल होने के साथ साथ रैंप और लिफ्ट की भी सुविधा। नवरात्रि से स्थानीय कारोबारियों और किसानों को भी बड़ी आस। श्रद्धालुओं के वैष्णो देवी पहुंचने से कारोबार बढ़ने की उम्मीद। फूलों की मांग बढ़ने से किसान खुश। कटरा में नवरात्रि के दौरान होटल्स में एडवांस बुकिंग पर 30% तक की छूट। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। जयपुर में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी। गुलाबी नगरी में 23 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा बनेगी खास आकर्षण। पीली सीढ़ी और साड़ी और चांदी के आभूषणों से होगा मां का दिव्य श्रृंगार। जयपुर में दिखेगी बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की झलक। दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता से मंगाई जा रही हैं सजावटी सामान और प्रॉप्स। बंगाल से आए कारीगर पंडालों को दे रहे हैं भव्य और पारंपरिक रूप। 70 साल पुरानी दुर्गा बाड़ी में सजेगा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। इस बार सृष्टि, स्थिति और विनाश की थीम पर खास सजावट है। करीब 2000 वर्ग गज में बनेगा पंडाल। 50 फीट ऊंचा होगा प्रवेश द्वार। मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्तिकार। जयपुर में पिछले 3 से 4 महीनों से चल रही प्रतिमा निर्माण की तैयारी। मिट्टी, रंगों और आकर्षक आभूषणों से निखर रहा मां का दिव्य स्वरूप। 15 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव। जयपुर की दुर्गा बाड़ी में स्थायी प्रतिमा के साथ होगी विशेष पूजा। वहीं वियतनामी मार्बल से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है परिसर की पहचान। पुरुलिया में चंद्रोदय मंदिर की थीम पर सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल। नितूरिया दब्बेश्वरी कोलियरी में पूजा का 36वां साल होगा खास। पंडाल में दिखेगा भगवान विष्णु का 10 अवतार। पुरुलिया की दुर्गा पूजा में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। इस साल भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मां दुर्गा के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं को मिलेगा आध्यात्मिक अनुभव। महालय के साथ दुर्गोत्सव का बढ़ा उत्साह। मां दुर्गा के स्वागत के लिए तैयार पुरुलिया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन के बाद श्रद्धालु करेंगे मां दुर्गा के दर्शन। कल 11 अक्टूबर से शुरू होगा शक्ति का महापर्व। कलश स्थापना के साथ पूजा का शुभारंभ होगा। मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान गज वाहन पर होगा। इस साल शारदीय नवरात्रि 10 के बजाय 11 दिनों की। तो वहीं 21 अक्टूबर को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी। नवरात्रि और गरबे को लेकर गुजरात में तैयारी पूरी। राजकोट के बाजार में आए गरबे के नए कॉस्ट्यूम। युवाओं में गरबे को लेकर जबरदस्त उत्साह। नवरात्रि से पहले गरबे के रंग बिरंगे पारंपरिक कॉस्ट्यूम्स की भी आई नई वैरायटी। गरबे के कॉस्ट्यूम्स की नई वैरायटीज की काफी डिमांड है। युवतियों में इस बार सफेद थीम पर अलग अलग डिजाइन वाली चोलियों की ज्यादा डिमांड। पारंपरिक पगड़ी और छतरियों को लेकर भी युवाओं में दिख रहा है क्रेज। कच्छी वर्क, हैंड पेंटिंग, अजरक सिल्क और प्लेन चोली भी काफी डिमांड में। काफी युवतियां रेंट पर बुक कर रही हैं कॉस्ट्यूम। तो वहीं गरबे के नए स्टेप्स की भी तैयारी। नवरात्रि में गरबा खेलने को लेकर युवाओं में दिख रहा है खासा उत्साह। पूरी नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने के लिए पैकेज बुक करा रहे हैं लोग। प्रयागराज के अलोप शंकरी मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था, मंदिर में नहीं है देवी मां की कोई मूर्ति, यहां पर मां के दिव्य पालने की होती है पूजा। देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है मां अलोप शंकरी मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद मां के दिव्य पालने के दर्शन करते हैं श्रद्धालु। नवरात्रि में उमड़ती है भारी भीड़। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी करती हैं मां। मां के दरबार में हाजिरी लगाने और मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। सदियों पुरानी है मंदिर की महिमा। मान्यता है कि इसी जगह पर घिरा था मां सती के हाथ का पंजा। अलोप होने के कारण जगह का नाम पड़ा था अलोपी बाग। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में स्थित पवित्र कुंड में दूध दही मेवों से भरकर माता का आभार जताते हैं श्रद्धालु। मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं नवदंपत्ति। नवरात्रि के अवसर पर तमिलनाडु की मदुरई में पारंपरिक गोलू डॉल्स की नुमाइश, देवी देवताओं से लेकर ऐतिहासिक किरदारों तक की दिख रही है झलक। तमिलनाडु के गोलू डॉल्स में इस बार दिख रही है विकसित भारत की भी झलक। इसरो के स्पेस मिशन पर पेश की गई झांकी। गोलू डॉल्स की नुमाइश में G20 सम्मेलन की भी पेश की गई है झांकी, परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम। मदुरई के इस घर में 4,360 से ज्यादा पारंपरिक गोलू डॉल्स की नुमाइश, डिस्प्ले में पौराणिक और सांस्कृतिक थीम पर आधारित प्रतिमाएं मौजूद हैं। मदुरई में घरों में गोलू डॉल्स रखकर नवरात्रि का पर्व मनाने की परंपरा है। इन सजी हुई गुड़ियों और मूर्तियों को सीढ़ी नुमा मंच पर रखकर मनाया जाता है पर्व। उत्तराखंड में आज बंद होने जा रहे हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट, करोड़ों सिख श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी खबर। हेमकुंड साहिब दरबार के कपाट बंद होने के बाद कल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद होंगे। बर्फबारी के बीच मंदिर में पूजा करते दिखे पुजारी। हेमकुंड साहिब इलाके में गुरुवार देर रात से हो रही है बर्फबारी। हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ ही बर्फ, लक्ष्मण मंदिर के आसपास भी जमी बर्फ की चादर। चमोली जिले के ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों में बदल रहा है मौसम। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। गुरुद्वारे और मंदिर के कपाट बंद होने से पहले दरबार में हाजिरी लगाने और दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली NCR समेत देश भर के कई इलाकों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। धूप की तपिश से मिल सकती है राहत। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राजस्थान और आसपास के इलाकों में आज और कल तेज आंधी के साथ बारिश के आसार। नए चक्रवाती सिस्टम के कारण बदल सकता है मौसम। पश्चिम बंगाल में 15 से 17 अक्टूबर तक बारिश के आसार। दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान पड़ सकती हैं बौछारें। 13 और 14 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल। 48वीं वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2026 के प्रतिभागियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। चाइना के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक हुई थी प्रतियोगिता। पीएम ने प्रतिभागियों को लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ प्रतियोगिता के अनुभव साझा किए। कौशल का ओलंपिक के नाम से मशहूर प्रतियोगिता में भारत ने किया है शानदार प्रदर्शन। 6 सिल्वर और 20 मेडल फॉर एक्सलेंस के साथ 10वें नंबर पर रहा भारत। प्रतियोगिता में इस बार भारत ने अपने अब तक के सबसे बड़े प्रतियोगिताओं में 70 प्रतियोगियों के दल के साथ 63 अलग अलग स्किल्स में हिस्सा लिया था। पीएम ने प्रतिभागियों से देश के कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने और कौशल विकास का स्किल एम्बेसडर बनने की अपील की। वडोदरा में खेल महाकुंभ 2026 का रंगारंग शुभारंभ, लोक संस्कृति के दिखे रंग। कलाकारों ने देशभक्ति के गीतों पर पेश किए सामूहिक नृत्य। खेल भावना और एकता का संदेश दिया गया। खेल महाकुंभ के उद्घाटन में दिखी गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक। गुजरात की पहचान माने जाने वाली पारंपरिक गरबा और रास की भी शानदार प्रस्तुति। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। युवाओं को जोड़ने की खास पहल। अगले साल होने वाले 20वें आईपीएल के सिलसिले में बीसीसीआई ने बुलाई अहम बैठक। 15 अक्टूबर को सभी पक्षों के साथ जरूरी मुद्दे पर मंथन होगा। हिमाचल के मनाली में सजा खेल और रोमांच का मैच। पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का हुआ शुभारंभ। प्रतियोगिता के लिए सोलंग नाला में जुटे देश विदेश के पैराग्लाइडर। सटीक लैंडिंग के लिए शुरू हुआ मुकाबला। प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह। हिमाचल सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। मंत्री राजेश धर्माणी ने खुद पैराग्लाइडिंग भी की। प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा देशों के 42 पायलट्स ले रहे हैं हिस्सा। पैराग्लाइडर्स में एक महिला भी शामिल। 12 अक्टूबर तक चलेगा पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड। तो वहीं प्रतियोगिता में भारतीय थल सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या की और इसके महत्व की। देखिए अमावस्या तिथि किसी भी महीने की हो, उसके स्वामी पितृ देव ही माने जाते हैं, और आश्विन कृष्ण की अमावस्या पितरों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का संबंध आपके पूर्वजों से, आपके पितरों से होता है, और इस महीने की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है और दोबारा से जो पितृगण हैं वो सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। अगर पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद ना किया गया हो तो केवल पितृ विसर्जन अमावस्या पर उन्हें याद करके दान करने से और निर्धनों को भोजन करवाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यानी अगर आपने पितृपक्ष के नियमों का पालन नहीं किया है तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों के लिए दान करने से, निर्धनों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करने का फल अमोघ होता है। दान करने के परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। पूर्वजों से और पितरों से संबंध होता है राहु का, इसीलिए पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु से संबंधित बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दान भी किया जा सकता है, धर्म का पालन भी किया जा सकता है और राहु की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 10 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। 15 दिन जिन पितरों का आगमन धरती पर होता है सूक्ष्म लोक से, उन तमाम पितरों की विदाई पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन की जाती है। क्या तरीका है? देखिए, अगर पितरों के देहांत की तिथि पता ना हो, अज्ञात हो, तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते, ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए और भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने का और श्राद्ध करने का समय मध्य दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दें, यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता के लिए भोजन निकालें। भोजन की जरा सी मात्रा से अग्नि में आहुति दें, हवन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करें और दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जब घर के सभी लोग भोजन कर लेंगे और पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद पितृपक्ष के कार्य पूर्ण हो जाएंगे। देखिए, आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से राहु का गहरा संबंध है और वो आपके जीवन में पितरों और पूर्वजों की स्थिति दिखाता है। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के लिए क्या करें? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनाइए। मध्य दोपहर में इसको अपने सामने रखकर पितरों से कृपा करने की प्रार्थना करिए। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिएगा, ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा और पितृ विसर्जन अमावस्या पर कुत्तों को कुछ न कुछ जरूर खिलाइएगा। रोटी, ब्रेड, बिस्कुट, दूध कुछ भी दीजिएगा। अगर ये उपाय, ये प्रयोग आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर दोपहर के समय में करते हैं तो राहु की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। देखिए, पितरों का

0: का तर्पण कीजिएगा और इसके बाद एकांत स्थान में चले जाएं, छत पर किसी एकांत मैदान में या एकांत कमरे में जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करिएगा। कहिएगा कि मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं, मैं स्वयं निर्धन हूं, मैं और कुछ नहीं दे सकता। हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, मेरी श्रद्धा को और भावना को ही स्वीकार करें और अगर संभव हो इतना आप कर सकें तो गाय को हरा चारा या हरी पालक 2-4-5 रुपए की खरीद कर खिला दीजिएगा। आप अगर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका श्राद्ध कर्म संपन्न होगा। हिंदू धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको कर्ज लेकर श्राद्ध करना चाहिए, कर्ज लेकर दान करना चाहिए या चीजों को बेच करके श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप स्वयं निर्धन हैं तो केवल प्रार्थना करने से, केवल अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन दान करेंगे तो इससे आपके ज्ञात अज्ञात संकट कट जाएंगे। अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने जाना हो तो क्या करेंगे? जिस दिन मिलने जाना हो उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद बोल बोल कर हनुमान चालीसा पढ़िएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। आपकी मुलाकात सफल होगी और काम बन जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: आज है महालय देवी पक्ष का शुभारंभ। दुरात्माओं से मुक्ति के लिए माँ दुर्गा के धरती पर आगमन के लिए आवाहन का दिन। कल से शक्ति पूजा शुरू होगी। सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर आज पितृ विसर्जन के साथ पितृपक्ष का समापन। पवित्र नदियों में तर्पण के साथ पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। माँ वैष्णो देवी के धाम पर नवरात्र के लिए शानदार तैयारी। बाजार से लेकर भवन तक सजावट का काम तेज। इस बार और बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। आज विधि विधान से बंद होंगे उत्तराखंड में पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट। दोपहर 12:30 बजे अरदास होगी। वडोदरा में खेल महाकुंभ 2026 का रंगारंग शुभारंभ। लोक संस्कृति के दिखे रंग, खेल भावना और एक

0: का संदेश। चाइना में पुलों पर बोगनवेलिया के फूलों की बहार। दक्षिणी चाइना के गुआंगशू शहर में 73 पुल बने स्काई फ्लावर ब्रिजेस, दिख रहा शानदार नजारा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
0: तो चलिए, आज के शो का विषय है पितृ विसर्जन अमावस्या। आखिर ये क्या होती है, किस तरह से पितरों का विसर्जन करना चाहिए और पूजा का विधि विधान क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में पंडित जी से आज के इस शो में हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।
2: देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन दान करेंगे तो इससे आपके ज्ञात अज्ञात संकट कट जाएंगे।
0: और चलिए, अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि 10 अक्टूबर 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 10 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 9:19 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 9:42 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए, अब शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो की, अपने इस खास विषय के साथ जो है पितृ विसर्जन। सबसे पहले जान लेते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या होता है।
2: जी देखिए, अमावस्या तिथि किसी भी महीने की हो, उसके स्वामी पितृ देव ही माने जाते हैं। और आश्विन कृष्ण की अमावस्या पितरों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का संबंध आपके पूर्वजों से, आपके पितरों से होता है। और इस महीने की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है और दोबारा से जो पितृगण हैं वो सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। अगर पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद ना किया गया हो तो केवल पितृ विसर्जन अमावस्या पर उन्हें याद करके दान करने से और निर्धनों को भोजन करवाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यानी अगर आपने पितृपक्ष के नियमों का पालन नहीं किया है तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों के लिए दान करने से निर्धनों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करने का फल अमोघ होता है। दान करने के परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। पूर्वजों से और पितरों से संबंध होता है राहु का, इसीलिए पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु से संबंधित बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दान भी किया जा सकता है, धर्म का पालन भी किया जा सकता है और राहु की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 10 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दानिक राशि फल के बारे में।
2: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: और चलिए दैनिक राशि फल के बाद अब बात करते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या की। पंडित जी से जान लेते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों की विदाई कैसे करनी चाहिए।
2: 15 दिन जिन पितरों का आगमन धरती पर होता है सूक्ष्म लोक से, उन तमाम पितरों की विदाई पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन की जाती है। क्या तरीका है? देखिए, अगर पितरों के देहांत की तिथि पता ना हो, अज्ञात हो, तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते, ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए और भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने का और श्राद्ध करने का समय मध्य दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दें, यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता के लिए भोजन निकालें। भोजन की जरा सी मात्रा से अग्नि में आहुति दें, हवन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करें और दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जब घर के सभी लोग भोजन कर लेंगे और पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद पितृपक्ष के कार्य पूर्ण हो जाएंगे।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
2: कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। परिवार में शांति बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल ले लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं कि पहला सवाल किसका लेने वाले हैं।
2: जी, आज का पहला प्रश्न प्रबल भारद्वाज ने हमें लिखा है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 5 जुलाई 1999 का जन्म है, 1:30 AM शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि नौकरी मेरी छूट गई है, नई नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, तो दूसरी नौकरी कब तक मिलेगी और मेरे स्वास्थ्य में सुधार कब तक होगा। प्रबल आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मार्च 2027 के पहले आप नौकरी पा जाएंगे और नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। जहां तक रोग और बीमारियों की बात है, आपकी कुंडली में न्यूरो प्रॉब्लम की, नर्व की समस्या की संभावना दिखाई दे रही है, तो आप ऐसा करिए, अपने स्वास्थ्य और अपने करियर के लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है दूसरा सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी दूसरा सवाल किसका रहेगा?
2: जी अगला प्रश्न मंजीत राय ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। 21 दिसंबर 1968 का जन्म है, 9:35 प्रातः पट्टी पंजाब। ये कह रहे हैं कि कारोबार के लिए मैं अपना स्थान बदलना चाहता हूं, कब तक बदल पाएगा, कौन सा कारोबार करना मेरे लिए बेहतर होगा। मंजीत राय जी, कुंडली आपकी बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। साल 2027 के शुरुआती समय में शनि की महादशा शुरू होने पर आपका स्थान बदलेगा और नई जगह पर जा करके आप बेहतर काम कर पाएंगे। कुंडली के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी का काम करें, जमीन का काम करें या खाने पीने की चीजों का काम करें, तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। आने वाले समय में अपने डाइजेशन का, अपने पेट का और अपनी आंखों का अगर आप ध्यान दें, तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 12-13 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या की। इस पर राहु की समस्या के लिए क्या कुछ करना चाहिए, पंडित जी से अब ये जान लेते हैं।
2: देखिए, आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से राहु का गहरा संबंध है और वो आपके जीवन में पितरों और पूर्वजों की स्थिति दिखाता है। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के लिए क्या करें? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनाइए। मध्य दोपहर में इसको अपने सामने रखकर पितरों से कृपा करने की प्रार्थना करिए। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिएगा, ओम रां राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा और पितृ विसर्जन अमावस्या पर कुत्तों को कुछ न कुछ जरूर खिलाइएगा, रोटी ब्रेड बिस्कुट दूध कुछ भी दीजिएगा। अगर ये उपाय ये प्रयोग आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर दोपहर के समय में करते हैं तो राहु की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में।
2: तुला राशि, व्यर्थ की चिंता इस समय हो सकती है, करियर में बड़े निर्णय न लें, धन हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि अगर आपके पास धन का अभाव है तो पितरों का श्राद्ध कैसे कर।
2: देखिए, पितरों का श्राद्ध करने में अन्न का वस्त्र का भोजन वगैरह का दान करना होता है निर्धनों को, लेकिन अगर आपके पास खुद ही धन नहीं है, आप खुद ही निर्धन हैं, तो पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, दोपहर के समय पितरों को जल अर्पित करिएगा, तर्पण कीजिएगा और इसके बाद एकांत स्थान में चले जाएं, छत पर किसी एकांत मैदान में या एकांत कमरे में जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करिएगा, कहिएगा कि मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं। मैं स्वयं निर्धन हूं, मैं और कुछ नहीं दे सकता। हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, मेरी श्रद्धा को और भावना को ही स्वीकार करें, और अगर संभव हो इतना आप कर सकें तो गाय को हरा चारा या हरी पालक 2-4-5 रुपए की खरीद कर खिला दीजिएगा। आप अगर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका श्राद्ध कर्म संपन्न होगा। हिंदू धर्म शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको कर्ज लेकर श्राद्ध करना चाहिए, कर्ज लेकर दान करना चाहिए, या चीजों को बेच करके श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप स्वयं निर्धन हैं तो केवल प्रार्थना करने से, केवल अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से भी आपका काम चल जाएगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
2: मकर राशि, रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा, करियर में आपके लाभ होगा। वाहन सावधानी से चलाएं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्या हो सकती है। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि तीसरा सवाल पंडित जी किसका लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े पंडित जी, आज तीसरा सवाल किसका रहेगा
2: जी? अगला प्रश्न एकता जुनेजा ने हमें लिखा है, अलीगढ़ से लिखती हैं। 10 अगस्त 1989 का जन्म है, 2:40 AM अलीगढ़। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। एकता, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और तुला राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा चंद्रमा की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2027 में आपके विवाह की संभावना बनती है किसी तलाकशुदा या विडोवर व्यक्ति के साथ या अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ आपके विवाह की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन आपके लिए कुल मिला के ठीक है तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल धारण कर लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज के अंतिम और आपके चौथे सवाल का। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेंगे?
2: जी, अंतिम प्रश्न नेहा शुक्ला ने हमें लिखा है, सतना मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 27 अगस्त 1984 का जन्म है, 4:05 सवेरे, सतना मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि ना तो मेरी अब तक शादी हुई है, ना मेरा करियर अब तक स्थिर हुआ है, भविष्य मेरा कैसा रहेगा। नेहा, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और सिंह राशि की, महादशा मंगल की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। बहुत प्रयास करने पर जून 2027 के पहले आपकी शादी हो सकती है, हालांकि कुंडली में विवाह के योग बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाएं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। और साल 2027 के जून के बाद से आपके जीवन में स्थिरता आएगी और जीवन बेहतर होता हुआ चला जाएगा। अपनी समस्या के समाधान के लिए एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: और चलिए, अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन 10 अक्टूबर को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
2: जिन लोगों का जन्मदिन 10 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, साल के अंत में विवाह के योग आपके बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा क्या है पंडित जी से इस बारे में जान लेने का।
2: आज की जिज्ञासा है कि गया में पिंडदान करने के बाद भी क्या पितृपक्ष में तर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि गया में पिंडदान करने के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और इसके बाद सामान्यतः तर्पण की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अगर चाहें तो अमावस्या पर पितरों के नाम से आप दान कर सकते हैं।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि 10 अक्टूबर 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या होगा।
2: दिनांक 10 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 10 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
2: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा का हाल कैसा रहता है। आज की गुडलक राशि है तुला। इनकी शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहता है। अच्छी शिक्षा के लिए इनको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए।
0: और चलिए वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि आज का महा उपाय क्या है जिससे जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं।
2: जी, अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने जाना हो तो क्या करेंगे, जिस दिन मिलने जाना हो उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद बोल बोल कर हनुमान चालीसा पढ़िएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। आपकी मुलाकात सफल होगी और काम बन जाएगा।
0: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: पितृ विसर्जन का क्या है पूजा विधान? पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों से कैसे मिलेगा वरदान? क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: सिर्फ 7 सेकंड और दुश्मनों का खेल खत्म। झुंड में हो खतरा, फिर भी नहीं कोई टेंशन। दुश्मनों को राख करेगी सेना की ज्वाला। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: कल से शुरू हो रहे शक्ति उपासना के पर्व को लेकर हर तरफ रौनक नजर आने लगी है। देवी मां के मंदिर सजाए जा रहे हैं, भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं और गरबा दांडिया नाइट्स के लिए मंच और मैदान भी सज चुके हैं। गुजरात के कुछ शहरों में तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही गरबे की शुरुआत हो गई है और इन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मगर इस साल गुजरात की नवसारी में ह्यूमनॉइड रोबोट लोगों के साथ गरबा खेल रहा है, देखिए।

0: नवरात्रि का पर्व अभी शुरू भी नहीं हुआ है और लोगों पर गरबा की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है। रंग बिरंगे चनिया चोली, सजे सवरे लोग, ढोल की थाप और डांडिया की खनक हर किसी को झूमने पर मजबूर कर रही है। गुजरात के नवसारी से आई ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। गरबा के इस रंगारंग कार्यक्रम में गरबा के सुरीले गीतों पर हर कोई झूम रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच रंग बिरंगी पोशाक पहने एक ह्यूमनाइड रोबोट ने अपने शानदार डांस मूव से सभी को अचंभित कर दिया है।
1: आज हमारे यहाँ गीता बेनबारी आई हुई है और बहुत अच्छा ये इवेंट चल रहा है, तो आज उनके साथ हमारे एक रोबोट भी मेहमान बने हैं। आज की ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोबोट भी एक गरबा खेल सकते है, वो एक अलग बात है। और आज हमने देखा बहुत सारे आकर्षण का केंद्र बने रोबोट, सब लोग ये देख रहे हैं कि डिजिटल ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुंच चुकी है और आगे चल के ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंचेगी।
0: युवाओं को आधुनिक तकनीक से रूबरू कराने के मकसद से इस कार्यक्रम में इस रोबोट को शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की ये कोशिश काफी हद तक रंग लाती भी नजर आई, क्योंकि लोगों ने इस ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ डांस भी किया, सेल्फी और फोटो भी ली, जबकि कुछ तो इस रोबोट के साथ इंटरेक्ट करते भी नजर आए।
2: हमारी कंपनी का यही मोटो है कि नेक्स्ट जनरेशन को टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड करना है।
3: क्या घटा सर इसमें?
2: ये रोबोट आप जो देख सकते हैं ह्यूमन जैसा है, हमारे जैसा चलता है, बोलता है, बात करता है, डांस करता है और ट्रेडिशन के साथ अभी आप देख रहे हैं गरबा भी करता है।
0: गुजरात का ये पारंपरिक लोक नृत्य गुजरात ही नहीं देश के दूसरे शहरों में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इसलिए जैसे ही नवरात्रि नजदीक आती है लोग इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुट जाते हैं, खासकर युवा। कोई अपने लिए रंग बिरंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीदता है और कोई गरबा और रास की प्रैक्टिस में जुट जाता है। प्रैक्टिस की ऐसी ही एक तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला से सामने आई है, जहां लड़कियां तलवार रास की बारीकियां सीख रही हैं।
4: गरबा की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, वो है महस, उनके हाथ में जो है तलवार है। तलवार इसीलिए है क्योंकि महिलाओं को जो है अपने पारंपरिक पुराने भारतीय खेल में एक तलवारबाजी का भी बहुत ज्यादा महत्व है और उस तलवारबाजी के जरिए जो है वो खुद का संरक्षण कर सके, यही इसके पीछे का उद्देश्य है। और इसीलिए यहाँ पर जो है महिलाओं को और नवे युवतियों को जो है यहाँ पर परीक्षण दिया जा रहा है।
0: बीते कुछ वर्षों में तलवार रास का चलन तेजी से बढ़ा है, इसलिए अब ये रास गुजरात से निकलकर देश के दूसरे शहरों में भी नवरात्रि के दौरान देखने को मिलता है। आयोजकों का कहना है कि इस पहल के पीछे सिर्फ गरबा को अलग अंदाज देना मकसद नहीं है, बल्कि महिलाओं में आत्मबल बढ़ाना और उन्हें आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना भी इसका उद्देश्य है।
5: खेलते आना चाहिए और गरबा के साथ साथ हम तलवार भी इसीलिए दिखाएं क्योंकि सबको गरबा के साथ साथ खुद का प्रोटेक्शन भी करते आना चाहिए तलवार के थ्रू, इसलिए हम गरबा के साथ साथ तलवार कैसे चलाते हैं, खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है वो भी सिखा रहे हैं।
0: शक्ति उपासना के पर्व के दौरान तलवार के साथ गरबा का आयोजन समाज को एक संदेश भी दे रहा है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में सशक्त हो रही है। नवसारी से रौनक जानी और अकोला से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों पर ऊंची चोटियों से लेकर निचले इलाकों तक मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर में कहीं सफेदी ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ाई है तो कहीं बारिश और ओले लोगों की परीक्षा भी ले रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज क्या रंग दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
7: चांदनी रात में आसमान से बर्फ के फाहे झड़ने लगे हैं, ठंडी हवाओं की सरसराहट भी तेज हो चली है। मौसम के इन तेवरों को देख सर्दियों के आगाज का एहसास होने लगा है। श्रीनगर लेह हाईवे के जौजिला दर्रे से लेकर द्रास और कारगिल तक बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढक दिया है। आलम यह है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले बरस रहे हैं। बांदीपुरा में तो बर्फ के टुकड़ों जैसे मोटे मोटे ओले गिरे। ओले की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कई जगह पेड़ों से फूल झड़ गए हैं और सड़कें ओलों

0: ठंडा और मैदानी इलाकों में भी ठंडक का असर महसूस होने के आसार हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल कर देने वाले।
2: माँ के आगमन की आहट है और भक्तों के साथ बंगाल पुलिस भी माँ के स्वागत के लिए उत्साहित है। ये तस्वीरें चंदनगर स्टैंड की हैं, जहां एक पुलिसकर्मी सड़क पर पेंटिंग बनाकर माँ के स्वागत की तैयारी में जुटा है। सड़क पर उभरते ये रंग माँ जगदम्बे के प्रति आस्था और प्रेम को बयां कर रहे हैं। अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है जब माँ इसी रास्ते से गुजर कर अपने भक्तों के बीच पहुँचेंगी और पूरा इलाका भक्ति रंग में रंग जाएगा। नटखट अदाएं, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और भक्ति गीत की धुन पर थिरकते नन्हे कदम, ये नजारा दिल जीत लेने वाला है। बीच में नजर आ रहा ये क्यूट बच्चा अपने किरदार में पूरी तरह डूबा हुआ है। गाना भक्ति का है तो डांस में भी भक्ति का रंग नजर आ रहा है। साथ में दूसरे बच्चे भी ताल से ताल मिलाकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी मासूम अदाएं हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रही हैं। प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से जाहिर होता है। उम्र चाहे कोई भी हो, रिश्ता पुराना हो या नया, अगर प्यार सच्चा है तो परवाह हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर लेटी है और उन्हें दर्द में देखकर पति इनके पैर दबाने लगते हैं। पति का ये छोटा सा कदम रिश्ते की बड़ी खूबसूरती बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यार और देखभाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गरबा का जुनून, भक्ति का रंग और कदमों में गजब की रफ्तार। नवरात्रि से पहले लड़कों का ये गरबा अभ्यास लोगों का ध्यान खींच रहा है। पार्वती भजन की धुन पर एक साथ गोल घेरा बनाकर लड़के ऐसे कदम मिला रहे हैं कि हर मूवमेंट देखते ही बनता है। ताल से ताल मिलाते पूरे जोश के साथ गरबा करते इन लड़कों का अंदाज नेक्स्ट लेवल का है। नवरात्रि में धमाल मचाने के लिए ये तैयारी किसी शानदार ट्रेंड से कम नहीं। प्यार की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी एक स्पर्श ही दिल का हाल बयां कर देता है। इस वीडियो में एक महिला गाय के नन्हे बच्चे को बड़े प्यार से दुलारती नजर आ रही है। वहीं गाय का बच्चा भी महिला के स्नेह को महसूस करता दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच का ये प्यारा पल हर किसी का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस खूबसूरत रिश्ते की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: पितृ विसर्जन का क्या है पूजा विधान? पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों से कैसे मिलेगा वरदान? क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: सिर्फ 7 सेकंड और दुश्मनों का खेल खत्म। झुंड में हो खतरा फिर भी नहीं कोई टेंशन। दुश्मनों को राख करेगी सेना की ज्वाला। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: महालय के पर्व के साथ आज से देवी पक्ष का शुभारंभ, मां शक्ति के पूजन आवाहन का दिन, कल से शुरू होगा नवरात्र। तर्पण के साथ आज पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। माँ वैष्णो देवी के धाम में नवरात्र के लिए शानदार तैयारी, बाजार से लेकर भवन तक सजावट का काम तेज, इस बार बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। आज विधि विधान से बंद होंगे पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, दोपहर 12:30 होगी अरदास, हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ की चादर। दिल्ली में मौसम ने करवट ली, एनसीआर में ठंडी हवाओं के साथ बादलों का डेरा, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट। चाइना के ब्रिज पर बोगनवेलिया के फूलों की बहार, गुआंगजू शहर में 73 पुल बने स्काई फ्लावर ब्रिजेस, दिखा शानदार नजारा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
4: आज है महालय का पावन दिन, धरती पर आगमन के लिए माँ दुर्गा के आवाहन की तिथि, आज से देवी पक्ष का शुभारंभ। महालय के ही दिन देवी देवताओं ने किया था माँ दुर्गा का आवाहन, महिषासुर के आतंक से मुक्ति के लिए प्रकट हुई थी माँ दुर्गा। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कहते हैं महालय, पितृपक्ष के समापन का पावन दिन है सर्व पितृ अमावस्या। महालय के अवसर पर पितृ विसर्जन की परंपरा, 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष का ये अंतिम दिन है। आज पवित्र नदियों के किनारे पितरों को तर्पण और श्रद्धांजलि, स्नान दान और पूजा पाठ करते हुए पूर्वजों को याद कर रहे हैं लोग। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महालय अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी, भक्तों ने पूजा अर्चना कर कमाया पुण्य लाभ। महालय अमावस्या के अवसर पर रामेश्वरम में श्रद्धालुओं ने तर्पण किया, बड़ी संख्या में भक्तों ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, स्नान दान के साथ तर्पण किया। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में सुबह से ही स्नान ध्यान के लिए जुटे हैं लोग, कपिल मुनि आश्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना। असम के डिब्रूगढ़ में भक्तों ने महालय पर ब्रह्मपुत्र नदी में लगाई डुबकी, पितरों के लिए तर्पण किया। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी के धाम में तैयारी जारी, बाजार से लेकर भवन तक फूलों लाइटों और तोरण द्वारों से की जा रही है सजावट। वैष्णो देवी धाम में दिव्यांगों बुजुर्गों और बच्चों को सौगात, बाण गंगा से अर्धकुंवारी तक पात्र श्रद्धालुओं के लिए घोड़े की निःशुल्क व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए अर्धकुंवारी से भवन तक निःशुल्क बैटरी कार सेवा, विशेष दर्शन आरती में शामिल होने के साथ साथ रैंप और लिफ्ट की भी सुविधा। नवरात्रि से स्थानीय कारोबारियों और किसानों को भी बड़ी आस, श्रद्धालुओं के वैष्णो देवी पहुंचने से कारोबार बढ़ने की उम्मीद। कटरा में नवरात्रि के दौरान होटल्स में एडवांस बुकिंग पर 30% तक की छूट, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। जयपुर में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी। गुलाबी नगरी में 23 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा बनेगी खास आकर्षण। पीली साड़ी और चांदी के आभूषणों से होगा मां का श्रृंगार। जयपुर में दिखेगी बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की झलक। दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता से मंगाई जा रही है सजावटी सामान और प्रॉप्स। बंगाल से आए कारीगर पंडालों को भव्य और पारंपरिक रूप दे रहे हैं। 70 साल पुरानी दुर्गाबाड़ी में सजेगा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। इस बार सृष्टि स्थिति और विनाश की थीम पर खास सजावट होगी। करीब 2000 वर्ग गज में बनेगा पंडाल। 50 फीट ऊंचा होगा प्रवेश द्वार। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। जयपुर में पिछले 3 से 4 महीनों से चल रही प्रतिमा निर्माण की तैयारी। मिट्टी रंगों और आकर्षक आभूषणों से निखर रहा माँ का दिव्य स्वरूप। 15 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव। जयपुर की दुर्गाबाड़ी में स्थायी प्रतिमा के साथ होगी विशेष पूजा। वियतनामी मार्बल से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है परिसर की पहचान। पुरुलिया में चंद्रोदय मंदिर की थीम पर सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल। नितूरिया दुबेश्वरी कोलियरी में पूजा का 36वां साल खास होगा। तो वहीं पंडाल में दिखेगा भगवान विष्णु का 10 अवतार। पुरुलिया की दुर्गा पूजा में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। इस साल भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। मां दुर्गा के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं को मिलेगा आध्यात्मिक अनुभव। महाली किसान दुर्गोत्सव का बढ़ा उत्साह। मां दुर्गा के स्वागत के लिए तैयार पुरुलिया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन के बाद श्रद्धालु करेंगे मां दुर्गा के दर्शन। कल 11 अक्टूबर से शुरू होगा शक्ति का महापर्व। कलश स्थापना के साथ पूजा का शुभारंभ होगा। मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान गज वाहन पर होगा। इस साल शारदीय नवरात्रि 10 के बजाय 11 दिनों की। 21 अक्टूबर को देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी। प्रयागराज के अलोप शंकरी मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था। मंदिर में नहीं है देवी मां की कोई मूर्ति। यहां पर मां के दिव्य पालने की होती है पूजा। देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है मां अलोप शंकरी मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद मां के दिव्य पालने के दर्शन करते हैं श्रद्धालु। नवरात्रि में उमड़ती है भारी भीड़। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी करती है मां। मां के दरबार में हाजिरी लगाने और मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। सदियों पुरानी है मंदिर की महिमा। मान्यता है कि इसी जगह पर घिरा था मां सती के हाथ का पंजा। अलोप होने के कारण जगह का नाम पड़ा था अलोपी बाग। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में स्थित पवित्र कुंड में दूध दही मेवों से भरकर माता का आभार जताते हैं श्रद्धालु। मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं नवदंपत्ति। नवरात्रि के अवसर पर तमिलनाडु की मदुरई में पारंपरिक गोलू डॉल्स की नुमाइश। देवी देवताओं से लेकर ऐतिहासिक किरदारों तक की दिख रही है झलक। तमिलनाडु के गोलू डॉल्स में इस बार दिख रही है विकसित भारत की भी झलक। इसरो के स्पेस मिशन पर पेश की गई झांकी। गोलू डॉल्स की नुमाइश में G20 सम्मेलन की भी पेश की गई है झांकी। परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम। मदुरई के इस घर में 4,360 से ज्यादा पारंपरिक गोलू डॉल्स की नुमाइश। डिस्प्ले में पौराणिक और सांस्कृतिक थीम पर आधारित प्रतिमाएं मौजूद हैं। मदुरई में घरों में गोलू डॉल्स रखकर नवरात्रि का पर्व मनाने की परंपरा है। इन सजी हुई गुड़ियों और मूर्तियों को सीढ़ी नुमा मंच पर रखकर मनाया जाता है पर्व। उत्तराखंड में आज बंद होने जा रहे हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट। करोड़ों सिख श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी खबर। हेमकुंड साहिब दरबार के कपाट बंद होने के बाद कल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद होंगे। बर्फबारी के बीच मंदिर में पूजा करते दिखे पुजारी। हेमकुंड साहिब इलाके में गुरुवार देर रात से हो रही है बर्फबारी। हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ ही बर्फ। लक्ष्मण मंदिर के आसपास भी जमी बर्फ की चादर। चमोली जिले के ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों में बदल रहा है मौसम। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। गुरुद्वारे और मंदिर के कपाट बंद होने से पहले दरबार में हाजिरी लगाने और दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई इलाकों में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूप की तपिश से मिल सकती है राहत। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राजस्थान और आसपास के इलाकों में आज और कल तेज आंधी के साथ बारिश के आसार, नए चक्रवाती सिस्टम के कारण बदल सकता है मौसम। पश्चिम बंगाल में 15 से 17 अक्टूबर तक बारिश के आसार, दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान पड़ सकती हैं बौछारें। 13 और 14 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश, देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल। 48वीं वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2026 के प्रतिभागियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, चाइना के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक हुई थी प्रतियोगिता। पीएम ने प्रतिभागियों को लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया, बातचीत के दौरान प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ प्रतियोगिता के अनुभव साझा किए। कौशल का ओलंपिक के नाम से मशहूर प्रतियोगिता में भारत ने किया है शानदार प्रदर्शन, 6 सिल्वर और 20 मेडल फॉर एक्सलेंस के साथ 10वें नंबर पर रहा भारत। प्रतियोगिता में इस बार भारत ने अपने अब तक के सबसे बड़े प्रतियोगिताओं में 70 प्रतियोगियों के दल के साथ 63 अलग अलग स्किल्स में हिस्सा लिया था। पीएम ने प्रतिभागियों से देश के कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने और कौशल विकास का स्किल एम्बेसडर बनने की अपील की। वडोदरा में खेल महाकुंभ 2026 का रंगारंग शुभारंभ, लोक संस्कृति के रंग दिखे, कलाकारों ने देशभक्ति के गीतों पर पेश किया सामूहिक नृत्य, खेल भावना और एकता का संदेश दिया। खेल महाकुंभ के उद्घाटन में दिखी गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक, गुजरात की पहचान माने जाने वाले पारंपरिक गरबा और रास की भी शानदार प्रस्तुति। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन, युवाओं को जोड़ने की खास पहल। अगले साल होने वाले 20वें आईपीएल के सिलसिले में बीसीसीआई ने बुलाई अहम बैठक, 15 अक्टूबर को सभी पक्षों के साथ जरूरी मुद्दों पर मंथन होगा। हिमाचल के मनाली में सजा खेल और रोमांच का मंच, पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के लिए सोलंग नाला में जुटे देश विदेश के पैराग्लाइडर्स, सटीक लैंडिंग के लिए शुरू हुआ मुकाबला, प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह। हिमाचल सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन, मंत्री राजेश धर्माणी ने खुद पैराग्लाइडिंग भी की। प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा देशों के 42 पायलट हिस्सा ले रहे हैं, पैराग्लाइडर्स में एक महिला भी शामिल। 12 अक्टूबर तक चलेगा पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारतीय थल सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण से जुड़ी गुड न्यूज, दुर्गा पूजा के माहौल में बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने की पहल। आसनसोल के विधायक की पहल पर इंडोर स्टेडियम में 10 दिवसीय निशुल्क कलारी पेटू ट्रेनिंग कैंप का किया गया आयोजन। केरला से आए कलारी पेटू प्रशिक्षक 15 से 45 साल की युवतियों और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्राचीन युद्ध कला के जरिए सिखा रहे हैं आत्मरक्षा के गुण। कलारी पेटू के निशुल्क ट्रेनिंग कैंप के दौरान महिलाओं को बिना हथियार की आत्मरक्षा के लिए फाइटिंग तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। महिलाओं को अलग अलग हथियार इस्तेमाल करने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। ट्रेनिंग लेने वाली बेटियों का बढ़ा आत्मविश्वास, बोली अब नहीं लगता है डर। पूर्व अग्निवीरों को यूपी सरकार का तोहफा, पुलिस वन कारागार और रोडवेज विभाग की भर्ती में मिलेगा 20% का कोटा। यूपी में पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा से मिलेगी 3 साल की छूट, लिखित और शारीरिक परीक्षा में भी मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश शासन और एक्सिस बैंक के बीच एमओयू, सैलरी अकाउंट के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं, 1 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, 30 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। 2026 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी जज नावी पिल्लई को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। नावी पिल्लई ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ चलाई थी मुहिम, दक्षिण अफ्रीका हाईकोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज रही हैं नावी। अयोध्या ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता में मिल रही है मदद। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से 30,000 रुपए का कर्ज शुरू किया। रोजगार, बिजली कटौती से राहत मिलने के साथ परिवार की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में सूर्य प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को जमीन के कागजात दिए। सेवा संकल्प अभियान के तहत उठाया गया एक कदम। रायपुर में ट्रैफिक हैकेथॉन के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, विजेताओं और सहयोगी संस्थाओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने सम्मानित किया। अगरतला में रुद्रसागर झील के किनारे नीर महल जल उत्सव, पारंपरिक नौका दौड़ का भी आयोजन। नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म शक्तिशालिनी की रिलीज टलने की खबर, अब अगले साल रिलीज हो सकती है फिल्म। शाहरुख खान की फिल्म किंग से बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए आगे बढ़ाई गई शक्तिशालिनी की रिलीज डेट। सैयारा फेम अनित फड्डा ने निभाया मेन रोल। ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भेजा गया फिल्म धुरंधर द रिवेंज के गानों का एल्बम। फिल्म ने दुनिया भर में छेड़ी है शानदार छाप। विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन, साउंड ट्रैक सहित कई श्रेणियों में धुरंधर द रिवेंज के गानों को मिला नॉमिनेशन। रैप, पॉप और रीमिक्स गानों की अवार्ड के लिए एंट्री हुई। 18 अक्टूबर को धुरंधर द रिवेंज का होगा टेलीविजन प्रीमियर। दर्शकों को घर में ही फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम के बॉक्स ऑफिस पर जारी है तूफानी प्रदर्शन। रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को भी करीब 15 करोड़ की कमाई। 8वें दिनों में दृश्यम 3 का नेट कलेक्शन 260 करोड़ के पार पहुंचा। बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। फिल्म हनुमान अंश की कमाई में भी उछाल आया। शुक्रवार को 1,17,00,000 से ज्यादा का कलेक्शन किया। रिलीज के 64वें दिन के बाद हनुमान अंश की कमाई पहुंची 350 करोड़ के करीब। बनी हुई है दर्शकों की दिलचस्पी। लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर चुकी है फिल्म हनुमान अंश। अब 400 करोड़ के क्लब की ओर नजर है। हैलोवीन के त्योहार से पहले अमेरिका में बढ़ी पम्पकिंस की डिमांड, तो वहीं मेज के फार्म में ग्राहकों की उमड़ रही है भीड़। हैलोवीन के दौरान बनाए जाते हैं पम्पकिंस के पकवान। अक्टूबर में चरम पर होती है डिमांड। फ्रांस म्यूजियम से चुराई गई 2 खास कलाकृतियां बरामद की गई, लाखों डॉलर में कीमत है। 1 महीने पहले फ्रेंच रिवेरा के म्यूजियम से चोरी हो गई थी 2 कलाकृतियां, 6 लोग गिरफ्तार किए गए। नासा की साइग्नस एक्सल कार्गो स्पेसक्राफ्ट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डिलीवर किया करीब 5,000 किलोग्राम सामान बिना किसी क्रू मेंबर के। नॉर्थरॉप ग्रनमैन स्पेसक्राफ्ट की पहली उड़ान। चाइना में पुलों पर बोगनवेलिया के फूलों की बहार देखने को मिली, दिख रहा है शानदार नजारा। दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में ग्वांगझू शहर में 73 पुल बने स्काई फ्लावर ब्रिजेस। पुल के ढांचों, रेलिंग और रैंप पर फैली बोगनवेलिया की बेल। पुलों के डेक को गर्म होने से बचाने के लिए लगाए गए बोगनवेलिया के पौधे। बोगनवेलिया में होती है गर्मी सहने की क्षमता। इटली में तुरीन की सड़कों पर ड्राइवरलेस कार का परीक्षण। ऑटोनॉमस ड्राइवर टेक्नोलॉजी से लैस है फ्लैट 500E कार। टेस्ट के दौरान परखी गई कार की नेविगेशन और तकनीकी क्षमता। 2028 तक बाजार में लॉन्च करने का लक्ष्य है। अमेरिका के फ्लोरिडा में हरिकेन आइसियास के साथ के चलते तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, राहत के लिए किए गए इंतजाम। फ्लोरिडा के नवारी बीच इलाके में तूफान के चलते कामकाज पर असर, इमरजेंसी टीमों ने संभाला मोर्चा। फ्लोरिडा में पेनसकोला बीच पर चहलकदमी करते हुए नजर आए लोग, गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने किया खतरे से आगाह। अमेरिका में कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच पर हाई टाइड के कारण सड़कों पर आया समंदर का पानी, लोगों से आवागमन से बचने की अपील। तटीय इलाकों में प्रशासन ने जारी की फ्लड एडवाइजरी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: और चलिए अब बात करते हैं देवभूमि में जारी पवित्र चार धाम यात्रा की। इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा नए नए कीर्तिमान बना रही है। अभी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आपके पास एक महीने से ज्यादा का वक्त है, मगर यहां अभी तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 19 लाख के पार पहुंच गई है। रोजाना 14,000 से 18,000 भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं, और वो भी तब जब मौसम यहाँ पल पल बदल रहा है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन आस्था को लेकर उत्साह बढ़ा हुआ है।
2: हर तरफ श्रद्धालुओं का मेला है, बद्री विशाल के जयकारे लग रहे हैं, मानो भगवान विष्णु के धाम में रौनक ही रौनक पसर गई हो। देश के कोने कोने से पूरी आस्था के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोई अपने पूर्वजों पितरों को पिंड और तर्पण देता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई बद्री विशाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाह रहा है। बद्रीनाथ धाम में इस साल आस्था का सैलाब इस कदर उमड़ा है कि संख्या अब तक 19,13,000 के पार पहुँच गयी है। अमूमन मई जून के बाद बरसात में यात्रियों की संख्या में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है, जबकि अक्टूबर और नवंबर में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार नजारा अलग है। रोज 14,000 से 18,000 भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब तक पहली बार 19 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं।
3: जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, सनातन धर्मावलंबी भक्तों का जो अपार भीड़ देखी गई, 19,14,000 यात्रियों ने अब तक दर्शन कर दिए।
2: चारधाम यात्रा में अभी भी एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन श्रद्धालुओं का रेला कम होने का नाम नहीं ले रहा।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहली बार 19 लाख के पार बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों की जो संख्या है वो देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर गाड़ियों की कतार सुबह से शाम तक लगातार देखने को मिल रही है। यात्रा मार्ग पर लगातार रौनक बनी हुई है बद्रीनाथ धाम में। 19,13,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट अब बंद होने को हैं। हेमकुंड साहिब में भी लगातार श्रद्धालुओं का उत्साह जो है बना हुआ है।
2: श्रद्धालु उत्साह के साथ कतारबद्ध तरीके से बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कोई पितरों के पिंडदान के लिए यहां पहुंच रहा है, तो कोई अपनी चार धाम की यात्रा करने, तो कोई अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए यहां पहुंचा है, तो कुछ भगवान बद्रीनाथ के सिर्फ दर्शनों के लिए भी यहां पहुंच रहे हैं। इस बार की यात्रा बेहद उत्साह और बहुत ही सुंदर तरीके से भव्य और दिव्य यात्रा के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 17,63,578, 2023 में 17,80,429, 2024 में 17,74,264 और 2025 में 17,78,298 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में दर्शन किए। लेकिन इस बार तो ये आंकड़ा अभी ही 19 लाख के पार चला गया है, और बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद होने में एक महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसा माना जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में पिंडदान और तर्पण करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए भी भक्तों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व माना गया है। बद्रीनाथ धाम में पिंड तारा पांब का भी विशेष महत्व है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थराज ब्रह्म कपाल भी मौजूद है। कहा जाता है कि एक बार यहाँ पिंडदान करने के बाद किसी और जगह पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में इस वक्त पूर्वजों की मोक्ष की कामना के लिए हर कोई यहाँ पहुँच रहा है। चमोली से कमल लेंसलौड़ी, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: महालय के पर्व के साथ आज से देवी पक्ष का शुभारंभ, तो वहीं माँ शक्ति के पूजन और आवाहन का दिन है। कल से शुरू होगा नवरात्र। तर्पण के साथ आज पितृपक्ष का समापन। कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। माँ वैष्णो देवी के धाम में नवरात्र के लिए शानदार तैयारी, बाजार से लेकर भवन तक सजावट का काम तेज, तो वहीं इस बार बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत हो रही है। आज महाले के साथ ही पितृपक्ष का समापन और दुर्गा पूजा के शुभारंभ का मुहूर्त आ गया है। पितृपक्ष के आखिरी दिन आने वाला महाले पर्व पितरों के जाने और माँ शक्ति के आने के अद्भुत संयोग का है। ऐसे में देश भर में शहर शहर मंदिर और पंडाल सजाए जा रहे हैं। एक ओर माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर रामलीला के मंच तैयार हैं। कहीं गरबे की तैयारी है तो कहीं शुभ मुहूर्त में शॉपिंग की बारी है। यानी देश भर में पास आते त्योहारों का उल्लास बिखरने लगा है और इसी उल्लास के बीच सबसे पहले बात करेंगे महाले पर्व की। आखिर क्यों खास है महाले और क्या है इसकी महिमा?

0: के महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। 10 अक्टूबर को महालया और अगले दिन से 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति उत्सव की शुभ शुरुआत हो रही है। सर्वपित्र अमावस्या को महालया अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि यही वो शुभ दिन है जब पितरों के गमन और माँ भवानी के धरा पर आगमन का शुभ संयोग बनता है। महालया को 15 दिन के पितृपक्ष का समापन होता है, जिसके साथ पितरों को विदा कर दिया जाता है। मान्यता है कि महालया के दिन ही माँ दुर्गा धरती पर पधारती है और इसके बाद धरती पर 10 दिनों तक निवास करती है।
1: नमस्त चंडिकाए, जैसा है शास्त्रों के मान्यता के अनुसार महालया संस्कृत के महान शब्द और आलय जिसका माने है निवास, महान आलय निवास शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है देवी का निवास स्थान। देवी माँ कृत्य के विसर्जन के अंतिम दिन तथा नवरात्रि के प्रथम दिन की रात्रि में माता का आगमन होता है। जैसा शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष का नवरात्रि शारदीय नवरात्रि 10 दिन का है। चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण ये नवरात्र अति पवित्र और पावन 10 दिन का बना हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हम विजय प्राप्त करते हैं और बुराई को त्यागते हैं, जिसके अनुसार दसवां, जिसको हम विजय दशमी मान्यता प्रदान करते हैं, उसके आधार पर हम शत्रु पर विजय पताका आदि तोरण पत्रिकाएं लगाते हैं, इसको हम महालया प्रारंभ का समय मानते हैं।
0: अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में सर्वपित्र अमावस्या यानी महालया को पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह अमावस्या उन पितरों या पूर्वजों को समर्पित होती है जिनका श्राद्ध किसी कारणवश पहले न हो पाया हो। अमावस्या के दिन गंगा घाट पर पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। सुबह से लोग पवित्र नदियों के तट पर पहुँचते हैं और दान पुण्य करते हैं, तो वहीं शहर शहर माँ जगदम्बा का दरबार सजने की शुरुआत हो जाती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देवी की आराधना की तैयारी होने लगती है। माँ दुर्गा की भक्ति के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शक्ति को मनाने के पर्व की तैयारियाँ भी महालया को अंतिम चरण में होती है। शहर शहर रामलीला के मंच सज जाते हैं। इस बार भी ये सारी तैयारियाँ जोर शोर से हो रही है। महालया और नवरात्र से जुड़ी मान्यता है कि महिषासुर के सर्वनाश के लिए देवताओं के आह्वान पर महालया के दिन ही माँ दुर्गा का धरती पर अवतरण हुआ था। अवतरण के अगले दिन से ही नवरात्र की शुरुआत होती है और अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। महिषासुर मर्दनी की कथा मुख्य रूप से देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में मिलती है। इन ग्रंथों में असुर महिषासुर के जन्म, उसकी शक्ति और देवी दुर्गा द्वारा उसके वध की कथा का वर्णन विस्तार से किया गया है। पुराणों में वर्णित महिषासुर की कथा बताती है कि महिषासुर दानव ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते देवता, राक्षस या नर उसका वध नहीं कर सकते थे। इसके बाद वरदान पाकर अहंकारी हुए महिषासुर के अत्याचार बेहिसाब बढ़ गए। तब महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं ने त्रिदेव से प्रार्थना की। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को मिला दिया। कथा में वर्णन मिलता है कि देवों की महाशक्तियों के इस मेल से आदिशक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा प्रकट हुई। तमाम देवताओं के अस्त्र शस्त्र धारण करके देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और 9 दिनों की लड़ाई के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। तभी से माँ के सम्मान में नवरात्रि में पूजा की परंपरा शुरू हुई।
1: माता जी ने महिषासुर राक्षस का वध प्रथम महालया के अंतिम और पितृपक्ष के अंतिम और महालया के प्रथम दिन ही रात्रि में किया था, जिसे पौराणिक मान्यता के अनुसार हम इस धरती पर राक्षसादि प्रवृत्तियों को मुक्त किए हुए हैं, जिसकी पौराणिक कथा मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी के इस सप्तशती पुस्तक में निहित है।
0: वैसे तो हर साल नवरात्र के इंतजार में महालया के पहले से ही पूजा पंडालों में देवी दुर्गा के आगमन और पूजा अर्चना की तैयारी धूमधाम से चलती रहती है। लेकिन मूर्तिकार महालया के दिन ही माँ दुर्गा की आंखें बनाते हैं। इस परंपरा को बांग्ला भाषा में चोखुदान यानी चक्षुदान कहा जाता है और इसके बाद ही प्रतिमाओं में रंग भर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। महालया के अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के साथ ही मां भवानी की आराधना के महापर्व का शुभारंभ हो जाएगा। 9 दिनों तक देश भर में शक्ति स्वरूपा मां गौरी के अलग अलग रूपों की उपासना की जाएगी। वैसे जानकारों के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ वैसे तो 10 अक्टूबर को रात 9:19 पर ही हो जाएगा और प्रतिपदा तिथि का समापन 11 अक्टूबर रात 9:30 माना जा रहा है, लेकिन उदया तिथि को मानते हुए कलश स्थापना या घट स्थापना 11 अक्टूबर को होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से लेकर सुबह 10:26 तक होगा। इस अवधि के अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। 11 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:51 से दोपहर 1:09 तक रहेगा।
2: घट स्थापन के लिए प्रमुख समय जो होगा प्रातः 10:51 से लेके दिन में 1:09 तक होगा। इस समय काल में, इस समय अवधि में घट स्थापन करें। घट स्थापन करने के बाद बंदनवार से सुशोभित करें, फिर माता पराम्बा का 5:50, 1650 या 10:50 पूजन अर्चन वंदन करें।
0: नवरात्र के शुभारंभ के बाद पूरे 9 दिनों तक 51 शक्तिपीठों से लेकर देश भर के देवी मंदिरों में आस्था की ज्योत जगमगाती रहेगी। मन में भक्ति की भागीरथी समेटे असंख्य श्रद्धालु माँ जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुँचेंगे। शक्ति उत्सव की यही महिमा है। कहा जाता है कि ऋतुओं के संधिकाल में आने वाली ये नवरात्रि जीवन में विजय लेकर आती है। शारदीय नवरात्र में देवी की उपासना का फल अमोघ होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देश भर में नवरात्र की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मां भवानी के स्वागत की तैयारियां दिख रही हैं। पंडालों का निर्माण आखिरी दौर में है। कलाकार देवी की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को सजाने संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है।
4: नवरात्रि आने ही वाली है और उसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। जयपुर के एक कारखाने में मैं मौजूद हूं, जहां पर मूर्तियां जो है वो बनने लग गई हैं। तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। अलग अलग मूर्तियां, अभी हर एक मूर्ति अपने अलग चरण पे है। कुछ का ढांचा अभी तैयार हुआ है तो कुछ का पेंट चल रहा है, कुछ मूर्तियों में नैन नक्श दिए जा रहे हैं तो कुछ में पोशाक पहना के श्रृंगार किया जा रहा है। दुर्गा माता की जो मूर्तियां हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई जा रही है और कुछ जो पोशाक में ऑलरेडी हैं उनके अलावा भी जो बची हुई मूर्तियां हैं जिनको जिस तरीके से उनका श्रृंगार किया जाने वाला है उसकी पोशाकें भी यहाँ पे रखी हुई हैं। हर एक मूर्ति एक अलग संदेश देती है। अगर और अंदर इस कारखाने के हम जाएं तो पीछे की ओर हैं वो मूर्तियां जो अभी पूर्ण रूप से तैयार हैं और इनका श्रृंगार भी हो चुका है, बस मुकुट यहाँ पे इनका धारण करना बाकी है। ये बहुत ही खूबसूरत कुछ मूर्तियां हैं। डिटेलिंग हम यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से माँ के नैन नक्श बनाए गए हैं। हर एक रंग जो है वो एक अलग फीचर को और भी ज्यादा इन्हांस कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इन मूर्तियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अलग अलग किस्म के पेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बहुत ही कलरफुल ये जो अभी यहाँ पे समा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही फुल ये जो विजुअल्स हैं वो यहाँ पे समय देखने को मिल रहे हैं। हर एक एक्सप्रेशन, हर एक कलर अलग है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि माँ का रंग पीला है तो यही थोड़ा सा गोरा थोड़ा सा गुलाबी जो रंग है वो उनको दिया गया और ऐसी ही अलग अलग मूर्तियां इस बार जयपुर में अलग अलग पांडालों में भी नजर आने वाली है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे, जयपुर।
3: युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है और हर साल नवरात्र आते ही भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नजदीक से देखने और महसूस करने का अवसर मिलता है और अब की बार वो मौका फिर से आ पहुंचा है। शहर शहर रामलीला के मंच तैयार हैं, कहीं शहर के लोग खुद मिलजुल कर रामलीला कर रहे हैं तो कहीं बाकायदा प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग के बाद बेहद खास अंदाज में रामलीला होने वाली है। देखिये

0: ரவணம்.
1: युग युगांतर से समय की धारा के साथ बहती आई रामायण की ये दिव्य कहानी जो भारत के मन, मर्म, भाव, विचार, सोच और संवेदनाओं की पोरों में रमी है, एक बार फिर से दोहराए जाने को तैयार है। माँ भगवती के आगमन की आहट के साथ ही एक बार फिर शहर शहर रामलीला के मंच सज गए हैं, कॉस्ट्यूम तैयार हैं, गहने चमकाए जा चुके हैं, स्टोर से निकालकर हथियार दमकाए जा रहे हैं, रिहर्सल अंतिम दौर में है। ये तस्वीरें हरियाणा के अम्बाला से आई हैं। राम कथा मंचन के श्री गणेश से पहले यहाँ गजानन के पूजन का शंखनाद हुआ। गजानन की वंदना के साथ ही अम्बाला के तोपखाना बाजार में रामलीला का औपचारिक शुभारंभ हो गया है।
2: तोपखाना बाजार में रामलीला नाटक समाज द्वारा रामलीला का मंचन शुरू हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर हर साल होता आ रहा है। मैं जब से छोटा था बचपन से ही देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले से कब से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लगातार ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब भगवान राम के चरित्र को यहाँ पर उजागर किया जाता है ताकि आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये पता लग सके कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू सनातन क्या है।
1: रामलीला के पहले दिन यहाँ जय विजय प्रसंग का मंचन किया गया। सीन में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और उनके द्वारपाल जय विजय से जुड़ी कथा को साकार किया गया। अम्बाला के तोपखाना बाजार की एक बेहद खास बात है वो ये कि रामलीला के लिए यहाँ कभी कोई प्रोफेशनल हायर नहीं किया जाता। यहाँ रामलीला मंचन के लिए लगभग 3 दर्जन लोगों की टीम है और टीम के सभी सदस्य और स्थानीय लोग राम काज करीबे को ऐसे आतुर हैं कि मेकअप और सजावट से लेकर अभिनय तक की सारी जिम्मेदारी निस्वार्थ होकर निभाते हैं।
3: तो 35 लोगों की हमारी टीम है यहाँ पर, जो हमारे पास कोई प्रोफेशनल हमने हायर नहीं किया हुआ। सब बच्चे इसी तरह के परिवारों के, यहाँ नरेश जी का ये घर है, इनकी दोनों बहनें हैं छोटी, वो मेकअप का सारा काम देखती हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो डायरेक्टर हैं हमारे। तो हर आदमी निस्वार्थ होके भगवान राम के इस चरित्र का मंचन जो है तोपखाना बाजार में हो रहा है हर साल की तरह। और मैं यही कहूंगा आज की जो पीढ़ी है, जो आज के हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, उनको भगवान राम के आदर्शों से जुड़ना चाहिए।
1: अम्बाला की इस रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर के आम और खास लोग जुटते हैं। अम्बाला में जहां रामलीला मंचन आरंभ हो चुका है, वहीं दिल्ली में तैयारी अंतिम दौर में है। करीब 7 दशक से दिल्ली के श्री राम भारतीय कला केंद्र में रामायण का अनूठे अंदाज में मंचन किया जा रहा है। श्री राम भारतीय कला केंद्र में मंच पर डांस ड्रामा के जरिए राम कथा का मंचन होता है। नवरात्र से पहले अब यहाँ तैयारी अंतिम चरण में है। इस सीन में आप श्री रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग की तैयारी देख सकते हैं। धनुष यज्ञ से पहले राजा जनक की पुष्प वाटिका में सियाराम के प्रथम मिलन के भावपूर्ण प्रसंग की संगीतमय तैयारी चल रही है।
4: शहर में श्री राम की दस्तक हो चुकी है, जगह जगह रामलीला की तैयारियां जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं। आज हम पहुंचे हैं श्री राम भारतीय कला केंद्र, जहां पर श्री राम जो कि एक रामलीला है उसका लगातार मंचन यहां किया जा रहा है। 69 साल से लगातार आज उसका एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस यहां देखने को मिल रही है। लेकिन इसी प्रैक्टिस के बीच में हम आपको उन तमाम कलाकारों से मिलाएंगे जो राम का रोल प्ले करते हैं, जो सीता का किरदार निभाती हैं, जो रावण बनते हैं, समझते हैं कि उनके लिए इस रोल को करना कितना मुश्किल है या कितना ज़रूरी है और कैसे वो अपने जीवन में रामायण के तमाम कलाकारों को अपने जहन के भीतर बैठा कर रखते हैं।
1: एक्टर राजकुमार शर्मा पिछले 30 साल से इस डांस ड्रामा में श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन हर साल मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को जीवंत करने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं।
0: वाकई राम समा गए हैं, बट ये कि राम बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बट हमारे डायरेक्टर हैं शोभा दीपक सिंह पद्मश्री, उन्होंने काफ़ी हमें तुलसीदास रामायण और अपना वाल्मीकि रामायण बहुत रटाया है, क्योंकि हमारा जो बेस है वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण के ऊपर है।
1: श्री राम का किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण है, तो माता सीता का किरदार निभाना भी आसान कहाँ। बात आस्था और भावनाओं से जुड़ी है, तो तैयारी में बारीकियों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
5: माता सीता की तरह तो आज कोई भी नारी नहीं है, बट हम उनसे यही प्रेरणा लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में सैक्रिफाइसेस करे, एक वो नारी बनी और पतिव्रता अपना धर्म निभाया, और जो कि अभी तक जनरेशन उनके नाम को अभी तक आगे जारी रख रही है।
1: इस रामलीला की एक खास बात है कि यहाँ दर्शक कलाकारों को डायलॉग बोलते नहीं सुनेंगे, बल्कि केवल भाव भंगिमाओं और मुद्राओं के जरिए ही राम कथा के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा।
0: कुछ वर्कशॉप हुई हमारी थिएटर की और कुछ संवाद की हुई कि कैसे आपको अभिनय करना है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे, ये हमारा अभिनय प्रधान है, तो अभिनय के थ्रू हमें मुद्राएं एक्सप्रेशन इस पर काफ़ी काम करना पड़ा, जिसके लिए हमें वर्कशॉप देने पड़े। हमारे गुरुजी, हमारे जितने सीनियर हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमारा हेल्प किया।
1: बता दें कि इस नाटिका के लिए कलाकारों को अपना मेकअप भी खुद ही करना होता है, चाहे सीता जी हों या श्री राम या फिर लंकापति रावण, सभी किरदारों को निभाने वाले कलाकारों को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मेकअप और मुद्राएं ऐसी हों कि मंच पर प्रस्तुति जीवंत लगे।
6: ये जो स्टाइल है, क्योंकि वो साउथ और जो श्रीलंका है, थोड़ा साउथ की तरफ पड़ता है हमारे इस जाम खड़े हैं वहाँ से, तो वो इसलिए हमने वो साउथ इंडियन स्टाइल को इस कैरेक्टर के लिए अडॉप्ट किया फॉर डेट कि हमें वो विशाल रूप जो है वो लेने में हमें परेशानी ना हो।
7: तो सर, मेकअप आपने क्या क्या क्या है चेहरे पे इस वक्त, क्योंकि नॉर्मल मेकअप तो नहीं लग रहा है।
6: नॉर्मल मेकअप नहीं है, ये बेसिकली काजल है, और जो पेंट है वो हैंडमेड है, वो कभी भी स्किन को खराब नहीं करेगा, ये स्पेशली केरला से मंगवाया गया है।
5: आईब्रो जो है, जो हमें शोभा जी ने सिखाया है कि आईब्रो को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ताकि जो पॉजिटिव रोल है वो कितना दूर दर्शकों तक समझ में आए कि दैट इज़ अ पॉजिटिव रोल।
1: अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आने वाले दिनों में दिल्ली पहुंचने का प्लान है, तो आपको बता दें कि 2.25 घंटे की इस नाटिका का मंचन 11 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दिल्ली के मंडी हाउस में कॉपर निकस मार्ग पर मौजूद ओपन एयर थिएटर में हर शाम 6:30 बजे किया जाएगा। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश भर के शहरों से रामलीला मंचन की तस्वीरें आने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। देश भर में आयोजित हो रही रामलीला की ये स्वरूप बताते हैं कि राम कथा भारत के जनमानस में कितनी गहराई तक रची बसी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

तो रामलीला का आरंभ शहर शहर में हो रहा है, अलग अलग अंदाज में हो रहा है, लेकिन अंदाज जो भी हो, आरंभ जैसा भी हो, रामलीला का अंत समान है। रामलीला का अंत होता है रावण दहन के साथ, जो अब देश भर में रावण के पुतलों को बनाने का काम भी जोर शोर से जारी है। रावण के विशालकाय पुतले तैयार हो रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में अब की बार विजयदशमी के उत्सव के लिए 221 फीट का विशालकाय रावण तैयार किया गया है और इस प्रेम के आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रावण की काया कितनी विशाल होने वाली है। द्वारका रामलीला ग्राउंड में तैयार हुए इस रावण की सबसे बड़ी खासियत है इसकी विशालता। इस रावण की ऊंचाई 221 फीट से भी ज्यादा होगी। पिछले करीब 3.5 महीनों से 40 कारीगरों की टीम इस रावण को बनाने में जुटी है। जरा सोचिए, दशहरा के दिन जब रावण के इस पुतले को खड़ा किया जाएगा तो वो दृश्य कितना भव्य होगा। दूर दूर से इस रावण को देखा जा सके, साथ ही इस रावण का दहन भी अपने आप में भव्य होने वाला है। चलिए, बस 10 दिन का इंतजार और वो दृश्य सबके सामने होने वाला है। और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर।

0: रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: महाली के पर्व के साथ आज से देवी पक्ष का शुभारंभ, मां शक्ति के पूजन आवाहन का दिन, कल से शुरू होगा नवरात्र। तर्पण के साथ आज पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। माँ वैष्णो देवी के धाम में नवरात्रि के लिए शानदार तैयारी, बाजार से लेकर भवन तक सजावट का काम तेज, इस बार बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। आज विधि विधान से बंद होंगे पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, दोपहर 12:30 बजे होगी अरदास। हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ की चादर। दिल्ली में मौसम ने करवट ली, एनसीआर में ठंडी हवाओं के साथ बादलों का डेरा, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भी बारिश का अलर्ट।
6: सुंदर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या की और इसके महत्व की। 12 राशियों का दैनिक राशि फल भी बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 9:19 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 9:42 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, अमावस्या तिथि किसी भी महीने की हो, उसके स्वामी पितृ देव ही माने जाते हैं और आश्विन कृष्ण की अमावस्या पितरों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का संबंध आपके पूर्वजों से, आपके पितरों से होता है और इस महीने की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है और दोबारा से जो पितृगण हैं वो सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। अगर पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद ना किया गया हो तो केवल पितृ विसर्जन अमावस्या पर उन्हें याद करके दान करने से और निर्धनों को भोजन करवाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यानी अगर आपने पितृपक्ष के नियमों का पालन नहीं किया है तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों के लिए दान करने से, निर्धनों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करने का फल अमोघ होता है। दान करने के परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। पूर्वजों से और पितरों से संबंध होता है राहु का, इसीलिए पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु से संबंधित बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दान भी किया जा सकता है, धर्म का पालन भी किया जा सकता है और राहु की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 10 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। 15 दिन जिन पितरों का आगमन धरती पर होता है सूक्ष्म लोक से, उन तमाम पितरों की विदाई पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन की जाती है। क्या तरीका है? देखिए, अगर पितरों के देहांत की तिथि पता ना हो, अज्ञात हो, तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते, ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए और भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने का और श्राद्ध करने का समय मध्य दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दें, यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता के लिए भोजन निकालें। भोजन की जरा सी मात्रा से अग्नि में आहुति दें, हवन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करें और दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जब घर के सभी लोग भोजन कर लेंगे और पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद पितृपक्ष के कार्य पूर्ण हो जाएंगे। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता इस समय हो सकती है, करियर में बड़े निर्णय ना लें, धन हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से राहु का गहरा संबंध है और वो आपके जीवन में पितरों और पूर्वजों की स्थिति दिखाता है। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के लिए क्या करें? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनाइए। मध्य दोपहर में इसको अपने सामने रख कर पितरों से कृपा करने की प्रार्थना करिए। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिएगा, ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा और पितृ विसर्जन अमावस्या पर कुत्तों को कुछ न कुछ जरूर खिलाइएगा, रोटी ब्रेड बिस्कुट दूध कुछ भी दीजिएगा। अगर ये उपाय, ये प्रयोग आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर दोपहर के समय में करते हैं तो राहु की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा, करियर में आपके लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पितरों का श्राद्ध करने में अन्न का, वस्त्र का, भोजन वगैरह का दान करना होता है निर्धनों को, लेकिन अगर आपके पास खुद ही धन नहीं है, आप खुद ही निर्धन हैं, तो पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। दोपहर के समय पितरों को जल अर्पित करिएगा, तर्पण कीजिएगा, और इसके बाद एकांत स्थान में चले जाएं, छत पर किसी एकांत मैदान में या एकांत कमरे में जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करिएगा। कहिएगा कि मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं, मैं स्वयं निर्धन हूं, मैं और कुछ नहीं दे सकता। हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, मेरी श्रद्धा को और भावना को ही स्वीकार करें, और अगर संभव हो इतना आप कर सकें तो गाय को हरा चारा या हरी पालक 2-4-5 रुपए की खरीद कर खिला दीजिएगा। आप अगर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका श्राद्ध कर्म संपन्न होगा। हिंदू धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको कर्ज लेकर श्राद्ध करना चाहिए, कर्ज लेकर दान करना चाहिए, या चीजों को बेच करके श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप स्वयं निर्धन हैं तो केवल प्रार्थना करने से, केवल अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन दान करेंगे तो इससे आपके ज्ञात अज्ञात संकट कट जाएंगे। अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने जाना हो तो क्या करेंगे? जिस दिन मिलने जाना हो उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद बोल बोल कर हनुमान चालीसा पढ़िएगा, और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। आपकी मुलाकात सफल होगी और काम बन जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: जीवन तो चलने जैसा है, और जीवन की सच्चाई को जो जान पाया वो जीवन को समझ पाया। हम लोग फंसे रहते हैं वर्तमान की परिस्थिति में, पर कई बार ऐसा होता है कि जिस परिस्थिति में आप फंसे हैं वो परिस्थिति तो बड़ी छोटी है और बड़ी आने वाली है, वो दिखाई पड़ती नहीं। कल के विपत्ति को कोई समझ ही नहीं पाता, आज के झंझट में वो इतना फंसा रहता है। पर साधु कहते हैं कि आप जीवन के उस राज को जान जाएं कि जीवन एक खेल है और यहां कुछ भी स्थायी टिकता नहीं, तो शायद आपका दुख आधा हो जाए। क्योंकि व्यक्ति ज्यादा दुखी इस बात से कि उसको लगता है कि भाई हम मिटे, अब गए, अब गिरे, अब लुट गए, अब हमारा कोई है ही नहीं, हमारी कोई सुनी नहीं रहा, हमारे सब विपरीत हो गए। और दुनिया में ऐसा कोई पक्की बात नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ आता है तब भी पेड़ अपनी हार थोड़ी मानता, खड़ा रहता है। अब पतझड़ हो जाए, पत्ते टूट के गिर जाएं और पेड़ रोने लगे कि हाय दैया मरे, छाती पीटे कि अब तो सूख गए, बर्बाद हो गए, अब कौन आएगा हमारे पास, अब छाया कहां से आएगी और कहां से हवा बहेगी, और वो सूख जाए और गिर जाए तो शायद पेड़ का अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन वो पेड़ पतझड़ के बाद भी अपने आप को खड़ा रखे रहता, तो परिणाम ये निकलता कि जैसी पतझड़ जाता है बसंत आता है, फिर से पेड़ में नए पत्ते आ जाते। इतना सहना किसी के जीवन में आ जाए वो आदमी जीवन जीना सीख जाएगा। वो आदमी सदा दुखी ना रह पाएगा, और उस आदमी को कोई दुखी कर भी नहीं सकता जो इतना धैर्यवान हो जाए, जिसे पेड़ों की तरह पतझड़ के जाने से बसंत के आने तक का इंतजार होना आ जाए। उसके जीवन में विपत्तियां आती रहेंगी, पर उस आदमी को कोई ज्यादा दुखी ना कर पाएगा। मेरे पागलो, एक बात बहुत समझने जैसी है और वो सीधी सी है कि यहां कुछ भी पक्का नहीं है। अरे आदमी की छोड़ो, भगवान ही पक्के नहीं। देखो तुम, पहले साईं बाबा कितने पूजे, आजकल तो भगवानों का भी ट्रेंड आता है। साईं बाबा का ट्रेंड आया, फिर उसके पहले वैष्णो देवी का ट्रेंड आया, फिर साईं बाबा का ट्रेंड आया, फिर खाटू वाले बाबा का आया, फिर सांवरिया सेठ बाबा का आया, फिर महाकाल भस्म आरती का ट्रेंड आया, फिर वृंदावन का आया। ये चलता रहता है। यहां तुम देखो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ भी स्थाई नहीं है, सब ऊपर नीचे होता रहता है। कल तक जिसे बहुत माना जाता था, आज नहीं माना जा रहा है। कल तक जिसकी बहुत बात होती थी, आज कोई बात नहीं करता है। तो आप परेशान इसलिए हैं कि आप चाहते हैं कि लोग हमें जाने, देखें, माने, और लोग महात्मा गांधी को भूल गए। तुम कौन से खेत की मूली हो? लोग सुभाष चंद्र बोस को भूल रहे, भगत सिंह को भूल गए। तुम तो फांसी पे लटके नहीं हो आज तक। तुम मानो कि तुम्हें कोई दुनिया जाने, ऐसा मन का खेल तुम्हारा दुख का कारक है। ये दुनिया किसी को नहीं जानती, उसी को जानती जिससे काम होता है, जो मतलब का होता है। बिना मतलब के दुनिया को कोई लेना देना नहीं, और सच भी है, तो होना भी चाहिए। कोई बुरी बात थोड़ी है, बात ठीक ठाक है। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। जितनी गहरी रात होगी, उतना तेज प्रकाश होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि शेर चार कदम पीछे जाता है, तो चार कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर डर गया है। लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे जाना ही पड़ता है। दौड़ लगाना है, छलांग मारनी है, तो पीछे जाना पड़ेगा। रनिंग के लिए उड़ान भरनी है तो रनिंग करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा जितनी बड़ी हवाई जहाज होती है उतनी ज्यादा रनिंग लेती है, उतनी ज्यादा रनवे पर दौड़ती है, तब वो ठीक से उड़ान ले पाती है, वो ठीक से टेक ऑफ कर पाती है, वरना ठीक से टेक ऑफ ना कर पाएगी। तो जिंदगी में एक बात समझने जैसी है, यहां जो भी है वो सब कच्चा है, सिवाय परमात्मा के और सिवाय आनंद के कुछ भी पक्का नहीं है। पक्का है तो आनंद है, और पक्का है तो परमात्मा है। बाकी सब कच्चा है। जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, घने बाल हैं तो झड़ेंगे, चमक है तो ढलेगी, सम्मान है अपमान तो पक्का मानो। और पर तुम तो आदमी हो, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, तुम तो आम हो। जब राम को नहीं छोड़ा तो आम को हलवा छोड़ देंगे। इसलिए मेरे पागलों, इस दुनिया में कुछ भी स्थाई न था, न है, न रहने वाला, तो उस परमानेंट के चक्कर में मत पड़ो जिसके लिए तुम पाना चाहते। एक बात बहुत मानने जैसी है, शायद तुम्हें समझ आए तो मान लेना, और तुम्हारे जीवन में काम आ सके तो भला है, ना काम आवे तो भी भला है, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी छोटी सी और सीधी सी बात है, तुम कल के चक्कर में आज बर्बाद मत करो, और आज के चक्कर में अभी को बर्बाद मत करो। जो है जिस पल में है उस पल में जियो, बाकी धैर्य रखो, इंतजार करो। सच्चाई तो आती ही है, थोड़ा रुक के आएगी पर आएगी। और तुमने तो सुना ही होगा कभी गंग को, वो तो कहते ही हैं तारा की ज्योति से सूर्य छिपे नहीं, तारा की ज्योति से सूर्य छिपे नहीं। वो कहते हैं कि तारों की ज्योति से सूर्य कब छिप सकता, और बादल की आहट से चंद छिपे ना, बादल छाए रन चढ़ियो रजपूत छिपेना, दाता छिपेना घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपेना, प्रेम छिपेना पीठ दिखाए, गंग कहे सुनो साह अकबर, करम छिपेना भभूति लगाए। तो यहां कुछ छिपता तो है ही नहीं, आज नहीं तो कल निकलेगा, कल नहीं तो परसों तो हकीकत आएगी। तुम कब तक बनावटी बने रहोगे और कब तक बनावटी तुम जियोगे? एक ना एक दिन तुम्हारी पोल और कलई खुलनी है, ढोल बजना है, पक्का है। तुम्हें आनंद लेना सीखना है तो हमारे पास एक बड़ा प्यारा रास्ता है, कमरे पर और कैमरे पर एक जैसे हो जाओ, कमरे पर और कैमरे पर एक जैसे हो जाओ, जैसे हो तुम वैसे हो जाओ, बाकी सब गुजर जाएगा। आदमी का प्रभाव जाता है, स्वभाव कभी नहीं जाता है। स्वभाव तो जैसा है, अब कुत्ता का स्वभाव भौंकना है तो वो भौंकेगा, अब तुम कितना भी एसी में रख दो, डबल रोटी खिलाओ, नमकीन का नाश्ता दो और चाउमीन का लंच कराओ तो क्या वो भौंकना छोड़ देगा? भौंकेगा। सांप का काम काटना और फुफकारना है, तुम चाहे जो करो वही करेगा। साधु का काम साधुता है, वो साधुता में ही रहेगा। तो जो जिस आदमी का स्वभाव है वो रहेगा, और जिसको मौका मिलता है वो स्वभाव दिखाने लगता है। तुम देख लो कितने भी अंग्रेजी सीख लें लोग, अंग्रेजी हाउ डू यू, हाउ आर यू, आई एम नॉट बेटर देन यू, यू कम हियर, वेयर आर यू फ्रॉम, और उनके पीछे जब कुत्ता पड़ जाता तो वो भी कहते हट हट हट। चाहे जितनी अंग्रेजी सीखो कुत्ता तो हट हट में ही भगेगा। तुम उसको ये थोड़ी नो नो नो नो नो नो नो नो से थोड़ी मानेगा कुत्ता, वो तो हट हट से ही मानेगा। चाहे जितनी अंग्रेजी सीखो, स्वभाव तो स्वभाव है, मूल स्वभाव कहां जाता है। इसलिए मेरे पागलो, माना कि तुम दुखी हो, माना कि तुम परेशान हो, माना कि तुम्हारे पास संकट है, पर घबराओ मत, हमारे पास संकट मोचन भी तो है। तुम्हारे पास मुसीबत है तो बालाजी भी तो है। थोड़ा देर से सुनेंगे, उन्हें देर से सुनने की आदत है भैया, करो मिन्नत और मन्नत है, करो प्रार्थना, हो तो जाओ उनके, सुनेंगे आज नहीं तो कल सुनेंगे, वरना बदनामी तो उनकी ही होगी, अपनी थोड़ी होगी। अब तुम कहीं भूत भूतैयों के चक्कर में पड़ जाओ तो भला कहां। एक बात बताओ, इनसे बड़ी सत्ता कोई होती है क्या? राम जी से और बालाजी से बड़ी क्या सत्ता है? तो पकड़ो उनके चरण। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कौन ऐसा है जो संकट मोचन नाम ना जानता हो? इसलिए मेरे पागलो, हम एक बात कहें, सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ। मछली पकड़ते हुए देखा तुम लोगों ने कभी? है मछली पकड़ते देखा? हाँ, तो जब मछली पकड़ने वाला जाता है तालाब में या नदी में कहीं भी, तो वो सीढ़ी पे खड़ा होता है किनारे पे, ऐसे दाना लेता है फेंकता है, दाना खाने पूरी मछलियां ऊपर आती, फिर वो जाल फेंकता, तो कुछ दाने क्या होते हैं उंगलियों के नीचे से पांव के पास गिर जाते हैं। तुम कभी देखना जब पांव के पास गिरते हैं तो छोटी छोटी जो मछलियां होती वो बीच में दाना खाने नहीं जाती, पांव के पास वाला गिरे हुए दाना खा लेती, और बड़ी बड़ी मछली दाना बीच में खाती। लेकिन उसी वक्त मछुआरा जाल फेंकता है, बड़ी बड़ी ताकतवर बलिष्ठ मछलियां पकड़ी जाती, पर जो पांव वाली मछलियां होती हैं बच जाते। बात समझ आई आपको? क्या संसार में भगवान माया का दाना फेंकते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उस दाने में जाल में फंस जाते हैं, पर जो भगवान के पैरों के पास चरण शरण में आ जाते हैं वो बच जाते हैं। बात समझ आ गई? बोलो बोलो हाँ या ना। हाँ, चलो तीसरा उदाहरण सुनो। एक हमारा चेला था, घरवाली का गुलाम, लुगाई को बहुत मानता था। लुगाई भी बड़ी समझदार थी, हमारे ही गांव की होती। नाम था उसका छगन बाई, चेला का नाम चंगीलाल। एक दिन बाजार जा रहा था, पत्नी बोली सैया कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार जा रहे हैं। तो बोली सुनो महाराज, स्वामी जी, पति देव, हाँ क्या लेने जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, कुछ खरीदेंगे, सब्जी पानी खरीदेंगे, ले आएंगे। बोले सुनो बलमा, बरसात आ गई, छाता खरीद लाओ। बोले ठीक है। पर जैसे ही पति जाने लगा तो बोले सुनो, जा तो रहे हो, बाजार में सब ठगने वाले ठगुआ बैठे हैं, वो जो रेट बोले वो मत देना, आधे रेट पे खरीदना। ये था पत्नी का आज्ञाकारी पति। पत्नी व्रतधारी था, परम पत्नी व्रतधारी था। इसने कहा देवी जो आज्ञा। अब संज्ञा बलमा गया, चंगीलाल छगनबाई का पति, बाजार, मार्केट में बाजार से दुकान के पास गया। सुबह सुबह के टाइम दुकान वाले से कहा छाता दिखाओ। दुकानदार छाता लाया, काला लाल कलर उठा लाया। दुकानदार मुस्कुराया, चंगीलाल को एक अच्छा छाता भाया। चंगीलाल भी मुस्कुराया, बोला भैया बताओ क्या दें, दाम बन जाए काम, छाता को छाता हमें मिले, बरसात में मिल जाए आराम। दुकानदार बोला सस्ता जमाना रुपया 16। दुकानदार बोला सस्ता जमाना रुपया 16। इसको पत्नी की बात याद आई, क्योंकि घरवाली कह करके बात सुनाई, जो दाम बोले उससे आधे दाम में लेकर आना है। इसने कहा रुपया 16, दुकानदार तुमने जो बोला बड़ा महंगा है, रुपया तो देंगे 8, पढ़ो देने का पाठ। दुकानदार बोला 8 तो बहुत ही कम होता है, एक काम करो तुम्हारी ना हमारी 14 रुपया दे दो। बोला तब तो हम साथ में खरीदेंगे। दुकानदार थोड़ा झल्लाया, चिड़चिड़ाया। सुबह सुबह का टाइम है, चंगीलाल भाई काय को हमारी बोनी खराब कर रहे हो, एक काम करो आए कि आए दाम दे दो, 1 रुपया अब हम कम ना लेंगे, रुपया 12 ही लेंगे। बोले फिर तो हम 6 देंगे। अब तो दुकानदार और चिड़चिड़ाया, बड़ा भन्नाया कि हम घट रहे तो तुम भी घट रहे, तुम्हें बढ़ना चाहिए, शर्म नहीं आती है, आए के आए दाम लगा दिए, अब तो ले जा रुपया 12 दे जा। चंगीलाल बोला ना, रुपया तो 6 ही दूंगा। अब दिमाग खराब। दुकानदार बोला सुबह सुबह कहां से तुम आ गए दुकान, हमारा सब काम बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, 2 रुपया घाटा से 10 दो, बस जाओ। बोले फिर तो हम 5 देंगे। अब तो दुकानदार का पारा हाई। बोला सुन भाई, फ्री में ले जा। चंगीलाल ने सिर खुजाया, बोले तब तो हम 2 लेंगे। पूरे दिन भर बाजार में घूमता रहा, एक छाता ना खरीद पाया। शाम को घर आया, पत्नी बोली कहो बलमा सब ठीक ठाक है, छाता कहाँ है? बोले वो तो दुकान ही में। तो बोले खरीद क्यों नहीं पाए? बोले तुम्हारी सलाह के कारण, तुमने कहा था आधे दाम में लाना। अब बताओ एक छोटी सी वस्तु छाता नहीं खरीद पाया, क्यों? क्योंकि ये एक भाव पे नहीं टिका रहा, इसलिए इसको एक वस्तु छाता नहीं मिली। वैसे ही तुम भी यदि एक भाव पे नहीं टिकोगे तो तुम्हें परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकता है?
0: क्या है नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा? इस बार किस तारीख को किस देवी का होगा आगमन? क्या होगा देवी का पूजा विधान और देवी से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
9: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
10: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
8: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
12: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
13: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
8: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
14: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
8: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
15: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
8: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
16: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
16: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
14: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से, अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
18: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
12: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
19: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
20: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
8: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
21: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
8: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
22: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
8: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
23: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
24: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
0: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में

0: कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।

0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: महालया के पर्व के साथ आज से देवी पक्ष का शुभारंभ, मां शक्ति के पूजन आवाहन का दिन, कल से शुरू होगा नवरात्र। तर्पण के साथ आज पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। माँ वैष्णो देवी के धाम में नवरात्र के लिए शानदार तैयारी, बाजार से लेकर भवन तक सजावट का काम तेज, इस बार बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। आज विधि विधान से बंद होंगे पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, दोपहर 12:30 बजे होगी अरदास, हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, एनसीआर में ठंडी हवाओं के साथ बादलों का डेरा, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भी बारिश का अलर्ट।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जय माता दी देवी आदि शक्ति की भक्ति, शक्ति और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्र आ पहुंचा है। चारों तरफ मां दुर्गा के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में गूंजते मंत्र और भक्तों का अटूट विश्वास हर तरफ एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहा है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 पवित्र स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इस बार नवरात्र की शुरुआत रविवार 11 अक्टूबर को हो रही है। मान्यता है कि सही समय और शुभ मुहूर्त में की गई कलश स्थापना घर में सुख समृद्धि और शांति लाती है। देवी उपासना का ये महापर्व आपके जीवन में नया उजाला, नई शक्ति और असीम शांति लेकर आए। आप भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पूरे भाव और नियम से घट स्थापना करें और माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त करें। माँ भगवती आप सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें।

0: आस्था का अनंत आकाश, भक्ति का पावन प्रवाह और आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना का सबसे बड़ा अनुष्ठान। ये केवल दिनों का चक्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के सामने आत्मसमर्पण का महायज्ञ है। माँ की भक्ति, शक्ति और साधना का महापर्व है शारदीय नवरात्र। माँ जगदम्बा जो सृष्टि का सृजन भी है, उसका पोषण भी, और अधर्म का विनाश करने वाली महाकालिका भी, उनकी उपासना का पर्व अब कुछ घंटों ही दूर है। शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 पवित्र स्वरूपों की पूजा अर्चना करना सबसे उत्तम माना गया है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार 11 अक्टूबर को हो रही है। मान्यता है कि सही समय और शुभ मुहूर्त में की गई कलश स्थापना घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है, लेकिन देवी की उपासना की महानवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना के साथ होता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना आवश्यक है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को रात 9:19 से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि का समापन 11 अक्टूबर रात 9:30 माना जा रहा है। उदया तिथि को मानते हुए कलश स्थापना या घट स्थापना 11 अक्टूबर को करें। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से लेकर 10:26 तक होगा। इस अवधि में किसी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तब अभिजीत मुहूर्त में ये कार्य आप पूर्ण करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:51 से दोपहर 1:09 तक रहेगा।
1: घट स्थापन के लिए प्रमुख समय जो होगा प्रातः 10:51 से लेके दिन में 1:09 तक होगा। इस समय काल में, इस समय अवधि में घट स्थापन करें। घट स्थापन करने के बाद बंधनवार से सुशोभित करें, फिर माता पराम्बा का 5:50, 16:50 या 10:50 पूजन अर्चन वंदन करें। माँ की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, जिन लोगों को इतना न कर पावे उन लोगों को माँ का नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें।
0: शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस वर्ष शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दौरान तिथि का बढ़ना शुभ माना गया है, और इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होगी। यानी घरों से लेकर पूजा पंडालों तक 10 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होगी और वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देगी। ये आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि है। इस बार माता रानी का आगमन रविवार को हो रहा है। माता इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि का समापन मंगलवार को माना जा रहा है। इस तिथि पर माता रानी का प्रस्थान घोड़े पर होगा। नवरात्रि का समापन दशहरे पर 20 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है।
1: घट स्थापन का जो मुहूर्त होगा, अभिजिन्न मुहूर्त होगा, इस बार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल में ही चित्रा नक्षत्र वैद्युति योग दोनों होगा, जिसके चलते शास्त्र मना करता है चित्रा वैद्युति पुत्र नाशनी, अर्थात चित्रा और वैद्युति में घट स्थापन नहीं करना चाहिए, जिसके लिए दिन में अभिजिन्न मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए।
0: जब जब संसार में अंधकार छाया, जब जब भक्तों ने सच्चे मन से पुकारा, तब तब माँ भगवती अपनी दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट हुई। माँ केवल शक्ति नहीं, माँ करुणा का सागर भी है, माँ ममता का आंचल है और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली ढाल है। लेकिन इस बार माँ के आगमन पर ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन के तमाम कष्टों को खत्म कर देंगे। लगभग 100 साल बाद गज केसरी राजयोग बन रहा है, जो मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला और कुंभ समेत कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायी माना जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में की गई पूजा और साधना का कई गुना फल मिलता है। इसके साथ ही 19 अक्टूबर को विशेष संधि पूजा का अत्यंत अहम महासंयोग बन रहा है। शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व केवल एक तिथि भर नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का उत्सव है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार 11 अक्टूबर से हो रही है और जैसा कि हम जानते हैं कि माँ के आगमन का पहला कदम होता है घट स्थापन, तो पूरे मन, श्रद्धा और सही समय का ध्यान रखकर घट स्थापना करें और माँ जगदम्बा को अपने घर आमंत्रित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जब जब संसार में अंधकार छाया, जब जब भक्तों ने सच्चे मन से माँ को बुलाया, तब तब माँ भगवती अपनी दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट हुई। माँ केवल शक्ति नहीं है, माँ करुणा का सागर है, माँ ममता का आंचल है और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली ढाल है। अब अगले 9 दिनों तक चलने वाला भक्ति का ये महायज्ञ शुरू हो रहा है, जहां हर हृदय के माँ के जयकारों की गूंज होगी। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले 4 दिन हमारे जीवन, मन और आध्यात्मिक चेतना के लिए सबसे खास क्यों माने जाते हैं? माँ शैलपुत्री से लेकर माँ कुष्मांडा तक ये 4 स्वरूप केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि हमारे जीवन के संतुलन और संकल्प का संदेश देते हैं। माता के इन स्वरूपों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को भी सही दिशा दे सकते हैं।

0: माँ दुर्गा के नौ स्वरूप की उपासना की सबसे शुभ और पावन घड़ी आ चुकी है। नवरात्र की सभी तैयारियों के साथ देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी आहुति देने के बाद माता ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए माता शैलपुत्री कहलाई। हालांकि पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम माता सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था, इसी कारण से सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट हुई और भगवान शिव से फिर विवाह किया। माँ शैलपुत्री माता का स्वरूप बेहद ही दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माता नंदी बैल पर सवारी करती हैं, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है।
1: नव दुर्गा में प्रथम दिन जिनका पूजन होता है वो माता शैलपुत्री का पूजन करने का विधान होता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ कार्य में भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा में मूल रूपेण नवान मंत्र से अगर पूजा किया जाए, सफ़ेद रंग का जो है इनको पेड़ा चढ़ाया जाए, गुड़हल की 108 माला इनको अर्पित की जाए, तो निश्चित रूपेण माँ शैलपुत्री प्रसन्न होकर साधक को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और आने वाले जीवन में तमाम समस्याओं का निदान स्वयं में हो जाता है।
0: देवी माँ का दूसरा दिव्य स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा उपासना इन्हीं को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। बिना अन्न जल ग्रहण किए हजारों वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या करने वाली माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में बिना त्याग और संयम के सफलता पाना संभव नहीं। इनकी उपासना से ज्ञान, विद्या, सिद्धि और तप बल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सन्यासी होना चाहता हो और वो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो उनकी योग और कर्म की साधना सफल होती है। मान्यता है कि माता ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। माँ के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए।
2: तपस्या की ओर बढ़ते हैं, हमारे जीवन में संयम होता है, हमारे जीवन में धैर्य होता है, हमारे जीवन में सहनशीलता होती है, तो स्वाभाविक है जब हम मन से स्थिर रहेंगे, हम धैर्यवान रहेंगे, हम प्रगतिवान रहेंगे, हम आशावादी रहेंगे, तो ऐसे में ब्रह्मचारिणी का जो तेज होता है, जो भक्त इनकी आराधना करता है और भगवती के द्वारा जो तेज प्राप्त होता है उस तेज से उसकी बुद्धि निर्मल होती है और जब निर्मल होती है तो नाना प्रकार से वह धनोपार्जन हो, परिवार का उपार्जन हो, जीविकोपार्जन हो, सबके लिए मार्ग प्रशस्त कर लेता है।
0: नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी हैं। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। माँ मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र धारण करती है। धर्म की रक्षा के लिए माँ दसों हाथों में अस्त्र धारण कर दुष्टों का संहार भी करती है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से है। मान्यता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिलती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। नवरात्र के चौथे दिन अवतरित होती हैं माँ कुष्मांडा। मान्यता है कि जब चारों ओर अंधकार था तब माँ ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। माँ के 8वें हाथ में सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध ग्रह से है। माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि संसार में जितना भी तेज है वो इन्हीं से उत्पन्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अगले 9 दिनों तक चलने वाला ये महाउत्सव केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपनी आत्म चेतना को जगाने का अवसर है। जहां शुरुआती 4 स्वरूपों ने हमें स्थिरता, संयम और साहस सिखाया, वहीं अंतिम 5 स्वरूप हमें विजय, आंतरिक प्रकाश और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ये साधना, भक्ति और अंतिम सिद्धि की प्राप्ति का समय माना जाता है। स्कंद माता की वात्सल्यमयी ममता से लेकर माँ सिद्धिदात्री की अलौकिक शक्तियों तक, आइए देखते हैं नवरात्रि के अंतिम 5 स्वरूपों की महिमा।
4: नवरात्रि का उत्तरार्ध यानी पंचमी से नवमी का समय साधना, भक्ति और अंतिम सिद्धि की प्राप्ति का समय माना जाता है। जहां शुरुआती 4 स्वरूपों में हमें स्थिरता, संयम और साहस सिखाया, वहीं अंतिम 5 स्वरूप हमें विजय, आंतरिक प्रकाश और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। स्कंद माता की वात्सल्यमयी ममता से लेकर माँ सिद्धिदात्री की अलौकिक शक्तियों तक, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में नवरात्रि के अंतिम 5 स्वरूपों की महिमा। 5वां दिन, स्कंद माता। पंचमी तिथि को पूजा होती है माँ स्कंद माता की। कहते हैं इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। देवी के हर स्वरूप की पूजा से आपकी किसी न किसी समस्या का निवारण जरूर होता है। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें ये नाम मिला। 4 भुजाओं वाली देवी की गोद में स्वामी कार्तिकेय बाल रूप में विराजमान है। माता का ये स्वरूप भक्तों को वात्सल्य और संतान सुख प्रदान करता है। इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए करें माँ की पूजा। 6वां दिन, माँ कात्यायनी। षष्ठी तिथि को पूजी जाती है महर्षि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का पूजन आज्ञा चक्र को जागृत करता है, जिससे साधक को सही निर्णय लेने की क्षमता और विजय का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि नवरात्र में देवी की उपासना से शादी विवाह की अड़चने भी दूर हो जाती हैं। महिषासुर का वध करने वाली ये देवी ब्रज की अधिष्ठात्री भी मानी जाती हैं। माँ की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह शीघ्र होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। माँ के शस्त्र तलवार और कमल है। 7वां दिन, माँ कालरात्रि। सप्तमी यानी नवरात्र की 7वीं रात महापूजा की रात होती है, जब माँ कालरात्रि का आह्वान किया जाता है। घने अंधकार सा कृष्ण वर्ण, बिखरे बाल और 3 नेत्र, माँ का ये स्वरूप विकराल है, लेकिन वे भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार लिया था। माँ निरंतर संहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी। तब देवताओं के अनुरोध पर महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने उनकी राह में लेटने की युक्ति लगाई थी, ताकि परमेश्वर को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल रूप में वापस आए। माँ कालरात्रि की महिमा। माँ दुर्गा का ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। माँ के हाथों में खड़ग और कांटा है, माँ का वाहन गधा है। माँ को शुभंकरी भी कहते हैं। माँ कालरात्रि काल, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। आठवां दिन माँ महागौरी। माँ महागौरी नवदुर्गा का आठवां स्वरूप और अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ की महिमा अपार है। मान्यता है दुर्गा अष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना और ध्यान करने से सर्व कल्याण होता है। शंख, चंद्र और कुंद के फूल जैसी श्वेत कांति वाली देवी का यह स्वरूप अत्यंत शांत और गौर वर्ण है। माँ गौरी की महिमा। शिव प्राप्ति के लिए माँ ने की थी कठोर पूजा। कठोर तप से माँ का शरीर काला पड़ गया। शिव दर्शन से माँ का शरीर अत्यंत गौर हो गया, तभी माँ का नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की है और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। नौवा दिन माँ सिद्धिदात्री। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की कृपा बरसती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये आठों सिद्धियों को देने वाली देवी है। सभी नौ देवियों का संयुक्त रूप है माँ सिद्धिदात्री। इसलिए तो केवल इनकी उपासना करने से सभी नौ देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। यानी केवल महानवमी की भव्य उपासना करके आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन की शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने इन्हीं देवी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी, जिससे उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्ध नारीश्वर कहलाए। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली देवी है। ये कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के नौ दिनों की उपासना का फल मिलता है। नवरात्रि के ये नौ दिन सिर्फ एक त्योहार या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये हमारी आत्मा की यात्रा है। देवी का हर रूप हमारे भीतर बसा है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौट कर वापस आते हैं।
5: क्या है नवरात्रि के नौ दिनों की महिमा? इस बार किस तारीख को किस देवी का होगा आगमन? क्या होगा देवी का पूजा विधान और देवी से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,
9: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
13: सास बहु और बेटियां में आज देखिए उलझते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: महाली के पर्व के साथ आज से देवी पक्ष का शुभारंभ, माँ शक्ति के पूजन आवाहन का दिन, कल से शुरू हो गए नवरात्र। तर्पण के साथ आज पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। आज विधि विधान से बंद होंगे पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, दोपहर 12:30 बजे होगी अरदास, हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ की चादर। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की दृश्यम 3 का तूफान जारी, भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार, वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ पार की कमाई। चीन के मोहे शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका इलाका, पतझड़ और सर्दी के अनोखे संगम ने पर्यटकों को लुभाया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग इसे सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, हर किसी के हाथ में कैमरा और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग इसे बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, वायरल दावों की सटीक जांच होती है, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए CJP के हालिया विरोध प्रदर्शन का है जहां पर लाखों लोग जुटे। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, ये आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा किया जा रहा है कि महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के विदाई मैच के दौरान अर्जेंटीना में पूरे फ्लाईओवर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: सबसे पहले बात करते हैं वायरल हो रहे इस खबर की जिसके जरिए ये दावा किया गया है कि ये CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवाजी पार्क में हुए CJP के हालिया विरोध प्रदर्शन का है जिसमें हजारों लोग जुटे। हमने इस खबर की पड़ताल की।
4: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भारतीय चुनाव आयोग विवादों के घेरे में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोगों का हुजूम दिख रहा है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवाजी पार्क में हुए CJP के विरोध प्रदर्शन का है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई में CJP का रात में बड़ा प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
3: बता दें कांग्रेस जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इसको लेकर 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। एसआईआर अभियान के दौरान कथित अनियमितताओं और मतदान सूची में फेरबदल के विरोध में किए गए इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए थे और अब इसी से जोड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। दावा यह है कि शिवाजी पार्क में जन सैलाब उमड़ा। ये वीडियो जब चर्चा में आया तो हमने इसकी जांच की, ये जानने की कोशिश की कि इसको लेकर दावा जो किया जा रहा है वो सही है या फिर गलत। ऐसे में वीडियो किसी मैदान का है जहां पर अंदर और बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन ये मैदान ज्यादा बड़ा नहीं है जबकि मुंबई का शिवाजी पार्क काफी बड़ा है। ये देखने पर हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। ये इशारा मिला कि हो ना हो ये किसी और मैदान की तस्वीरें हैं। वीडियो में एक और गौर करने वाली बात नजर आई। वीडियो में लोग इस्लामिक टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं जबकि 2 अक्टूबर को हमने मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के ओरिजिनल विजुअल से इसकी तुलना की तो फर्क साफ देखने को मिला। 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया था, यह बात सही है, लेकिन प्रदर्शन दिन में हुआ था लेकिन वायरल हो रहा वीडियो रात का है। ऐसे में हमारा पहला सवाल, अगर दावा सच है तो वीडियो में सिर्फ इस्लामिक टोपी पहने हुए लोग ही क्यों नजर आ रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी के मुंबई में हुए प्रदर्शन का यह वीडियो है तो फिर इसमें कोई बैनर, पोस्टर या झंडा क्यों नहीं दिख रहा? ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ही क्यों दिखाई दिया? मुख्यधारा की मीडिया में यह खबर क्यों नहीं आई? तीसरा सवाल यह है कि कहीं किसी और जगह हुए प्रदर्शन के वीडियो को जानबूझकर कांग्रेस जनता पार्टी के मुंबई के प्रदर्शन से जोड़कर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? जब हमने जांच पड़ताल की तो फैक्ट चेक की टीम को क्या कुछ मिला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
4: सोशल मीडिया पर जब ये खबर आग की तरह फैलने लगी तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इसे 15 सितंबर 2026 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो भोपाल में आयोजित असदुद्दीन ओवैसी की एक जनसभा का है। इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने पर हमें असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के कई वीडियो मिले जो वायरल वीडियो से मिलते जुलते हैं। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। इस दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट को 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में ओवैसी ने देर रात मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जमकर विरोध किया। उन्होंने इसे हिंदू कानून बताया और कहा कि सरकार गैर हिंदुओं पर हिंदू कानून थोप रही है। ये नागरिकों खासकर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। हमने वायरल वीडियो में नजर आ रही लोकेशन को गूगल मैप्स पर सर्च किया। हमें लोकेशन से मिलती जुलती तस्वीरें भोपाल के मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान के नाम से मिली। साफ है वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। असल में ये वीडियो 15 सितंबर 2026 का है और मध्य प्रदेश की एक जनसभा का है। दरअसल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वायरल वीडियो इसी जनसभा का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। इसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के विदाई मैच के दौरान पूरे फ्लाईओवर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस खबर की भी हमने पड़ताल की है।

0: महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने 21 साल लंबे इंटरनेशनल करियर का शानदार अंदाज में अंत किया। 6 अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने 3-0 से जीत दर्ज की। मेसी ने भी अपने आखिरी मैच को यादगार बना दिया, न केवल गोल दागा बल्कि 2 गोल में असिस्ट भी किया। यानी अर्जेंटीना की जर्सी में अपने आखिरी मैच में भी उन्होंने वही किया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। गोल करना और टीम के लिए मौके बनाना मेसी के अंतिम इंटरनेशनल मैच को यादगार बनाने के लिए स्टेडियम में 85,000 लोग जुटे थे। फैंस ने अपने फेवरेट स्टार को भावुक विदाई दी। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कई लेवल वाले ऊंचे ओवरपास पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि लियोनेल मेसी की विदाई से पहले अर्जेंटीना में जबरदस्त नजारे, आज पूरा देश मेसी का जश्न मनाने के लिए बाहर निकला है। इस वीडियो को कई लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: 6 अक्टूबर को लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपनी आखिरी मैच खेला था, आखिरी मुकाबला खेला था और इस आखिरी मैच को यादगार बनाने के लिए मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में 85,000 से ज्यादा फुटबॉल फैंस जमा हुए थे। ऐसे में विदाई मैच से इसे जोड़ते हुए इस वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल किया जा रहा है जिसमें फ्लाईओवर पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है और इस वीडियो की हमने भी पड़ताल की है। ऐसे में वीडियो को हमने ध्यान से देखा है, सुना है, इस दौरान बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी कि जब हमने इसे गौर से सुना तो स्पैनिश जैसा लगा। अर्जेंटीना में भी स्पैनिश भाषा बोली जाती है लेकिन सर्च के दौरान हमें यह भी जानकारी मिली कि मेसी के विदाई मैच का आयोजन 6 अक्टूबर को मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में किया गया था और इसके अलावा कहीं पर भी मेसी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था। इसे बेहद व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया था। मैच के सभी 85,000 टिकट्स 90 मिनट में ही बिक गए थे और इस दौरान बाहर से इस तरह की कोई तस्वीरें सामने भी नहीं आई थी। ऐसे में हमारा पहला सवाल, अगर ये दावा सच है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोत से कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वायरल वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? हमारी जांच पड़ताल में क्या कुछ पाया गया है आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे।
0: ये वीडियो फैक्ट चेक टीम के सामने भी आया, हमने इसकी पड़ताल की। हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिला। इसके कैप्शन में लिखा था, अर्जेंटीना की सड़कों पर 40 लाख लोग। इससे ये साफ हो गया कि वीडियो 2022 कतर वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत से जुड़ा है। सर्च के दौरान हमें फुटबॉल से जुड़े कई दूसरे अकाउंट्स पर भी 20 दिसंबर 2022 का ये वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना में वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम के घर लौटने के बाद जोरदार जश्न मनाया गया। टीम की एक झलक पाने के लिए ब्यूनस आयर्स की सड़कों, हाईवे और ओवरपास पर कम से कम 40 लाख प्रशंसक उमड़ पड़े थे। इस वजह से खिलाड़ियों को अपनी परेड बस छोड़नी पड़ी और उन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा जिससे ये कार्यक्रम एक एरियल परेड में बदल गया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि ये वीडियो दिसंबर 2022 का है। अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप जीत के बाद जश्न मनाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, ये वीडियो उसी का है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: एक सड़क पर पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर टकराव देखने को मिल रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि ये उज्जैन का वीडियो है जहां पर शाही मस्जिद गिराने को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हमने इस वीडियो की भी तहकीकात की।
2: मध्य प्रदेश में इंदौर प्रशासन ने सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद के एक हिस्से को हटाए जाने का आदेश दिया था। 28 सितंबर को इस मामले को लेकर तनाव अचानक बढ़ गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। शाही मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन हाईकोर्ट ने ये अपील खारिज कर दी थी। अब इसी संदर्भ में भीड़ को धक्का देते पुलिस वालों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिस वाले सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक एक रस्सी पकड़कर चल रहे हैं और भीड़ में मौजूद लोगों को पीछे धकेल रहे हैं। भीड़ में सफेद टोपी पहने हुए कई लोग भी दिख रहे हैं। एक पुलिस वाला डंडे से लोगों को धक्का दे रहा है, वहीं कुछ लोगों की पुलिस वालों के साथ झड़प भी हो रही है। वीडियो पर लिखा है उज्जैन शाही मस्जिद। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, उज्जैन में शाही मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल, सड़क चौड़ीकरण के लिए शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौके पर जुट गए। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी और पुलिस की भारी तैनाती की गई। मामले के बीच लोगों ने मस्जिद की सुरक्षा को लेकर विरोध जताया। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को हटाने की कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत की जा रही है। उज्जैन में शाही मस्जिद को लेकर आखिर क्या है पूरा विवाद? वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: 28 सितंबर को उज्जैन में शाही मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर मस्जिद को पूरी तरह से तोड़े जाने से जुड़ी भ्रामक और एआई से तैयार जानकारी वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने फोर्स पर पथराव किया था और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। मामले में कई FIR दर्ज की गई है। इन सब के बीच ये वीडियो अचानक से सुर्खियों में आ गया है। कुछ पुलिस वाले सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक एक रस्सी पकड़कर चल रहे हैं और भीड़ में मौजूद लोगों को पीछे धकेल रहे हैं। दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे में उज्जैन शाही मस्जिद विवाद से जुड़ी ये वीडियो, ये जानने के लिए हमने इसकी तहकीकात की। वीडियो को देखने पर हमें यहाँ पर एक दुकान के बोर्ड पर लखनऊ लिखा हुआ नजर आया। अब वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का है और यहाँ पर लखनऊ का बोर्ड, ये हमें खटका। इसके बाद हमने वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम गौर से देखा। इस दौरान हमें वर्दी पर मौजूद प्रतीक चिन्ह पर नजर गई और ये किसी भी सैन्य, अर्धसैनिक, पुलिस या दूसरे अनुशासनात्मक बल के सदस्य के रैंक, पद, विभाग और रेजिमेंट की पहचान कराते हैं। जब हमने बोल्ड करके इसे देखा तो ये सामने आया कि यूपी पुलिस ने अब इंसिग्निया से ये मेल खाते हैं जो यूपी पुलिस के इंसिग्निया होते हैं। दावा यह है कि उज्जैन का ये वीडियो है जहां पर शाही मस्जिद गिराने को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। ऐसे में हमारा पहला सवाल, वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का है तो यहां पर यूपी पुलिस क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है? दूसरा सवाल, कहीं प्रदर्शन के पुराने वीडियो को उज्जैन से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा है? हमारी जांच में क्या कुछ सामने आया आपको दिखाते हैं।
2: इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग एक खास नैरेटिव फैलाने लगे। ऐसे लोग जो झूठ सच का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते, वो इस खबर पर कूद पड़े, धार्मिक रंग देकर इसे वायरल करने लगे। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें पता चला कि इसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस साल जुलाई में शेयर किया था। उस वक्त लोगों ने इसे जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ हुए प्रदर्शन का वीडियो बताया था। जाहिर है ये वीडियो इंदौर की शाही मस्जिद के ध्वस्तीकरण से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि यहां इस मामले को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प की घटनाएं सितंबर में हुई। बता दें, रामपुर के जिला प्रशासन ने जुलाई में सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को अवैध बताते हुए उन्हें गिराने का आदेश जारी किया था। आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुरादाबाद मंडलायुक्त की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद इस पर स्टे लगा दिया गया था। इसके बाद हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में कुछ दुकानों के बोर्ड दिख रहे हैं, जैसे न्यू करीब ज्वेलर्स, प्राइम प्रॉपर्टी ग्रुप और मुबीन होटल। सर्च करने से पता लगा कि ये दुकानें लखनऊ के चौक इलाके में हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये उज्जैन का नहीं बल्कि लखनऊ का वीडियो है जो कम से कम जुलाई से इंटरनेट पर मौजूद है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए, यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला फैक्ट चेक में जारी है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में
6: विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और चलिए वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
9: इस छोटे से बच्चे ने अपने कलाबाजी और जबरदस्त जगलिंग स्किल से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे ने अपने हाथ पीछे की ओर बांधे हुए हैं। इस स्थिति में जहां आम लोगों के लिए संतुलन बनाना भी मुश्किल होता है, वहीं यह नन्ना खिलाड़ी बड़े ही आसानी से फुटबॉल को अपने पैरों, घुटनों और छाती से उछालते हुए निरंतर कंट्रोल कर रहा है। बच्चे का फोकस और गेंद पर उसका कंट्रोल इतना सटीक है कि फुटबॉल एक बार भी जमीन को नहीं छूती। उसके चेहरे का आत्मविश्वास और शांत रवैया यह साफ दर्शाता है कि उसने इस कला के लिए काफी अभ्यास किया है। छोटे बच्चे ने जिद ही ऐसी पकड़ ली कि टीटीई अपना काम करे या फिर बच्चे की जिद को पूरा करे, यही जद्दोजहद एक चलती ट्रेन में देखने को मिली। दरअसल टीटीई साहब टैब में टिकट चेक कर रहे हैं और पास बैठा बच्चा उसी टैब को देख रहा है। बच्चे को लगता है कि इस पे कार्टून या रील्स देख सकते हैं, फिर क्या था, बच्चा टीटीई के हाथ से टैब छीनने की कोशिश करने लगा। टीटीई साहब परेशान हो गए क्योंकि टैब में सैकड़ों यात्रियों की जरूरी जानकारी थी, उन्हें डर था कि बच्चे ने कुछ डिलीट कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बच्चे की मासूम जिद के आगे आखिरकार टीटी साहब को हार माननी पड़ी। खींचतान में आखिर छोटे पैसेंजर की जीत हुई। टैब मिलते ही वह सीधे अपनी मम्मी की सीट पर चला गया और उसमें अपनी पसंद की चीज ढूंढने लगा। ये मजेदार वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस नन्हे बच्चे और टीचर के बीच की क्यूट बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये टीचर इस मासूम के लिए खास है, ऐसे में ये रोज अपनी टीचर को फूल देता। टीचर को उसका ये प्यार इतना अच्छा लगा कि वो हर रोज उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। अब वही रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर सबका दिल जीत रही है। वीडियो में बच्चे को हर रोज अलग अलग फूल लाते हुए देखा जा रहा है, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी बिना किसी एक्सप्रेशन के क्यूट वाले फेस के साथ वो फूल देता दिख रहा है।

0: स्कूल ड्रेस में बैठी बच्ची की कॉपी की शानदार हैंडराइटिंग ने लोगों को हैरान कर दिया। लिखावट इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है कि पहली नजर में कई लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। अक्षरों की बनावट, उनके बीच की दूरी और पूरी लाइन में एक जैसी लिखावट देखकर लोग लगातार बच्ची की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लोगों का ध्यान बच्ची से ज्यादा उसकी कॉपी पर टिक गया। बच्ची की हैंडराइटिंग देखकर सोशल मीडिया पर मजेदार बहस भी शुरू हो गई। कुछ यूजर्स को लिखावट इतनी परफेक्ट लगी कि उन्होंने मजाक में सवाल कर दिया कि कहीं यह किसी AI टूल का कमाल तो नहीं है। कभी कभी सपने सिर्फ दिल में ही रह जाते हैं और सालों बाद किसी अपने की वजह से पूरे होते हैं, तब आंखों में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं। धीरज नाम के शख्स ने अपने माता पिता की पहली हवाई यात्रा की खुशी को कैमरे में कैद किया है, जिसे देखकर लोग वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दरअसल धीरज के पिता का भी हमेशा से हवाई जहाज में उड़ने का सपना था। धीरे धीरे यही सपना धीरज का भी सपना बन गया। वायरल वीडियो के ऊपर टेक्स्ट है, मुझे 29 साल लगे लेकिन उन्हें 60 साल लगे। ये लाइन बताती है कि अपनों के सपने पूरे करने के लिए कितना समर्पण चाहिए। फ्लाइट में बैठने के बाद जब धीरज अपने माता पिता की चमकती आंखें और मुस्कान देखी तो उनके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि सालों पुराना वादा पूरा होने जैसा था।
1: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
0: फ्लाई दुबई के भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की कहानी ने अब इसराइल के सिंगर बेन राइविट्स को भी प्रभावित किया है। कैप्टन मच्छर ने मुश्किल वक्त में हनुमान चालीसा का पाठ कर हिम्मत बनाए रखने की बात कही थी।
1: जय जय
0: जय। इससे प्रभावित होकर बेन राइविट्स ने उनके सम्मान में हनुमान चालीसा गाई और अपनी ये प्रस्तुति कैप्टन मच्छर को समर्पित की। सोशल मीडिया पर सामने आया उनका ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।

ट्रेन का सफर अक्सर शोर, यात्रियों की बातचीत और स्टेशन की आवाजाही के बीच गुजरता है, लेकिन कभी कभी इसी सफर में ऐसा पल भी आ जाता है जो पूरे डिब्बे का माहौल बदल देता है। ट्रेन में बैठे कुछ यात्रियों ने भजन गाना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।

दोनों बिना किसी खास तैयारी या संगीत के सहज अंदाज में भजन गाते दिखाई देते हैं। वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब नीचे बैठे एक बाबा जी भी युवकों के स्वर में सुर मिलाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज में भक्ति और आत्मीयता साफ महसूस होती है। बाबा जी के जुड़ते ही भजन और भी प्यारा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन का एक छोटा सा डिब्बा कुछ पलों के लिए किसी भजन सभा में बदल गया हो।

0: ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास देखने जोधपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देशी और विदेशी सेना के जवानों से मुलाकात, आधुनिक और स्वदेशी लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी। महाले के पर्व के साथ आज से देवी पक्ष का शुभारंभ, मां शक्ति के पूजन और आवाहन का दिन, कल से शुरू होगा नवरात्र। तर्पण के साथ आज पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की दृश्यम 3 का तूफान जारी, भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार, वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ पार की कमाई। चाइना के मुंहे शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका दिखा इलाका, पतझड़ और सर्दी के अनोखे संगम ने पर्यटकों को लुभाया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि नव दुर्गा की उपासना आप कैसे करेंगे, कौन सी तारीख को देवी के किस स्वरूप की कैसे उपासना की जाएगी, बात दशहरे की और इसकी महिमा की भी करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं महामंत्र। सप्ताह का महामंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः ये बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, दुर्गति को दूर करने वाला मंत्र है, दरिद्रता का नाश करने वाला मंत्र है। दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्गति नाशयते इति दुर्गा। जो दुर्गति का नाश कर दे वो है माता दुर्गा। तो अगर आप संपूर्ण नवरात्रि में केवल एक एक माला, एक माला सुबह और एक माला शाम को इस मंत्र का जप करें ओम दुं दुर्गाय नमः, तो निश्चित रूप से आपकी दुर्गति

दूर होगी, जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी और दरिद्रता का नाश होगा। हम आज बात कर रहे हैं नवरात्रि के 9 दिनों की। नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, ये पूजा उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। इन दिनों में साधना करने से हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। ऋतुओं का संधि काल है, पुण्य समय के आरंभ होने का समय है नवरात्रि। इसीलिए अगर आप 9 दिन साधना करें तो अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां वातावरण में प्रवाहित होती हैं, प्रकृति से अलग अलग तरह की शक्तियां निकलती हैं। हर दिन की शक्ति को समझ करके अगर उसके अनुसार कामना की जाए तो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। आपको ये समझना होगा कि पहले दिन कौन सी शक्ति है और उसका लाभ आप कैसे उठाएं, अन्य दिनों में कौन सी शक्ति है और उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसके अलावा नवग्रहों से संबंधित समस्या इन दिनों में दूर की जा सकती है। अगर नवग्रहों की कोई दिक्कत है तो वो नवरात्रि की साधना से आप दूर कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि 11 अक्टूबर को आरंभ होगी। नवमी इस बार 19 तारीख को होगी और 20 तारीख को दशहरे के साथ नवरात्रि का समापन होगा। यानी देवी की पूजा उपासना का ये महापर्व 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि में किस दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है और देवी के किस स्वरूप से कैसा वरदान मिलता है। पहले बात करते हैं प्रथम स्वरूप की। नवरात्रि के प्रथमा तिथि को, प्रतिपदा तिथि को प्रथम स्वरूप की उपासना की जाती है, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को। इस दिन नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा होती है और नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। नव दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माता शैलपुत्री का स्वरूप। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनको शैलपुत्री या शैल बाला कहा जाता है। इस दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होगी और माता की उपासना नवरात्रि के प्रथम दिन लाल फूलों से करनी चाहिए और माता शैलपुत्री को गाय के दूध के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। इस बार नव दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना
11 अक्टूबर को की जाएगी। तो 11 अक्टूबर को आप नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की उपासना करेंगे और ये दिन होगा आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। अब बात करते हैं देवी के दूसरे स्वरूप के बारे में। इनकी पूजा होती है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को और नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का। तो नवरात्रि के दूसरे स्वरूप की अगर आप साधना करें तो आपको ज्ञान और वैराग्य की शक्ति मिलेगी। अगर आप वास्तव में जीवन में साधना करना चाहते हैं, ईश्वर की उपलब्धि करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा करिए। उनकी पूजा करने से ज्ञान मिलेगा और वैराग्य मिलेगा। नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। साधना में जब लीन होने की वजह से माता ने कठोर तपस्या की और अपना मन ब्रह्म में लीन कर लिया तो इस स्वरूप को कहा गया माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए क्योंकि सफेद रंग ज्ञान और वैराग्य का रंग है। अगर आप सफेद फूलों से माता की उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। और नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप को माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगाएं और ज्ञान प्राप्ति का कोई भी मंत्र अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन जपते हैं या दूसरे दिन पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस बार दूसरे स्वरूप की उपासना 12 अक्टूबर को की जाएगी। द्वितीया तिथि होगी और नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना होगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की। आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है और तीसरा स्वरूप बड़ा महत्वपूर्ण है ताकत के लिए, शक्ति के लिए और साहस के लिए। अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन साधना करें तो आपको साहस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर शक्ति आएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन साहस और शक्ति की देवी का जो स्वरूप है, माता का चंद्र घंटा स्वरूप है, उनकी उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है, बड़ी तीव्र बड़ी तेज मुद्रा है इनकी। माता चंद्र घंटा चूंकि शक्ति की देवी हैं
और इनके अंदर से आपको शक्ति का वरदान मिलेगा, इसलिए इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए और माता चंद्रघंटा की पूजा करने में अगर नवार्ण मंत्र का जप करें ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाहा नमोस्तुते इसका जप करें तो कल्याण होगा। वैसे माता चंद्रघंटा की पूजा में आपको नवार्ण मंत्र ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका जप करना चाहिए और माता चंद्रघंटा को दूध का या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, चिंता बहुत है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो नवरात्रि के तीसरे दिन रात में जग करके साधना करिएगा, आपके भय का नाश होगा। और इस बार तीसरे स्वरूप की उपासना आश्विन शुक्ल तृतीया को यानी 13 अक्टूबर को की जाएगी। 13 अक्टूबर को माता चंद्रघंटा की उपासना होगी। अब जानते हैं चतुर्थ स्वरूप के बारे में। आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अगर आप साधना करें तो बुद्धि वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है, ब्रेन शार्प होता है, दिमाग ताकतवर होता है और नवरात्रि के चौथे दिन यानी चतुर्थी तिथि पर माता के चौथे स्वरूप की पूजा होती है जिनका नाम है कूष्मांडा। अपनी हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की वजह से इनको कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्मांड कुम्हड़े को भी कहते हैं और माता को कुम्हड़े का भोग लगाया जाता है, इसकी वजह से भी इनको कूष्मांडा कहा जाता है। माता कूष्मांडा की अगर आप पूजा करते हैं चतुर्थी तिथि पर तो आपको ज्ञान विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, आपका दिमाग शार्प होगा। इस दिन माता की उपासना हरी वस्तुओं से करना चाहिए, हरी इलायची, हरी मिठाई, हरी चुनरी और हरे फल से माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए और माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करें और चौथे स्वरूप की माता कूष्मांडा की पूजा में अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका दिमाग सही रास्ते पर चलेगा। इस बार नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा

पांचवें स्वरूप के बारे में। आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा की जाती है और नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप की अगर आप पूजा करें तो संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, संतान की उन्नति होती है और अगर संतान प्राप्ति का वरदान चाहिए तो संतान प्राप्ति का वरदान आसानी से मिलता है। नव दुर्गा की पंचमी तिथि पर माता के पांचवें स्वरूप की पूजा होती है और नव दुर्गा का पांचवां स्वरूप है स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है और स्कंद माता का अगर आप स्वरूप देखें तो उनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हुए हैं। इसीलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो माता की पूजा के साथ साथ कार्तिकेय भगवान की पूजा भी हो जाती है। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान की तरफ से कोई कष्ट है उन्हें पंचमी तिथि पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि में आप स्कंद माता की पूजा करिए पीले फूलों से और स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाएगा, केले का भोग अर्पित किया जाएगा और ये अगर आप अपनी संतान को ग्रहण करवाएं तो उनकी बुद्धि और उनका भाग्य सही रास्ते पर चलेगा। इस बार पंचमी तिथि 15 अक्टूबर को है तो 15 अक्टूबर को माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा

पर्व के बारे में, आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी के छठवें स्वरूप की पूजा होती है। नव दुर्गा का जो छठवां स्वरूप है उसकी पूजा आप देखेंगे नवरात्रि के अलावा भी होती है, और नव दुर्गा के छठवें स्वरूप से बालिकाओं को शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। नव दुर्गा का छठवां स्वरूप है माता कात्यायनी का स्वरूप। ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपिकाओं ने माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की थी, और बालिकाएं भी शीघ्र और उत्तम विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। षष्ठी तिथि के दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है, और माता कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला में सूर्यास्त के आसपास के समय में की जाती है। बालिकाओं को माता कात्यायनी की पूजा पीले फूलों से करनी चाहिए षष्ठी तिथि को। और एक मंत्र है बड़ा विशेष, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का एक माला या 11 माला नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पढ़ना चाहिए, बालिकाओं का विवाह शीघ्र होगा। और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस बार जो षष्ठी तिथि है वो 16 अक्टूबर को है, तो माता के छठवें स्वरूप की यानी माता कात्यायनी की उपासना 16 अक्टूबर को की जाएगी। अब जानते हैं देवी के सातवें स्वरूप के बारे में। आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को देवी के सातवें स्वरूप की पूजा की जाती है, और अगर आप सप्तमी तिथि को देवी के सातवें स्वरूप की पूजा करते हैं तो इससे रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। जीवन में अगर कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, वो सप्तमी तिथि की पूजा पर दूर की जा सकती हैं। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से भी सप्तमी तिथि की पूजा पर छुटकारा मिलता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी पर माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है, और माता का कालरात्रि स्वरूप बड़ा भयंकर है। बिखरे हुए बाल, हाथ में खड्ग और कांटा, काले चमकते हुए नेत्र, वाहन गधा, बिजली गिरती हुई, ये बड़ा भयंकर स्वरूप है। लेकिन चूंकि ये भक्तों के लिए हमेशा शुभ करती हैं, इसीलिए माता कालरात्रि को शुभंकरी कहा जाता है। आप माता कालरात्रि और माता काली में कंफ्यूज मत होइए। माता काली तंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी हैं, और माता काली की तंत्र साधना की जाती है,
और माता कालरात्रि की सामान्य पूजा की जाती है नव दुर्गा में, इसमें कोई तंत्र का सम्मिश्रण नहीं होता। तो नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है, और माता के कालरात्रि स्वरूप की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माता की उपासना सुगंध से और धूप बत्ती से करिएगा। जितनी सुगंध रहे इनकी पूजा करते समय उतना अच्छा होगा। और माता को गुड़ का भोग लगाइएगा, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। माता कालरात्रि के लिए भी जो नवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इस बार सप्तमी तिथि की वृद्धि है। आश्विन शुक्ल सप्तमी दो दिन है, 17 तारीख को भी, 17 अक्टूबर को भी सप्तमी है और 18 अक्टूबर को भी सप्तमी है। तो सातवें स्वरूप की पूजा दो दिन की जाएगी, 17 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को। अब जानते हैं नव दुर्गा के आठवें स्वरूप के बारे में। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के आठवें स्वरूप की पूजा होगी। नव दुर्गा का आठवां स्वरूप संपूर्ण स्वरूप माना जाता है और आठवें स्वरूप को ही माना जाता है कि यही स्वरूप भगवान शिव के साथ विद्यमान है और इसी स्वरूप को शिव जी के दर्शन हुए थे। नव दुर्गा का जो आठवां स्वरूप है, अगर इसकी पूजा साधना की जाए तो मनचाहे विवाह का और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। बालिकाओं का शीघ्र विवाह होता है और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहे तो वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता महागौरी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर काला पड़ गया। बाद में भगवान शिव ने जब उनको दर्शन दिया तो अपने कमंडल से उनके ऊपर जल छिड़का, कालापन गायब हो गया और उनका स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण का हो गया। इसीलिए उनको माता महागौरी कहा जाने लगा। माता महागौरी ही भगवान शिव के साथ विराजमान होती हैं, जिसको मिला करके आप हर और गौरी कहते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर बालिकाएं माता महागौरी की पूजा कर सकती हैं शीघ्र विवाह के लिए। और उसका एक विशेष मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। तो अगर बालिकाएं अष्टमी पर माता महागौरी की पूजा करें, उनके मंत्र का 1 या 11 माला जप करें, माता की पूजा सफेद फूलों से करें, तो शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा।
और नव दुर्गा के आठवें स्वरूप यानी माता महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इस बार माता के आठवें स्वरूप की पूजा 19 अक्टूबर को की जाएगी। अष्टमी तिथि सुबह लगभग 10 बजे के पहले रहेगी, तो अष्टमी की जो पूजा है वो 19 अक्टूबर को प्रातः काल में कर ली जाएगी। अब जानते हैं नवें स्वरूप के बारे में। नवरात्रि की नवमी तिथि पर आश्विन शुक्ल नवमी पर नवरात्रि संपूर्ण होती है और इस दिन देवी के नवें स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिल सकती हैं और नवमी तिथि पर माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवमी पर माता की पूजा विभिन्न रंग के फूलों से करें और माता को काले तिल का भोग लगाएं। 19 अक्टूबर को दोपहर बाद नवमी लगेगी, तो 19 अक्टूबर को दोपहर बाद नवमी तिथि की पूजा और देवी के नवे स्वरूप की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि में नवमी के बाद आता है दशहरा, तो दशहरे की मान्यता भी जान लेते हैं। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजय का पर्व है, इसीलिए इसको विजयादशमी कहा जाता है। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, उन प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। विजयादशमी के पर्व पर, दशहरे के पर्व पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। विजया

0: प्राप्ति हो सकती है। इस बार दशहरे का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी दिन रावण का दहन होगा, विजय पर्व होगा। और अगर आप नए और मंगल कार्य का आरंभ करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। अब ये जानते हैं कि दशहरे के दिन किसकी पूजा करें और उससे क्या लाभ होगा। दशहरे के दिन महिषासुर का वध करने वाली महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में हर काम में विजय मिलेगी। अगर आप दशहरे पर सुबह माता दुर्गा की और मध्य दोपहर के बाद भगवान राम की पूजा करें तो बड़ी से बड़ी कामना आप अपनी पूरी कर सकते हैं। विजयादशमी पर दशहरे पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता। और दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को अगर नियंत्रित करना चाहें तो उसके लिए भी दशहरे की पूजा बहुत है। दशहरे पे मां दुर्गा की पूजा करें, भगवान राम की पूजा करें और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। नवरात्रि और दशहरे की सारी जानकारियां हमने आपको दे दी। अब बताते हैं कि नवरात्रि में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में पूरी तरह सात्विकता बनाए रखिए। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो सामान्य भोजन में, सामान्य आहार में भी प्याज लहसुन का सेवन मत करिए। दोनों समय देवी की पूजा करिए, दोनों समय कपूर जलाकर देवी की आरती करिए। नवरात्रि में आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी पूजा कर सकते हैं। हालांकि रात में अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में साधना करें, पूजा करें तो आपको विशेष लाभ होगा। और अगर आप नवरात्रि में उपवास रखते हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करें। तो देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए उलझते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की, जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के स्वागत और पूजन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चाहे देवी के धाम हो या फिर पूजा पंडाल, देवी माँ के स्वागत की तैयारी जोर शोर से जारी है। और इन्हीं तैयारियों के साथ देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के पूजा पंडालों में पहुँचने का सिलसिला भी तेज हो गया है।

शारदीय नवरात्रि के मौके पर दुर्गा प्रतिमा के आगमन पर ये भव्य और जोरदार स्वागत छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ है, जहां मां की मनोहारी प्रतिमा जब पूजा पंडाल के लिए लाई गई, तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। बनारस के घाटों की तर्ज पर भव्य आरती की गई। आसमान का सीना चीरती सतरंगी आतिशबाजी हुई और ढोल नगाड़ों की थाप ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया।

0: इस शोभा यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण बने विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकार, जिन्होंने अपने पारंपरिक नृत्यों की ऐसी शानदार प्रस्तुतियां दी कि श्रद्धालु भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे। चारों तरफ उड़ते गुलाल और माँ के जयकारों के बीच माँ का स्वागत किसी शाही उत्सव की तरह किया गया।
1: मेरे ख्याल से भिलाई में प्रथम बार ऐसा माँ का स्वागत हुआ होगा हमारे सेक्टर 1 में। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये माता की मूर्ति 14 फीट की है। ये धनोत से लाया गया है। ये धनोत की मिट्टी पवित्र मिट्टी की है, फ्रेंडलो उससे बनाया गया है। इसमें जितने भी शस्त्र लगते हैं सब ओरिजिनल रहते हैं माता जी के, और जो माता जी का मंगल सूत्र है, माता जी का जो श्रृंगार सदन है, लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे सोने के उससे हम लोग इसको सजाया जाता है।
0: देवी दुर्गा की ये प्रतिमा भिलाई के सेक्टर 1 के पुराना तारघर मैदान में बनाए जा रहे भव्य पंडाल में स्थापित होगी। इस पंडाल को कर्नाटक के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध मैसूर पैलेस की थीम पर तैयार किया जा रहा है, जिसकी नक्काशी और भव्यता देखते ही बन रही है। इस आलिशान पंडाल को धरातल पर उतारने के लिए बंगाल के 80 कुशल कारीगरों की फौज दिन रात जुटी हुई है, जो अपनी जादुई शिल्पकारी से भिलाई के इस मैदान में मैसूर पैलेस के वैभव को जीवंत कर रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी भिलाई का नौ दुर्गा युवक समिति, जो सेक्टर 1 पुराना डाकदार कॉलोनी है, उस पंडाल में मैं आया हूँ। यहाँ पे दुर्गा पूजा की तैयारी अब जोर शोर से शुरुआत हो गई है, और आप देख रहे हैं इस वर्ष यह पंडाल मैसूर का जो प्लेस है उसके स्वरूप ये बनाया जा रहा है।
0: छत्तीसगढ़ जैसे ही दुर्गा उत्सव की तैयारी बंगाल के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिल रही है। यहाँ ज्यादातर पूजा पंडाल अलग अलग थीम पर बनाए जा रहे हैं। कहीं किसी प्रसिद्ध मंदिर की थीम पर पंडाल आकार ले रहा है, और कहीं सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर पंडाल को तैयार किया गया है। दुर्गापुर का ये अग्रणी सांस्कृतिक परिषद पंडाल अमेरिका के अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर की थीम पर बनाया गया है।
3: ये कितना दिन से आप लोग का तैयारी चल रहा है?
4: ये तो हम लोग का कुटी पूजा रात के पहले ही हुआ था, उस दिन से अभी 3 महीने के ऊपर हो गया।
3: तो ये अक्षरधाम मंदिर का कॉन्सेप्ट आप लोग लेकर आए, ये कैसे लेकर आए, क्या मन रहा है?
4: हम लोग का जो पिछले बार का आप लोग पूजा देख रहे हैं, तो वो सब हम लोग का मंदिर बेस पे ही होता है। किसी जगह पिछले बार जो हुआ था वो अभी जब बुद्धा मंदिर हुआ था थाईलैंड का अरुण मंदिर, तो उस हिसाब से इस बार जो हम लोग का साथ आया था ये अमेरिका का जो संविधान है वो अच्छा होगा, हम लोग का जो जगह है दिखना, तो इसीलिए हम लोग ये मंदिर चूज किया।
0: वही सिलीगुड़ी का ये दुर्गा पूजा पंडाल बच्चों पर तलाक के असर को दिखाता है। कमेटी ने तलाक के भावनात्मक असर को एक बच्चे की नजर से दिखाने के लिए आमी थीम चुनी है, जिसका मतलब है मैं। आयोजकों का कहना है कि इस थीम का मकसद परिवारों के टूटने के मुद्दे को सबके सामने लाना और बच्चों पर इसके असर के बारे में बातचीत को बढ़ावा देना है।
5: इस साल में हम लोगों का थीम का टैग नेम है आमी। आमी मतलब मैं। एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ का उसका पिताजी और पिता और माता में डिवोर्स होने वाला है, तो उसका मेंटल सिचुएशन कैसा है, ये सब कुछ ही यहाँ पे दर्शाया जाएगा।
6: क्या क्या रहेगा पंडाल में?
5: पंडाल में रहेगा बाहर में एक बच्चा और उसके पीछे एक वर्ल्ड रहेगा।
0: दुर्गा पूजा के लिए केवल पंडाल ही खूबसूरत और भव्य नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि देवी दुर्गा की एक से बढ़कर एक मनोहारी मूर्तियां भी शहर शहर मूर्तिकार तैयार करने में जुटे हैं। चाहे आगर मालवा हो या प्रयागराज या फिर कोई और शहर, मूर्तिकार अपनी अद्भुत कला, मेहनत और समर्पण से मिट्टी, लकड़ी और रंगों से देवी की प्रतिमाओं को जीवंत रूप देने में जुटे हैं। भिलाई से रघुनंदन पंडा, दुर्गापुर से अनिल गिरी, प्रयागराज से आनंद राज और आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़ जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल कर देने वाले।
8: माँ के आगमन की आहट है और भक्तों के साथ बंगाल पुलिस भी माँ के स्वागत के लिए उत्साहित है। ये तस्वीरें चंदन नगर स्टैंड की हैं, जहां एक पुलिसकर्मी सड़क पर पेंटिंग बनाकर माँ के स्वागत की तैयारी में जुटा है। सड़क पर उभरते ये रंग माँ जगदम्बे के प्रति आस्था और प्रेम को बयां कर रहे हैं। अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है जब माँ इसी रास्ते से गुजर कर अपने भक्तों के बीच पहुँचेंगी और पूरा इलाका भक्ति रंग में रंग जाएगा। नटखट अदाएं, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और भक्ति गीत की धुन पर थिरकते नन्हे कदम, ये नजारा दिल जीत लेने वाला है। बीच में नजर आ रहा ये क्यूट बच्चा अपने किरदार में पूरी तरह डूबा हुआ है। गाना भक्ति का है तो डांस में भी भक्ति का रंग नजर आ रहा है। साथ में दूसरे बच्चे भी ताल से ताल मिलाकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी मासूम अदाएं हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रही हैं। प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से जाहिर होता है। उम्र चाहे कोई भी हो, रिश्ता पुराना हो या नया, अगर प्यार सच्चा है तो परवाह हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर लेटी है और उन्हें दर्द में देखकर पति इनके पैर दबाने लगते हैं। पति का ये छोटा सा कदम रिश्ते की बड़ी खूबसूरती बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यार और देखभाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गरबा का जुनून, भक्ति का रंग और कदमों में गजब की रफ्तार। नवरात्रि से पहले लड़कों का ये गरबा अभ्यास लोगों का ध्यान खींच रहा है। पार्वती भजन की धुन पर एक साथ गोल घेरा बनाकर लड़के ऐसे कदम मिला रहे हैं कि हर मूवमेंट देखते ही बनता है। ताल से ताल मिलाते पूरे जोश के साथ गरबा करते इन लड़कों का अंदाज नेक्स्ट लेवल का है। नवरात्रि में धमाल मचाने के लिए ये तैयारी किसी शानदार ट्रेंड से कम नहीं। प्यार की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी एक स्पर्श ही दिल का हाल बयां कर देता है। इस वीडियो में एक महिला गाय के नन्हे बच्चे को बड़े प्यार से दुलारती नजर आ रही है। वहीं गाय का बच्चा भी महिला के स्नेह को महसूस करता दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच का ये प्यारा पल हर किसी का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस खूबसूरत रिश्ते की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए उलझते रिश्तों की कहानियाँ। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सिर्फ 7 सेकंड और दुश्मनों का खेल खत्म। झुंड में हो खतरा फिर भी नहीं कोई टेंशन, दुश्मनों को राख करेगी सेना की ज्वाला। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास एक में जोधपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देसी स्वदेशी सेना के जवानों से मुलाकात, आधुनिक और स्वदेशी लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी। महालय के पर्व के साथ आज से देवी पक्ष का शुभारंभ, मां शक्ति के पूजन आवाहन का दिन कल से शुरू होगा नवरात्र।

0: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की दृश्यम 3 का तूफान जारी। भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार, वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ पार की कमाई। चीन के मोहे शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका इलाका। पतझड़ और सर्दी के अनोखे संगम ने पर्यटकों को लुभाया।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: जोधपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में लिया हिस्सा। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया रक्षा मंत्री का स्वागत, अभ्यास में कई देशों के जवान शामिल। भारत के आसमान में दिख रही है देसी ताकत और विदेशी फाइटर जेट्स की शानदार जुगलबंदी, रक्षा मंत्री के सामने युद्धाभ्यास। देसी विदेशी सेना के जवानों ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात, आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमानों की लगी प्रदर्शनी। तरंग शक्ति 2026 में भारत और दूसरे देशों की वायुसेना एक साथ कर रही है अभ्यास, आपसी तालमेल और सैन्य सहयोग को मिल रही है मजबूती। आज है महालया का पावन दिन, धरती पर आगमन के लिए मां दुर्गा के आवाहन की तिथि, आज से देवी पक्ष का शुभारंभ। महालया के अवसर पर है पितृ विसर्जन की परंपरा, 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष का है अंतिम दिन। हावड़ा के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पवित्र जल में तर्पण करने के लिए दूर दराज से पहुंचे लोग। हरिद्वार में पितृ विसर्जनी अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, श्राद्ध के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। नारायणी शिला मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस बल की निगरानी में श्रद्धालुओं को कतार में पूजा के लिए दिया जा रहा है प्रवेश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महालय अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी, भक्तों ने पूजा अर्चना कर कमाया पुण्य लाभ। महालय अमावस्या के अवसर पर रामेश्वरम में श्रद्धालुओं ने किया तर्पण, बड़ी संख्या में भक्तों ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, स्नान दान के साथ किया तर्पण। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में सुबह से स्नान ध्यान के लिए जुटे लोग, कपिल मुनि आश्रम में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। असम के डिब्रूगढ़ में भक्तों ने महालय पर ब्रह्मपुत्र नदी में लगाई डुबकी, पितरों के लिए तर्पण किया। दिन बाद आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, लगभग 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पाकिस्तान से भी 40 लोगों का जत्था पहुंचा, अंतिम अरदास के साथ 4000 से अधिक श्रद्धालु घांघरिया रहे मौजूद। हेमकुंड साहिब में बर्फ की 1 फीट मोटी चादर बिछी, पैदल मार्ग भी बर्फ ही बर्फ। हेमकुंड साहिब दरबार के कपाट बंद होने के बाद कल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट होंगे बंद, बर्फबारी के बीच मंदिर में पूजा करते दिखे पुजारी। चमोली जिले के ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में बदल रहा है मौसम, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी के धाम में तैयारियां जारी, बाजार से लेकर भवन तक फूलों लाइटों और तोरण द्वारों की जा रही है सजावट। वैष्णो देवी धाम में दिव्यांगों बुजुर्गों और बच्चों को सौगात, बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक

0: साथ श्रद्धालुओं के लिए घोड़े की निःशुल्क व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए अर्धकुंवारी से भवन तक की निःशुल्क बैटरी कार सेवा। विशेष दर्शन आरती में शामिल होने के साथ साथ रैंप और लिफ्ट की भी सुविधा। नवरात्रि से स्थानीय कारोबारियों और किसानों को भी बढ़िया। श्रद्धालुओं के लिए वैष्णो देवी पहुंचने से कारोबार बढ़ने की उम्मीद। कटरा में नवरात्रि के दौरान होटल्स में एडवांस बुकिंग पर 30% तक की छूट। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। जयपुर में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी। गुलाबी नगरी में 23 फीट ऊंची माँ दुर्गा की प्रतिमा बनेगी खास आकर्षण का केंद्र। पीली साड़ी और चांदी के आभूषणों से होगा माँ का दिव्य श्रृंगार। जयपुर में दिखेगी बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की झलक। दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता से मंगाए जा रहे हैं सजावटी सामान और प्रॉप्स। बंगाल से आए कारीगर पंडालों को दे रहे हैं भव्य और पारंपरिक रूप। 70 साल पुरानी दुर्गा बाड़ी में सजेगा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। इस बार सृष्टि स्थिति और विनाश की थीम पर होगी खास सजावट। करीब 2000 वर्ग गज में बनेगा पंडाल। 50 फीट ऊंचा होगा प्रवेश द्वार। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्तिकार। जयपुर में पिछले 3 से 4 महीनों से चल रही है प्रतिमा निर्माण की तैयारी। मिट्टी रंगों और आकर्षक आभूषणों से निखर रहा है माँ का दिव्य स्वरूप। 15 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव। जयपुर की दुर्गा बाड़ी में स्थायी प्रतिमा के साथ होगी विशेष पूजा। वियतनामी मार्बल से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है परिसर की पहचान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए उलझते रिश्तों की कहानियाँ। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास देखने जोधपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देसी विदेशी सेना के जवानों से मुलाकात, आधुनिक और स्वदेशी लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी। महाले के पर्व के साथ आज से देवी पक्ष का शुभारंभ, मां शक्ति के पूजन आवाहन का दिन, कल से शुरू होंगे नवरात्र। तर्पण के साथ आज पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की दृश्यम 3 का तूफान जारी, भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार, वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ पार की कमाई। चीन के मोहे शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका इलाका, पतझड़ और सर्दी के अनोखे संगम ने पर्यटकों को लुभाया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: तो मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।

0: कविता को मिलेगी नाकामी, नाकामी का गुस्सा उतरेगा वृंदा पर। पकड़ी जाएगी जगधात्री की चोरी, होगा जगधात्री और शिवाय के बीच प्यार का इजहार। सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा करेगी सूरज का लाई डिटेक्टर टेस्ट, सामने आएंगे सारे झूठ। कजरी के लिए सिद्धार्थ और आकाश के बीच शुरू होगी टशनेबाजी, किसकी होगी हार और कौन मारेगा बाजी। सीरियल वसुधा के सेट पर छाया जश्न का माहौल, पूरी टीम ने मिलकर किया सेलिब्रेट। और साथ ही करेंगे मुलाकात सीरियल सोनी और कोई नहीं होनी के जोजो यानी कि राघव गोसाई से, और जानेंगे इनकी रियल जिंदगी के बारे में सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: सूरज का हाल बेहाल होने वाला है क्योंकि उसके सारे झूठ पकड़े जाने वाले हैं। दरअसल ईशा उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए लाई है लाई डिटेक्टर मशीन और कर रही है सूरज का टेस्ट। तो सूरज जरा बचकर रहना।
0: ढोल बजाकर हुई काव्या की घर वापसी।

ईशा सूरज पर करेगी लाई डिटेक्टर टेस्ट। खुलेंगे सूरज के कई राज। के सीरियल पति ब्रह्मचारी में जब से काव्या को पता चला है कि रिया बंटी और बंटी रिया से बेहद प्यार करते हैं, ऐसे में काव्या ने फैसला लिया है कि वो बंटी की जिंदगी से दूर चली जाएगी। ऐसे में वो अपना बोरी बिस्तरा बांधकर आ गई है वापस अपने घर, और देखिए कैसे घर वाले कर रहे हैं उसका स्वागत। उसकी आरती उतारी गई, फूल बरसाए गए और खुशी खुशी गले लगाकर ढोल बजाकर किया काव्या का स्वागत।

0: खैर काव्या तो अपने घर में वापस आकर बहुत खुश है, लेकिन इस घर में कोई खुश नहीं है तो वो है कृति और ऋषि, क्योंकि उन्हें दी गई है घर की साफ सफाई और कामों की जिम्मेदारी। तभी तो देखिए कैसे काव्या के वापस आने के बाद जो फूल बरसाए गए हैं उन्हें समेटने के लिए वहाँ पर कृति और ऋषि पहुँच जाते हैं, और उन्हें यूँ साफ सफाई करता देख मोनिका की नौटंकी शुरू हो जाती है। और सूरज वो तो मोनिका का साथ दे रहा है क्योंकि वो दोनों को सबक जो सिखाना चाहता है।
1: आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, आज के दिन तो मीठा खाना तो बनता है। तुम दोनों जा कर के ना और कुछ मीठा बना लो, खीर।
2: हाँ, पर ये जो खीर बनेगी ये स्पेशली काव्य के लिए, तो याद रहे खीर में मीठा ना ज्यादा ना कम।
1: ओके बॉस।
0: भाई पापा के अल्टीमेटम के चलते कृति और ऋषि को सूरज और उसके पूरे परिवार वालों की बात माननी पड़ रही है। तभी तो बिना हिचक किए वो साफ सफाई में लगे हुए हैं और मोनिका सोफे पे बैठकर आराम फरमा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सूरज भी चाय की प्याली लेकर पहुंच जाते हैं डाइनिंग टेबल पर और ले रहे हैं चाय की चुस्कियों का मजा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईशा ऑफिस से घर वापस आती है और साथ में लाती है लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसे देखकर मोनिका हो जाती है बेहद ही एक्साइटेड, क्योंकि ये सब उसने फिल्मों में ही देखा है।
3: ईशा जी, ये लाई डिटेक्टर मशीन ये किसकी?
1: कुछ मुझे सच बुलवाने वाली मशीन है क्या? हाँ, ये सच में झूठ और सच पकड़ लेता है? ओ, मैंने ना ऐसी मशीन ना सिर्फ फिल्मों में देखी थी। अच्छा मुझे ये झूठ पकड़ के बताओ ना। चलो सूरज, तुम पर टेस्ट।
3: उस पर क्यों ऋषा जी, ये देखना चाहती है ना, तो इन पर ही कीजिए
1: टेस्ट।
3: जबरदस्ती शक का तीर चला रही है, मैं भला क्या छुपाऊंगा आपसे ईशा जी?
1: नहीं छुपा रहे ना, तो चलो चुपचाप हाथ आ चल। मोनिका भाभी, जब इंसान सच बोलता है ना तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है, पर जब वो झूठ बोलता है तो उसकी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और ये मशीन स्ट्रेस पे रिस्पॉन्स करती है, पता चल जाता है।
0: भाई ईशा ने तो सूरज के साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट शुरू कर दिया और सवाल भी पूछने शुरू कर दिए। पहले सवाल पर सूरज ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था, इसलिए ग्रीन बत्ती जल गई और सूरज कॉन्फिडेंट में आ गया। और जैसे ही ईशा ने दूसरा, तीसरा, चौथे सवाल पूछने शुरू किए, क्योंकि हरी बत्ती ने दे दिया सूरज को धोखा।
1: क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं?
3: ना, बिल्कुल नहीं।
1: क्या आप अपनी पत्नी से डरते हैं?
3: मैं भला आपसे डरूंगा? अतः बिल्कुल नहीं।
1: दादा भाई हो के अपनी बीवी से डरते?
3: देव, इस मशीन में टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ना, इसलिए गलत दिखा रहा है।
1: जी नहीं, ये मशीन बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल गलत नहीं।
0: खैर कृति और ऋषि का टेस्ट होगा या नहीं ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल तो सभी के जाने के बाद ईशा ने ऐसा एक और सवाल पूछ लिया जिसकी वजह से सूरज हिचकिचाने लगा है, और इसी हिचकिचाहट से ईशा को ये पता चल ही जाएगा कि सूरज उससे कुछ छिपा रहा है, और जब उसका राज खुलेगा तो देखना होगा कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा।
3: बस कीजिए ईशा जी, हो गया।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: दंगल टीवी के सीरियल कैसी तेरी दिल्लगी में दोस्त बने दुश्मन, आकाश और सिद्धार्थ के बीच कजरी को लेकर तकरार शुरू हो चुकी है। एक तरफ है सच्चा प्यार तो दूसरी तरफ प्यार का जुनून। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कजरी का दिल कौन जीत पाता है। आइए देखते हैं कि आखिर किसके प्यार की होती है जीत।
5: ध्यान से पढ़ ले सेठ, ये घर और बिजनेस मैंने वापस तो कर दिया है, पर तेरे नाम पे नहीं, कजरी के नाम।
0: आकाश और सिद्धार्थ की टशनेबाजी।
5: तेरे सारे पैंतरे अगर मुझे पता नहीं होंगे तो किसको पता होंगे।
0: कभी आकाश तो कभी सिद्धार्थ मारे बाजी। कजरी के लिए शुरू हुई दोनों की जंग। दंगल टीवी की सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में कजरी की बात को मानते हुए आकाश खर्च होकर जा ही रहा था, पर तभी सिद्धार्थ ने खेल दिया खेल और उसने कजरी को खिला दिए बूंदी वाले लड्डू जिसमें तिल की मिलावट है, जिससे कजरी को हो रही है एलर्जी और खतरे में पड़ गई है कजरी। ऐसे में अब आकाश ने फैसला ले लिया है कि वो कजरी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा।
1: ये लो प्रसाद, तिल के लड्डू।
6: मुझे ना तिल से एलर्जी है बचपन से।
1: आकाश जी,
6: आपको जब भी लगे कि आप जिंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ गए, आप बस इन्हें देख लेना।
5: ये लो प्रसाद।
0: बस फिर क्या, आकाश के इस फैसले से सिद्धार्थ हैरान है और देखिए कैसे वो पहुंच गया है आकाश के कमरे में उसे अपना टशन दिखाने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि आकाश ने उसे पहले ही नया खेल शुरू कर दिया है।
5: माँ ने अपना बड़ा बिजनेस एम्पायर तो खड़ा कर लिया, पर अपने चुन्नू मुन्नू बच्चों को पेपर सही से पढ़ना नहीं सिखाया। एक बार पेपर्स ध्यान से पढ़ ले सर, ये घर और बिजनेस मैंने वापस तो कर दिया है, पर तेरे नाम पे नहीं, कजरी के नाम।
0: भाई आकाश के इस कदम से तो सिद्धार्थ हैरान हो गया है, क्योंकि एक तो पूरी प्रॉपर्टी कजरी के नाम कर दी है, ऊपर से आकाश ने सिद्धार्थ के पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो भी छीन ली है। ऐसे में आकाश तो अपना टशन दिखा ही रहा है, लेकिन सिद्धार्थ उसका टशन भी कम नहीं। जरा देखिए कैसे वो इन पेपर्स की फाइल को बाजू में फेंक देता है और करता है आकाश को चैलेंज।
5: Why not? जाके बता दे पूरा दरवाजा, वहां से लेफ्ट लेकर तीसरे रूम में कजरी है। जाके बोल दे उसे कि सिद्धार्थ सबसे बड़ा विलेन है, वो तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने वाला है। बोल। पर एक सेकंड, कजरी तेरी बात क्यों मानेगी? मारे क्योंकि मेरे पास सबूत है। हमारे बीच अभी जो कुछ भी हुआ तूने वो सब रिकॉर्ड कर लिया हो क्या? मेरा दोस्त है, तेरे सारे पैंतरे अगर मुझे पता नहीं होंगे तो किसको पता होंगे।
0: भाई सिद्धार्थ को लगा कि आकाश ने इनकी सारी बातों को कैमरे में कैद कर लिया है। ऐसे में देखिए कैसे सिद्धार्थ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घर की छानबीन में जुट जाता है उस कैमरे को ढूंढने के लिए जिसमें उसके खिलाफ सबूत है, लेकिन उसे कैमरा नजर नहीं आता और साथ ही साथ उसका टशन भी कम होने का नाम नहीं लेता।
5: यार कहाँ रखे हैं, मैं भी हाई कर दूंगा यार कजरी को। कहाँ रखा है? अरे बोल तो कहाँ रखा है कैमरा?
0: असल में सिद्धार्थ के खिलाफ सबूत कैमरे में नहीं बल्कि उस मिठाई में है जो सिद्धार्थ ने कजरी को खिलाई थी। देखना होगा क्या आकाश सिद्धार्थ का असली चेहरा कजरी के सामने लाने में कामयाब हो पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: हम लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट शोज के सारे हाइलाइट्स एक साथ, तो हो जाइए आप भी सास बहू और बेटियां की एयरलाइंस पर सवार और करते हैं सीरियल्स की दुनिया की सैर।
0: जी टीवी के सीरियल वसुधा के सेट पर आज हो रहा है सेलिब्रेशन, और हो भी क्यों ना, भाई सीरियल ने 700 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। ऐसे में पूरी टीम का खुशी जाहिर करना तो बनता है। इतना ही नहीं, सेट पर सीरियल के प्रोड्यूसर अरविंद बब्बल भी आए हुए हैं। ऐसे में देखिए कैसे पूरी कास्ट और क्रू प्रोड्यूसर अरविंद बब्बल के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक काट रहे हैं और साथ ही साथ कर रहे हैं एक दूसरे का मुंह मीठा भी। इतना ही नहीं, पूरी टीम ने मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। सास बहू और बेटियां के कैमरे

0: क्वेश्चन सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जो हम 700 एपिसोड तक आज पहुंचे हैं. तो आप सबने इतना प्यार किया है ऑब्वियसली, तभी हम यहाँ तक आए हैं और हम सबकी मेहनत है. जब सुनती हूँ कि 700 एपिसोड हो भी गए तो समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी कैसे हो गए, लेकिन आई नो कि हमने डे वन से इस पे वर्क किया है और एक एक कोई भी चाहे क्रू से हो, मेकअप से हो, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, सबने बहुत कुछ किया है. शो को हमने अपना 100% देने की कोशिश की, आई थिंक उसी का रिजल्ट है. और जब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं तो मतलब एक ओवरवेल फील होता है. थैंक यू सो मच, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं
1: आप सबसे ये शेयर करना चाहूंगा कि जब पहला सीन हुआ था, मुझे पहला एपिसोड याद है, जब ये स्टेप्स यहाँ से नीचे उतरते वक्त प्रभात नीचे आता है और उसके पहले इंट्रोडक्शन सीन था, तब ये नहीं पता था कि हम 700 स्टेप्स ऊपर चढ़ के आगे तक यहाँ तक पहुँचने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे. सो ये आप सबका प्यार और आप सबकी
2: अभी तो 1000 एपिसोड
1: पे बिल्कुल. सो द माइलस्टोन एक के बाद एक आपके प्यार से ऐसे ही बना रहे हैं.
3: मैं तो बहुत खुश हूँ, हम सब बहुत खुश हैं. और जो भाई मैं सही में दिल से ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत बहुत बहुत आभारी हूँ सबसे पहले दर्शकों का और इतनी प्यारी टीम, इन लोगों के साथ के बिना ना यहाँ तक पहुँचना असंभव. तो ये टीम, कैमरे के पीछे वाली टीम, वो यहाँ तक पहुँचने के लिए ना जिम्मेदार है.
1: बिल्कुल.
3: और आप सबके प्यार से हम लोग और आगे चलेंगे. बहुत खुशी हो रही है, 700 एपिसोड हो गए, लेकिन मैं सही बताऊँ हम सबको पता नहीं चला कि कब हो गए.
4: मैंने जब ज्वाइन किया था तब हम लोगों ने पहली बार जो माइलस्टोन अभी 400 का केक काटा था ना साथ में मिलके, तब हम लोगों ने तो सब लोग आए हुए थे और आज अचानक से 700 एपिसोड्स हो गए हैं. और मुझे तो मतलब ये जैसा ऐसा लगता है ये परिवार ही है, बिकॉज हम लोग घर पे उतना रहते ही नहीं है, सुबह रात को जाते हैं यही सब लोग के साथ एक साथ. और हमारी टीम वाकई सच में बहुत अच्छी है, बिहाइंड द स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन सब लोग, इसीलिए

भाई आज तो पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा दोनों ही बहुत खुश हैं, और हो भी क्यों ना, भाई उनके बेटे कृषिव का 6वां सालगिरह है। ऐसे में देखिए कैसे कृषिव की 6th बर्थडे पार्टी में पहुंचे हैं उनके कई दोस्त यार अपने अपने बच्चों के साथ।

बात करेंगे दिबिना बनर्जी की, तो देखिए कैसे क्वाड सेट में पहुंची हैं अपने बच्चियों के साथ कृषिक के बर्थडे में शामिल होने के लिए। इसी के साथ वहाँ अर्जुन बिजलानी और नेहा भी पहुँचे हैं अपने बच्चों के साथ

0: दौर कई लोग पहुंचे हैं पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा के बेटे के बर्थडे पर और देखिए कैसे पूरी की पूरी बच्चा पार्टी कर रही है। कृषिव के बर्थडे को एंजॉय।
1: कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बरेली के बच्चों ने कंप्लीट कर लिए हैं 100 एपिसोड और इसमें नजर आ रहे कलाकार दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। जी हाँ, दर्शक इन्हें कर रहे हैं खूब प्यार और इनके कलाकार प्रविष्ट मिश्रा बन गए हैं दर्शकों के दिलों की धड़कन। जो सीरियल में निभा रहे हैं कृष्णा का किरदार और इनकी जोड़ी संगम के साथ दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। ऐसे में जब सीरियल ने 100 एपिसोड पूरे किए तो भाई फैंस का दिल बाग बाग हो गया और उन्होंने सास बहू और बेटिया की टीम को भेज दिया प्रविष्ट मिश्रा और बरेली के बच्चन के लिए ये स्पेशल केक, जिन्हें आज सास बहू और बेटिया लेकर पहुंच गया है बरेली के बच्चन के सेट पर और हमने की प्रविष्ट मिश्रा से खास मुलाकात और उन्हें दिया फैन का ये ढेर सारा प्यार। फैंस की तरफ से ये तोहफा देखकर प्रविष्ट मिश्रा बेहद ही खुश हुए। तो आइए बिना किसी देर किए मिलते हैं प्रविष्ट से और जानते हैं उनकी खुशी।
2: मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है आज। आवाज थोड़ी बैठी हुई है लेकिन स्पिरिट्स हाई हो गए ये गिफ्ट देखने के बाद। थैंक यू सो मच। ये गिफ्ट जिसने भेजा है मैं उनके मैसेजेस और उनके ईमेल्स कई पढ़ता हूँ और देखता हूँ हमेशा एंड आई टेक फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। ये छोटा सा प्यारा सा बुके और यहाँ पे आपके टीम के अमित सर को इन्होंने भेजा लेटर कि आई होप दिस रीचेस प्रविष्ट, तो इट हैज़ रीच्ड। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहता हूँ ज़रूरत नहीं है लेकिन आप भेजते हैं तो मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा हिल गया है लेकिन जज्बात मिल गए हैं, केक हिल गया है और ये 100 एपिसोड्स की खुशी में। थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट होप कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग और आगे ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन्स हम छूते जाएं, हासिल करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, कीप वॉचिंग द शो। ये छोटा सा प्यारा सा लेटर है। थैंक यू सो मच ZEZZ। इसमें तो इन्होंने लिखा है कि डियर अमित सर, होप दिस केक विल रीच प्रविष्ट मिश्रा एंड बरेली के वचन टीम इन 100 एपिसोड स्पेशल। तो ये पहुंच गई है और सही वक्त पे पहुंची है, सो थैंक यू सो मच। अभी होपफुली सबको केक काट के बांटेंगे। मैं मानता हूँ कि नंबर्स पे मैं ऑनेस्टली बहुत ध्यान नहीं देता हूँ कितने नंबर ऑफ एपिसोड जो है, लेकिन अभी तक बहुत अमेजिंग जर्नी रही है और हर किरदार को इतना सारा प्यार मिल रहा है, हर किरदार को इमोट करने का मौका मिला है। एंड मेरी भी बॉन्डिंग हर किरदार से, मतलब कृष्णा की बॉन्डिंग हर किरदार से, प्रविष की बॉन्डिंग हर एक्टर के साथ बहुत अच्छी हुई है। एंड नॉट जस्ट द एक्टर्स बट द एंटायर टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारी प्रोड्यूसर्स, हमारी DOP टीम, हमारी पूरी टीम, तो बहुत अच्छा फैमिली जैसा माहौल है और मज़ा आता है। सो आई जस्ट होप ये ऐसे ही बना रहे, बढ़ता रहे। थैंक यू, थैंक यू। अभी बाकी यहाँ लोग हैं नहीं तो मैं खा लेता हूँ, बाकी फिर सबको खिला दूंगा। बहुत ही प्यारा केक है, मज़ा आ गया। थैंक यू। ये आपके लिए ZEZZZ और बाकी सब फैंस के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से मैं खा लेता हूँ, आप भी खा लीजिएगा।
1: भाई आपके यूं ही प्यार करने के तरीके से ये कलाकार भी खुश होते हैं। भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बरेली के बच्चन की कहानी आपको पसंद आती रहे और आप उन्हें यूं ही प्यार करते रहें।
3: तरफ जहां सीरियल की मसाला खबरें हैं तो वहीं दूसरी तरफ रियलिटी शोज की दुनिया में लगा है मनोरंजन का तड़का। चलिए देखते हैं कि इस रियलिटी शो में क्या मजेदार हो रहा है।

0: दिखाता है।
1: मेरी धर्म पत्नी, जनरल परसेप्शन है कि ये जब गाली भी देती होगी तो फूल झड़ते होंगे, ऐसा नहीं है।
2: चुड़ैल वाला रूप मैंने देखा है,
3: चुड़ैल वाला रूप मैंने देखा है।
4: क्या बिहेवियर है ये, पब्लिक में ऐसे बोल रहे हो?
5: भाई रियल लाइफ में तुम कितना टीवी पे आते हो भाई? भाई अभी घर में जितने पंगे होते, पत्नी बोलती है जा काम पे जा। नेहा आप नर्वस तो नहीं हो, आप सही हो?
6: मैं हूँ, नर भी हूँ और ये मेरे वश में है।
7: पर अर्जुन ना बहुत अच्छा पति है, बहुत प्यारा, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट पति, बट टीवी पर।
8: ये हुई ना बात।
7: और तो और अगर ये मुझे कोई काम देता है ना तो उसको चेक करने आता है कि मैंने ठीक से किया है कि नहीं। ये कौन करता है भाई?
5: अरे दैट्स कॉल्ड रीकन्फर्मिंग कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। लाइक
9: रीकन्फर्मिंग नहीं बोलते उसको, ट्रस्ट इश्यू बोलते।
10: करेक्ट। नेहा को बिचारी को पति में तो सासू माँ मिल गई,
7: बस यही बोलना चाहती थी।
0: पतियों का दिल रखने के लिए पति के गंदे जोक पे पत्नियां हंस देती।
10: सच या झूठ?
11: बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब हंस तो देती हूँ मगर बोल देती हूँ कि खराब जोक था, मजा ही नहीं आया।
10: सच या झूठ?
11: मजा नहीं आया
9: तो झूठ हुआ ना।
11: हंसी आती है कितना बेकार, एक डायरेक्टर ने इतना बेकार जोक मारा।
10: तो सच या झूठ फिर?
11: जिनको मैं दिग्गज मानती हूँ वो भी कभी कभी ऐसे नो बॉल पे आउट हो सकते हैं।
12: अरे दीपिका जवाब क्या हुआ फिर फाइनली?
0: आप उनका दिल रखने के लिए हंस देती हो या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है इसलिए हंस देती हो?
11: दिल नहीं रखती मैं।
9: अरे पता चला झूठ है कि सच। देखिए मेरे बच्चे भूखे हैं, हमें घर जाना है।
13: 12 साल हो गए हमारी शादी को, हमारी जिंदगी में तो सब कुछ मंगल ही मंगल है।
14: क्या ही मंगल है?
13: क्या
14: कलर्स वालों, अब तक तो सब कुशल मंगल है, आगे का पता नहीं।

टीवी का नया सीरियल सोहनी और नहीं कोई होनी तो आप सभी देख ही रहे होंगे। इस शो में जोजो का किरदार भी आपको खूब पसंद आ रहा होगा, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि जोजो यानी राघव असल जिंदगी में कैसे हैं? तो चलिए चलते हैं उनके घर और करते हैं उनके साथ एक मजेदार डे आउट।

0: रजनी के दोस्त संग एक दिन जोजो की रियल जिंदगी। कैसे हैं रियल लाइफ में राघव गोसाइन? सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं दंगल टीवी के नए शो सोनी और कोई नहीं होने के जोजो यानी कि राघव, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताएंगे। देखेंगे कैसा है राघव का दिनचर्या, कैसे वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे फिट रहते हैं। करेंगे राघव संग उनके होम स्वीट होम की सैर। राघव अपने बारे में बताएंगे कई सारी बातें। करेंगे घर से सेट तक का सफर। सफर के दौरान होंगी ढेर सारी बातें और साथ ही देखेंगे कैसे राघव जोजो के किरदार में ढलते हैं। तो भाई आज हम राघव के बारे में ढेर सारी बातें जानने वाले हैं, तो बिना देरी किए सीधा चलते हैं राघव के घर पर।
1: हाय गुड मॉर्निंग। हाय वेलकम गाइस, दिस इज राघव गोसाइन। अभी आप फिलहाल मुझे देख सकते हैं सोनी शो में, सोनी और नहीं कोई होनी, लेकिन फिलहाल के लिए आप मिलते हैं राघव से।
0: तो भाई राघव की मॉर्निंग एक कप ब्लैक कॉफी से होती है, तो बाकी सब काम बाद में। सीधा चलते हैं इनकी रसोई में और बनाते हैं ब्लैक कॉफी।
1: तो अभी मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ, आज लकीली मेरा कॉल टाइम थोड़ा लेट का था, तो इसलिए आई कैन प्लान ऑल द थिंग्स कि मुझे अभी क्या करना है क्या नहीं करना। यूजुअली मैं अपना वर्कआउट रात में ही करता हूँ, जिम जाना मैं रात को प्रेफर करता हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि मैं जिम में अच्छे से टाइम दे सकूँ, इसलिए मैं रात को टाइम देता हूँ जिम के लिए। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करूँगा उठ के, पहले तो ब्लैक कॉफ़ी लूँगा। बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट जो काम होता है सुबह उठते ही सबसे पहले होता है कॉफ़ी पीना, ब्लैक कॉफ़ी। आई लव ब्लैक कॉफ़ी। सेट पर भी मैं दिन में 5-6 बार ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ। उसके बाद हम थोड़ी सी पूजा करते हैं और फिर हम निकल जाते हैं अपने काम के लिए। तो अभी ब्लैक कॉफ़ी बनने के लिए हमने पानी गर्म होने के लिए डाल दिया और फिलहाल मैं कैटल में बना रहा हूँ, लेकिन सेट पे

कहीं घूमने गया हुआ था, आई थिंक मे बी धर्मशाला और समवेयर, तो वहां पे मुझे दिखा और मैं ऐसे हो गया यार ये तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको पकड़ते ही मुझे फील होता है यार यू आर अ वॉरियर बॉय। तो पकड़ते ही मैं अब सोचता हूँ कि यार दिन की शुरुआत एज अ वॉरियर की जाए, तो और क्या ही फिर कहना। पानी गर्म होता है, अब इसके बाद पानी डालेंगे और कॉफी पियेंगे, मे बी हो गया।

0: कॉफी को प्रेफर करता हूँ कि मैं चम्मच से ना मिक्स करूँ, तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा ऐसे स्टर करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे, आप ट्राई करना आप सब लोग, धीरे धीरे जो इसका एसेंस और अरोमा है ना वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगता है, तो आसपास बैठे लोगों को भी पता चल जाता है कि कॉफ़ी बन रही है कहीं ना कहीं। अब ये देखिए मेरे ख्याल से रेडी हो चुकी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। और अब ये कॉफ़ी पीना मैं इंजॉय करता हूँ। सबसे अच्छी बात जो इस घर में है वो है यहाँ का व्यू, सुबह सुबह जो यहाँ पे व्यू आता है इट्स अमेजिंग। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है, ये देख सकते हैं आप, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और ये आपको एक मोटिवेशन देती है कहीं ना कहीं कि सुबह उठते ही काम पे भागो, काम पे जाओ, घर पे बैठना नहीं है। या मेरा फेवरेट स्पॉट है सुबह सुबह उठते यहाँ पे कॉफी पीना, तो मैं डेली उठते ही सबसे पहले यहाँ पे अपनी कॉफी इंजॉय करता हूँ। हाँ साथ ही हाँ यहाँ पे सनरेज बहुत अच्छी आती है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है, तो विटामिन डी भी मिलता है, सनबाद भी हो जाती है साथ साथ। बट आई लाइक दिस व्यू, मतलब सुबह उठते ही ऐसे लग रहा है कि यार अब घर पे बैठना नहीं, यार काम करो, सब लोग भागते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात क्या है यहाँ पे, मैं सुबह उठता हूँ तो लोग भागते हुए दिख रहे होते हैं, रात को सोने जाता हूँ तब लोग भागते हुए दिख रहे होते हैं, तो मुझे लगता है यार हम भी कहीं ना ऐसे कशमकश करते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि खाली बैठ के कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ पे देखिए अभी लोग भी सुबह सुबह निकल चुके हैं वॉक करने, देखिए सामने लोग वॉक कर रहे हैं अच्छे से, सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो हाँ ये व्यू मुझे बहुत पसंद है, और इसके साथ साथ मैं कॉफ़ी इन्जॉय करता हूँ, और मुझे काफ़ी एक ऐसी वाइब आती है कि यार अब तो कुछ अलग ही कर देंगे आज दिन में निकल के।
1: राघव ने ब्लैक कॉफी तो बना ली, लेकिन इस कॉफी की चुस्किया बोलेंगे अपने फेवरेट व्यू पर जाकर, जो कि है इनका ये बैल्कनी लुक, जिससे इन्हें मोटिवेशन भी खूब मिलता है।

0: वैसे राघव को घर में प्लांट्स लगाने का भी काफी शौक है और उन्होंने लगाए भी है, और जब उन्हें टाइम मिलता है उनका वो बखूबी ध्यान रखते हैं।
1: सो अभी कॉफी हमारी हो चुकी है, लेकिन मेरे को प्लांट्स रखने का काफी शौक है, आप देख सकते हैं। इसको मैं काफी टाइम से उगाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे तैसे उगा है बेचारा, लेकिन अब देखते हैं इसकी लाइफ कब तक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको पानी देता रहूँ, इसलिए अब इसको पानी दूंगा। मैंने तो बहुत सारे उगाए थे वैसे, लेकिन आप जानते हैं मुंबई में घर कैसे होते हैं, छोटे छोटे, और कभी कभी हम घर पे नहीं रहते हैं, काफ़ी आउटडोर शूट के लिए जाना पड़ता है। अगर 7-8 दिन के लिए बाहर गए तो इन प्लांट्स को पानी कौन देगा, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर एक रहे पर उसको अच्छे से देखभाल की जाए। तो हाँ, इसको पानी देते हैं अपनी कॉफ़ी के साथ साथ, इसका भी न्यूट्रिशन थोड़ा सा बना रहना चाहिए।
0: वैसे तो राघव को सेट पर भी जाना है, लेकिन एक भी दिन वो अपना जिम सेशन मिस नहीं करते। भले ही उन्हें जल्दी जल्दी में घर पर जिम क्यों ना करना पड़े, तो वो जिम जाना छोड़ घर पर ही वर्कआउट कर लेते हैं, और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं।
1: हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता हूँ घर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मैं रात को वर्कआउट करना प्रेफर करता हूँ, तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज में बस डंबल्स वगैरह है घर पे, क्विक वर्कआउट सेशन करते हैं, क्योंकि मुझे अब सेट पर निकलना है। आई थिंक मैं लेट हो रहा हूँ, और जाना ही मुझे नायगांव होता है, तो थोड़ा सा पहले निकलो तो बेटर है, क्योंकि ट्रैफिक का कुछ नहीं पता भाई, कभी भी बढ़ जाता है। लेट्स स्टार्ट।
2: स्ट्रेचिंग से मैं स्ट्रेच वगैरह कर लेता हूँ।

तो अभी भी पता नहीं वो नया शो चल रहा है एमएमए करते हैं, एक्शन आना चाहिए ऐसे नेट पर आपको, अगर आपको हीरो बनना है तो बेसिक मूव्स है। मैं शैडो बॉक्सिंग करता हूँ घर पे फॉर प्रैक्टिस।

0: हाँ तो फिलहाल के लिए मैं स्ट्रेचिंग से स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर हम करते हैं थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग ताकि हमारे मसल पंप दिखे शूट पे, और बाकी का जो वर्कआउट है वो रात को आके जिम में अपने आप को और 2-2.5 घंटे देने पड़ते हैं, और साथ साथ स्ट्रेचिंग और अपने एब्स को भी कोर को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा वर्कआउट सेशन पूरा। तो गाइस अभी हमारा वर्कआउट पूरा हो चुका है, लेकिन फिलहाल टाइम भी हो चुका है, हमें निकलना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी हम रेडी हो रहे थे, लेकिन निकलने से पहले हम आपको करवाएंगे अपने घर का टूर और उसके साथ साथ करेंगे पूजा और फिर निकलते हैं। तो चलिए फिर अब जल्दी से चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब हमें निकलना है शूट के लिए, हम लेट भी हो जाएंगे। निकलते हैं, रेडी होते हैं, उससे पहले हम कराते हैं आपको अपना होम टूर।
1: तो भाई वर्कआउट सेशन भी हो गया है पूरा, लेकिन अब सेट पर भी तो जाना है, इसलिए झटपट फ्रेशन अप होकर राघव कराएंगे अपने घर की सैर।

0: तो भाई राघव रेडी हो चुके हैं, अब इनके आशियाने की सैर करते हैं, जिन्हें राघव ने बड़े ही प्यार से सजाया है। और यहाँ पर है काफी सारी सजावट की चीजें, जो है राघव की फेवरेट।
1: मैं रेडी हो चुका हूँ, अब टाइम हो चुका है निकलने का, लेकिन उससे जाने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है, दिखाते हैं आपको हमारा प्यारा सा घर। तो देखिए, अब यहाँ से मैंने इसको काफी सजा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें, मेरा फेवरेट है क्लैपबोर्ड, एक आपको एक एक्टर वाली फील देता है कि दैट यू आर एन एक्टर, तो ये चीजें होनी चाहिए मेरे को लगता है एक एक्टर के घर में। उसके बाद आते हैं मेरी फेवरेट वॉल पे, क्योंकि मेरा जो मोस्ट टाइम स्पेंड होता है वो होता है इस सोफे पे। दिस इज माय कंफी स्पेस, कि मतलब मैं कभी भी बैठ जाता हूँ, शूट से आने के बाद ही मैं 2-3 घंटा यहाँ बैठता हूँ, फिर मैं कुछ आगे का प्लान करता हूँ। तो दिस इज द फेवरेट प्लेस ऑफ माइंड। और यहाँ से बैठ के मैं देखता हूँ ये 4 पिक्चर्स, मतलब ये आप देख सकते हैं, मतलब एक्टर्स के लिए तो इंस्पिरेशन है शाहरुख खान, जोकर, फाइट क्लब एंड अमिताभ बच्चन। तो यही है, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो हम भी कभी सोचते हैं कि सारे सोचते हैं कि कभी हम भी स्टार बनेंगे। उसके बाद ये मेरा फेवरेट कंसोल PS5, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि मेरे यहाँ पे बहुत फ्रेंड्स आते हैं, तो हम इसी पे ही अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं, एक्टर्स जितने हैं, और बाकी मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो अपन लेके बैठ जाते हैं। मेरी 3-4 गेम फेवरेट है, अभी हम वेटिंग फॉर GTA 6, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि क्या क्रेज़ है, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। तो हाँ, हमारे यहाँ पे महफिल जमती है, उसके बाद हम यहाँ बैठते हैं और हम खेलते हैं PS5। और आप ये देख सकते हैं, ये भी एक वॉल है, ये पता नहीं मुझे क्यों इतना एस्थेटिक लगा था, तो मैंने सोचा कि यार चलो इसको एक बार ले लेते हैं। तो मैंने ये यूजुअली खुद से ही प्रिंट करके खुद से फ्रेम किया है ये भी। और दिस इज माय फेवरेट फिल्म तमाशा, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, मतलब करेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको हर एक करेक्टर से सीखने को मिलता है, उनकी डेप्थ देखने को मिलती है। फिर आते हैं मेरी इस पर थोड़ी सी वॉल पे, ये मेरे को कुछ फेवरेट मेरे करेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं गोकू एंड ऑल, तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी शौक है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट मिलर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप रगड़ेंगे नहीं तो हीरा चमकेगा नहीं, अगर आप रगड़ेंगे नहीं तो हीरा चमकेगा नहीं। इट्स नॉट अ स्ट्रगल टाइम, इट्स अ टाइम टू पॉलिश एंड नरिश योरसेल्फ, इट्स अ प्रोसेस। तो हाँ, ये चीज़ें मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कभी कभी लिखता रहता हूँ। और यहीं पे जब डेली रेडी होता हूँ सुबह सुबह जाते टाइम, तो मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ, मुझे काफ़ी ऐसे मोटिवेशन फील होती है। फिर उसके बाद आते हैं इस कॉर्नर पे, ये मुझे ग्रीनरी काफ़ी पसंद है, आपने देखा ही होगा, मुझे प्लांट्स को पानी देना, प्लांट्स होना, तो ये मुझे ये भी एक एस्थेटिक वाइब देता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्रीनरी जहाँ होती है तो वहाँ पर आपका अपने आप ही मन खुश रहता है। एक ये छोटा सा कॉर्नर है जो मतलब मेरे को अच्छा लगता है, कभी कभी फ्रेंड्स आते हैं तो ओकेजनली हम इसको काफ़ी इन्जॉय करते हैं, बट हाँ इतना नहीं, तो बट ये शो के लिए मेरे को पसंद है, तो इसलिए मैंने बना रखा है। तो आइए चलते हैं मेरी रूम की तरफ, यहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा सा मैंने एक फ़ोटो वॉल बना रखा है, आइए देखिए। तो ये एक वॉल है जो मैंने बनाई है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे प्यारे मम्मी पापा, जिनको मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि हम घर से दूर नहीं है, कभी कभी होम सिकनेस फील होती है तो याद आती है, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स को देखना यहाँ पे, कि चलो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे साथ ही रहते हैं। और दिल्ली जाना मेरा कम हो पाता है, तो इसलिए क्योंकि शूट्स में बिजी रहते हैं हम लोग, तो मैं पेरेंट्स को यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि बुला लूँ, तो वो आते रहते हैं। हाँ, ये मेरी एक छोटी सी प्यारी सी वॉल है जिसको मैंने बनाया। फिर आप ये देख सकते हैं, ये भी मेरे कुछ फेवरेट पोस्टर्स हैं, तो ये कुछ कुछ पिक्चर्स और कुछ कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं, और ये फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। ये मेरा वार्डरोब सेक्शन है, इसको ही मैंने काफ़ी प्यार से सजा रखा है, इस पर मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, ही स्टिल इनसाइड यू, डू इट फॉर यू, एंड मिल जाए तो शुक्र और ना मिले तो सब्र, ये देख सकते हैं आप।
0: राघव के घर में है ये क्यूट सा मंदिर, और हर रोज वो भगवान की पूजा किए बिना घर से बाहर नहीं निकलते, और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। दिल से भगवान जी की पूजा कर रेडी होकर अब होगा सेट तक का ये सफर शुरू।
1: तो ये सब चीज़ें आपको मतलब कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देती हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी भी चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा लिखते रहना चाहिए। तो हाँ, अब ये था हमारा घर, अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपना प्यारा सा मंदिर, जिसको मैंने बहुत ही मेहनत से सजाया। और मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे बचपन से स्पिरिचुअल रहना पसंद है, मेरी फैमिली काफ़ी स्पिरिचुअल है, तो मुझे पसंद है कि मैं डेली भक्ति भाव करूँ और मैं कनेक्टेड रहूँ। और मेरे फेवरेट भगवान जी, जो वैसे सारे ही फेवरेट भगवान हैं मेरे, लेकिन मेरे एक जो प्यारे हैं वो हैं हनुमान जी, आप देख सकते हैं, इनका श्रृंगार मैंने खुद से किया हुआ है। और ये कृष्ण जी हैं, ये भी हमारे प्यारे हनुमान जी हैं, तो ये मैंने खुद से अपने हाथ से पेंट किया है, ये पूरी ब्लैक मूर्ति थी, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये सबसे फेवरेट पीस है मेरे घर का, ये घंटी, ये कांच की है, तो इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, और ये आपको डेली सुबह एक मेडिटेशन के रूप में हेल्प करती है। तो अब हम निकलने से पहले इनकी पूजा करेंगे डेली, और ये देख सकते हैं ये काफ़ी एक न्यू एडिशन है मेरे घर में, ये काफ़ी मेरे को एस्थेटिक लग रहा था तो मैंने ले लिया, क्योंकि माचिस से कभी कभी क्या होता है कि अगर फ़ैन ऑन है तो जलती नहीं है, तो इससे हम अपनी यहाँ पे पूजा के लिए इस सामग्री के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो आइए जल्दी से पूजा करते हैं फिर हम निकलते हैं शूट के लिए।

तो अब जल्दी से निकलते हैं, शूज़ पहन लेते हैं अपने जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब हम हो रहे हैं लेट और नायगांव के ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है। वैसे में बाय रोड जाना पड़ता है, तो ट्रेन से जाते तो फिर इजी होता है क्योंकि टाइम का पता होता है, लेकिन जब आप बाय कार जा रहे हो, बाय स्कूटी, बाय बाइक, तो आपको निकलना पड़ता है हाफ एन आवर अर्ली। तो लेट्स गेट रेडी।

0: अब थोड़े से एसेंशियल्स हैं जो जाने से पहले जरूरी हैं, लाइक माई वॉच, इसको पहन लेते हैं जल्दी से।
1: ये हमने अपनी वॉच पहन ली है,
0: ये मुझे मेरे स्टेप्स बताती रहती है शूट पे मुझे कितने स्टेप्स हुए। और दिस इज़ माई फेवरेट, ये मैं डेली वेयर करता हूँ, रुद्राक्ष मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी मैं पूजा करने के बाद डेली पहन के निकलता हूँ, फॉर माई गुड लक एंड फॉर माई सेफ्टी, टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इविल आई। लेट्स गो।
2: घर से सेट तक के सफर की शुरुआत करते हैं। वैसे आपको बता दें, सोनी का सेट नायगांव में है, जहां जाने के लिए काफी समय लगता है, तो गाड़ी में होकर सवार शुरू हो गया है ये सफर।
0: तो अभी हम फाइनली निकल चुके हैं अपने सेट के लिए, रेडी होके मास्क पूजा वूजा करके, कॉफी पी के, वर्कआउट करके। देखिए जल्दी उठने के कितने फायदे हैं, अगर आप जल्दी उठते हो तो आप सारे काम हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप हर चीज में सबसे आगे हो। हम निकल चुके हैं, अब देखते हैं, पहले तो रास्ते में कुछ खाने का लेंगे, थोड़ा सा नारियल पानी पियेंगे अपना, बाकी हमने घर बैठे बैठे पैक करवा लिया अपना लंच, जिन्हें भी अपने पर आज हमारे आए हैं, तो हम सोचा कि आज कुछ आउटिंग के लिए बात करूँ।

0: वैसे इस सफर के बीच में राघव ने एक ब्रेक लिया है जो कि है नाश्ता ब्रेक, और पहुंच गए हैं वो अपना फेवरेट इडली सांभर खाने के लिए।
1: आ चुके हम यहाँ पे फेवरेट स्पॉट पे। तो कभी कभी मेरा बाहर का ब्रेकफास्ट करने का मन होता है ना, लाइक लाइट पोहा और थोड़ा सा उपमा इडली, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और थोड़ा जल्दी होता हूँ तो मैं अच्छे से अंकल से मिलके खा के जाता हूँ। तो भाई आपको मिलेगी, चलते हैं। यहाँ पे मिलेगा गर्मा गर्म
2: इडली लेते हैं।

0: हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, फटाफट हमने खा लिया, अब निकलते हैं हमारे सेट की।
1: पेट पूजा के बाद फिर शुरू हुआ सेट तक का ये सफर, और इस सफर के दौरान राघव ने हमें अपनी जर्नी बताई, कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत की, कैसे स्ट्रगल किया और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे।
0: निकल चुके हैं अपने सेट के लिए, रास्ते में बस पहुँचने वाले कुछ देर में, तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। तो मेरी जर्नी, वैसे मुंबई में 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, एंड मैंने स्टार्टेड, मैंने थिएटर काफी किया दिल्ली में, अपने कॉलेज में मैं थिएटर से रहा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी सपोर्ट किया, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ मुंबई सिटी ना, यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम। मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे मेरे लिए, खास करके मेरे पापा, वैसे तो दोनों का ही अच्छा खासा सपोर्ट रहा था। मेरे पिताजी ने मेरे को काफी मतलब सपोर्ट किया है, मतलब शुरू से लेकर जितने भी प्लेस मैंने किए हैं आज तक, वो हर प्ले देखने आया मेरा, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि कॉन्सिक्वेंसेस से मुझे डरना नहीं सिखाया, फियरलेस बनना सिखाया और सपोर्ट किया कि बेटा तू बन, तू कर लेगा। और बस वैसी जर्नी रही। मेरी सिस्टर है घर में और वो भी छोटी बहन है, वो भी काफी सपोर्टिव है। मेरी मम्मी, मैं काफी चूजी हूँ ऐसे आपको बताना चाहूंगा खाने को लेकर, तो मैं बहुत ही चीजें लिमिटेड ही खाता हूँ। मेरी मम्मी बड़ा परेशान रहती मेरे मुझसे, लेकिन उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, हर चीज बना के दी मुझे, जो मैं बोलता था वही मेरे को मिलता था खाने में। बट अभी होम सिकनेस का ये फील होती है, लेकिन यहाँ पे अब खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। फिर व्हेन आई केम टू मुंबई, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम अ सीरियल मेहंदी वाला घर, मेरा पहला शो था सोनी टेलीविजन के लिए, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक टाइम तो ऐसा था कि जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं बड़ा पाव खा के सर्वाइव करता था गाइस, क्योंकि 15 रुपए का बड़ा पाव आता था, मुझे पता था रेंट भी पे करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, और पैसे बचते नहीं थे, घर से मैं लेता नहीं था। वैसे पेरेंट्स को मैंने कई बात बताई नहीं है, मैं बड़ा पाव पे रहा, अभी वो देख रहेंगे तो गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी बात थी मैंने उनको नहीं बताया, बिकॉज अगर मैं बताता तो शायद मैं वो स्ट्रगल पीरियड नहीं देख पाता, और वही स्ट्रगल पीरियड था जिसने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। और मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहता हूँ, मैं किसी भी सेट पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मिल रहा है वही मेरे लिए इनफ है, सेटिस्फाइड रहता हूँ मैं हर चीज़ में। और मेरा नेचर कुछ ना कुछ ऐसा है कि मैं लोगों को जो मेरे सराउंडिंग में, मैं उनको चाहता हूँ हमेशा खुश रहे, तो मैं उनको हंसाता रहता हूँ, और दूसरों को मैं चाहता हूँ हमेशा खुशी बांटता रहूँ जहाँ भी जाऊँ। बाकी एज एन एक्टर मेरी जर्नी काफी मतलब अप एंड डाउन के साथ रही है। अभी मैं जो कर रहा हूँ प्ले सोनी में, वो भी मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर है, मतलब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी है कहीं ना कहीं, कोई सब पॉजिटिव कैरेक्टर, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स बिफोर दिस, बट आई वांट कि मेरे को वर्सेटिलिटी के साथ कैरेक्टर्स मिलते रहे।
1: साथ ही इनके घर से नायगांव तक का ये सफर काफी सुहाना है, जहाँ है ग्रीनरी और खूबसूरत नजारे, जिन्हें एंजॉय करते करते राघव सोहनी के सेट पर पहुंच गए।
0: जगह कितनी पीसफुल है, यहाँ पे आपको माउंटेन व्यूज मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कभी कभी मैं तो ट्रिप पे जा रहा हूँ। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम होता है कभी 6:30 का या 6 बजे का, तो आई फील लाइक कि मैं तो शिमला जा रहा हूँ, क्योंकि माउंटेन्स मुंबई में दिखना इज जस्ट लाइक अ मिरेकल। यहाँ पे आपको सिर्फ बिल्डिंग दिखनी है, छोटी छोटी सड़कें, बट आई लव मुंबई सिटी, मुझे बहुत पसंद है मुंबई में रहना, दिल्ली भी मेरी फेवरेट है, मुंबई फेवरेट है, वो ये हमारी कर्म भूमि है, तो यहाँ पे कर्म कर रहे हैं हम अपना,

0: चुके हैं अपने सेट पे, यहाँ पे हमारे रूम्स हैं, देख सकते हैं आप, काफी अच्छा लगता है यहाँ पे आके।
1: तो भाई सेट पर पहुंचते ही राघव सीधा पहुंचे अपने मेकअप रूम में और शुरू कर दी तैयारियां। साथ ही बताया कि वो अपने साथ क्या कुछ कैरी करते हैं, जैसे कि ये पिलोज, मेकअप का सामान और बाकी का जरूरी सामान, क्योंकि भाई इन्हें ज्यादा समय सेट पर जो बिताना होता है तो ये जरूरत के सारे सामान अपने साथ लेकर चलते हैं।
0: तो ये मेरा सिंहासन है, इसको मैं लगाता हूँ क्योंकि मुझे सोफे पे बैठने की आदत है, तो मैं इसको लगा के बैठता हूँ तो मेरे को एक कंफर्ट फील आती है, क्योंकि मैं सेट पे लेटता नहीं हूँ, मेरी अच्छी आदत है, मैं सेट पे आके बिल्कुल लेटना प्रेफर नहीं करता हूँ, बेड मेरे यूज का ही होता है। ये मेरा मेकअप पाउच है, ये देख सकते हो आप, इसको मैं रख दी यहाँ, कभी कभी मैं अपना मेकअप खुद कर लेता हूँ, लेट हो रहे होते हैं तो।
2: सोनी है तू सोनी, रख दूं मैं तेरा नाम,
0: ये अपना ही हो गया। ये लैंप है गाइस, कभी कभी मैं मेडिटेशन के लिए इसको यूज करता हूँ, अगर लाइट ऑफ करके मैं थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहूँ तो मैं कर लेता हूँ। परफ्यूम मेरे को बहुत शौक है परफ्यूम्स के, तो परफ्यूम्स मैं दो दो यूज रखता हूँ, इतना भी कौन सा मन हुआ तो हमने वो लगा लिया। उसके बाद आई हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट, दिस इज माय पेन स्टैंड, इसके अंदर मैं अपना हाइलाइटर, मेकअप ब्रशेस सब यही ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ। एंड मेरी फेवरेट चीज जो है वो है ये स्पीकर, मेरी दिन की शुरुआत म्यूजिक से होती है, रात को भी मैं म्यूजिक से ही सोता हूँ, मेरे बहुत जरूरी है स्पीकर, मेरे को चाहिए कि स्पीकर हो। एंड दिस इज माय ज्वेलरी बॉक्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरी ज्वेलरी रहती है, इयररिंग्स एंड ऑल, कभी कुछ चेंज करना पड़ जाए। एंड दिस इज अ फैन गाइस, वेरी मस्त थिंग, कभी गर्मी हो सेट पे आउटडोर शूट कर रहे हो तो ये तो रिक्वायर्ड। कॉफी मशीन मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया, आई टोल्ड यू मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है, सेट पे आते ही मैं कॉफी से ही अपनी शुरुआत करता हूँ। एंड लिस्टिंग फॉर योर माउथ फ्रेशनेस, दिस इज माय हेयर प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत जरूरी है एज एन एक्टर आपके पास होना, तो बहुत सामान है गाइस, अगर मैं दिखाता रहा तो फिर तो टाइम ही बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ। ये हेयर स्प्रे है ये भी, एंड दिस इज माय मोबाइल स्टैंड, कभी कभी मैं इस पे भजन लगा के सुन लेता हूँ यहाँ पे रख के, एंड अपने सीन्स वगैरह इसमें कभी देख लिए तो अच्छा लगता है ये सब यहाँ पे रखा होना मेरे को। कॉफी का सेटअप आ चुका है, अब इसको यहाँ रख देंगे, इसको जोन सी कॉफी पीनी है उसी हिसाब से मेरे पास चॉइस फ्लेवर्स, इसको थोड़ी देर बाद पिएंगे क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया है, कॉफी से अब शुरुआत हो जाएगी, और हम आपको स्टार्ट करते हैं मेकअप से, तो दिख रहे
1: झटपट से रेडी होते हैं। वैसे आपको बता दे आज राघव खुद ही अपना मेकअप कर रहे हैं, इनके मेकअप में खासा कुछ नहीं है, बस स्किन प्रेप और बेस लगाकर राघव का मेकअप पूरा होता है और ये जोजो के किरदार में ढल जाते हैं।
0: So guys, मैं अपना मेकअप ज्यादातर खुद ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आता है और बहुत इजी होता है, कोई भी कर सकता है, और वैसे भी आई थिंक लड़कों का इतना होता नहीं है, कुछ हल्का सा बस डैब करो, मेरा तो काम चलता है, मैं तो पूरा दिन सेट पे डैब भी नहीं कराता, मुझे लगता है एक मलमल दे दो, आई विल डू इट बाय माय सेल्फ। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप फटाफट से और रेडी हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं फेस पे ही अप्लाई करता हूँ, इट्स अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चर तो काफ़ी अच्छा होता है, लेट्स अप्लाई दिस, इससे क्या होगा कि आपका मेकअप जो है वो काफ़ी देर तक लास्ट करता है आपकी स्किन पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये फाउंडेशन यूज़ करता हूँ थोड़ा सा,

इतने में बस हमारा मेकअप डन हो चुका है। अब मैं दूंगा इसको फाइनल टच थोड़ा सा, ये मैंने हल्का सा इस पर स्प्रे किया एंड ये थोड़ा सा फाउंडेशन ब्रश से हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से मर्ज कर दिया कि अगर कुछ भी जगह पे हल्का सा पैच रह गया तो वो कवर हो जाए। तो आपका मेकअप ट्यूटोरियल भी हो गया गाइस, किसी को नहीं आता तो इतना सा बस देख के प्रोडक्ट्स मंगवा लेना और मुझे बाद में कमेंट्स में थैंक यू बोल देना। बस हेयर सेट करने की बारी आती है, ज़्यादातर मैं कंघी तो यूज़ करता नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ अपना हाथ ऐसे ऐसे बस करता हूँ, मेरे बाल सेट हो जाते हैं। बट फिर भी थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं कभी कभी ये पाउडर लगा लेता हूँ, बट अभी के लिए फिलहाल आई थिंक आई एम सेट टू गो। सो गाइज, वैसे जोजो राघव के कॉस्ट्यूम में इतना फर्क नहीं, आप देखोगे मैं घर से पहन के आया हूँ, अब जो मैं आपको पहन के दिखाऊंगा उसमें डिफरेंस आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो सेम ही बंदा है, लेकिन एक्टिंग में चेंज करना पड़ता है गाइज। तो एक्टिंग में आपको दिखेगा राघव अलग और जोजो अलग, कॉस्ट्यूम काफी हद तक सिमिलर है। तो आइए अब बनते हैं राघव से जोजो। सो गाइज, अब हम बन चुके हैं राघव से जोजो, देख सकते हैं। मेरे को पता था कि आज लोअर ये होने वाला है, तो मैं अपने घर से ही रेडी होके आया कि इधर आगे मैं चेंज ना करना पड़े। ऊपर का हमने चेंज कर लिया, देख सकते हैं आप, बाल थोड़े से मैंने मैसी लुक दिया आज अपने आपको, क्योंकि सीन ऐसा है कि जिसमें भागा दौड़ी हो रही है, आउटडोर है, सो आई प्रेफर रियल लगे। अगर मैं सेट करूंगा, जेल वेल लगाऊंगा तो पता लगेगा कि बंदे ने सेट कर रखा। अगर आप भाग रहे हो आपके बाल नहीं रहे तो आर्टिफिशियल लगता है, तो मेरे को चाहिए कि बाल ही ले, बाल लहराएं। बस एसेसरीज हमें चेंज करने की जरूरत है, वो हम फटाफट से कर लेते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है ऐसा जैकेट मुझे खुद बना लेना चाहिए अपने लिए, बट आई रिक्वेस्ट टू द कॉस्ट्यूम टीम कि प्लीज मुझे ऐसे जैकेट का भी एक बना के दे सैंपल। बट इट इज वेरी यूनिक, इसमें ये एक डोरी का लेस वर्क हो रखा है काफी अच्छा, तो ये मुझे काफी रामलीला मूवी के रणवीर सिंह के करेक्टर की वाइब देता है जैकेट, तो मुझे एनर्जी भी वैसी रामलीला वाले रणवीर सिंह की आ जाती है। ता तर तर तर तर तर। अब चलो जल्दी से मैं अपनी एसेसरीज चेंज करके दिखा देता हूँ आपको।

0: मैं रेडी हो चुका हूँ, फ्रॉम राघव टू जोजो बन चुका हूँ. बस अब देखते हैं, मैं स्क्रिप्ट भी शायद आगे होगी. एंड या बिफोर टाइम हियर इज माय स्क्रिप्ट एज यू कैन सी. हनुमान जी मेरे यहाँ पे विराजित है, तो देखिए कितनी पीसफुल मूर्ति है, वो कितने शांति से बैठे. तो कभी कभी होता है कि कोई दिन आपका अच्छा नहीं जा रहा, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, तो मैं जब भी एंटर करता हूँ ना तो मुझे इनका फेस देख के ऐसा फील होता है कि इतना पीस होना चाहिए लाइफ में, और ये मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी देता है. तो अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से, तो मैं इनका फेस देख के ऑटोमेटिकली मैं काम डाउन हो जाता हूँ. तो जब भी मैं सेट की ओर बढ़ता हूँ तो मैं बोलता हूँ, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर हुआ क्लेश विकार. तो ये बोल के मैं सेट की ओर जाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आती है गाइस. तो हाँ, दर्शन पूरे हो चुके हैं, पूजा हमने घर पे कर ही ली थी, तो अब चलते हैं सेट की ओर.
1: तो राघव जोजो के किरदार में ढल चुके हैं और स्क्रिप्टिंग भी हो चुकी है. अब सेट पर जाकर सीन देने की बारी.
0: सो गाइस, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने फेवरेट बॉस से, व्हिच इज दिस शाहरुख खान. इनको तो कौन नहीं जानता, द लेजेंड, द आइकन, द स्टार. एंड मुझे कभी कभी टाइम मिलता है बीच में तो मैं इसको जरूर पढ़ना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर तो ये बहुत मोटिवेशनल है ही है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग ये किताब आपको बहुत कुछ सिखाती है. तो अगर आप मेरी रेफरेंस चाहेंगे तो आप ये बुक ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं. डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए. तो मैं आपके ऊपर से विजुअल दिखा देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग बुक है. इसके अंदर आप देख सकते हैं शाहरुख खान की जर्नी की काफी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी. तो इट्स जस्ट लाइक अ वॉचिंग अ मूवी एंड वाइल रीडिंग द बुक. तो एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है पढ़ना. तो

0: तो गाइज अभी सब लोग एक्टर्स जा चुके हैं अपने सेट पे, क्योंकि हमारा थोड़ा लेट का कॉल टाइम था, तो इन बिटवीन हम आपको मिलवा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर और कभी ज़रूर हम साथ में सबको मिलवाएंगे। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ सेट पे, आपको भी लेके चलता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा शॉट रेडी है, मुझे बुला लिया गया। तो आइए चलते हैं और देखते रहिएगा सास बहू बेटियाँ, और ये था राघव गोसाई का एक डे ऑफ।
1: तो देखा आपने रियल लाइफ में जोजो कुछ ऐसे है। उम्मीद है जोजो के किरदार से राघव अपने दर्शकों का दिल जीते और यूं ही अपने फैंस को एंटरटेन करते रहे। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अंसरी के ससुराल में माता रानी का आगमन हो गया है। ऐसे में पूरा परिवार तैयार होकर नवरात्रि के त्योहार पर घर में गरबा कर रहा है। जहां कई जोड़ियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं, वहीं कुछ के बीच तकरार देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है।
1: बंसरी के ससुराल में मची नवरात्रि की धूम। एक तरफ सीरियल में दिखी तश्नेबाजियां,

0: होगी, बस मैं और अगर जरूरत पड़ी ना तो बाप ने प्यार से आग देगी।
1: सीरियल में बा का नकली ड्रामा, तो ऑफ कैमरा सभी ने मिलकर मचाया डांस का हंगामा।

0: दंगल टीवी के सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में आज बंसरी के ससुराल में हो गया है माता रानी का आगमन। जरा देखिए कैसे सभी खुश होकर माता रानी को बड़े ही प्यार से उठाकर लाकर उनके आसन पर बिठा रहे हैं। बंसरी वो भी खट लिए बेहद खुश नजर आ रही है। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन ये खुशी का माहौल ट्विस्ट में तब बदलता है जब बा अपना नकली ड्रामा शुरू कर देती है। असल में मुस्कान की चाल के चलते लक्ष्य और अनंत के बीच दरार पड़ गई है। ऐसे में लक्ष्य चाहता है कि घर का बंटवारा हो। बस इसी बात को लेकर आज बा घर में तमाशा कर रही है और तो और उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया है। ये देखकर बंसरी खुश तो है क्योंकि उसे पता है कि बा खेल खेल रही है, लेकिन अनंत के सामने बंसरी भी हैरानी जता रही है। इतना ही नहीं सभी के सामने जरा देखिए कैसे बंसरी भी बा के साथ ड्रामा कर रही है।
1: एटल काकी कैसी बातें कर रही आप? हाँ अरे ये बा है बा। अरे एक बार बा ने ऐसे ऐसे कमिटमेंट कर दी ने तो फिर बा बा अपने आप की भी नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं सुनती रहने बा।
2: और मैं रह लूंगी, मैं भूखी रह लूंगी, मैं पानी पिए बगैर रह लूंगी, बस मैं
1: और अगर जरूरत पड़ी ना तो बाप ने प्राण त्याग देगी।
2: और 9 दिन बाद जब बा की विदाई होगी तब मेरी विदाई भी करवा देना।
0: भाई बा का रोना गाना और बंसरी का इमोशनल ड्रामा, ये सब देखकर सभी घर वाले हैरान हो रहे हैं। और तो अनंत वो तो सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बा व्रत रखे।
3: बा, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको शुगर है, अगर आपने व्रत रखा तो आप बीमार पड़ जाएंगी, प्लीज ऐसा मत करो।
2: फाइंस, नहीं करती व्रत, तुम भी बंटवारा मत करो।
3: बाप बंटवारे की डिमांड पहले लालू ने की थी, मैंने नहीं।
4: भाई ब्लेम करना बहुत इजी है, मैं भी कह सकता हूँ कि बा ड्रामा कर रही है, पर ऐसा करने के लिए आपको बाप भाभी नुकसान है आपको।
5: नवरात्रि की स्थापना से पहले ही घर में कुछ दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया है और लालो ने बंटवारे की बात की है, और उसी टेंशन के माहौल में नवरात्रि की घट स्थापना की और माता जी की स्थापना हुई है, और मैं और बंसरी चाहते हैं कि ये बंटवारा कैसे भी करके रोके, पर हमारी तो कोशिश है, अब देखते हैं कि हमारी कोशिश रंग लाती है या नहीं। क्योंकि बंसरी को अनंत ने कसम दी है कि वो इस मामले में बीच में नहीं पड़ेगी, तो वो मेरे थ्रू मतलब मेरे द्वारा वो ये जो बंटवारा है वो रोकने की कोशिश कर रही है, तो आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स के वो बंटवारा रुक जाए।
0: भाई कहीं न कहीं बा और बंसरी दोनों ही हैरान है और डरी हुई भी है कि कहीं लक्ष्य को उनकी सच्चाई पता तो नहीं चल गई। लेकिन सभी के सामने ड्रामा करते हुए बंसरी भी उठ खड़ी हुई और उसने घट स्थापित करने से मना कर दिया। ऐसे में बा का ड्रामा भी कंटिन्यू रहा, उन्हें हिचकियां तक आने लगी। हेतल काकी भी पानी का ग्लास लेकर पहुँच गयी उन्हें पिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया।
2: नो, नो वाटर, नो फूड, ब्रेक है मेरा। अनंत और बंसरी का कान, अनंत और बंसरी का लाइक एवरी ईयर दिस ईयर आल्सो, हमारे घर की परंपरा और नवरात्रि के नियम अनुसार इस घर में माँ की पूजा और अर्चना होगी। देखते हैं इन 9 दिनों में माँ ने हमारे लिए क्या सोच के रखा।
1: ठीक है वाह, चलो चलो घट की स्थापना करते हैं, मुरा चला जाएगा है। चलो चलो चलो बंसरी घट उठा, चलो आओ।
0: खैर बाकी ड्रामे के चलते तो बंसरी भी मजबूर हो गई। वो भले ही मुस्कान को टशन दिखाते हुए आगे चली गई घट स्थापना करने के लिए, लेकिन केवल बंसरी ही नहीं बल्कि मुस्कान भी अपना घट लेकर आई है। और ऐसे में दोनों बहुओं ने माता रानी के सामने घट की स्थापना की, अपने हाथों से पूजा अर्चना की और उसमें पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है।

0: गरबा भी होगा, तो हम जोर शोर से गरबा भी खेलेंगे, डांडिया भी खेलेंगे और बहुत धूम भी मचाएंगे, क्योंकि माता का आगमन ऐसे सूखे सूखे और रोते रोते तो नहीं कर सकते, तो गरबा तो होना ही चाहिए, नहीं तो माता रो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, घट की स्थापना तो हो गई और माता रानी को खुश करने के लिए पूरा परिवार एक साथ आ गया है गरबा करने के लिए। ऐसे में देखिए कैसे सभी गरबा कर तो रहे हैं, लेकिन जब जब दो टशन दिखाने वाले सामने आ रहे हैं तो उनके बीच टशनेबाजी साफ साफ दिखाई दे रही है। वो टशनेबाजी बंसरी लक्ष्य के बीच हो या अनंत की परेशानी हो, जो बार बार वो बंसरी को रोक कर उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दो भाइयों के बीच का टशन जो कहीं न कहीं इस गरबे में दिखाई दे रहा है।

खैर टशनेबाजी तो है ही, लेकिन इसी बीच बाबी आ जाती हैं गरबा करने के लिए और देखिए कैसे इशारों ही इशारों में वो बंसरी को बताती हैं कि उन्हें जोरदार भूख लगी है। बस फिर क्या, सभी घर वालों से नजरें बचते बचाते दोनों एक एक कर निकल जाते हैं रसोई की ओर। अब देखना होगा कि घर वालों को पता चल पाएगा कि बा और बंसरी दोनों ने मिलकर घर का बंटवारा रोकने के लिए चाल चली थी। खैर ये तो सीरियल की कहानी है, ऑफ कैमरा बात करें तो आज माहौल बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे में सभी को मौका मिल गया है अलग अलग वीडियोस बनाने का। भाई नवरात्रि आने वाले हैं, ऐसे में सबकी साज सजावट भी उसी प्रकार की है, तो जाहिर सी बात है अपने अपने सोशल अकाउंट के लिए सभी जमकर वीडियोस बनाएंगे ही, वो भी नाच गाने वाले। तो जरा देखिए कैसे सबसे पहले बंसरी ने अपनी पूरी टीम के साथ जमकर डांस किया और बनाया एक फन वाला वीडियो।

भाई यहाँ तो बंसरी का साथ अनंत लक्ष्य और पूरे परिवार ने दे दिया, अब बारी आई लक्ष्य और अनंत की। ऐसे में उनके वीडियो में उनका साथ दिया है बंसरी और मुस्कान ने, और देखिए कैसे ऑफ कैमरा सभी कर रहे हैं जमकर मस्ती और फुल ऑन एंजॉयमेंट।

खैर ये नज़ारे हैं ऑफ कैमरा के। सीरियल की कहानी की बात करें तो जल्द ही मुस्कान का राज सभी घर वालों के सामने खुलेगा, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद जो इस परिवार पर है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: संजय की बुआ यानी कविता आज फूट फूट कर रो रही है क्योंकि वह नाकाम हो गई है और उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। ऐसे में वृंदा उनके सामने आ गई है और कविता अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार रही है। अब कविता का यह गुस्सा किन किन पर उतरेगा और उनका यह गुस्सा कितना खतरनाक होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
1: गुस्से से भड़की कविता।
2: बोला था ना कुछ भी हो जाए मेरे कमरे में एंटर नहीं करना है। जब तक मैं नहीं बुलाऊं तुम नहीं आओगी, बोला था ना। किसे बातें कर रही है, क्या बातें कर रही है, सुनना था।
1: अम्मू पर उतरा कविता का गुस्सा। हार के चलते कविता चलेगी जानलेवा चाल। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज कविता के सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। तभी तो देखिए वो अपने कमरे में आकर कैसे अपना गुस्सा चीजों पर उतार रही है, क्योंकि उसके हाथ से उसके पापा का बिजनेस निकल चुका है।

0: दिखाओ, पागल बनते बनते रहेगी। बार बार बार बार ये लोग वही करते और तू
1: कविता अपना गुस्सा दिखा ही रही थी कि तभी कविता को एहसास होता है कि उसके कमरे के बाहर कोई है। ऐसे में वो गौतम को शांत रहने के लिए कहती है। इतना ही नहीं, फोन कट करके जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और अपने सामने अम्मू को पाती है। बस फिर क्या, देखिए कैसे आधा गुस्सा उसका अम्मू पर भी उतर जाता है। और अम्मू वो तो बेचारी डरी सहमी सी है, क्योंकि कविता हर चीज के लिए अम्मू को जिम्मेदार जो ठहरा देती है।

0: क्या करी थी, क्या करी थी मेरे कमरे के बाहर? बोला था ना कुछ भी हो जाए मेरे कमरे में एंटर नहीं करना है, जब तक मैं नहीं बुलाऊं तुम नहीं आओगी, बोला था ना? वो ये अच्छा, देख तूने मेरी बात सुनी है नहीं सुनी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, केक लेके आई थी ना, डर क्यों रही है? कुछ नहीं करती हुआ वो। हाँ, केक लेके आई थी, कुछ बोलना भी था, बोलना था, सिर्फ सुनना था। कविता के रूम में क्या चल रहा है, किससे बातें कर रही है, क्या बातें कर रही है, सुनना था।
1: भाई कविता ने अम्मू को ना सिर्फ धमकी दी बल्कि चुपचाप उसे रहने के लिए कह दिया, और तो और उसके हाथों से केक लेकर उसे जाने तक को कह दिया। इतना ही नहीं, वो केक लेकर जबरदस्ती खा रही है और अपने आंसू बहा रही है, और आंसू बहाते हुए वो इस तरह से टूट गई है कि उसे लगता है कि उसके हाथों से सारा बिजनेस चला गया है। इसी बीच फिर से गौतम का फोन आ जाता है और देखिए कैसे वो दहाड़े मार मार कर गौतम के सामने रो रही है।

0: मुझे जीना ही नहीं है।
1: संजय ने ना सिर्फ संजो को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया बल्कि अपनी माँ को साइनिंग अथॉरिटी दे दी और यही बात कविता को रह रहकर सता रही है। और उसकी हड़बड़ाहट और परेशानी देखते हुए गौतम ने भी जानलेवा प्लान बना दिया सरिता को अपने रास्ते से हटाने का। ऐसे में कविता को विश्वास हो गया कि गौतम उसका साथ जरूर देगा। इसी बीच सरिता को फिर से किसी के बाहर होने का एहसास होता है और वो फिर से जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और फिर से उसके कमरे के बाहर होती है अम्मू। ऐसे में कविता उसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अम्मू ने उसकी बातें सुनी है या नहीं, लेकिन अम्मू वो तो डरी सहमी सी कविता के सवालों का जवाब ना में दे देती है और कविता उसे और कुछ बिना कहे दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। ऐसे में अब अम्मू भी डरी हुई है क्योंकि कविता ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अब देखना होगा कि अम्मू यानी कि वृंदा ने कविता की बातें सुन ली है और क्या वो सरिता की रक्षक बन सरिता को कदम कदम पर बचाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: स्पैमर, गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको दिखाते हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें एक साथ।
1: बिग बॉस के 300 साल की परंपरा में जो संडे को हुआ करता था आज वो सैटरडे को होगा।
2: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए बिग बॉस के वीकेंड के वार का ये नज़ारा, जहां पर आज सलमान खान गुल्लू को दे रहे हैं सभी को अप्रिशिएट करने की जिम्मेदारी।
1: बिग बॉस के 300 साल की परंपरा में जो संडे को हुआ करता था आज वो सैटरडे को होगा। गुल्लू कितना अप्रिशिएट करते हो आप इस घर के लोगों को, तो हो जाए ऑन द फेस।
3: इनका चेहरा साफ नहीं है, लोगों को झूठ बोलती है, तारीफ करके धीरे धीरे अपने जाल में फंसाती रहती है, और जो इनके जाल में ना फंसे वो इन्हें पसंद नहीं। यंग भाई को लगता है घर का बादशाह है, लेकिन ये बन रखा है भी गुलाम। इसको बच्ची बोल दो तो इसके एक ब्रह्मास्त्र रोना, हर जगह एक खामा खा के बातें उठाती है। आपने मेकअप 4 घंटे में किया ना आज।
2: वैसे इसी के साथ जुड़ी हुई है एक और रॉकिंग न्यूज। देख लीजिए कि कैसे बिग बॉस 20 के सेट के बाहर स्पॉट हुए हैं रणविजय सिंघा, अभिषेक मल्हान, नेहा धूपिया और प्रिंस नरूला। असल में चारों पहुंचे हैं एमटीवी पर आने वाले रोडीज रीबर्थ को प्रमोट करने के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कृष का किरदार निभा चुके ऋषभ जायसवाल जल्द ही नजर आएंगे राइज एंड फॉल सीजन 2 में। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करेंगे, हालांकि अब तक ऋषभ ने इस खबर की कंफर्मेशन नहीं दी है।

जल्द बनेगी जोड़ी विशाल जेठवा और पलक तिवारी की। खबरों की माने तो जल्द ही आने वाली है एक वेब सीरीज जो कि बेस्ड होगी बिहार सेट रोम कॉम पर। हालांकि अब तक इस सीरीज का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन टेंटेटिवली इस सीरीज का नाम हो सकता है जनता इंटर कॉलेज। इसी के साथ देख लीजिए पलक तिवारी की बर्थडे की कुछ तस्वीरें जो उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। बीती रात उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और अपनी खुशी जाहिर की अपने फैंस के संग।

0: जगधात्री।
1: हम लिली है, तुम्हारा वाइफ जगधात्री नहीं।
2: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जल्द ही शिवाय लिली की चोरी पकड़ेगा और जल्द ही जगधात्री और शिवाय के बीच प्यार का इजहार भी होगा।
3: हट रहे हैं रिश्तों के नकाब, ऐसे में क्या मिटेंगी दिलों की दूरियां भी।
4: सबके सामने अपनी हर उस गलती की माफी मांगते हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंची है।
5: हमारे पति ने हमारे चरित्र पर उंगली उठाई, तभी भी हमने घर की मर्यादा।
2: जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटिया में स्नेहा और उनकी माँ गंगा माई देंगी सहाना का साथ और बढ़ाएंगी उसका हौसला।
4: सबके सामने अपनी हर उस गलती की माफी मांगते हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंची है।
5: हमारे पति ने हमारे चरित्र पर उंगली उठाई, तभी भी हमने घर की मर्यादा रखने की कोशिश की। कहा था ये समाज जब हमारे पति ने हमें चरित्रहीन कहा था, कहा थी वो मर्यादा जब हमारे पति हमें मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। हम प्रेम के बिना जी सकते हैं, लेकिन सम्मान के बिना नहीं जी सकते। हमें भले इस गाँव की पहली तलाकशुदा औरत क्यों नहीं कहा जाए, हमें मंजूर है।
2: वेब सीरीज दुपहिया सीजन 2 में सोमेश शाह अब गजब ढाने वाले हैं। देख लीजिए इस सीरीज का एक नया गाना रुके न मन, जिसमें सोमेश शाह ने ले लिया है लड़की का अवतार और देखिए कैसे दिखा रहे हैं अपने लटके झटके। भाई इनका डांस देखकर तो लड़कियां खुद हैरान हो जाएंगी।

सीरियल्स के सेट पर मचे हंगामों और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरीज के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला कल फिर जारी रहेगा और हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प और मसालेदार खबरें। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डाल

0: पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: सिर्फ 7 सेकंड और दुश्मनों का खेल खत्म। झुंड में हो खतरा फिर भी नहीं कोई टेंशन, दुश्मनों को राख करेगी सेना की ज्वाला। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: देशभर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां लगभग पूरी, जयपुर में सज गया माता रानी का भव्य पंडाल, मूर्तियों को भी दिया जा रहा है अंतिम आकार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में देखिए दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा, महालय पर ही होता है सप्तमी अष्टमी नवमी और विसर्जन का अनुष्ठान। तर्पण के साथ पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। जोधपुर एयरबेस पर गर्जे लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना का दम, तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हुए शामिल। चीन के मोहे शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका इलाका, पतझड़ और सर्दी के अनोखे संगम ने पर्यटकों को लुभाया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: जोधपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय वायु

0: अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में लिया हिस्सा। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया रक्षा मंत्री का स्वागत। अभ्यास में कई देशों के जवान शामिल। भारत के आसमान में दिख रही है देसी ताकत और विदेशी फाइटर जेट्स की शानदार जुगलबंदी। रक्षा मंत्री के सामने युद्धाभ्यास। देसी विदेशी सेना के जवानों से रक्षा मंत्री ने की मुलाकात। आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमानों की लगी प्रदर्शनी। तरंग शक्ति 2026 में भारत और दूसरे देशों की वायु सेनाएं एक साथ कर रही हैं अभ्यास। आपसी तालमेल और सैन्य सहयोग को मिल रही है मजबूती। आज है महालय का पावन दिन। धरती पर आगमन के लिए मां दुर्गा के आवाहन की तिथि। आज से देवी पक्ष का शुभारंभ। महालय के अवसर पर है पितृ विसर्जन की परंपरा। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष का ये अंतिम दिन। महालया के दिन ही देवताओं ने किया था मां दुर्गा का आवाहन। महिषासुर के आतंक से मुक्ति के लिए प्रकट हुई थी मां दुर्गा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कहते हैं महालय। पितृपक्ष के समापन का है पावन दिन सर्वपित्र अमावस्या। आसनसोल में अनोखी आगमनी दुर्गा पूजा। दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं यहां लोग। आसनसोल में महालय पर दामोदर नदी में उमड़ा आस्था का सैलाब। पूर्वजों को तर्पण देने पहुंचे हजारों लोग। दामोदर नदी में स्नान के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए विधि विधान से किया तर्पण। पुरोहितों ने किया मंत्रोच्चार। हावड़ा के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पवित्र जल में तर्पण करने के लिए दूर दराज से पहुंचे लोग। हरिद्वार में पितृ विसर्जनी अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्राद्ध के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। नारायणी शिला मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस बल की निगरानी में श्रद्धालुओं को कतार में पूजा के लिए दिया जा रहा है प्रवेश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महालय अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। भक्तों ने पूजा अर्चना कर कमाया पुण्य लाभ। महालय अमावस्या के अवसर पर रामेश्वरम में श्रद्धालुओं ने किया तर्पण। बड़ी संख्या में भक्तों ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कोलकाता में उगली नदी के किनारे बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। स्नान दान के साथ किया तर्पण। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में सुबह से स्नान ध्यान के लिए जुटे लोग। कपिल मुनि आश्रम में विधि विधान से की पूजा अर्चना। असम के डिब्रूगढ़ में भक्तों ने महालय पर ब्रह्मपुत्र नदी में लगाई डुबकी। पितरों के लिए किया तर्पण। 140 दिन बाद आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। लगभग 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पाकिस्तान से भी 40 लोगों का जत्था पहुंचा अंतिम अरदास के साथ। 4000 से अधिक श्रद्धालु घांघरिया रहेंगे मौजूद। हेमकुंड साहिब में बर्फ की 1 फीट मोटी चादर बिछी। पैदल मार्ग पर भी बर्फ ही बर्फ। हेमकुंड साहिब दरबार के कपाट बंद होने के बाद कल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट होंगे बंद। बर्फबारी के बीच मंदिर में पूजा करते दिखे पुजारी। चमोली जिले के ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों में बदल रहा है मौसम का मिजाज। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी के धाम में तैयारियां जारी। बाजार से लेकर भवन तक फूलों लाइटों और तोरण द्वारों से की जा रही है सजावट। वैष्णो देवी धाम में दिव्यांगों बुजुर्गों और बच्चों को सौगात। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पात्र श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा की निःशुल्क व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए अर्धकुंवारी से भवन तक निःशुल्क बैटरी कार सेवा। विशेष दर्शन आरती में शामिल होने के साथ रैंप और लिफ्ट की भी सुविधा। नवरात्रि से स्थानीय कारोबारियों और किसानों को भी बड़ी आस। श्रद्धालुओं के लिए वैष्णो देवी पहुंचने से कारोबार बढ़ने की उम्मीद। कटरा में नवरात्रि के दौरान होटल्स में एडवांस बुकिंग पर 30% तक की छूट। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। जयपुर में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी। गुलाबी नगरी में 23 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा बनेगी खास आकर्षण का केंद्र। पीली साड़ी और चांदी के आभूषणों से होगा मां का दिव्य श्रृंगार। जयपुर में दिखेगी बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की झलक। दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता से मंगाए जा रहे हैं सजावटी सामान और प्रॉप्स। बंगाल से आए कारीगर पंडालों को दे रहे हैं भव्य और पारंपरिक रूप। 70 साल पुरानी दुर्गाबाड़ी में सजेगा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। इस बार सृष्टि स्थिति और विनाश की थीम पर होगी खास सजावट। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्तिकार। जयपुर में पिछले 3 से 4 महीने से चल रही है प्रतिमा निर्माण की तैयारी। 15 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव। जयपुर के दुर्गा पाड़ी में स्थित प्रतिमा के साथ होगी विशेष पूजा अर्चना। पुरुलिया में चंद्रोदय मंदिर की थीम पर सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल। नितुरिया दुबेश्वरी कोलियरी में पूजा का 36वां साल होगा खास। पंडाल में दिखेगा भगवान विष्णु का 10 अवतार। पुरुलिया की दुर्गा पूजा में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। इस साल भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। मां दुर्गा के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं को मिलेगा आध्यात्मिक अनुभव। महालय के साथ दुर्गोत्सव का उत्साह भी बढ़ा। मां दुर्गा के स्वागत को तैयार है पुरुलिया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन के बाद श्रद्धालु करेंगे मां दुर्गा के दर्शन। कल 11 अक्टूबर से शुरू होगा शक्ति का महापर्व। कलश स्थापना के साथ पूजा का होगा शुभारंभ। मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान गजवाहन पर होगा। इस साल शारदीय नवरात्र 10 के बजाय 11 दिनों का 21 अक्टूबर को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी। नवरात्र के अवसर पर तमिलनाडु के मदुरै में पारंपरिक गोलू डॉल्स की नुमाइश। देवी देवताओं से लेकर ऐतिहासिक किरदारों तक की दिख रही है झलक। तमिलनाडु के गोलू डॉल्स में इस बार दिख रही है विकसित भारत की भी झलक। इसरो के स्पेस मिशन पर पेश की गई झांकी। गोलू डॉल्स की नुमाइश में G20 सम्मेलन की भी पेश की गई है झांकी। परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम। मदुरई के इस घर में 4,360 से अधिक पारंपरिक गोलू डॉल्स की नुमाइश। डिस्प्ले में पौराणिक और सांस्कृतिक थीम पर आधारित प्रतिमाएं मौजूद। मदुरई में घरों में गोलू डॉल्स रखकर नवरात्र का पर्व मनाने की है परंपरा। इन सजी हुई गुड़ियों और मूर्तियों को सिडिरमा मंच पर रखकर मनाया जाता है ये पर्व।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाइयों और बहनों, नमस्कार।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं। तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देशभर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां लगभग पूरी, जयपुर में सज रहा है माता रानी का भव्य पंडाल, मूर्तियों को भी दिया जा रहा है अंतिम आकार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में देखी दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा, महालय पर ही होता है सप्तमी अष्टमी नवमी और विसर्जन का अनुष्ठान। तर्पण के साथ पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। कल से अश्विन नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। आदि शक्ति भवानी की उपासना का महापर्व है नवरात्र, जब हम 9 दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। कैसे करनी है भगवती की उपासना, कैसे करनी है कलश की स्थापना, कौन से शुभ मुहूर्त में माँ देवी की स्थापना परम फलदायी होगी, ये सभी आपको हम आज बताने जा रहे हैं।

0: वो ब्रह्मांड की आदिशक्ति, पराशक्ति और सर्वोच्च देवी है। सृष्टि की रचना और संहार करने वाली मूल शक्ति है शक्ति स्वरूपा। माँ जगदम्बा, महिषासुर मर्दिनी और शिव पटरानी है। माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी तेजोमय ऊर्जा को मिलाकर माँ दुर्गा को प्रकट किया था। इन्हीं महादेवी की स्तुति का महापर्व है नवरात्र। नौ देवियों की उपासना का महाउत्सव है नवरात्र। जब माँ दुर्गा की उपासना से सिद्ध होते हैं संकल्प, पूर्ण होती है कामनाएं और विश्व का होता है कल्याण। मार्कंडेय पुराण कहता है कि असुरों के संहार के लिए जगत जननी ने लिया था अवतार।
1: हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में जो वर्णित है तपस्यारत ऋषि मुनियों को शुंभ निशुंभ चंड मुंड तमाम असुर जो है इनके तपस्या में विघ्न बाधा पहुंचाते थे। ऋषि मुनियों ने माँ पराम्बा की आराधना की और माँ पराम्बा ने, माँ जगदम्बा ने मनुष्यों को यह आशीर्वाद दिया था। तब से नवरात्र में यह परंपरा चली आ रही है, क्योंकि यह व्रत उपवास नवरात्रियों तक किया जाता है, इसलिए इसका नाम नवरात्र पड़ा।
0: नवरात्र को भगवती की उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है और इस समय की रात्रि को देवी उपासना की सबसे शुभ रात्रि माना जाता है। नवरात्र का शुभारंभ होने में कुछ ही समय शेष रह गया है। नौ दिन माता की विधिवत उपासना कैसे करनी है, माता के पूजन में किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम आपको अपनी इस खास पेशकश में विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्यों खास रहने वाले हैं इस बार नवरात्र। क्यों खास है आश्विन माह के नवरात्र? ये आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्र है। इस बार माता रानी का आगमन रविवार को हो रहा है। माता इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्र का समापन मंगलवार को माना जा रहा है। इस तिथि पर माता रानी का प्रस्थान घोड़े पर होगा। ज्योतिषी मानते हैं कि ये विश्व में अशांति और तनाव का सूचक है। इस बार ये नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू होगा और समापन दशहरे के साथ 20 अक्टूबर को होगा। नवरात्र में रात्रि की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूजा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है।
1: इस बार जो माता आ रही हैं, रविवार को आ रही हैं, तो रविवार का जो वाहन होता है, वाहन है वो गज है, हाथी है। तो निश्चित रूप से हाथी पर जो है इस बार माता का आगमन हो रहा है, जो बेहद ही शुभ रहने वाला है। इसका फल सुवृष्टि, अच्छी वृष्टि, चारों तरफ सुखमय वातावरण, सुख समृद्धि की वृद्धि, जब माता गज पे आती है तो ऐसा फल देश समाज को मिलता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस बार तिथियों की विशेष स्थिति के कारण शारदीय नवरात्र 10 दिन के होंगे। 11 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री का पूजन होगा। 12 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाएगी। 13 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की आराधना का विधान बताया गया है। 14 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा सम्पन्न होगी। 15 अक्टूबर को माँ स्कंद माता से वरदान पाने की तिथि है। 16 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। इस बार नवरात्र में माँ कालरात्रि के पूजन की दो तिथियां हैं। 17 अक्टूबर को सप्तमी तिथि पूरे दिन रहेगी। 18 अक्टूबर को सूर्योदय के समय भी सप्तमी तिथि विद्यमान है, जिसका समापन सुबह 10:53 पर हो रहा है। 19 अक्टूबर को माँ महागौरी के साथ ही सिद्धिदात्री की उपासना की जाएगी। नवमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 12:27 तक रहेगी। नवरात्र के 9 दिन व्रत रहने वाले 12:27 से पहले ही माँ सिद्धिदात्री का पूजन और हवन पूर्ण कर लें। इसके बाद विजयादशमी का पूजन होगा। शाम को भारत में जगह जगह रावण दहन किया जाएगा।
1: इस बार के नवरात्र में अष्टमी तिथि की अभिवृद्धि है, लेकिन नवरात्र 9 दिन का ही है। कारण 19 अक्टूबर को सुबह 9:35 तक नवमी लग रही है, जिससे हवन इत्यादि होगा 9:35 तक कर लेना चाहिए। अर्थात 20 अक्टूबर को नवरात्र व्रत की पारणा तथा विजयादशमी अपराह्न काल में मनाई जाएगी।
0: माना जाता है कि नवरात्र में भगवती की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शारदीय नवरात्र में देवी की उपासना का फल अमोघ होता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें नवरात्र व्रत की तैयारी। नवरात्र की शुरुआत के पहले पूरे घर की साफ सफाई करें। गंगा जल की बूंदों को घर में छिड़क दें। घर के पूजा स्थान पर देवी के चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। एक कलश, मिट्टी के बड़े दीपक, आम के पत्ते और जौ की व्यवस्था करें। आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार और तोरण लगाएं। मंत्र जाप के लिए लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला रखें। ये नवरात्र की शुरुआती तैयारियां हैं। आगे चलकर सभी 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की विधि भी अलग होगी और हम आपको देवी के हर रूप की उत्तम उपासना विधि बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं नवरात्र में पूजन की सामान्य विधि। अगर आप कुछ विशेष नहीं भी कर पाते तो नवरात्र पूजन में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नवरात्र में पूजा कैसे करें? नवरात्र में पूरे 9 दिन सुबह शाम दोनों समय पूजा करें। दोनों समय मंत्र का जाप करें और आरती करें। अपनी जरूरत के अनुसार किसी एक मंत्र का 9 दिन जाप करें। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे उत्तम रहेगा। अलग अलग दिन अलग अलग प्रसाद अर्पित करें या दो दो लौंग रोज अर्पित करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नवरात्र में परम फलकारी है दुर्गा सप्तशती का पाठ। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ माता का वरदान ही है जो आपकी सभी बाधाएं दूर करता है।
1: क्योंकि उन्होंने मार्कंडेय पुराण में इस बात को कहा है कि जो लोग आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर आश्विन नवमी तक मेरा दर्शन पूजन अर्चन वंदन दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उन सभी साधकों को सभी प्रकार की समस्याओं से मैं मुक्ति दिलाऊंगी। खासकर शत्रु बाधा, पुत्र बाधा, किसी भी ढंग की बाधा हो तो निश्चित रूपेण इस दिन माता की आराधना दुर्गा सप्तशती का पाठ करके करने से निश्चित लाभ होता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जो भी साधक पूरे 9 दिन उपवास, मंत्र जाप, ध्यान, हवन और सात्विकता से माता की आराधना करते हैं तो इससे माँ दुर्गा आपके सभी बाधाओं को दूर कर देती हैं। आपका तन मन एक दिव्य अनुभूति से भर जाता है। खुद सुनिए क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: माता शैलपुत्री का दर्शन पूजन करने से अधिष्ठान चक्र जागृत होता है, मन की शांति मिलती है। जिन लोगों का मन में अशांति पैदा हो जाती हो या मन एकाग्र न हो, स्वभाव में उग्रता हो, कर्म क्षेत्र में दिक्कत आ रही हो, ऐसे लोगों को इस दिन माँ शैलपुत्री का दर्शन पूजन करना चाहिए। उनके मंत्र का जप इत्यादि करने से लाभ होता है।
0: आगे हम आपको नवरात्र में कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में बताएंगे। साथ ही जानेंगे कैसे करनी है माँ शैलपुत्री की पूजा। बने रहिए हमारे साथ। नवरात्र में कलश स्थापना का महत्व सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आज हम आपको कलश स्थापना के सबसे शुभ मुहूर्त और स्थापना के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप सही ढंग से कलश स्थापित करके देवी की विशेष कृपा के भागी बन सकते हैं।

0: भक्तों के पूरन करने का माता को संगला रहे हैं गजराज। आपके दुख दर्द करने दूर माँ पारंबा कृपा लुटाएंगी भरपूर। बस कुछ पहर बाद ही आगमन होगा ब्रह्मांड की आदि शक्ति का, जो हर कष्ट से आपको दिलाएंगी मुक्ति। तो विधिवत कीजिए विश्व शक्ति की आराधना, जगदम्बा पूर्ण करेंगी आपकी सर्व कामना। देवी की उपासना की महानवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना के साथ होता है, लेकिन इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो देखिए इस नवरात्र पर क्या होगा कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त, और पंचांग से कौन सी जानकारी निकाल कर दे रहे हैं ज्योतिष के जानकार।
1: घट स्थापन के लिए प्रमुख समय जो होगा प्रातः 10:51 से लेके दिन में 1:09 तक होगा। इस समय काल में, इस समय अवधि में घट स्थापन करें। घट स्थापन करने के बाद बंधनवार से सुशोभित करें, फिर माता पराम्बा का 5:50, 16:50 या 10:50 पूजन अर्चन वंदन करें। माँ की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, जिन लोगों को इतना न कर पावे उन लोगों को माँ का नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें।
0: कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को रात 9:19 से हो रहा है। प्रतिपदा तिथि का समापन 11 अक्टूबर रात 9:30 पर किया जा रहा है। उदय तिथि को मानते हुए कलश स्थापना या घट स्थापना 11 अक्टूबर को करें। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से लेकर 10:26 तक होगा। इस अवधि में किसी कारणवश आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते, तब अभिजीत मुहूर्त में ये कार्य आप पूर्ण करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:51 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। लेकिन ज्योतिष के जानकार बता रहे हैं कि इस बार सुबह घट स्थापना करना शुभ नहीं होगा, क्योंकि इस काल में चित्रा नक्षत्र और वैद्रति योग्य विद्यमान है। जानकार बताते हैं कि इस काल में कल स्थापना करना शुभ नहीं माना गया। सुनिए क्या कहते हैं।
1: घट स्थापन का जो मुहूर्त होगा अभिजिन्न मुहूर्त होगा।
0: कलश की स्थापना कैसे करें? सबसे पहले स्नान करके तन और मन को शुद्ध करें, साथ ही व्रत का संकल्प करें। इसके बाद वेदी वाले स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। फिर एक लकड़ी के पटड़े पर लाल रंग के वस्त्र पर अक्षत रखें। गणेश का पूजन कर कलश की स्थापना करें। कलश में पवित्र जल भरकर सुपारी डालें। फिर चंदन पुष्प और सुगंध द्रव्य कलश में डालें। सिक्का डालकर आम या अशोक के पत्ते रखें। कलश पर रोली से स्वस्तिक या ओम बनाएं। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र बांधें। कलश के मुख को ढक्कन से ढक दें। ढक्कन पर चावल भर दें। एक नारियल पर चुनरी लपेट कर रक्षा सूत्र से बांधें। नारियल को कलश के ढक्कन पर रखकर सभी देवताओं का आह्वान करें। अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करें। तो आइए जानते हैं कि आखिर नवरात्र के पहले जौ क्यों बोया जाता है और जौ का रंग किस बात का सूचक है। नवरात्र के जौ का महत्व। नवरात्र में बोए गए जौ का रंग हरा या आधा सफेद है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है आपकी सभी परेशानियां जल्द दूर होने वाली है। नवरात्र में बोया गया जौ का रंग काला या पीला होना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्र में बोए गए जौ अगर अच्छे रूप से अंकुरित और विकसित होते हैं तो इसका मतलब कि आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। नवरात्र में रात की साधना का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि रात को प्रकृति शांत हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्र में ग्रहों के अद्भुत योग के कारण ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का संचरण बढ़ जाता है। नवरात्र में पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करें और कौन से महा उपायों से होगा आपका कल्याण। शक्ति की उपासना का महापर्व है नवरात्र। नौ देवियों के गुणगान का उत्सव है नवरात्र। नवरात्र के पहले दिन माँ के शैलपुत्र के स्वरूप को पूजा जाता है। इसी रूप की महिमा बताने के साथ ही हम आपको नवरात्र के पहले दिन से जुड़े महाप्रयोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि देवी उपासना के इन नौ दिनों का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि विधि विधान से की गई माँ की आराधना।

0: कष्ट दूर करेंगी, वो हर दुख हरेंगी, हर कामना पूरी करेगी माँ अम्बे की आराधना। नवरात्र में परम फलकारी है नवदुर्गा के नौ रूपों की साधना। माँ दुर्गा के नौ स्वरूप की उपासना की सबसे शुभ और पावन घड़ी आ चुकी है। नवरात्र की सभी तैयारियों के साथ देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है। जानकारों की माने तो माँ शैलपुत्री की उपासना से आरोग्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है और साथ ही ज्योतिष के बताए कामना पूर्ति के महाप्रयोग किए जाते हैं। तो कैसा है माँ शैलपुत्री का स्वरूप और क्या है उनकी महिमा, चलिए जानते हैं।
1: नव दुर्गा में प्रथम दिन जिनका पूजन होता है वो माता शैलपुत्री का पूजन करने का विधान होता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ कार्य में भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा।
0: नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था, इसी कारण से सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट हुई, भगवान शिव से फिर विवाह किया। धर्मग्रंथ कहते हैं कि माँ की कृपा से जीवन में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है और साधक को जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसा है माँ का अद्भुत स्वरूप।
1: माता का जो वाहन है वो वृषभ है, बैल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल है। माता के प्रसन्न होने से अभय मुद्रा में रहती हैं ये अपने भक्तों पर। इनके नवरात्र के प्रथम दिन इनका पूजन अर्चन करने से ये अभय मुद्रा में रहती हैं, अर्थात जो इनका पूजन अर्चन करता है उसको अभय का वरदान देती हैं।
0: नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री माता का स्वरूप बहुत ही दिव्य है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माता नंदी बैल पर सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि के लिए माँ की पूजा करें। नवरात्र के नौ दिन होगी देवी के नौ स्वरूपों की उपासना। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको माँ शैलपुत्री के पूजन की विधि के बारे में बता रही हूँ। चलिए आपको बताते हैं कि माँ शैलपुत्री की कैसे करनी है विधिवत आराधना। देवी के पहले स्वरूप का पूजन, इस दिन से नौ दिनों का उपवास भी रख सकते हैं और दो दिनों का भी। जो लोग नौ दिनों का उपवास रखते हैं वो दशमी को पारायण कर सकते हैं। जो पहली और अष्टमी का उपवास रखेंगे वो नवमी को पारायण करेंगे। नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों वेला पूजा, आराधना और आरती करनी चाहिए। पूरे 10 दिन खान पान और आचरण में सात्विकता बरतनी चाहिए। माँ शैलपुत्री को आग, मदार, धूप और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। देवी को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए।
1: इनकी पूजा में मूल रूपेण नवान मंत्र से अगर पूजा किया जाए, सफेद रंग का जो है इनको पेड़ा चढ़ाया जाए, गुड़हल की 108 माला इनको अर्पित की जाए तो निश्चित रूपेण माँ शैलपुत्री प्रसन्न होकर साधक को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और आने वाले जीवन में तमाम समस्याओं का निदान स्वयं में हो जाता है।
0: तो देखा आपने कितना पवित्र और शुभ फलदायी है नवरात्रि का पहला दिन। माता के नौ रूपों की पूजा भक्तों के जीवन पर वरदान बनकर बरसेंगी। कहते हैं कि नवरात्र के पूजन और व्रत से भाग्य चमकने लगता है, आपके सभी काम सिद्ध होने लगते हैं। तो आप भी विधि विधान से कीजिए माँ शैलपुत्री की आराधना, भगवती की कृपा से पूर्ण होंगी आपकी सभी मनोकामना।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: देशभर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां लगभग पूरी। जयपुर में सज रहा है माता रानी का भव्य पंडाल, मूर्तियों को भी दिया जा रहा है अंतिम आकार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में देखी दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा, महालय पर ही होता है सप्तमी अष्टमी नवमी और विसर्जन का अनुष्ठान। तर्पण के साथ पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। जोधपुर एयरबेस पर गर्जे लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना का दम, तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हुए शामिल। चीन के मोए शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका इलाका, पतझड़ और सर्दी के अनोखे संगम ने पर्यटकों को लुभाया।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जय माता दी देवी आदि शक्ति की भक्ति, शक्ति और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्र आ पहुंचा है। चारों तरफ मां दुर्गा के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में गूंजते मंत्र और भक्तों का अटूट विश्वास हर तरफ एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहा है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 पवित्र स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इस बार नवरात्र की शुरुआत रविवार 11 अक्टूबर को हो रही है। मान्यता है कि सही समय और शुभ मुहूर्त में की गई कलश स्थापना घर में सुख समृद्धि और शांति लाती है। देवी उपासना का ये महापर्व

आपके जीवन में नया उजाला, नई शक्ति और असीम शांति लेकर आए। आप भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पूरे भाव और नियम से घट स्थापना करें और माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त करें। माँ भगवती आप सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें।

0: आस्था का अनंत आकाश, भक्ति का पावन प्रवाह और आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना का सबसे बड़ा अनुष्ठान। ये केवल दिनों का चक्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के सामने आत्मसमर्पण का महायज्ञ है। माँ की भक्ति, शक्ति और साधना का महापर्व है शारदीय नवरात्र। माँ जगदम्बा जो सृष्टि का सृजन भी है, उसका पोषण भी, और अधर्म का विनाश करने वाली महाकालिका भी, उनकी उपासना का पर्व अब कुछ घंटों ही दूर है। शारदीय नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 पवित्र स्वरूपों की पूजा अर्चना करना सबसे उत्तम माना गया है। इस बार नवरात्र की शुरुआत रविवार 11 अक्टूबर को हो रही है। मान्यता है कि सही समय और शुभ मुहूर्त में की गई कलश स्थापना घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है, लेकिन देवी की उपासना की महानवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना के साथ होता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना आवश्यक है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को रात 9:19 से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि का समापन 11 अक्टूबर रात 9:30 माना जा रहा है। उदया तिथि को मानते हुए कलश स्थापना या घट स्थापना 11 अक्टूबर को करें। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से लेकर 10:26 तक होगा। इस अवधि में किसी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तब अभिजीत मुहूर्त में ये कार्य आप पूर्ण करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:51 से दोपहर 1:09 तक रहेगा।
1: घट स्थापन के लिए प्रमुख समय जो होगा प्रातः 10:51 से लेके दिन में 1:09 तक होगा। इस समय अवधि में घट स्थापन करें। घट स्थापन करने के बाद बंधनवार से सुशोभित करें, फिर माता पराम्बा का 550, 1650 या 1050 पूजन अर्चन वंदन करें। माँ की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, जिन लोगों को इतना न कर पावे उन लोगों को माँ का नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें।
0: शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस वर्ष शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दौरान तिथि का बढ़ना शुभ माना गया है और इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होगी, यानी घरों से लेकर पूजा पंडालों तक 10 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होगी और वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देगी। ये आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि है। इस बार माता रानी का आगमन रविवार को हो रहा है। माता इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि का समापन मंगलवार को माना जा रहा है। इस तिथि पर माता रानी का प्रस्थान घोड़े पर होगा। नवरात्रि का समापन दशहरे पर 20 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है।
1: घट स्थापन का जो मुहूर्त होगा अभिजिन्न मुहूर्त होगा, इस बार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल में ही चित्रा नक्षत्र वैद्युति योग दोनों होगा, जिसके चलते शास्त्र मना करता है चित्रा वैद्युति पुत्र नाशनी, अर्थात चित्रा और वैद्युति में घट स्थापन नहीं करना चाहिए, जिसके लिए दिन में अभिजिन्न मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए।
0: जब जब संसार में अंधकार छाया, जब जब भक्तों ने सच्चे मन से पुकारा, तब तब माँ भगवती अपनी दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट हुई। माँ केवल शक्ति नहीं, माँ करुणा का सागर भी हैं, माँ ममता का आंचल हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली ढाल हैं। लेकिन इस बार माँ के आगमन पर ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन के तमाम कष्टों को खत्म कर देंगे। लगभग 100 साल बाद गज केसरी राजयोग बन रहा है, जो मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला और कुंभ समेत कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायी माना जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में की गई पूजा और साधना का कई गुना फल मिलता है। इसके साथ ही 19 अक्टूबर को विशेष संधि पूजा का अत्यंत अहम महासंयोग बन रहा है। शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व केवल एक तिथि भर नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का उत्सव है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार 11 अक्टूबर से हो रही है और जैसा कि हम जानते हैं कि माँ के आगमन का पहला कदम होता है घट स्थापन, तो पूरे मन, श्रद्धा और सही समय का ध्यान रखकर घट स्थापना करें और माँ जगदम्बा को अपने घर आमंत्रित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जब जब संसार में अंधकार छाया, जब जब भक्तों ने सच्चे मन से माँ को बुलाया, तब तब माँ भगवती अपनी दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट हुई। माँ केवल शक्ति नहीं है, माँ करुणा का सागर है, माँ ममता का आंचल है और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली ढाल है। अब अगले 9 दिनों तक चलने वाला भक्ति का ये महायज्ञ शुरू हो रहा है, जहां हर हृदय के माँ के जयकारों की गूंज होगी। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले 4 दिन हमारे जीवन, मन और आध्यात्मिक चेतना के लिए सबसे खास क्यों माने जाते हैं? माँ शैलपुत्री से लेकर माँ कुष्मांडा तक ये 4 स्वरूप केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि हमारे जीवन के संतुलन और संकल्प का संदेश देते हैं। माता के इन स्वरूपों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को भी सही दिशा दे सकते हैं।

0: माँ दुर्गा के नौ स्वरूप की उपासना की सबसे शुभ और पावन घड़ी आ चुकी है। नवरात्र की सभी तैयारियों के साथ देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी आहुति देने के बाद माता ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए माता शैलपुत्री कहलाई। हालांकि पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम माता सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था, इसी कारण से सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट हुई और भगवान शिव से फिर विवाह किया। माँ शैलपुत्री माता का स्वरूप बेहद ही दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माता नंदी बैल पर सवारी करती हैं, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है।
1: नव दुर्गा में प्रथम दिन जिनका पूजन होता है वो माता शैलपुत्री का पूजन करने का विधान होता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ कार्य में भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा में मूल रूपेण नवान मंत्र से अगर पूजा किया जाए, सफ़ेद रंग का जो है इनको पेड़ा चढ़ाया जाए, गुड़हल की 108 माला इनको अर्पित की जाए, तो निश्चित रूपेण माँ शैलपुत्री प्रसन्न होकर साधक को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और आने वाले जीवन में तमाम समस्याओं का निदान स्वयं में हो जाता है।
0: देवी माँ का दूसरा दिव्य स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा उपासना इन्हीं को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। बिना अन्न जल ग्रहण किए हजारों वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या करने वाली माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में बिना त्याग और संयम के सफलता पाना संभव नहीं। इनकी उपासना से ज्ञान, विद्या, सिद्धि और तप बल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सन्यासी होना चाहता हो और वो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो उनकी योग और कर्म की साधना सफल होती है। मान्यता है कि माता ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। माँ के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए।
2: तपस्या की ओर बढ़ते हैं, हमारे जीवन में संयम होता है, हमारे जीवन में धैर्य होता है, हमारे जीवन में सहनशीलता होती है, तो स्वाभाविक है जब हम मन से स्थिर रहेंगे, हम धैर्यवान रहेंगे, हम प्रगतिवान रहेंगे, हम आशावादी रहेंगे, तो ऐसे में ब्रह्मचारिणी का जो तेज होता है, जो भक्त इनकी आराधना करता है और भगवती के द्वारा जो तेज प्राप्त होता है उस तेज से उसकी बुद्धि निर्मल होती है और जब निर्मल होती है तो नाना प्रकार से वह धनोपार्जन हो, परिवार का उपार्जन हो, जीविकोपार्जन हो, सबके लिए मार्ग प्रशस्त कर लेता है।
0: नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी हैं। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। माँ मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र धारण करती है। धर्म की रक्षा के लिए माँ दसों हाथों में अस्त्र धारण कर दुष्टों का संहार भी करती है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है माँ चंद्र घंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से है। मान्यता है कि माता चंद्र घंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिलती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। नवरात्र के चौथे दिन अवतरित होती हैं माँ कुष्मांडा। मान्यता है कि जब चारों ओर अंधकार था तब माँ ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। माँ के 8वें हाथ में सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार हैं। ज्योतिष में इनका संबंध बुध ग्रह से है। माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि संसार में जितना भी तेज है वो इन्हीं से उत्पन्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अगले 9 दिनों तक चलने वाला ये महा उत्सव केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपनी आत्म चेतना को जगाने का अवसर है। जहां शुरुआती 4 स्वरूपों ने हमें स्थिरता, संयम और साहस सिखाया, वहीं अंतिम 5 स्वरूप हमें विजय, आंतरिक प्रकाश और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ये साधना भक्ति और अंतिम सिद्धि की प्राप्ति का समय माना जाता है। स्कंद माता की वात्स सलमई ममता से लेकर माँ सिद्धिदात्री की अलौकिक शक्तियों तक, आइए देखते हैं नवरात्रि के अंतिम 5 स्वरूपों की महिमा।
4: नवरात्रि का उत्तरार्ध यानी पंचमी से नवमी का समय साधना, भक्ति और अंतिम सिद्धि की प्राप्ति का समय माना जाता है। जहां शुरुआती 4 स्वरूपों में हमें स्थिरता, संयम और साहस सिखाया, वहीं अंतिम 5 स्वरूप हमें विजय, आंतरिक प्रकाश और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। स्कंद माता की वात्सल्यमयी ममता से लेकर माँ सिद्धिदात्री की अलौकिक शक्तियों तक, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में नवरात्रि के अंतिम 5 स्वरूपों की महिमा। 5वां दिन, स्कंद माता। पंचमी तिथि को पूजा होती है माँ स्कंद माता की। कहते हैं इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। देवी के हर स्वरूप की पूजा से आपकी किसी न किसी समस्या का निवारण जरूर होता है। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें ये नाम मिला। 4 भुजाओं वाली देवी की गोद में स्वामी कार्तिकेय बाल रूप में विराजमान है। माता का ये स्वरूप भक्तों को वात्सल्य और संतान सुख प्रदान करता है। इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए करें माँ की पूजा। 6ठा दिन, माँ कात्यायनी। षष्ठी तिथि को पूजी जाती हैं महर्षि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का पूजन आज्ञा चक्र को जागृत करता है, जिससे साधक को सही निर्णय लेने की क्षमता और विजय का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि नवरात्र में देवी की उपासना से शादी विवाह की अड़चने भी दूर हो जाती हैं। महिषासुर का वध करने वाली ये देवी ब्रज की अधिष्ठात्री भी मानी जाती हैं। माँ की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह शीघ्र होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। माँ के शस्त्र तलवार और कमल हैं। 7वां दिन, माँ कालरात्रि। सप्तमी यानी नवरात्र की 7वीं रात महापूजा की रात होती है, जब माँ कालरात्रि का आह्वान किया जाता है। घनी अंधकार सा कृष्ण वर्ण, बिखरे बाल और 3 नेत्र, माँ का ये स्वरूप विकराल है, लेकिन वे भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार लिया था। माँ निरंतर संहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी। तब देवताओं के अनुरोध पर महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने उनकी राह में लेटने की युक्ति लगाई थी, ताकि परमेश्वर को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल रूप में वापस आए। माँ कालरात्रि की महिमा। माँ दुर्गा का ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। माँ के हाथों में खड़ग और कांटा है, माँ का वाहन गधा है। माँ को शुभंकरी भी कहते हैं। माँ कालरात्रि काल, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। आठवां दिन माँ महागौरी। माँ महागौरी नवदुर्गा का आठवां स्वरूप और अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ की महिमा अपार है। मान्यता है दुर्गा अष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना और ध्यान करने से सर्व कल्याण होता है। शंख, चंद्र और कुंद के फूल जैसी श्वेत कांति वाली देवी का यह स्वरूप अत्यंत शांत और गौरवर्ण है। माँ गौरी की महिमा। शिव प्राप्ति के लिए माँ ने की थी कठोर पूजा। कठोर तप से माँ का शरीर काला पड़ गया। शिव दर्शन से माँ का शरीर अत्यंत गौर हो गया, तभी माँ का नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की है और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की कृपा बरसती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये आठों सिद्धियों को देने वाली देवी है। सभी नौ देवियों का संयुक्त रूप है माँ सिद्धिदात्री। इसलिए तो केवल इनकी उपासना करने से सभी नौ देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। यानी केवल महानवमी की भव्य उपासना करके आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन की शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने इन्हीं देवी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी, जिससे उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्ध नारीश्वर कहलाए। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली देवी है। ये कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के नौ दिनों की उपासना का फल मिलता है। नवरात्रि के ये नौ दिन सिर्फ एक त्योहार या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये हमारी आत्मा की यात्रा है। देवी का हर रूप हमारे भीतर बसा है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौट कर वापस आते हैं।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: सिर्फ 7 सेकंड और दुश्मनों का खेल खत्म। झुंड में हो खतरा फिर भी नहीं कोई टेंशन। दुश्मनों को राख करेगी सेना की ज्वाला। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है नवरात्रि की महिमा, क्या है कलश स्थापना का विधान, देवी की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां लगभग पूरी, जयपुर में सज रहा माराता रानी का भव्य पंडाल, मूर्तियों को भी दिया जा रहा है अंतिम आकार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में देखी दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा, महालय पर ही होता है सप्तमी अष्टमी नवमी और विसर्जन का अनुष्ठान। तर्पण के साथ पितृपक्ष का समापन, कोलकाता से हरिद्वार तक आस्था का मेला, पवित्र नदियों में पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे लोग। जोधपुर एयरबेस पे गरजे लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना कदम, तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हुए शामिल। चीन के मोए शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका इलाका, पतझड़ और सर्दी के अनोखे संगम ने पर्यटकों को लुभाया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की गूंज के साथ ही शहर शहर में धर्म भक्ति और संस्कृति का महापर्व यानी कि रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है। मन जो है वो सज चुके हैं, जयकारों से वातावरण गूंज रहा है और जगह जगह जीवंत हो रही है प्रभु श्री राम की वो पावन गाथा जो हमें सत्य धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाती है। इस बार रामलीला के मंच पर क्या कुछ खास होने वाला है, देखिए, न केवल दिग्गज कलाकार रामायण के किरदारों में नजर आने वाले हैं, बल्कि रामायण के एक एक प्रसंग को आधुनिक तकनीक और भव्य सेट के जरिए बेहद सजीव रूप में पेश किया जा रहा है। तो चलिए, ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में सजे इन रामलीला मंचों के खूबसूरत माहौल की एक झलक और बताते हैं कि इस बार रामलीला में रामकथा को किस तरह से कुछ खास तरीके से दिखाया जा रहा है।
4: नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही एक बार फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की त्रेता युग की अमर कहानी लोगों के सामने आ रही है। देश के कोने कोने में तमाम मंचों पर एक बार फिर से जीवंत हो रही है प्रभु श्री राम की पावन गाथा, जिसका इंतजार लोगों को हर साल बेसब्री से रहता है। इसी कड़ी में इस बार फिर से राजधानी दिल्ली में अयोध्या की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का शानदार आयोजन हो रहा है। इसमें अयोध्या के राम के नाम से हर दिन सिर्फ 3 घंटे में संपूर्ण राम कथा की प्रस्तुति होगी। खास बात ये है कि इस दौरान हर दिन की प्रस्तुति अपने आप में विशेष होगी, क्योंकि जाने माने एक्टर रवि किशन, रजा मुराद, बिंदु दारा सिंह और पुनीत इस्सर जैसे कलाकार इसमें हर दिन किसी न किसी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। आयोजकों के अनुसार 11 अक्टूबर को बिंदु दारा सिंह शंकर जी की भूमिका में दिखेंगे, तो 12 अक्टूबर को पुनीत इस्सर परशुराम जी की भूमिका में मंच पर होंगे। वहीं इस दिन मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 केजिया लिज मेजो माँ सीता के किरदार में मंच पर नजर आएंगी, जबकि 19 अक्टूबर को अभिनेता और सांसद रवि किशन प्रभु श्री राम के रूप में मंच पर उतरेंगे। वहीं 18, 19 और 20 अक्टूबर को प्रसिद्ध एक्टर रजा मुराद को कुंभकर्ण के रूप में देखने का मौका दर्शकों को मिलेगा। इस रामलीला में अरुण बख्शी रावण और अवतार गिल मेघनाथ की भूमिका में होंगे। दिल्ली में रामनवमी अयोध्या की रामलीला का ये 8वां संस्करण है। बताया जा रहा है कि पिछले साल लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने इस रामलीला को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यमों से देखा था। इस बार दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में माओलंकर हॉल में अयोध्या की रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दिल्ली कैंट की प्रसिद्ध श्री रघुनंदन लीला समिति की ओर से इस इलाके में राम कथा का भव्य मंचन होने जा रहा है। रामलीला को और आकर्षक बनाने के लिए इस बार AI तकनीक का विशेष प्रयोग किया जाएगा, जिससे प्रमुख दृश्य जीवंत नजर आएंगे। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में 1954 से रामलीला का मंचन हो रहा है। वहीं दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी रामलीला के मंच सज गए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अंबाला की। रामकथा मंचन के श्री गणेश से पहले यहां गजानन के पूजन का शंखनाद हुआ। गजानन की वंदना के साथ ही अंबाला के तोपखाना बाजार में रामलीला का औपचारिक शुभारंभ हो गया।
5: मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब भगवान राम के चरित्र को यहां पर उजागर किया जाता है, ताकि आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये पता लग सके कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू सनातन क्या है, और उनके बारे में जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, उनके क्या करैक्टर थे, उनकी उनके करैक्टर से लोग सीखें और अपनी जिंदगी को उन्नत करें।
4: अंबाला में रामलीला के पहले दिन यहां जय विजय प्रसंग का मंचन किया गया। सीन में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और उनके द्वारपाल जय विजय से जुड़ी कथा को साकार किया गया। अंबाला की तोपखाना बाजार की रामलीला की एक बेहद खास बात है, वो ये कि रामलीला के लिए यहाँ कभी कोई प्रोफेशनल हायर नहीं किया जाता। यहाँ रामलीला मंचन के लिए लगभग 3 दर्जन लोगों की टीम है। टीम के सभी सदस्य और स्थानीय लोग रामलीला से जुड़े हर काम में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं।
6: हर आदमी निस्वार्थ होकर भगवान राम के इस चरित्र का मंचन जो है तोपखाना बाजार में हो रहा है हर साल की तरह, और मैं यही कहूंगा आज की जो पीढ़ी है, जो आज के हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, उनको भगवान राम के आदर्शों से जुड़ना चाहिए और इस मर्यादा पुरुषोत्तम की जो जीवनी है उस पर रहकर, उसको सीखकर, उस पर अमल करना चाहिए।
4: वही मध्य प्रदेश में आगरमालवा जिले के तनोडिया कस्बे में नवरात्र से पहले ही रामलीला की रौनक देखी गई। यहाँ पर रामलीला की अलग ही परंपरा है। यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर श्री राम के राज्य अभिषेक के साथ समापन होता है। अहम बात यह है कि स्थानीय लोग ही इसमें भूमिकाएं भी निभाते हैं।
7: मैं पिछले 22 वर्षों से इस सनातन का रामाभूत और इससे पहले 10 वर्षों तक मैं लेगलान का रोल करता था। 2005 से लगा करते अनुभव कर रहा हूँ।
8: यहाँ पर सभी कलाकार निशुल्क सेवा देते हैं और कई पीढ़ियों मतलब चली आ रही है और युवाओं निशुल्क सेवा दे रहे हैं, और हमारी ये कामना है कि ये धर्म का कार्य, सनातन धर्म का कार्य हमारे क्षेत्र में हमेशा चलता रहे, ऐसी मेरी कामना है।
4: आगरमालवा में इस रामलीला का आयोजन 1951 से यानी पिछले 75 सालों से हो रहा है। स्थानीय लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि हर साल रामलीला के इन मंचों पर सिर्फ अभिनय और मनोरंजन नहीं हो रहा, बल्कि सदियों पुरानी उस अटूट आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है, जो हर दिल में राम नाम की अलख जगाती है। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब बात दिल्ली के मशहूर रामलीलाओं में शामिल श्री राम भारतीय कला केंद्र के मंचन की। करीब 7 दशक पुरानी परंपरा के तहत श्री राम लीला इस साल अपने पारंपरिक स्वरूप में लौट रही है। खास बात यह है कि करीब 25 साल बाद इसकी प्रस्तुति में पुराने अंदाज, पारंपरिक वेशभूषा और मंच के साथ सज्जा को फिर से जगह दी गई है। आइए आज हम आपको इस ऐतिहासिक रामलीला के उन किरदारों से मिलवाते हैं जो वर्षों से न सिर्फ रामलीला से जुड़े हुए हैं बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इसे आत्मसात भी कर लिया है।

0: शारदीय नवरात्र के पावन मौके पर रामलीला मंचन की परंपरा सदियों पुरानी है। भारतीय संस्कृति और धर्म में रामलीला सिर्फ एक नाट्य मंचन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और संस्कारों का जीवंत रूप और परंपरा है। कई सदी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा रामलीला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श चरित्र संघर्ष पितृभक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय के सर्वोच्च संदेश का संचार भी करती है। रामलीला के दर्शन के साथ उसके मंचन में शामिल कलाकारों के मन को भी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों के दौरान दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कई मशहूर रामलीलाओं का भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिलता है। दिल्ली की मशहूर और भव्य रामलीलाओं में से एक श्री राम भारतीय कला केंद्र की रामलीला भी है, जो अपनी अनूठी शैली के लिए जानी गई है। शास्त्रीय संगीत और नृत्य के जरिए रामलीला के मंचन की परंपरा यहाँ काफी पुरानी है। करीब 7 दशक पुरानी श्री राम रामलीला इस साल अपने पारंपरिक स्वरूप में लौट रही है। खास बात ये कि करीब 25 साल बाद इसकी प्रस्तुति में पुराने अंदाज, पारंपरिक वेशभूषा और मंच सज्जा को फिर से जगह दी गई है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जन्म से लेकर पहले वनवास, फिर लंका विजय और उसके बाद अवधपुरी यानी अयोध्या लौटकर राम राम राज्य की स्थापना तक की कहानी का मंचन है, जो श्री राम भारतीय कला केंद्र की तरफ से फिर होना है। श्री राम रामलीला इस साल अपने 69वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। श्री राम रामलीला से जुड़े किरदारों ने वर्षों के अभियान के दम पर मंचन को आत्मसात कर लिया है।
1: शहर में श्री राम की दस्तक हो चुकी है। जगह जगह रामलीला की तैयारियां जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं। आज हम पहुंचे हैं श्री राम भारतीय कला केंद्र, जहां पर श्री राम जो कि एक रामलीला है उसका लगातार मंचन यहां किया जा रहा है। 69 साल से लगातार आज उसका एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस यहां देखने को मिल रही है। लेकिन इसी प्रैक्टिस के बीच में हम आपको उन तमाम कलाकारों से मिलाएंगे जो राम का रोल प्ले करते हैं, जो सीता का किरदार निभाती हैं, जो रावण बनते हैं, समझते हैं कि उनके लिए इस रोल को करना कितना मुश्किल है या कितना ज़रूरी है और कैसे वो अपने जीवन में रामायण के तमाम कलाकारों को अपने जहन के भीतर बैठा कर रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलवाते हैं आपको तमाम कलाकारों से।
0: गुड न्यूज टुडे की टीम जब बैक स्टेज पहुंची तो वहां कलाकार खुद ही अपना मेकअप करते दिखे। इस दौरान पात्रों ने अपने अपने रोल के अनुसार पोशाक और आभूषण भी धारण किए। गुड न्यूज टुडे की टीम का सबसे पहले सामना हुआ त्याग, पवित्रता, साहस और समर्पण की सर्वोच्च प्रतीक माता सीता का किरदार निभा रही अनुष्वा चौधरी से, जो माँ सीता के किरदार निभाने के लिए अपने मेकअप से जुड़ी बारीकियों का खास ख्याल रखती हैं।
1: अपना मेकअप अपने आप करते हैं, उन्हें उनका रोल बताया जाता है, उस रोल की क्या डिमांड है, कैसा उन्हें दिखना है स्टेज पर, उसके हिसाब से वो खुद अपना मेकअप चूज करती हैं और ऐसा चुनती हैं कि हर बार बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ती हैं।
2: हम लोग मेकअप के द्वारा इसका हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि हम लोग आईब्रोज जो है, जो हमें शोभा जी ने सिखाया है कि आईब्रो को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं ताकि जो पॉजिटिव रोल है वो कितना दूर दर्शकों तक समझ में आए कि दैट इज़ अ पॉजिटिव रोल, और ताकि लिप्स हो।
1: नेगेटिव रोल में कैसे रखते हैं आईब्रोज और पॉजिटिव में कैसे रखते हैं?
2: नेगेटिव रोल में आप देखिए आईब्रो का हम जो चलन है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक आईब्रो ऊपर जाती है, तो हमेशा हम इस तरीके से आईब्रो ड्रॉ करते हैं, और जैसे हम पॉजिटिव रोल करते हैं तो हम उसको यू में बनाते हैं, मतलब इस तरीके से, ताकि वो बहुत ही एक सुंदर और भव्य दिखे।
1: जैसे आपने बनाई है फिलहाल,
2: कोशिश करा है।
1: क्या लिपस्टिक के कलर्स को लेकर कुछ आप लोग चूज करते हो कि ये कलर चूज करना है ताकि बहुत भड़कीला ना लगे? कुछ क्या बिंदी का भी कलर होता है, कुछ फेस पे आप इस तरह की चीज़ें लेकर आते हो, क्या कुछ होता है मेकअप का पूरा?
2: मेकअप से रिलेटेड बोलेंगे तो जैसे अगेन मैं ये बोलूँगी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए हम लोग रेड लिपस्टिक का, जो कि लड़कियों का श्रृंगार ही होता है, और तो हम रेड लिपस्टिक को हम ज़्यादा उसको मानते हैं कि रेड लिपस्टिक को पॉजिटिव रोल में देंगे। और अगर जैसे नेगेटिव रोल, जैसे आप देखेंगे अभी कि केकई जब रोल प्ले करती है तो उसका जो लिपस्टिक का शेड है दैट इज़ डार्क ब्राउन, तो ताकि वो एक नेगेटिव रोल दिखे। तो ये सब हमें बताया गया है, सिखाया गया है और हमने पढ़ा भी है।
0: जहाँ माँ सीता का स्मरण और नाम होता है वहाँ प्रभु श्री राम की पावन उपस्थिति खुद ही मान ली जाती है। धर्म और अध्यात्म में माँ सीता और भगवान राम को एक ही शक्ति का रूप और एक दूसरे का पूरक माना गया है। ऐसे में इन्हें अलग देखा नहीं जाता है। माता सीता के किरदार से मिलने के बाद इस रामलीला में 30 वर्षों से भगवान राम का पात्र निभा रहे कलाकार राजकुमार शर्मा से मुलाकात की बारी आती है।
1: राजकुमार जी मेरे साथ हैं, राम के गेटअप में हैं। पिछले 40 साल से श्री राम भारती कला केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 30 साल से लगातार राम का रोल वो प्ले कर रहे हैं रामलीला में। 30 साल, मुझे लगता है कि आप राम का रोल नहीं प्ले करते होंगे, आपने राम को अपने अंदर समाहित कर लिया होगा।
3: हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वाकई राम समा गए हैं, बट ये कि राम बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बट हमारे डायरेक्टर हैं शोभा दीपक सिंह पद्मश्री, उन्होंने काफ़ी हमें तुलसीदास रामायण और अपना वाल्मीकि रामायण बहुत रटाया है, क्योंकि हमारा जो बेस है वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण के ऊपर है। तो कुछ वर्कशॉप हुई हमारी थिएटर की और कुछ संवाद की हुई कि कैसे आपको अभिनय करना है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे, ये हमारा अभिनय प्रधान है। तो अभिनय के थ्रू हमें मुद्राएं, एक्सप्रेशन, इस पर काफ़ी काम करना पड़ा, जिसके लिए हमें वर्कशॉप देने पड़ी। हमारे गुरुजी, हमारे जितने सीनियर हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमारा हेल्प किया।
1: आपने जो जवाब दिया, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया हूँ, कुछ अगर आप बताएं कि किस सीन में किस तरह की मुद्राएं, भाव भंगिमाएं चाहिए होती हैं, अगर आप हमें करके थोड़ा सा दिखा सकें।
3: हाँ बिल्कुल, जब मैं फर्स्ट टाइम सीता को देखता हूँ, जब प्लकिंग द फ्लावर, जैसे फ्लावर तोड़ रहे, तो मैं पहले ऐसे तोड़ता देता था, गुरु जी कह रहे क्या कर रहे हो, फूल तोड़ने आए हो या काटे ऐसे, फूल तोड़ने में स्लैक फील करो कि सीता नहीं तुम्हारी प्रेमिका है, तुम कैसे देखोगे उसको। तो बहुत सॉफ्ट रखना पड़ता था, पहले मैं ऐसे कर देता, तो मुझे बोले स्थिर रखो। वो फिर एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे करते थोड़ा सा समझिए, अच्छा भी कर रहे हैं हम लोग भगवान की तरफ से।
0: रामलीला में रावण का किरदार सबसे प्रभावशाली होता है, जिसे निभाने के लिए कलाकार को गहरे स्वर, शानदार संवाद, अदायगी और ऊंचे कद काठी की आवश्यकता रहती है। यही वजह है कि कलाकार स्वप्न मजुमदार साल 2014 से रावण का किरदार अदा कर रहे हैं। अपनी दमदार भाव भंगिमा यानी शारीरिक मुद्रा और चेहरे के हाव भाव से ही वो महाज्ञानी रावण के तौर पर संवाद करते हैं। उनके अनुसार रावण का चरित्र बेहद जटिल है, वो जहां एक तरफ बुराइयों का प्रतीक है तो वहीं दूसरी तरफ प्रकांड विद्वान और परम शिव भक्त भी था।
1: रामलीला का सबसे शानदार करेक्टर आप किसे मानते हैं, किसे देखने के लिए आप घर से निकलकर स्टेज के पास तक जाते हैं, तो वो है रावण। बिना रावण रामलीला कुछ भी नहीं है, बिना रावण शायद राम का भी इतना चर्चा नहीं होती। और मेरे साथ साक्षात रावण मौजूद हैं, स्वपन मजूमदार सर इनका नाम है। रावण दिखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है?
4: देखिए, एक तो ये जो अटायर है, जो कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट्स है, वो साउथ से लिया गया है, कथकली कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम इसको बैले स्टाइल में करते हैं, प्योर कथकली मूवमेंट तो नहीं कर पाते, बट हाँ इम्प्लीमेंट जरूर करते हैं कथकली को, फॉर डैट कि इस कॉस्ट्यूम के साथ इनजस्टिस ना हो, फर्स्ट। सेकंड, ये जो स्टाइल है, क्योंकि वो साउथ और जो श्रीलंका है, थोड़ा साउथ की तरफ पड़ता है हमारे, इस जाम खड़े हैं वहाँ से, तो इसलिए हमने वो साउथ इंडियन स्टाइल को इस कैरेक्टर के लिए अडॉप्ट किया है। फॉर डैट कि हमें वो विशाल रूप जो है वो लेने में हमें परेशानी ना हो।
1: नॉर्मल मेकअप तो नहीं लग रहा है?
4: नॉर्मल मेकअप नहीं है, ये बेसिकली काजल है, और जो पेंट है वो हैंडमेड है, वो कभी भी स्किन को खराब नहीं करेगा, ये स्पेशली केरला से मंगवाया गया है।
1: कोई एक्सप्रेशन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कर दें, कि कोई मोमेंट जैसे अभी था कि सुपनखा आती है, कैसे वो आके बताती है कि नाक काट दी है, मेरे साथ ये हुआ है, उस वक्त जो आपके एक्सप्रेशन थे वो कमाल के थे, अगर आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए गप कर दें।
4: हाँ, बेसिकली क्या होता है, वो आती है आकर बोलती है कि वो जो मन ऋषि मुनि रूप में आए हुए हैं, वो आकर मेरा नाक काट दिया। तो पहले वो पूछता है, ये हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले वो पूछता है कि ये कौन है, ये ऋषि मुनि रूप से कौन आया, तो पूछता है कि देखो मेरा नाक काट देगा, इसका नाक काट दिया। जहां बसंत है
0: दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग के ओपन एयर थिएटर में हर शाम श्री राम रामलीला का मंचन होना है। शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ पर यानी 11 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक रोजाना शाम 6:30 पर इसका मंचन होगा। करीब 2 घंटे 15 मिनट की ये रामलीला तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित है। 1957 में इसकी शुरुआत श्री राम भारतीय कला केंद्र की संस्थापक सुमित्रा चरत राम ने की थी। इसके मूल निर्माण में रामधारी सिंह दिनकर, गुरु गोपीनाथ, भगवान दास वर्मा, नरेंद्र शर्मा, डागर ब्रदर्स, राही मासूम रजा, तपस सेन, बीके सावंत, बादल जैसे दिग्गज कलाकारों का योगदान रहा। समय के साथ श्री राम की प्रस्तुति में आधुनिक तकनीक और LED विजुअल्स भी शामिल हो गए, लेकिन इस बार करीब 25 साल बाद इसे फिर से उसके पारंपरिक स्वरूप में ही पेश किया जा रहा है, ताकि लोगों को त्रेतायुग जैसा एहसास और अनुभव मिल पाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा तो की ही जाती है, साथ ही 9 दिनों के दौरान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में राम लीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि नवरात्र तो मां दुर्गा की साधना और आराधना का त्यौहार है, तो इस दौरान राम लीलाओं का आयोजन और रावण वध की परंपरा कब से और कैसे शुरू हो गई? दरअसल पुराणों में वर्णन आता है कि मां सीता के हरण के बाद भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए जगत जननी जगदम्बा की साधना और उपासना की थी। कहते हैं कि राम की साधना और उपासना से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने महाअष्टमी के दिन उन्हें दर्शन दिए और विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया था। भगवान राम को मां दुर्गा की उपासना की प्रेरणा किसने दी और उन्होंने किस स्थान पर मां दुर्गा की साधना और उपासना की, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: नवरात्रि शक्ति की उपासना का महापर्व है। इन 9 दिनों के दौरान सनातन धर्म की अनुयायी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार देवी के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं और व्रत उपवास मंत्र जाप और तरह तरह से देवी पूजन के जरिए मन की शुद्धि की साधना करते हैं। अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हैं। इन्हीं 9 दिनों के दौरान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में रामलीला का आयोजन किया जाता है। अब सवाल ये है कि शक्ति के उपासक नवरात्र के दौरान रामलीला का मंचन क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि शारदीय नवरात्रि का सबसे प्रमुख आधार महिषासुर नामक राक्षस का वध है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने स्वर्ग और धरती पर कोहराम मचा रखा था। महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर उसका वध करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकीकृत कर माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध के बाद माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में विख्यात हुई। यही वजह है कि शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को पूरी दुनिया में विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। साफ है कि नवरात्र का महात्म्य माँ दुर्गा की देवताओं की एकीकृत शक्ति के रूप में निहित है। माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर राक्षस के वध में निहित है। अब आते हैं उस सवाल पर कि नवरात्र के दौरान रामलीला का मंचन आखिर क्यों किया जाता है। इसका जवाब देवी भागवत के 26वें से शुरू होकर 30वें अध्याय तक में मिलता है। देवी भागवत के 26वें से 30वें अध्याय में कथा आती है। वनवास के दौरान सीता हरण के बाद भगवान राम अत्यंत व्यथित रहते थे। भगवान राम को व्यथित देखकर नारद जी उनके पास आए और उन्होंने भगवान राम को नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की साधना और उपासना की सलाह दी। नारद जी की सलाह पर भगवान राम ने अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद व्रत पूजा का संकल्प लिया। उसके बाद उन्होंने किष्किंधा पर्वत पर वेदी बनाकर कलश स्थापना की और देवी
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
2: देशभर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां लगभग पूरी, जयपुर में सज रहा है माता रानी का भव्य पंडाल, मूर्तियों को भी दिया जा रहा है अंतिम आकार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में देखी दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा, महालय पर ही होता है सप्तमी अष्टमी नवमी और विसर्जन का अनुष्ठान। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। जोधपुर एयरबेस पर गरजे लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना का दमखम, तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हुए शामिल। चीन के मोहे शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका इलाका, पतझड़ और सर्दी के अनोखे संगम ने पर्यटकों को लुभाया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जंग के मैदान में जब से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तब से इस हवाई खतरे ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली हैं। ये साइलेंट किलर की तरह आते हैं और बड़ी तबाही मचा देते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 100 या 500 ड्रोन्स का झुंड किसी सैन्य ठिकाने, एयरबेस या रिफाइनरी की तरफ भेज दे, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। एक रेडार और मिसाइल बैटरी एक बार में सिर्फ सीमित संख्या में ही टारगेट्स को ट्रैक और फायर कर सकती है, और जब ड्रोन की तादाद मिसाइल्स की क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो एयर डिफेंस सैचुरेट हो जाता है और बचे हुए ड्रोन रक्षा कवच को भेदकर तबाही मचा देते हैं। ऐसे में ड्रोन स्वार्म खतरे की कार्ड तैयार करना बेहद जरूरी है, और भारत भी बखूबी समझता है कि इस खतरे से निपटने के लिए मल्टी लेवल तैयारी कितनी जरूरी है।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। भारत की निजी रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने अपने ज्वाला माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम के तहत 2 सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण 3 अक्टूबर 2026 को किया गया। ज्वाला भारत का पहला स्वदेशी निजी माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम है, जो हार्ड किल काउंटर यूएस यानी कि ड्रोन को तबाह करने वाला सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।
0: ज्वाला MK1 एक स्वदेशी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर माइक्रो मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन स्वार्म को हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी ढंग से हमला कर सकती है। इंगेजमेंट एल्टीट्यूड यानी मारक ऊंचाई की बात करें तो इसका मारक दायरा न्यूनतम 50 मीटर से लेकर मैक्सिमम 5000 मीटर की ऊंचाई तक है। मैक्सिमम दूरी पर भी इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 2 मीटर से कम है, यानी ये अपने लक्ष्य के 2 मीटर के दायरे के अंदर अचूक वार कर सकती है। टारगेट डिटेक्ट होने से लेकर मिसाइल लॉन्च होने तक का रिएक्शन टाइम भी इसका 7 सेकंड से कम है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि ये अगर दुश्मन का ड्रोन जमीन के पास बहुत लो अल्टीट्यूड पे भी आ रहा है, 50 मीटर की दूरी पर, तो भी उसको ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन का ड्रोन अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तब भी ज्वाला के जद्दोजहद के अंदर रहता है। इसका

0: जो फायरिंग एनवेलप है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन का जो ड्रोन है अगर वो मल्टीपल वेव्स में आ रहा है तो जो जमीन पर जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोलर है, उसको तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है और एक एआई लॉगरिथम से जो लॉन्चर हैं या जो कमांडर है वो अलग अलग ड्रोन्स को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग झुंड में एंगेज कर सकता है.
1: थ्रेट डिटेक्टेड, टारगेट लॉक्ड, द मिसाइल इज अवे.
2: ज्वाला MK-1 मिसाइल में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है. ये लॉन्च के समय मिसाइल को तुरंत तेज रफ्तार देता है. इसमें 0.5 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन का प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है. ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से लेस है. इसका मतलब ये कि ड्रोन से सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती. ड्रोन के बेहद करीब पहुंचते ही ये ब्लास्ट हो जाता है और धातु के घातक टुकड़ों की बौछार से ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है.
0: ज्वाला Mark-1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स में किसी भी मिसाइल सिस्टम की तरह से दो तरह की फ्यूज लगे हैं. एक तो है इम्पैक्ट फ्यूज, यानी जब ये टारगेट से टकराता है तो फ्यूज ऑपरेशनलाइज हो जाता है और एक्टिवेट होकर जो मेन चार्ज है वॉरहेड को एक्सप्लोड कर देता है. दूसरा ये है कि यह अगर दुश्मन के ड्रोन को महज 1 या 2 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है तो इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है. ये एक फ्यूज होता है जिसमें से कि लगातार रेडियो वेव्स निकलती हैं और ड्रोन से टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसको भांप लेता है और ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो एक्टिवेट हो जाता है, फट जाता है.
2: ज्वाला को एक माइक्रो मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टारगेटेड ड्रोन को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे ट्रक माउंटेड मल्टी कैनिस्टर लॉन्चर से दागा जा सकता है जिसे सेना के 4x4 व्हीकल पर आसानी से तैनात किया जा सकता है.
3: ज्वाला MK-1 मिसाइल अकेले काम नहीं करती बल्कि IG डिफेंस के AI संचालित ग्रिड डिफेंड बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है. ये नेटवर्क कई सेंसरों से रडार और डेटा फ्यूजन का उपयोग करके खतरों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करता है.
2: IG डिफेंस का AI कंट्रोल्ड ग्रिड डिफेंड बैटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और इसके साथ इंटीग्रेटेड ज्वाला मिसाइल सिस्टम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने के लिए उन्नत एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस हैं. ग्रिड डिफेंड एक AI इनेबल बैटल मैनेजमेंट और कमांड नेटवर्क है. इस प्लेटफॉर्म को आधुनिक युद्ध प्रणालियों और एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है. मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशंस और हाई लेवल के एनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स का इस्तेमाल करता है ताकि डेटा ट्रांसफर के दौरान हैकिंग या इंटरसेप्शन का कोई खतरा न रहे. ये सिस्टम अलग अलग सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक साथ जोड़कर रियल टाइम में स्ट्राइक को कमांड देता है. इसे सेंसर टू शूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं. इसका फायदा ये होता है कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स इस नेटवर्क में सेंध नहीं लगा सकते और न ही मिसाइल के कमांड सिग्नल को ब्लॉक या हैक कर सकते हैं.
0: इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए यानी लॉन्च के बाद टारगेट की तरफ अग्रसर होने के लिए एक एनक्रिप्टेड कमांड गाइडेड गाइडेंस सिस्टम है. यानी इसको लगातार रेडियो सिग्नल के द्वारा दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं. ये जो रेडियो लिंक है ये टोटली एंटी जैम प्रूफ है, यानी दुश्मन इस लिंक के अंदर हैक करके घुस नहीं सकता, दुश्मन इस कमांड गाइडेंस लिंक को जैम नहीं कर सकता.
2: ग्रिड डिफेंड सिर्फ एक ही रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडार पर निर्भर नहीं है. ये मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है. अगर दुश्मन किसी रेडार फ्रिक्वेंसी को जैम करने की कोशिश करता है तो ग्रिड तुरंत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के इनपुट पर स्विच कर जाता है। इससे सिस्टम बगैर रुके काम करता रहता है।
3: आधुनिक युद्धों में अक्सर जीपीएस या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि मिसाइलें रास्ता भटक जाए। ज्वाला मिसाइल और इसके नेटवर्क को जैम रेसिस्टेंट नेविगेशन आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया गया है। अगर दुश्मन मेन सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी को जैम भी कर देता है तब भी यह सिस्टम वैकल्पिक वेव बैंड और इंटरनल गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को सटीकता से ट्रैक करना जारी रखता है।
2: आज के युद्ध में ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम लागत और बड़ी संख्या है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेजता है तो हर एक ड्रोन के खिलाफ बहुत महंगी एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल करना आर्थिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इसे कॉस्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम कहा जा सकता है। दुश्मन को पता है कि उनके स्वार्म ड्रोन में से अगर आधे से ज्यादा ड्रोन का नुकसान हो भी गया तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही इनकी लागत इतनी कम होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन का एक सुसाइड या FPV ड्रोन महज 500 से $2,000 यानी करीब 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस छोटे से ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है उसकी कीमत $1 मिलियन से $3 मिलियन यानी करीब 9.6 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक होती है। युद्ध के लंबा खींचने पर लागत में इतना बड़ा अंतर किसी भी देश पर भारी पड़ सकता है। वो युद्ध में पिछड़ सकता है या हार की दहलीज तक जा सकता है।
3: दुश्मन सस्ते ड्रोनों की बाढ़ लाकर असल में बड़े देशों को कीमती मिसाइल भंडार को जानबूझकर खाली करवाता है ताकि युद्ध में उसे बढ़त मिल सके। जब एक बार महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया तब दुश्मन अपने असली और घातक हथियार जैसे कि उसके ताकतवर फाइटर जेट या भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है, क्योंकि उस समय देश का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका होता है।
2: भारत के पास दुश्मन के ड्रोन और स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर मौजूद है। ये सिस्टम बॉर्डर, सैन्य ठिकानों से लेकर शहरी और VVIP सुरक्षा तक तीन प्रमुख स्तर यानी डिटेक्शन, सॉफ्ट किल, हार्ड किल पर काम करती है। हाल ही में भारत ने एक और स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का एक और ट्रायल किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपने अंतिम परीक्षण में पहुँच गया है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन लॉयटरिंग, मुनिशन और खासकर स्वार्म अटैक को खत्म करने के लिए बनाई गई है।
3: सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड भार्गवास्त्र को तैयार कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C41 से भी जोड़ा जा सकता है। C41 का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस।
2: भार्गवास स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जो महज 10 सेकंड के अंदर 64 माइक्रो रॉकेट्स दागकर दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को नेस्तनाबूद कर सकता है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि ये एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र को भारत की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढंग से काम करता है। ये क्षमता इसे सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए बेस्ट बनाती है और ये कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते बल्कि एक बड़े दायरे को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम हैं। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है, जो ड्रोन के झुंड को बगैर नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये कि इसे भारतीय सेना की गाड़ियों पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी इसे आसानी से किसी भी संवेदनशील सीमा पर तैनात किया जा सकता है।
0: भारत में निर्मित भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिनिएचर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें दो तरह की मिसाइलें होंगी, एक तो वह मिसाइल जो कि अनगाइडेड होंगी, इनको स्वार्म ड्रोन यानी दुश्मन अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेजे उनकी तरफ लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये मिसाइलें दुश्मन के स्वार्म ड्रोन की तरफ जाकर जब फटेंगी तो 20 मीटर की दूरी तक इसके जो टुकड़े होंगे, शार्पनल होंगे, वो दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर देंगे।
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियारों और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और किल कर सके।
3: सरहद पार से आने वाले ड्रोन को खाक में मिलाने के लिए भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को एक खास एंटी ड्रोन गन भी मिल चुकी है। नाम है वज्रा शॉट। इस गन को चेन्नई की बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने बनाया है। ये बेहद हल्की और हाथ से चलाई जाने वाली गन है, जिसे सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और ईरान के बीच झड़प, ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम जारी है और कई स्टार्टअप इस पर काम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ डिटेक्टर की जोड़ी है जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है, जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है, साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे तक ऑपरेट किया जा सकता है।
0: वज्रा शॉट भारत में डिजाइन डेवलप्ड और निर्मित एक हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन है। इसको दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल एक राइफल को दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रिगर दबाने पर इसमें से एक जैमिंग तरंगे निकलती हैं, यानी रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो कि दुश्मन के ड्रोन और उसके कमांड सेंटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी में अपलिंक और डाउनलिंक है, यानी जो आदेश दिए जा रहे हैं और जो आदेश लिए जा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है, जैम कर देता है।
2: सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, यानी D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 3 सालों में विकसित किया।
3: UAV काफी नीचे उड़ान भरते हैं, जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट करना चुनौती है तो इन्हें रोकना और तबाह करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम से ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा, साथ ही तबाह भी किया जा सकेगा।
2: डीआरडीओ के अनुसार D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये दो तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रेडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब किसी भी ड्रोन को जाम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना होता है। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन, चौथा ड्रोन किल सिस्टम, जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है, और पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे स्वार्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वार्म ड्रोन ऑपरेट होते हैं।
0: भारत में फिलहाल बहुत सारी कंपनियां ड्रोन को गिराने के लिए सॉफ्ट किल या हार्ड किल ऑप्शन पर काम कर रही हैं। सॉफ्ट किल का मतलब है कि दुश्मन का ड्रोन आया और दुश्मन के जो ड्रोन को दुश्मन का कमांड सेंटर जो अपलिंक से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको लिंक को जैम कर देना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन का जो अपलिंक है, रेडियो कमांड सिस्टम है, उसको हैक कर सकें, उसकी फ्रीक्वेंसी को जांच कर सकें और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन के कमांड गाइडेंस सिस्टम को जैम कर देना। हार्ड किल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होगा जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को, समझिए एक माइक्रो या मिनी मिसाइल को, दुश्मन की ड्रोन की तरफ लॉन्च किया जाएगा। वो जाके दुश्मन के ड्रोन से टकराएगा, उसका इंपैक्ट फ्यूज जो है टच करने पर एक्टिवेट हो जाएगा, वॉरहेड फट जाएगा।
2: ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रेडार के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रेडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किया जा रहा है, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।

0: दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं।
1: ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर, दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो हैं, ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है।
0: डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है जिसे आम भाषा में लेजर वेपन कहते हैं। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइटवेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था।
2: DRDO यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को बेकार कर देता है।

0: दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत ही छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है।
1: वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर न शोहरत का गुरु, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
7: की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन अरे यानी दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स को खत्म करने से अहम भूमिका निभाई थी। आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। इसका काम लो लेवल एयरस्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना है।
7: आकाश तीर रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाता है जो रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। आकाश तीर एयरफोर्स के साथ मिलकर 4-लेयर की सिक्योरिटी पर काम करता है जिसका दायरा करीब 200 किलोमीटर तक है। सभी लेयर को जोड़कर ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार करता है। आकाश तीर के जरिए एक ही जगह पर अलग अलग तरह के रेडार की पूरी पिक्चर नजर आती है। आर्मी के एयर डिफेंस के पास जो रेडार हैं और एयरफोर्स के पास जो मीडियम और हाई पावर रेडार हैं, वो सब इंटीग्रेट होकर एक कंप्लीट पिक्चर दे रहे हैं। इससे हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूती मिलती है।
5: आकाश तीर वेपन सिस्टम जो कि असल में एक एआई ड्रिवन सिस्टम है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स जो डिप्लॉयड हैं टैक्टिकल बैटल एरिया में, उन सबके अलग अलग कमांडर्स के बीच में डेटा शेयरिंग की जाती है। यानी टारगेट अगर एक कमांडर के एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरे कमांडर के एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर जाता है या ट्रांजिट कर जाता है, तो आकाश तीर जो है ऑटोमेटिकली वेपन फायरिंग सॉल्यूशन, यानी कौन सा मिसाइल सिस्टम किस रेजिमेंट से, किस स्क्वाड्रन से, किस तरफ कब फायर करेगा, ताकि दुश्मन का जो ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है या अटैक एयरक्राफ्ट है, उसको सक्सेसफुली एंगेज किया जा सके।
7: एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में आकाश तीर अलग अलग क्षेत्रों में लगे एयर डिफेंस रिस्पांस टीम के बीच कोऑर्डिनेट करने में सक्षम है। ये नेत्रा और फाल्कन जैसी हवाई वार्निंग सिस्टम के साथ ग्राउंड बेस्ड मिसाइल यूनिट्स को जोड़ता है। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत सभी एयर डिफेंस सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। कुल 455 सिस्टम की दरकार है। अब तक करीब 275 सिस्टम डिलीवर हो गए हैं। इंडियन आर्मी के हर कोर लेवल पर आकाश तीर का इंडक्शन हो गया है। अगले साल के आखिर तक हर ब्रिगेड और यूनिट लेवल पर भी ये पूरा हो जाएगा। दरअसल आकाश तीर को भविष्य के युद्धों के लिए विशेष तौर पर डेवलप किया गया है। अब आकाश तीर काम कैसे करता है ये भी जान लीजिए। रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट में आकाश तीर सिस्टम, रेडार स्टेशन, मिसाइल यूनिट्स और एयर सेंसर जैसे अलग अलग सोर्स से रियल टाइम डेटा लेता है और उन्हें सिंगल लाइव एयर सिचुएशन पिक्चर में बदल देता है। कुछ ही सेकंड में डिफेंस यूनिट के पास दुश्मन की ओर से आ रहे खतरे की क्लियर इमेज होती है, फिर इसे वेपन सिस्टम हवा में ही मार गिराता है। वही इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है एक ही समय में अलग अलग मशीन्स के साथ काम करना। आकाश तीर एक ही वक्त में सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर सिस्टम और स्वदेशी रडार नेटवर्क जैसे रोहिणी और अरुद्रा के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। ये सभी यूनिट्स एक साथ डेटा कलेक्ट कर टारगेट की जानकारी मिसाइल सिस्टम या इंटरसेप्ट यूनिट को देते हैं। भविष्य के खतरों को देखते हुए आकाश तीर को खास तौर पर डेवलप किया गया है। इसके कमांड सिस्टम में एआई की मदद से भविष्य के खतरे का एनालिसिस, दुश्मन के टारगेट का रूट मैपिंग और उसके मुताबिक ऑटोमेटिक हथियार का चुनाव ये पहले ही कर लेता है।

0: यह प्रणाली इंडियन एयरफोर्स की जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट की गई है। यानी अगर दुश्मन का टारगेट एक रेडार का जो एनवलप है उसको छोड़कर दूसरे रेडार के एनवलप में घुस जाता है और दूसरे रेडार के एनवलप से निकलकर तीसरे रेडार के एनवलप में अग्रसर होता है, तो यह जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली फायर सॉल्यूशन जो है और ट्रैकिंग सॉल्यूशन जो है वो पहले रेडार के कमांडर से दूसरे रेडार के कमांडर को और दूसरे रेडार के कमांडर से तीसरे रेडार के कमांडर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है।
1: वाहन पर रखे जाने के कारण आकाश तीर बेहद गतिशील रहता है और इसलिए दुर्गम और सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में तैनाती के लिए ये सर्वोत्तम है।
2: आकाश तीर एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो इन हथियारों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इनमें डायरेक्ट कोई वेपन सिस्टम शामिल नहीं होता। ये मिसाइल या फिर बंदूक जैसी एयर डिफेंस एसेट्स का मैनेज और कंट्रोल करता है लेकिन सीधे टारगेट पर हमला नहीं करता।
1: स्वदेशी आकाश तीर की पूरी कार्यप्रणाली को समझने के लिए हम इसकी तुलना इसराइल के आयरन डोम सिस्टम से करते हैं ताकि आपके मन में उठ रहे सवालों का सही जवाब मिल पाए। स्वदेशी आकाश तीर एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वहीं आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट डिटेक्ट करता है, वहीं आयरन डोम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को किल कर सकता है। आकाश तीर की रेंज 400 किलोमीटर है, वहीं आयरन डोम की रेंज करीब 70 किलोमीटर है। कॉम्बैट प्रूवन की बात करें तो आकाश तीर का सक्सेस रेशियो 100% है, वहीं आयरन डोम के कॉम्बैट प्रूवन की बात करें तो साल 2011 से इसका सक्सेस रेट 90% रहा है। टाइप की बात करें तो आकाश तीर रेडार सर्विलांस और वेपन सिस्टम तीनों का इंटीग्रेशन है, वहीं आयरन डोम इंटरसेप्ट और रेडार से लैस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर का मुख्य रोल आकाश S-400 बराक 8 D-4 एंटी ड्रोन जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इंटीग्रेशन करता है, वहीं आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स आर्टिलरी शेल्स और मोर्टार को डायरेक्ट टारगेट करता है। आकाश तीर की मदद से एयरक्राफ्ट ड्रोन और मिसाइल्स को टारगेट किया जाता है, वहीं आयरन डोम रॉकेट आर्टिलरी और मोर्टार को टारगेट करता है। चीन पाकिस्तान के एरियल अटैक को आकाश तीर नाकाम करने की ताकत रखता है। खास बात यह है कि ये महज 5 मिनट में डिप्लॉय हो सकता है।
0: इसराइल की आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी जब थार्ड फेल हो गया, हॉक या पेट्रियोटिक भी दुश्मन को नहीं रोक पाया और दुश्मन महज 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पास आ गया, तब आयरन डोम में एक इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जो कि दुश्मन के ड्रोन को या मिसाइल को तब शूट डाउन करता है जब वो महज 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके मुकाबले आकाश तीर जो है वो अलग अलग वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करता है, यानी दुश्मन की मिसाइल्स को हेलीकॉप्टर्स को या फाइटर विमान को 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूर से एंगेज करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर इसलिए है कि एक मल्टी लेयर मल्टी डायरेक्शनल यानी सभी तरफ 360 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पर देखने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दुश्मन का जहाज जो इतने सारे सर्विलेंस रेडार हैं किसी ना किसी की जद्दोजहद में पकड़ा जाएगा।
1: आकाश तीर आकाश मिसाइल सिस्टम से अलग है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे DRDO ने डेवलप किया है, वहीं BEL और BDL ने मिलकर बनाया है। आकाश सिस्टम एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिसाइल लॉन्च करता है, जबकि आकाश तीर एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो इन हथियारों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है।
2: भारतीय सेना ने दुश्मन के विमानों हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को मार गिराने के लिए नए जेनरेशन के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को लगातार परखा है। इसी कड़ी में DRDO ने चौथी पीढ़ी के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जून में तीसरा सफल परीक्षण किया है।
1: वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल्स की मारक क्षमता कम दूरी की होती है और इससे दुश्मन के विमानों को सटीकता से गिराया जा सकता है। शराट्स को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइल्स दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस आए हों, तो शराट्स ही उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है।
3: किसी भी इंस्टॉलेशन पर लगाया जा सकता है, पहली बार, जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखती हो, टैक्टिकल इम्पोर्टेंस रखती हो, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे कोई हेडक्वार्टर्स हैं, कोई वाटर वर्क्स हैं, कोई थर्मल स्टेशन है, इस तरह के सभी टारगेट्स के ऊपर लगाया जा सकता है। बट अपने आप में अगर देखा जाए इसकी इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस है कि एयर डिफेंस सिस्टम की जो ग्रिड है, ये अपने आप में एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इस डिफेंस की लाइन को, शॉर्ट रेंज वाली को, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल या कोई भी दुश्मन का एक्शन अगर उसके अंदर आ जाता है, तो ये बात गारंटेड है कि वो टारगेट पर लगेगा ही लगेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर ग्रिड सिस्टम में तीन से चार अगर लेयर हैं, तो ये टारगेट की सबसे नज़दीक वाली लेयर है, जो कि अपने आप में उस टारगेट को, जो अपनी जगह है इम्पोर्टेंट को, उसको एक क्लोज एयर प्रोटेक्शन देता है, एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देता है।
1: यही वजह है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी अहम सैन्य ठिकानों या बड़े शहरों के करीब तैनात किया जाता है। ये सुरक्षा का वो अंतिम घेरा होता है जो किसी भी सैन्य बेस की हिफाजत के लिए सबसे अहम रहता है। अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत क्या है और इससे दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार कितनी है, इसे भी जानना जरूरी है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वारहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को आसानी से तबाह कर सकता है।
3: ताकत बहुत ज्यादा नहीं होगी कि वो 100 किलोमीटर चला जाए, 200, मे बी 4 से 6 किलोमीटर चला जाए, वो एक बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी ताकत ये है कि जो इंसान, जो टारगेट अपने आप में, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है कि अगर किसी भी तरह से कोई भी मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, रॉकेट अगर उस टारगेट के ऊपर आ रहा है, और अगर सब चीज़ें वो प्रेग्नेट कर पाया है, अवॉइड कर पाया है, डिसेप्शन कर पाया है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कर आ गया है, तो भी एक भरोसा होता है कि जो दिख रहा है हम उसको शूट कर पाए। और दिख कर शूट करने वाली चीज़ के ऊपर आदमी का भरोसा जनरली ज़्यादा होता है।
1: वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूअल बैंड IIR सीकर मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, साथ ही इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, जो इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है।
2: वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जा सकता है, यानी कि इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह ले जाकर दाग सकता है, चाहे वो चीन की सीमा से सटा हिमालय का इलाका हो या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा। इसे कहीं भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। यही नहीं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें किसी भी बड़े शहर या फिर स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन की सेफ्टी के लिए भी कारगर साबित होगी।
1: वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को देश में ही डेवलप किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चला है। श्योराट्स को 3 मिनट के अंदर ट्रांसपोर्ट से फायरिंग मोड में लाने की क्षमता होगी। इसे 3 सेनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा और ये जमीन और जहाजों पर तैनात की जा सकेगी। मुख्य तौर पर इसे 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मेन पोर्टेबल सिंगल लॉन्चर और दूसरा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन के रूप में।
2: एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन देशों की ओर से होने वाले हर हवाई हमलों को रोकने में सक्षम माने जाते हैं। दुश्मन चाहे फाइटर जेट से हमला करे, एक साथ कई मिसाइल फायर कर दे या फिर कई सारे ड्रोन से अटैक कर दे, एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। और भारत के पास दुश्मन से निपटने के लिए मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिन्हें धारदार बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर न शोहरत का गुरू, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: श्रीराम कथावाचक मुरारी बापू ने आज कन्याकुमारी से भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ कर दिया है। भारत के चारों कोनों को धर्म और आस्था के धागे से जोड़ने के लिए खास यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद धार्मिक स्थलों को जोड़ना, साथ ही लोगों के बीच धर्म प्रेम शांति और एकता का संदेश पहुंचाना है। भारत स्वास्थ्य की यात्रा 2 चरणों में होगी, पहला चरण कन्याकुमारी से केदारनाथ तक और दूसरा द्वारका से जगन्नाथपुरी तक जाएगा। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा कालड़ी, श्रृंगेरी, हम्पी, तुलजापुर, ओमकारेश्वर, झांसी, मथुरा, कुरुक्षेत्र, वाघा अटारी बॉर्डर और जम्मू के श्री रघुनाथ मंदिर होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इस यात्रा में मुरारी बापू के साथ करीब 900 श्रद्धालु कैलाश भारत गौरव ट्रेन और चित्रकूट भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर रामकथा, संतों का समागम और हर दिन निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था की गई है।
11: प्रसिद्ध संत श्री मुरारी बापू की स्वस्तिक यात्रा शुरू हो गई और आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है कन्याकुमारी में मौजूद है। ये यात्रा कन्याकुमारी से केदारनाथ तक जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो हिस्सा लेंगे और आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू होकर इस आध्यात्मिक परंपरा की यात्रा को लेकर जाना है उत्तराखंड के केदारनाथ तक। तमाम धार्मिक स्थलों से गुजरते हुए यात्रा वहां तक पहुंचने वाली है। आपको ये भी बता दें कि ये स्वस्तिक के प्राचीन प्रतीक से प्रेरित है इस यात्रा का नाम। स्वस्तिक मतलब होता है कल्याण मंगल शुभता। मुरारी बापू के अनुसार स्वस्तिक की चार भुजाएं चारों ही दिशाओं के एक भारत के रूप में एक साथ राष्ट्रीय एकीकरण के व्यापक उद्देश्य के लिए काम करेंगी और इसीलिए बड़ी संख्या में इस यात्रा में लोग शामिल हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहां से आज शाम से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। न्यूज जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ शशि शर्मा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।

रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर, न शोहरत का गुरूर, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: क्या है नवरात्रि की महिमा, क्या है कलश स्थापना का विधान, देवी की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां लगभग पूरी। जयपुर में सज रहा माता रानी का भव्य पंडाल, मूर्तियों को भी दिया जा रहा अंतिम आकार। नवरात्रि के अवसर पर गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में माता की आराधना। पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारी। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू। कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु। इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। जोधपुर एयरबेस पर गरजे लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना कदम, तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हुए शामिल। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इसका मकसद। साल 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर हुई थी इसकी शुरुआत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो। मैं हूं श्वेता झा। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जो अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी फराग दिली और नेक नियति के किस्से उदास फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी के साथ गूंज

0: वो रियल से ज्यादा रियल लाइफ का हीरो था।
1: और गए, खेल खत्म। कोई जीए मालूम नहीं, तो मरे मालूम नहीं।
2: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल।
0: आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी पेशकश बॉलीवुड के बिंदास हीरो नाना पाटेकर के जीवन से जुड़ी है। बॉलीवुड का सबसे जिंदा दिल इंसान अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। 8 अक्टूबर को तड़के हुई उनकी मौत से बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया। पर नाना की मौत से सबसे ज्यादा सदमे में वो किसान हैं जिनकी जिंदगी को संवारने के लिए इस महामानव ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। नाना की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र के किसान खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। दरअसल नाना रुपहले पर्दे के एकमात्र ऐसे हीरो थे जिन्होंने रील को रियल लाइफ के दर्द और दुश्वारियों को अभिव्यक्ति देने का जरिया बनाया। नाना की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे अद्भुत और अनोखे किस्से हैं जिन्हें जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
3: हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माय फाइनल प्रॉपर्टी बेटा, वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसी में जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलत फहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलत फहमी नहीं होनी चाहिए।
4: नाना काश आप अपने जिगरी दोस्त मकरंद अनासपुरे को बेतहाशा बिलखते हुए देख पाते तो शायद आपकी आखिरी गलतफहमी दूर हो जाती। यकीनन आपकी जलती चिता को देखकर बहने वाले अशकों की बूंदें 100% असली हैं, प्योर हैं, ठीक आफी की तरह। काश आप देख पाते कि आपकी अचानक हुई मृत्यु के बाद रुपहले पर्दे के उस कोने में सन्नाटा है जहां कभी आप कड़वी जीवनाभूतियों के सच्चे चित्र अपने दिल की आवाज सुनकर उकेरा करते थे। नाना आप यकीन मानिए, आप जैसे जिंदा दिल और सच्चे इंसान की अंतिम विदाई के मौके पर नकली आंसू के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।
5: वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी की तरह जितना कपड़े बपड़े से आपको मालूम पड़ेगा, और अपने बहुत लोगों की मदद करते थे वो, जहाँ भी, चाहे वो किसान हो कोई भी हो।
4: आप ये जान लीजिए कि थिएटर के माध्यम से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने बड़े पर्दे का रुख स्टारडम हासिल करने या पैसे कमाने के लिए नहीं किया। वो बॉलीवुड की शायद अकेली शख्सियत थे जिन्होंने देश और समाज में व्याप्त अव्यवस्था, असमानता, अनाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ धधकते कलेजे का बिंब पर्दे पर हूबहू उतारने के लिए सिल्वर स्क्रीन को चुना था। यही वजह है कि उनके जाने के बाद रुपहले पर्दे की दुनिया उदास है।
6: It's terrible. It's not fair. It's not fair. Some people, you don't think that they will ever go. Nana was one of them. Nana was larger than life. Nana had the largest heart in the world. Nana's anger was all kindness, actually. It's not right. He should have not gone.
4: नाना बड़े पर्दे के हीरो नहीं थे, वो तो असल जिंदगी के महानायक थे। असल जिंदगी के नायकत्व को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने पर्दे को माध्यम बना लिया। पर्दे की वर्चुअल दुनिया में फौजी बनकर देश के लिए मर मिटने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असली जंग के दरमियान सरहद पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले वो अकेले नायक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने तत्कालीन जनरल पाटाड़कर को फोन कर कहा था कि मैं बतौर फौजी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूं। जनरल पाटाड़कर ने जब मना कर दिया तो नाना ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन कर सेना में शामिल होने की अनुमति मांगी। नाना का देश प्रेम और जोश देखकर फर्नांडिस ने अनुमति दे दी और नाना वाकई मोर्चे पर पहुंच गए।
3: हमने फोन किया।

0: तुम जानते थे मुझे नाना, सिविलियन को अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा सिविलियन 6 महीने में तो कमीशन हो जाता है, हमने 3 साल गुजारे हुए, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा अब बता रहा हूँ, कब जाना चाहता हूँ? मैंने कहा आज निकल गया। तो 60 दिन था मैं, सभी जगह मुगलपुरा में था, द्रास में था, लेह में था, कुपवारा में था, बारामुल्ला में था, सोपर में था।
1: काबिले गौर है कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा बनकर पूरे 2 महीने तक दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। क्विक रिएक्शन टीम सेना के अंदर एलीट टीम मानी जाती है। दरअसल नाना ने 1991 में आई प्रहार द फाइनल अटैक फिल्म की मेकिंग से पहले करीब 3 साल की बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ उन्होंने कड़ी सैन्य और कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू की।
0: 3 साल तक मैं वहाँ आते जाते, मैं बहुत बहुत सीखा यार। मैं 40 की उम्र में कमांडो कोर्स का वो सभी किया हुआ है, BOC बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स और बाकी का वो सभी। 28 तो उनके आउटर लिमिट है ना।
1: ऐसे महानायक थे नाना। रुपहले पर्दे पर शोषितों, वंचितों, गरीबों, मजलूमों की आवाज बनकर त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में बेबस लाचार किसानों का मसीहा बनने वाले वे अकेले नायक थे। साल 2015 में नाना ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1.5 करोड़ की कार खरीदने का मन बनाया, लेकिन उसी दौरान एक शाम उन्होंने टीवी पर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी खबर देख ली। नाना ने तुरंत फैसला कर लिया कि कार के लिए जोड़ी गई 1.5 करोड़ की रकम जान गंवा चुके किसानों के परिजनों को दे दूंगा। दरअसल नाना को लगा कि जिनका पति मर गया, जिनका पिता मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनका दुख दर्द बांटने की जगह 1.5 करोड़ की गाड़ी की सवारी करना इंसानियत को मारने जैसा है।
0: उनके चेहरे पे बाप मर गया, मर्द मर गया, बेटा मर गया, उससे ज्यादा रात की शाम की भूख थी आंखों में, बोलने में उनका ना तो कोई आंसू है ना तो कुछ है। वो जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं तो डर गया यार। मैंने कहा हम काहे की गाड़ियां खरीदे यार। हमारा ये दोस्त है मकरंद अनासपुरे, वो मराठवाड़ा का, तो उसको हमने फोन किया। मैंने कहा 1,000 जो है जिन्होंने आत्महत्या किए उनके फैमिली को 15,000 का एक चेक भेज दो, 15, 15, 15, 15, 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे।
1: लग्जरी कार के लिए बड़ी ही हसरत से जमा की गई रकम को पीड़ित किसान परिवारों के बीच बांटने का फैसला लेने में नाना को एक पल भी नहीं लगा। अलबत्ता इस मदद के बाद उन्हें प्रेरणा हुई कि एक बार कुछ कर देना ही काफी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे मजलूम किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए लंबे कार्यक्रम की जरूरत है। इस पवित्र उद्देश्य के साथ सितंबर 2015 में नाना ने नाम फाउंडेशन की स्थापना की। नाम फाउंडेशन के तहत उन्होंने न सिर्फ किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई, बल्कि उनके बच्चों की एजुकेशन का भी बीड़ा उठाया। इसके साथ ही नाम फाउंडेशन ने भूजल स्तर सुधारने, पुरानी नहरों और जल परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के साथ ही गांवों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर पहल की। साफ है कि नाना पाटेकर रील के कम रियल लाइफ के ज्यादा बड़े नायक थे। उनके यूं अचानक चले जाने से महाराष्ट्र के किसान आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं।
2: नाना पाटेकर का यूं चले जाना सबको रोला गया। दरअसल नाना ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके सामने कभी 2 जून की रोटी का भी संकट था, पर नाना को बचपन से ही हालात के आगे घुटने टेक कर रोना कतई ना पसंद था। हालात कितना भी कठिन क्यों ना हो, नाना डरने की जगह लड़ना पसंद करते थे। एक समय जब इनके पिता का कारोबार किसी वजह से बर्बाद हो गया तो नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। तब वो बमुश्किल 13 साल के थे, लेकिन अपनी कमाई से पूरे परिवार का पेट पालने लगे।

0: छुटा रेत सा हाथों से है हयात तेरा वो दामन, रह गई कुछ ख्वाबों की कलिया और कुछ भीगे सावन। आया था सौगात में लेकर कुछ सांसों के वादे, बोझ उन्हीं का कैसे ढोए तू ही मुझे बतला दे।
1: श्वासों की सौगात वादों की मंजिल के पार जाकर सदा के लिए शून्य में विलीन हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई महकती यादों की ऐसी खूबसूरत लड़ियां जो अदाकारी के साथ इंसानियत का भी चिराग बनकर इस जहां में ताकयामत रोशनी बिखेरती रहेंगी। गमन से शुरू होकर ओ रोमियो तक नाना पाटेकर का फिल्मी सफर रुपहले पर्दे पर निसंदेह अत्यंत गहरी छाप छोड़ता है, पर पर्दे के सामने दिखने वाली अदाकारी की रानाइयों से कहीं ज्यादा असरदार हैं पर्दे के पीछे के वो फौलादी किस्से जो आम जनों के लिए किसी न किसी वजह से पोशीदा हो गए। 3 नवंबर 1989 को रिलीज हुई परिंदा के अन्ना को कौन भूल सकता है, जो पर्दे के सामने आग से बहुत ज्यादा खौफ खाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उसी अन्ना यानी नाना ने आग वाले सीक्वेंस की शूटिंग के समय फायर शूट पहनने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि अगर आग की तपिश महसूस नहीं होगी तो शॉट की संजीदगी मर जाएगी। फिल्म के एक अदद दृश्य में जान फूंकने के लिए नाना पाटेकर ने अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया था।
2: Can you imagine this is real fire? रबर सॉल्यूशन के साथ आग लगाई। See, this is when he got burnt. ये देख, oh my God, I've never seen it like this. Oh my God, हाथ पे आग लगी और ये अब उसने छलांग मारी है। ये देख, यहां तक आया, ये देखा, ये जंप मारा है उसने into the safe area. Oh my God, you know I have never seen it like this in my life. It's the first time I'm watching this because ये इतना control मेरे पास कभी था ही नहीं। नाना तू अगर देखेगा ना ये तो यार क्या किया तूने? It's unbelievable.
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि परिंदा के इस दृश्य की शूटिंग के दौरान नाना बुरी तरह झुलस गए थे। ऐसे झुलस गए थे कि 2 महीने से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और 1 साल तक वो कोई भी काम करने की हालत में नहीं थे।
0: आग लगी, आग लगी थी, मैं जल रहा था। उसके बाद 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ऐसे था 60 दिन अस्पताल में। वो जो सीन देखते हो ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा, वो मैं बाकायदा जल रहा था। हम 60 दिन, हमारा ये यहाँ से यहाँ कुछ नहीं था, ये सब ये निकल के वो गिर गया था मेरे चप्पल पे और इधर पैजामा पे। स्किन थी ही नहीं, दाढ़ी नहीं थी, मूछे नहीं थी, बवे नहीं थी, आईलेट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सब जल गया।
1: परिंदा से पहले साल 1988 में रिलीज हुई मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में भी नाना बुरी तरह जख्मी हो गए थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट शफीक सैयद को नाना पाटेकर को चाकू मारना था। एहतियात के तौर पर नाना ने पेट के पास एक टायर बांधा था, लेकिन फिल्म में कृष्णा का किरदार निभा रहे शफीक ने चाकू इतना तेज मारा कि वो टायर को भेद कर नाना के पेट में घुस गया। पर नाना तो नाना ही थे, शॉट ओके होने तक किसी को पता ही नहीं चला कि नाना के कपड़ों में दिख रहा लाल रंग नकली नहीं बल्कि उनका असली खून है।
0: वो जो एंड में मुझे वो बच्चा भोग देता है ना चाकू, टायर लगाया था, टायर ऐसे काट के इधर, तो वो सारा चाकू टायर के आर पार गया और मेरे गया अंदर, तो मैं घुस गया चाकू ऐसे इधर से किधर मारा तो घुस गया और उनको लगा क्या एक्टिंग की है। फॉर्चुनेटली वो स्पाइन में नहीं गया, इधर बाजू में गया।
1: अलग ही मिट्टी का बना था ये शख्स। नाना ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की। सभी फिल्मों में उनकी अदाकारी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की जमी जमाई लीक को तोड़ती दिखाई देती है। नाना के ज्यादातर प्रशंसक इस सच को स्वीकार भी करते हैं, पर नाना ने अदाकारी की ही नई लीक नहीं खींची, शूटिंग के सेट पर कई ऐसे विस्मयकारी कारनामे किए जिसे सुनकर सहसा यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म क्रांति वीर के क्लाइमेक्स सीक्वेंस ने दर्शकों पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। क्लाइमेक्स में नाना करीब 3.5 मिनट तक मर्म को छूने वाला संवाद बोलते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि नाना ने जो कुछ भी बोला था वो फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये जानेंगे कि सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त नाना अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टरों के साथ सेट पर पहुंचे थे।
0: 2:30 बजे शुरू, हमारे 7 दिन का ये था क्लाइमैक्स का शूटिंग। 2:30 बजे शुरू किया हमने, 5 बजे खत्म हो गए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हमको क्या बोला। हम गए अपना बोलना शुरू कर दिया, जिस वक्त मेरे को लगा कि अभी कुछ नहीं सुता, लारे ला ला ला मैंने पहना देता था, वो जो अपने फांसी लेने का है ना, वो लाश का, वो उसके पास से वो लेता है, वो ऐसा काली पहना चल, क्योंकि उसके बाद कुछ सूझ नहीं रहा था।
1: हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसका क्लाइमेक्स इस तरह शूट किया गया हो। नाना का कमाल देखिए कि जिस क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए मेहुल कुमार ने 7 दिन का वक्त मुकर्रर किया था वो 2.5 घंटे में ही पूरा हो गया और फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा बन गया। दरअसल स्टारडम मिलने के पहले से ही नाना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए तमाम कलाकारों को क्या क्या समझौते नहीं करने पड़ते हैं, पर नाना ने कभी कोई समझौता नहीं किया। नाना जब थिएटर्स करते थे उसी दौरान उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने उन्हें बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा से मिलवाया। रवि चोपड़ा तब आज की आवाज फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्होंने नाना को रेपिस्ट का रोल ऑफर किया। रेपिस्ट के रोल की पेशकश पर नाना ऐसे भड़के कि रवि चोपड़ा को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे।
0: तो जबरदस्ती मुझे ले गई बीआर चोपड़ा जी के साथ। उनका बेटा रवि चोपड़ा डायरेक्ट कर रहा था आज की आवाज, और वो उसमें एक 4 हेंचमैन थे, जो एक ऐसे ही रेपिस्ट बच्चे थे, उसमें से एक रोल हमको ऑफर किया। अब मैं यहाँ, मैंने क्या बोला वो बोल नहीं सकता।
1: बॉलीवुड में चोपड़ा परिवार की क्या हैसियत है ये किसी से छिपी नहीं है, पर उसी चोपड़ा परिवार के चश्मो चिराग रवि चोपड़ा को नाना ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद सारे के सारे सन्नाटे में चले गए। पर उसके बाद रवि चोपड़ा को भी समझ में आ गया कि जिस शख्स को मैं थिएटर का छोटा मोटा अदाकार समझ रहा था वो जरूरत से ज्यादा कद्दावर है। बाद में रवि चोपड़ा ने आज की आवाज फिल्म के लिए नाना को मेन विलेन जगमोहन दास का किरदार ऑफर किया। हालांकि नाना ने जगमोहन दास के किरदार के लिए भी शर्त रख दी कि अपने संवाद मैं खुद लिखूंगा। जिसे भरोसा सिर्फ अपने हुनर का होता है वो नफे नुकसान का गुणा गणित नहीं करता। दरअसल नाना को स्टारडम पाने या पैसे कमाने की वैसी कोई भूख कभी नहीं थी जैसा कि बॉलीवुड के अंदर हर कलाकार की आमतौर पर होती है। इसीलिए नाना कभी किसी निर्माता निर्देशक के पास रोल पाने के लिए हाथ पसारते नहीं देखे गए। गिड़गिड़ाना या रोना नाना की फितरत का हिस्सा कभी नहीं था।
0: वो हर चीज पे अपने हंसने की जो आदत थी ना, वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो एटीट्यूड बहुत अच्छी थी। रोते बैठने की, रोए नहीं हम, रोए कैमरा के सामने और उसके पैसे वसूले हमने।
1: 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुंड जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी 75 साल जिंदगी के रियल किस्से रील की फैंटेसी से भी ज्यादा रोमांचक, विस्मयकारी और प्रेरणादायक है। बेहद साधारण परिवेश में पले बड़े होने के बावजूद बचपन से ही एक अजीब जिदो जुनून था नाना के अंदर। काम कितना भी दुष्कर हो, असाध्य हो, असंभव हो, नाना के शब्दकोश में ना नहीं था। नाना जब महज 13 साल के थे तो इनके पिता का कारोबार किसी वजह से ठप हो गया। पूरे परिवार के सामने पापी पेट को पालने का सवाल था। पूरा परिवार गहरी चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन 13 साल के नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। जिस जगह काम मिला वो घर से 8 किलोमीटर दूर था। 35 रुपए की मासिक पगार के लिए 13 साल के नाना रोज 16 किलोमीटर पैदल चलते थे।
0: तो हमको 35 रुपए मिलता था महीने का। 35 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त, मैं ये बात कर रहा हूँ 63-64 की। 13 साल के थे हम, तो 8 किलोमीटर पैदल जाओ, 8 किलोमीटर पैदल चल के आ जाओ, 16 किलोमीटर चलना पड़ता था, 35 रुपया मिलता था और एक वक्त का खाना मिलता था। और रात को खाते वक्त हमको दिक्कत होती थी कि यार माँ ने खाया होगा, पिताजी ने खाया होगा, भाई ने खाया होगा, जहन में तो आता था लेकिन हम खा लेते थे यार, भूख इतनी बड़ी थी उनसे प्यार से हम खा लेते थे।
1: नाना पाटेकर के व्यक्तित्व की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि 90 के दशक में एक फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान खान से भी ज्यादा पैसे लेने वाले नाना पाटेकर ने कभी 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की रंगाई का काम भी किया है?
0: जेब्रा क्रॉसिंग रहती थी ना, वो हम पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे एक एक क्रॉसिंग के, एक कर दिया तो 15 रुपए। तो रात को हम शुरू करते थे, जैसे ट्रैफिक बंद हो जाए 1:30 बजे शुरू करते थे, नहीं तो फिर उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए तो वो धब्बे आ जाएंगे टायर के, तो मार्क्स आते तो फिर वो दूसरे दिन 15 रुपए मिलेंगे नहीं। तो पहले दोनों बाजू तीन जन दूसरे जो हमारे दोस्त थे वो खड़े रहते थे, फटाफट लगा दो फिर अगला वो करेगा, ऐसे करके एक रात में 25-30 जेब्रा क्रॉसिंग हो गई तो पैसे मिल जाते।
1: 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग करने वाला इंसान बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा की इस बात के लिए फजीहत कर देता है कि उन्होंने उसे रेपिस्ट का रोल कैसे ऑफर कर दिया। बॉलीवुड की बिंदास दुनिया में अदाकारी की अलग ही मिसाल कायम कर दुनिया से रुखसत हो चुके नाना पाटेकर ने अपनी 75 साल की जिंदगी में बेपनाह दुश्वारियां झेली। जब ये काफी छोटे थे, इनके बड़े भाई की 14 साल की उम्र में एक हादसे में मौत हो गई। एक और भाई की मुंबई सीरियल धमाकों में दर्दनाक मौत हुई। नाना का खुद का एक बेटा 2.5 की उम्र में असमय काल कौलित हो गया। पर इस तरह के तमाम दर्द को झेलने के बाद भी इस इंसान ने अपने अश्कों को आंखों से बाहर नहीं निकलने दिया, और जब कैमरे के सामने रोने का दृश्य फिल्माने की नौबत आई तो सीने में दफ्न उन्हीं आंसुओं को नैनों का रास्ता दिखा दिया।
0: और हम थोड़ी एक्टिंग थोड़ी करते हैं यार, हम तो हमारे इमोशंस बेचते हैं। जो उस दिन हम रोए नहीं, वो रखा है हमने अंदर, तो फिर कैमरा के सामने रो देते हैं तो आपको लगता है हाँ क्या एक्टिंग की, पैसे भी मिलते हैं और भड़ास भी निकलती है।
1: नाना अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने चाहने वालों के लिए छोड़ गए हैं उन्हीं आंसुओं का सैलाब जिन्हें कभी उन्होंने अपने सीने में जज्ब कर लिया था। नाना का नश्वर शरीर बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व से जुड़ी बेशुमार कहानियां आने वाले वक्त में बड़े चाव से सुनी और सुनाई जाएंगी।
3: आज आपने नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है नवरात्रि की महिमा, क्या है कलश स्थापना का विधान, देवी की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: कल से पवित्र शारदीय नवरात्र का शुभारंभ पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 9 दिनों तक होगी माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना, पंडालों में सजी माता की प्रतिमाएं। नवरात्र के अवसर पर गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में माता की आराधना, पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारी। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथावाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था। जोधपुर एयरबेस पे गर्ज लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना का दम, तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हुए शामिल। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इसका मकसद। साल 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर हुई थी इसकी शुरुआत।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, हेमकुंड साहिब में अंतिम अरदास के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं के भीड़, धार्मिक परंपराओं के साथ दोपहर 2 बजे कपाट हुए बंद। सुबह 10 बजे सुखमनी साहिब के पाठ से शुरू हुए कार्यक्रम 11:20 पर शब्द कीर्तन और दोपहर 12:30 हेमकुंड साहिब में हुई साल की अंतिम अरदास। हेमकुंड साहिब यात्रा के समापन पर सेना के बैंड ने बांधा समा। बैंड ने दी शानदार और मनमोहक प्रस्तुति। बर्फबारी के बीच 6,000 से ज्यादा श्रद्धालु बने इस पल के साक्षी। बर्फ की मोटी चादर से ढकी सप्तशृंग घाटी पंज प्यारों की अगुवाई में सचखंड साहिब पहुंचे गुरु ग्रंथ साहिब। पाकिस्तान से आया 40 सदस्य सिख श्रद्धालु का जत्था। ₹15,200 की ऊंचाई पर स्थित है हेमकुंड साहिब। इस साल 23 मई को शुरू हुई थी पवित्र यात्रा। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का बना रिकॉर्ड। 3,84,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आज है महालया का पावन दिन। धरती पर आगमन के लिए माँ दुर्गा के आह्वान की तिथि। आज से देवी पक्ष का शुभारंभ। महालया के अवसर पर है पितृ विसर्जन की परंपरा। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष का है अंतिम दिन। महालया के दिन ही देवताओं ने किया था मां दुर्गा का आह्वान। महिषासुर के आतंक से मुक्ति के लिए प्रकट हुई थी मां दुर्गा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कहते हैं महालया। पितृपक्ष के समापन का है पावन दिन सर्व पितृ अमावस्या। आसन सोल में अनोखी आगमनी दुर्गा पूजा। दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं लोग। आसन सोल में महाले पे दामोदर नदी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। पूर्वजों को तर्पण देने पहुंचे हजारों लोग। दामोदर नदी में स्नान के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए विधि विधान से किया गया तर्पण। पुरोहितों ने किया मंत्रोच्चार। हावड़ा के विभिन्न गंगा घाटों में श्रद्धालु की भारी भीड़। पवित्र जल में तर्पण करने के लिए दूरदराज से पहुंचे लोग। हरिद्वार में पितृ विसर्जन अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़। श्रद्धा के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। नारायणी शिला मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस बल की निगरानी में श्रद्धालु को कतार में पूजा के लिए दिया जा रहा प्रवेश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महालया अमावस्या पर श्रद्धालु ने लगाई पवित्र डुबकी। भक्तों ने पूजा अर्चना कर कमाया पुण्य लाभ। महालया अमावस्या के अवसर पर रामेश्वरम में श्रद्धालु ने किया तर्पण। बड़ी संख्या में भक्तों ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बड़ी संख्या में उमड़े भक्त स्नान दान के साथ किया तर्पण। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में सुबह से स्नान ध्यान के लिए जुटे लोग। कपिल मुनि आश्रम में विधि विधान से की पूजा अर्चना। असम के डिब्रूगढ़ में भक्तों ने महालया पे ब्रह्मपुत्र नदी में लगाई आस्था की डुबकी। पितरों के लिए किया तर्पण। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी के धाम में तैयारियां तेज। बाजार से लेकर भवन तक फूलों लाइटों और तोरण द्वारों से की जा रही है सजावट। वैष्णो देवी धाम में दिव्यांगों बुजुर्गों और बच्चों को सौगात। बाण गंगा से अर्धकुमारी तक पात्र श्रद्धालुओं के लिए घोड़े की निःशुल्क व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए अर्धकुमारी से भवन तक निःशुल्क बैटरी कार सेवा। विशेष दर्शन आरती में शामिल होने के साथ साथ रैंप और लिफ्ट की भी सुविधा। नवरात्रि से स्थानीय कारोबारी और किसानों को भी बड़ी आस। श्रद्धालुओं के वैष्णो देवी पहुंचने से कारोबार बढ़ने की उम्मीद। कटरा में नवरात्रि के दौरान होटलों में एडवांस बुकिंग पर 30% तक की छूट। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के किए सख्त इंतजाम। जयपुर में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां। गुलाबी नगर में 23 फीट ऊंची माँ दुर्गा की प्रतिमा बनेगी खास आकर्षण का केंद्र। पीली साड़ी और चांदी के आभूषणों से होगा माँ का दिव्य श्रृंगार। जयपुर में देखेगी बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की झलक। दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता से मंगवाए जा रहे सजावटी सामान और प्रॉप्स। बंगाल से आए कारीगर पंडालों को दे रहे हैं भव्य और पारंपरिक रूप। 70 साल पुरानी दुर्गा बाड़ी में सजे भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। इस बार सृष्टि स्थिति और विनाश की थीम पे होगी खास सजावट। करीब 2000 वर्ग गज में बनेगा पंडाल। 50 फीट ऊंचा होगा प्रवेश द्वार। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। जयपुर में पिछले 3 से 4 महीनों से चल रही प्रतिमा निर्माण की तैयारियां। मिट्टी रंगों और आकर्षक आभूषणों से निखर रहा माँ का दिव्य स्वरूप। 15 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव। जयपुर की दुर्गाबाड़ी में स्थायी प्रतिमा के साथ होगी विशेष पूजा। वियतनामी मार्बल से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है परिसर की पहचान। पुरुलिया में चंद्रोदय मंदिर की थीम पे सजेगा दुर्गा पूजा का पंडाल। नितुरिया डुबेश्वरी कोलियरी में पूजा का 36वां साल होगा खास। पंडाल में दिखेगा भगवान विष्णु का 10 अवतार। पुरुलिया की दुर्गा पूजा में उमड़े के श्रद्धालुओं का सैलाब। इस साल भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। माँ दुर्गा के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं को मिलेगा आध्यात्मिक अनुभव। महालया के साथ दुर्गोत्सव का बड़ा उत्साह। माँ दुर्गा के स्वागत को तैयार पुरुलिया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन के बाद श्रद्धालु करेंगे माँ दुर्गा के दर्शन। कल 11 अक्टूबर से शुरू होगा शक्ति का महापर्व। कलश स्थापना के साथ पूजा का होगा शुभारंभ। माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान गज वाहन पर होगा। इस साल शारदीय नवरात्रि 10 के बजाय 11 दिनों की 21 अक्टूबर को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी। जोधपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में लिया हिस्सा। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया रक्षा मंत्री का स्वागत। अभ्यास में कई देशों के जवान शामिल। भारत के आसमान में दिख रही है देशी ताकत और विदेशी फाइटर जेट्स की शानदार जुगलबंदी। रक्षा मंत्री के सामने हुए युद्धाभ्यास। देशी विदेशी सेना के जवानों से रक्षा मंत्री ने की मुलाकात। आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमानों की लगी प्रदर्शनी। तरंग शक्ति 2026 में भारत और दूसरे देशों की वायुसेनाएं एक साथ कर रही हैं अभ्यास। आपसी तालमेलों से सैन्य सहयोग को मिल रही है और मजबूत। नवरात्र के अवसर पर तमिलनाडु के मदुरई में पारंपरिक गोलू डॉल्स की नुमाइश। देवी देवताओं से लेकर ऐतिहासिक किरदारों तक की दिख रही झलक। तमिलनाडु के गोलू डॉल्स में इस बार दिख रही विकसित भारत की भी झलक। इसरो के स्पेस मिशन पर पेश की गई झांकी। गोलू डॉल्स की नुमाइश में G20 सम्मेलन की भी पेश की गई झांकी। परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम। मदुरई के इस घर में 4,360 से अधिक पारंपरिक गोलू डॉल्स के नुमाइश। डिस्प्ले में पौराणिक और सांस्कृतिक थीम पर आधारित प्रतिमाएं मौजूद। मदुरई में घरों में गोलू डॉल्स रखकर नवरात्र का पर्व मनाने की है परंपरा। इन सजी हुई गुड़ियों और मूर्तियों को सीढ़ी नुमा मंच पर रखकर मनाया जाता है ये पर्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 अक्टूबर से IOC, HPCL और BPCL के लिए डॉलर की जरूरत पूरी करने की शुरू की विशेष व्यवस्था। रुपए पर दबाव कम करने में मिलेगी इससे मदद। कटिहार में DM के सादगी भरे अंदाज ने जीता सभी का दिल। बच्चों के साथ जमीन पर बैठ के खाया खाना। कटिहार DM ने क्लास में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया लाइट चैप्टर। बच्चों का बढ़ा आत्मविश्वास। पटना में चलाया जा रहा स्वच्छता सेवा अभियान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी लिया इसमें हिस्सा। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पे सैफई में उमड़ी भीड़। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। सलमान खान ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बींग द सलमान खान किया लॉन्च। फैंस को इस चैनल पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल और बिहाइंड द सीन से जुड़ी A to Z तक मिलेगी सारी जानकारी। फिल्म रामायण में लारा दत्ता महारानी कैकई और शिवा चड्डा मंथरा के दमदार किरदारों में नजर आएंगी। फिल्म में दोनों अभिनेत्रियों के किरदार कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाएंगे। बिग बॉस 17 फेम ईशा मालविया फिल्म में तुम मेरे हो से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें वो अभिनेता गुरमीत सिंह चौधरी के साथ नजर आएंगी। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी क्राइम सीरीज तास्करी ने नेटफ्लिक्स पे लहराया सफलता का परचम। ग्लोबल नॉन इंग्लिश टीवी लिस्ट में पहला स्थान हासिल करने वाली बनी पहली भारतीय सीरीज। रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पेडी ने दुनिया भर में किया शानदार प्रदर्शन। शुरुआती दिनों में ही 235 करोड़ रुपए की कर दी कमाई। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का बॉक्स ऑफिस पर जारी है तूफान। रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को भी करीब 15 करोड़ रुपए की कमाई। 8 दिन में दृश्यम 3 का नेट कलेक्शन 260 करोड़ रुपए के बाहर। बॉक्स ऑफिस पर जलवा है बरकरार। फिल्म हनुमान अंश की कमाई में भी उछाल। शुक्रवार को 1,17,00,000 से ज्यादा का किया कलेक्शन। रिलीज के 64 दिन बाद हनुमान अंश की कमाई पहुंची 350 करोड़ रुपए के करीब। बनी हुई है दर्शकों की फेवरेट। लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर चुके फिल्म हनुमान अंश अब 400 करोड़ रुपए के क्लब की ओर है। इस फिल्म की नजर करण जौहर ने कॉफी विद करण के सीजन 9 को लेकर दिया बड़ा अपडेट। कहा कि ये शो का आखिरी सीजन होगा। शो की शुरुआत 14 अक्टूबर से होगी। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म रणबाली का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में दोनों सितारों की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगी। अनीत पड्डा ने फिल्म शक्तिशालिनी में नाना पाटेकर के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया। नाना पाटेकर के साथ काम करने को सीखने वाला अनुभव बताया। मलयाली फिल्म उडुम नचोला विजन का ट्रेलर हुआ रिलीज। मैथ्यू थॉमस और मिलिंद सोमन अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी मीडिया की दुनिया और खबरों के पीछे की सच्चाई को दर्शाएगी। करीना कपूर हाल ही में फॉर्मूला 1 स्टार लैंडो नॉरिस से मुलाकात को लेकर चर्चा में आई। इस दौरान करीना ने अपनी फिल्म तारा रंपम का भी जिक्र किया। हैलोवीन के त्यौहार से पहले अमेरिका में बड़ी पंपकिंस की डिमांड। मैने के फार्म में ग्राहकों की उमड़ रही भीड़। हैलोवीन के दौरान बनाए जाते हैं पंपकिंस के पकवान। अक्टूबर में चरम पर रहती है इसकी डिमांड। फ्रांस में म्यूजियम से चुराए गए दो खास कलाकृतियां हुई बरामद। लाखों डॉलर्स में है इसकी कीमत। एक महीने पहले फ्रेंच रिवेरा के म्यूजियम से चोरी हो गई थी दो कलाकृतियां। 6 लोग गिरफ्तार। नासा के साइग्नस XL कार्गो स्पेस क्राफ्ट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डिलीवर किया करीब 5,000 किलोग्राम सामान बिना किसी क्रू मेंबर के। नॉर्थ्रोप ग्रूममैन स्पेस क्राफ्ट की पहली उड़ान। चीन में पुलों पर बोगनवेलिया के फूलों के बाहर दिख रहा शानदार नजारा। दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के ग्वांगजू शहर में 73 पुल बने स्काई फ्लावर ब्रिजेस। पुलों के ढांचे रेलिंग और रैंप पे फैली बोगनवेलिया की बेल। पुलों के डेक को गर्म होने से बचाने के लिए लगाए गए बोगनवेलिया के पौधे। बोगनवेलिया में होती है गर्मी सहने की क्षमता। इटली में तुरिन के सड़कों पर ड्राइवरलेस कार का हुआ परीक्षण। ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस है फिएट 500e कार। टेस्ट के दौरान परखी गई कार की नेविगेशन और तकनीकी क्षमता। 2028 तक बाजारों में लॉन्च करने का है इसका लक्ष्य। जर्मनी में रोशनी का शानदार उत्सव। बर्लिन में शुरू हुआ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का 22वां एडिशन कलर्स ऑफ लव थीम से जगमगाए शहर के मशहूर स्मारक। ब्रांडनबर्ग गेट से बर्लिन डोम तक रोशनी का जादू। बारिश के बीच भी लाइट फेस्टिवल देखने उमड़े लोग। करीब 40 इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से हुई जगमग। मोबाइल कैमरों में खूबसूरत नजारे कैद करते हुए नजर आए दर्शक। पॉट्सडामर प्लाज और डेंजर मैन मार्क्स भी रोशन। 18 अक्टूबर तक चलेगा बर्लिन का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। चीन के शांगसनी में क्लिफ साइड लाइट शो का भव्य समापन। 37,000 वर्ग मीटर की चट्टान पर दिखा रोशनी का नजारा। अप्रैल 2027 में फिर शुरू होगा यह शानदार शो। वाइंग हैंडिंग टेम्पल इन ट्रूज बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। 2.5 लाख दर्शकों ने देखा यह शो। पहाड़ पे टिका सदियों पुराना हैंगिंग टेम्पल बौद्धताओं और कन्फ्यूशियस परंपराओं की दिखती है इसमें झलक। चीन में गुंजे नन्हे बाघों की किलकारियां। जेजियांग प्रांत के निंगबो वाइल्ड लाइफ पार्क में 5 शावक का हुआ जन्म। 2 दिनों में जन्मे 3 साइबेरियन और 2 सफेद बंगाल टाइगर। इंक्यूबेटर में रखे गए सभी पांचों शावक स्वस्थ, कांच की दीवार से पर्यटक देख सकेंगे नन्हे भागों की अटकेलियां। 3 महीने बाद आउटडोर एग्जीबिशन एरिया में आएंगे शावक। चीन के रेगिस्तान में इंद्रधनुषी झील का जादू, इनर मंगोलिया में दिखे रंग बिरंगे खारे पानी की झील, गुलाबी लाल नीले और हरे रंगों से चमक उठा रेगिस्तान। सुनहरे रेत के टीलों के बीच देखा कुदरत का अनोखा नजारा, झील के रंगों के पीछे खास सूक्ष्म शैवाल डुनालियेला सलीला, नमक की अधिकता और तापमान से बदलता पानी का रंग। चीन के 5 रंगों वाले पहाड़ बना आकर्षण का केंद्र, हुईलोंगजियांग प्रांत में पतझड़ के रंगों ने मोह सभी का मन। युचुन के 40 लाख हेक्टेयर जंगल रंग बिरंगे नजारों से सजे, पेड़ों के बदलते रंगों को देखने उमड़े पर्यटक। चीन में हॉटपॉट का जलवा, बड़ी संख्या में उमड़े पर्यटक। चोंगकिंग में हॉटपॉट रेस्टोरेंट में लिया स्वाद का आनंद, होंग्या गुफा और जिफांगबुई बने पर्यटकों के पसंदीदा ठिकाने। 7 दिनों में परोसे गए 1,57,00,000 टेबल पर परोसा गया लजीज व्यंजन, हॉटपॉट के साथ पर्यटन को भी मिला बूस्ट। चोंगकिंग के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचे 91,00,000 सैलानी। फ्रांस की एलेक्सिया बैरिया और विशाल ट्रिमियान से रचेंगे इतिहास, 1 नवंबर को रूट टू रूम की अल्टिम रेस में लेंगे हिस्सा, इस श्रेणी में अकेले रेस करने वाली पहली महिला बनने का लक्ष्य। महिला सेलर्स के लिए नई राह खोलने का सपना, 105 फुट लंबी ट्रिम रान नाव से समंदर में उतरेंगे बैरियर। चीन में स्मार्ट डिटेक्टर से रेलवे सुरक्षा होगी और भी ज्यादा मजबूत, हार्बिन युचुन रेलवे पर इंटेलिजेंस मोबाइल डिटेक्टर तैनात। स्मार्ट डिटेक्टर से ट्रेन के खोखले एक्सल की आसान होगी जांच। मंडालिका में स्पेन के मार्केज ने जीती इंडोनेशियाई जीपी स्प्रिंट, जॉर्ज मार्टिन को पछाड़ चैंपियनशिप में बनाई बढ़त। जॉर्ज मार्टिन की टायर समस्या ने बिगाड़ा खेल, इसी मौके पर फायदा उठा के मार्केज ने जीत हासिल कर ली, मार्टिन 4th स्थान पर पहुंचे। इजान गुएवारा ने Moto2 में पोल पोजीशन हासिल की, जबकि ब्रायन Moto3 में सबसे आगे रहे, दोनों ने खिताबी दावेदारी को दी मजबूती। रोमन गोमेज ने लगातार 3 बार रेड बुल रैम्पेज जीत के रच दिया इतिहास, लगातार 3 खिताब जीतने वाले पहले राइडर बने। न्यूजीलैंड के गेंद में 93.50 अंक हासिल किए। हन्ना बर्गमैन ने 92.75 अंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया। कर्स्टन वैन हॉर्न 86.50 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। रॉबिन गोम्स ने कड़े मुकाबले के बीच खिताब अपने नाम कर लिया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: चीन में इन दोनों आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी एक साथ उड़ते हुए दिखाई दिए। आसमान में उड़ते इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगा मानो हवा में लहरें उठ रही हों। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
11: ये तस्वीरें चीन के शानदोंग प्रांत की है, जहाँ येलो रिवर डेल्टा नेशनल नेचर रिजर्व में पक्षियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। जैसे ही शरद ऋतु ने दस्तक दी, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचने लगे। ये पक्षी झुंड में उड़ते हैं, कभी एक साथ ऊपर उड़ते हैं तो कभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। आसमान में इनकी उड़ान ऐसी लगती है जैसे नीले आसमान में लहरें उठ रही हो। दूर तक फैले पानी और हरे भरे इलाकों के बीच पक्षियों का ये नजारा हर किसी का ध्यान खींच रहा है। पक्षियों को देखने के शौकीन लोग इस खूबसूरत पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कई लोग इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों का ये नजारा न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि ये दिखाता है कि प्रकृति में हर मौसम के साथ कितना कुछ बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है
7: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
8: कल से पवित्र शारदीय नवरात्र का शुभारंभ पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 9 दिनों तक होगी माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना। पंडालों में सजी माता की प्रतिमाएं, नवरात्र के अवसर पर गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में माँ की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथावाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु शामिल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उस

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के 9 दिन, 9 रूप, 9 वरदान, इसी पर आज होगी बात। नवरात्र को लेकर देश भर में एक अलग

प्रदान करता है। ऐसे में माँ के दरबार भी सज चुके हैं। दिल्ली से लेकर वैष्णो धाम तक माँ का दरबार सजा है। तो नवरात्र में कैसे करें संपूर्ण शक्ति साधना, गज पर सवार सहवासिनी क्या संकेत, नवरात्र में कब कब शुभ सिद्धि मुहूर्त, इसी पर होगी बात। हमारे साथ देश के बड़े ज्योतिषाचार्य और कथावाचक भी रहेंगे मौजूद।

0: तो नवरात्र में मां के नौ रूपों की पूजा है। जाहिर सी बात है, इस बार 11 से 20 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र का ये पावन पर्व मनाया जाएगा। इस साल मां दुर्गा के हाथी पर आने को सुख समृद्धि का संकेत माना जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है, तो तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की साधना होती है, चौथे दिन मां कुष्मांडा का पूजन किया जाता है, जबकि पांचवें दिन मां स्कंद माता की उपासना से सुख शांति का वरदान मिलता है। वहीं छठे दिन मां कात्यायनी की साधना से हर संकट पर विजय प्राप्त होती है, तो सातवें दिन मां कालरात्रि को नमन किया जाता है, आठवें दिन मां महागौरी का पूजन होता है और नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। तो भक्त पूरे नवरात्र में देवी की विधि विधान से पूजा करेंगे, श्रद्धा पूर्वक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और आरती करें, माता रानी के नाम से हवन पूजा करें, घर में रोज मां के सामने दीपक जलाएं, अपनी वाणी को शुद्ध रखें और सत्य बोलें, अपने मन में क्षमा, दया, उदारता और उत्साह रखें। साधना को सफल बनाने के लिए तामसिक भाव मन से बिल्कुल दूर कर दें, ये शक्ति साधना के लिए बेहद जरूरी है। नवरात्र मां शक्ति की साधना आराधना का उत्सव है। नौ दिन तक मां के नौ रूपों का दर्शन वंदन भक्त करते हैं और इसके लिए सुख समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। आज हम जानेंगे नवरात्र पर क्या क्या शुभ और सिद्ध मुहूर्त रहेंगे, कैसे शक्ति की संपूर्ण आराधना करी जाए, देवी की उपासना का विधान क्या है, नौ दिन देवी के नौ रूपों के पूजन से कैसे नौ वरदान पाए जा सकते हैं, माँ का शुभ आशीष और कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है जिससे जीवन में धन धान्य और सुख शांति समृद्धि का संचार हो, भाग्य का विस्तार हो, इन तमाम उपायों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ज्योतिष और सनातन के जानकारों से भी ये समझेंगे कि नवरात्र के दौरान नौ दिन माँ के पूजन अर्चन के दौरान किन नियमों का पालन जरूरी है।
1: घट स्थापन का जो मुहूर्त होगा अभिजिन्न मुहूर्त होगा, कारण शास्त्रों में कहा गया चित्रा वैद्यति पुत्र नासिनी, इस बार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल में ही चित्रा नक्षत्र वैद्यति योग दोनों होगा, जिसके चलते शास्त्र मना करता है चित्रा वैद्यति पुत्र नासिनी अर्थात चित्रा और वैद्यति में घट स्थापन नहीं करना चाहिए, जिसके लिए दिन में अभिजिन्न मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। घट स्थापन के लिए प्रमुख समय जो होगा प्रातः 10:51 से लेके दिन में 1:09 तक होगा। इस समय अवधि में घट स्थापन करें, फिर माता पराम्बा का 5:50, 1650 या 10:50 पूजन अर्चन वंदन करें।
0: और चलिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ हैं जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित्रा जी। साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ रही हैं, नितिशा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय शर्मा जी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य राज मिश्रा जी ज्योतिष आचार्य, आचार्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो तमाम ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं और जाहिर सी बात है जैसा कि हमने आपको कहा कि दुर्गोत्सव बस आ ही चुका है और इसकी शुरुआत हो रही है। डॉक्टर सुमित्रा जी आपके पास आते हुए, ये चूंकि आज हम विशेष करके बात कर रहे हैं माता के नौ रूपों की, जाहिर सी बात है ये शक्ति उपासना का सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व हम इसे कहते हैं। ऐसे में जो पहला स्वरूप है माता का वो शैलपुत्री का स्वरूप है और कहते हैं कि माता शैलपुत्री का जो स्वरूप है अपने आप में वो दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करता है। तो घर में जीवन में आत्मविश्वास हो, दृढ़ता हो, मजबूती हो, ये पाने के लिए मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा कैसे की जाए।
2: जी पहले सबको नमस्कार, डीएनटी के माध्यम से सबको शुभकामनाएं। देखिए सबसे पहले जो नवरात्रि की जो पूजा है, जो नौ दिन जो हम पूजा

0: कर रहे हैं। हम सब जानते हैं देवी भागवत में बहुत उल्लेख मिलता है देवी के किस तरीके से उपासना पूजा करनी है। एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगी, सबसे पहले कौन था जिसने इसकी शुरुआत की, अगर बात करते तो राजा सूरत थे जिन्होंने सबसे पहले देवी की उपासना की। तो देवी जब प्रसन्न होती है, उनके सामने प्रकट होती है, बोलती है उनसे, हे राजन, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य चैत्र और अश्विन इस 2 महीने में जो हो रहे हमारे नवरात्रे हैं, इसकी पूजा करते हैं, उनके कष्टों को मैं दूर करती हूँ। अब जब बात करते हैं देवियों की, तो देवियां जैसे हम बोलते हैं कि शक्ति बाहर सिर्फ नहीं है, शक्ति हमारे भीतर भी है। ये 9 दिन अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर शक्ति की उपासना करते हैं, तो हमारे भीतर में जो शक्तियां हैं, हम उससे वापस उजागर भी कर सकते हैं और वापस देवी से हम कनेक्ट भी हो सकते हैं। अगर पहले दिन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम कोई भी चीज, आप देखो हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम एक पहले डिसीजन लेते हैं कि हमको वहां जाना है, एक संकल्प बनाते हैं कि हाँ वहां जाना है। तो जब भी पूजा करें तो पहले दिन में आपको संकल्प करना बहुत आवश्यक होता है कि हाँ मैं आज से 9 दिन तक आपकी उपासना करूंगा या आपके मंत्रों का इतना जाप करूंगा। ये सारी चीजों को पहले दिन संकल्प करके और ये अपने अंदर धारणा करने कि मैं 9 दिन ये चीज करने वाला हूँ, तभी जाकर हमारे भीतर की शक्तियां जगेंगी। पहले दिन की बात करते हो तो माता शैलपुत्री की है और हमारे बॉडी में जितने भी चक्र है, हम हर एक चक्र को अलग अलग दिन पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर माता शैलपुत्री की बात करूँ तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे मूलाधार चक्र को इस दिन एक्टिवेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले नम जो मंत्र है इसका जाप कर सकते हैं और इससे हमारे अंदर, देखिए एक डर है, सभी के अंदर कुछ डर रहता है, कुछ इनसिक्योरिटी रहती है, कुछ असुरक्षा रहता है, कुछ आलस्य रहता है। इसी की वजह से हम काफी बार जीवन में बहुत चीज करना चाहते हैं पर हेजिटेशन में नहीं कर पाते। तो इस दिन माता को नारियल जरूर चढ़ाएंगे, नारंगी कपड़ा पहनेंगे और इस दिन माँ को जरूर घी से बना हुआ कोई प्रसाद जरूर चढ़ाएंगे। जब बात करेंगे सेकेंड डे पे अगर मैं जाती हूँ तो उसमें माँ ब्रह्मचारिणी का दिन
1: बिल्कुल
0: है
1: उनकी बात
0: इस
1: हम
0: दिन।
1: करेंगे सुमित्रा जी, लेकिन जो पहले स्वरूप की हमने बात की उसको लेकर के आपने जिस तरह से बताया है, मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एक एक बातों को, हमारे जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं उनकी बातों को आप गौर से सुने, हम एक एक स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो नितिशा जी, आपके पास आते हुए, माता ब्रह्मचारिणी जो दूसरा स्वरूप है माता का, इसमें आप धैर्य, तप, संयम, माता का जो अपना स्वरूप है वो, उसमें ये तमाम चीजें हमें दिखाई देती है। आपको नहीं लगता है कि आज के समय में विशेष करके इस स्वरूप से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं इसमें इतना स्ट्रेस और तमाम तरह की चीजें हैं, तो ये तो इससे बेस्ट मैं कह सकती हूँ मौका ही नहीं हो सकता है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सके माता से।
2: थैंक यू श्वेता जी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। तो जीएनटी के सभी दर्शकों को महालया अमावस्या के नव दुर्गो के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म का आचरण करने वाली, ब्रह्मा को अपने जीवन में उतारने वाली, ब्रह्म को, यानी उनके हाथ में एक माला है जिससे वो पाठ या जप कर रही है और एक पुस्तक है। ये वो रूप है माँ का। जब एक स्त्री या एक मनुष्य जब पैदा होता है तो वो पहले अपने पिता के नाम से, शैलपुत्री अपने पिता के नाम से जानी जाती है, और दूसरा जब वो एजुकेशन, ज्ञान, ब्रह्म को जानने जाती है, यानी ब्रह्म का आचरण करने जाती है। कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा फैशन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता की बात सुनो, अपने गुरुओं की बात सुनो, गुरु क्या आपको शिक्षा दे रहे हैं उसको सीखो। तो ये वो समय है जब हम अपने जीवन में अपनी तपस्या से, अपनी एजुकेशन से आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को बेहतरीन बनाते हैं। तो ये तपस्या का समय है, ये अपने जीवन में तपने का समय है। तो बच्चों को पहले स्टूडेंट पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, गुरुकुल भेजा जाता था पहले, तो ये वही समय है। तो जब हम अपने जीवन में तप लाते हैं, चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में गृहस्थी के लिए है, या बच्चों को पालने वाला माँ का रूप, तो ये हमें वो तप सिखाता है जब हम अपने संघर्ष के साथ, अपने डिवोशन के साथ जुड़ के अपनी चीजों को प्राप्त करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत स्पेशल है। इस दिन सफेद वस्त्र उनको बहुत प्रिय है, सफेद फूल उनको बहुत प्रिय है, तो सफेद वस्त्र, सफेद फूल उनको अर्पित करें। उनको मिश्री या चीनी का भोग लगता है आज के दिन। आज के दिन बच्चे पुस्तक जरूर पढ़े, अपने घर में पढ़ाई करें, बड़े लोग जो सीखना चाहते हैं वो लोग भी आज के दिन सीख सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो चीनी या मिश्री आप माँ को भोग लगा रहे हैं अपने घर में बच्चों को या बाहर छोटे बच्चों को जो पढ़ने जा रहे हैं या सरकारी स्कूलों में अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो आज के दिन जाके उनकी मदद करो, सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रकृति कहती है मैं 9 दिन तुम्हारे साथ जुड़ी हूँ, लेकिन ये थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड दो पृथ्वी को, तत्व को, प्रकृति तत्व को। तो ये वो दिन है जब हम पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड देते हैं तो जाके बाहर भी लोगों के साथ हेल्प करनी है। तो आज के दिन तप करने वाले छोटे बच्चों को या जो कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको जाके कुछ हेल्प किया जाए, अपने मेट्स के बच्चे हो सकते हैं या किसी भी प्रकार से। तो आज के दिन हमारे जीवन में तप जुड़ जाता है, इसलिए सबको ये तप अपने जीवन में पहले ही कर लेना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बहुत ज्यादा उज्जवल बना सके।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ नितिशा जी, आज के समय में देखिए हमें मतलब जो डेली लाइफ है हमारी, अगर इन शब्दों में हम कहें तो पेशेंस की बड़ी कमी हो गई है एक दूसरे में, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है आज के समय में, रोड रेज के केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये वो समय है, ये पूरा 9 दिन एक तरह से ये पूरा समय है कि हम तप करें, संयम करें और इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में?
2: बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और जैनजीज बहुत आध्यात्मिक हैं, लेकिन वो अध्यात्म को लॉजिकली समझना चाहते हैं, तो हमें ये लॉजिकली समझना पड़ेगा कि माँ ने जो भी अपने रूप के दर्शन रूप में हमें जो समझाने की कोशिश करी है वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये तप अपने माता पिता की बात भी सुननी है, गुरुओं की भी बात सुननी है, आपके मुंह से कुछ गलत अपशब्दों का प्रयोग ना हो, इसकी भी तपस्या है, इसका भी संयम है, क्योंकि आजकल के जैनजी कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको तप करना है और ज्ञान को, अपने नॉलेज को पूरी तरह से प्राप्त करना, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में आपका ज्ञान बहुत डीप होना चाहिए। तो माँ जो ब्रह्म को जानने वाली है वो आपको यही सिखाती है, और साथ ही साथ आप गलत लोगों की संगति से भी बचो, क्योंकि यहाँ पे वो तपस्या करने को कह रही है, वो ब्रह्म का आचरण करने के लिए कह रही है, तो गलत संगति से बचने के लिए भी कहा जा रहा है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेम हो या फिर वो किसी भी तरह से फ्रेंडशिप हो सकती है या सिगरेट या अल्कोहल के, आजकल हम जो बच्चों के साथ
1: जो बुरी आदतें हैं उससे बचने की बात आप कह रही हैं। संजय जी के पास आते हुए, संजय जी अगर तीसरा माता का स्वरूप देखा जाए तो चंद्रघंटा का है स्वरूप, साहस निर्भयता माता सिखाती हैं, देती हैं, इस स्वरूप के बारे में भी बताएं और इसकी पूजा कैसे की जाए ये बताएं।
3: जी, सबसे पहले आप सबको शरदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं, और जो भी जीएनटी के दर्शक देख रहे हैं जीवन में उनके जीवन में सुख शांति रहे। कहा जाता है प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे थी कुष्मांडी थी चतुर्थम पंचम स्कंद माती थी सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धिदाय थी। ये माँ के 9 स्वरूप हैं जो हमें सुख आनंद देने वाले हैं कि 9 दिन हमारे यहाँ 9 नंबर को बड़ा ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि प्रकृति का जो नंबर है वो 9 है, तो ब्रह्मांड को अगर हम देखें तो 360 डिग्री का है, वो 9 बनता है। रुद्र को अगर हम काउंट करें तो 108 बनते हैं, 9 बनते हैं। नक्षत्रों को हम काउंट करें तो 27 है, वो 9 है, 9 ग्रह मंडल है। इसी प्रकार से हर चीज जो हमारी 9 पर काउंट होती है, तो माँ के जो स्वरूप है वो 9 है, और उसमें पहला स्वरूप बड़ा विस्तार से बताया, फिर दूसरा बताया, अब जो प्रथम शैलपुत्र द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे थी, जो चंद्र घंटा माँ का स्वरूप है, कहते हैं कि माँ के अंदर, कहते हैं कि हजारों लाखों सूर्य जिस प्रकार से तेज प्रकट करते हैं उसी प्रकार से माँ का ये स्वरूप हमें जो है तेज निकालता है। कहते हैं कि माँ के इस स्वरूप को देखकर के शत्रु जो है जितना भी भयभीत हो उसका भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि शत्रु डर जाता है जब आप इस स्वरूप के सामने माँ आती है। और माँ के हाथों में जो शंख चक्र बदा गदम त्रिशूल ये सारे हैं, और बब्बर शेर के ऊपर जो सवार होकर के आते हैं। इस बार जो माँ की सवारी है वो गज की है, तो कहते हैं कि गज वहां ही माँ है, और रविवार और सोमवार के दिन माँ हमेशा जो है गज पर रहती हैं। तो ये जो स्वरूप है माँ का, ये आपके जीवन में शत्रुओं से और भय से मुक्ति करता है, जीवन को सुख में और आनंद में बनाता है। इस स्वरूप का जब आप दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में एक शक्ति और सामर्थ्य आ जाता है। कहा जाता है कि आप जब दुर्गा के 32 नामों का रोज अगर आप पाठ कर लें तो आपके सामने अगर शेर भी आ जाए तो शेर भी जो है आपके सामने से बिना कुछ कहे हुए आपसे निकल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। क्योंकि माँ की शक्ति, एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ कि एक बच्चा नित्य नियम से जो है इस पाठ को किया करता था, और वो जब जंगल से कहे भी बीच में जंगल पड़ता था तो एक बार शेर आ गया, तो शेर जो है बिना कुछ कहे हुए उसको उसके सामने से निकल गया। तो माँ की पावर बहुत बड़ी पावर है, और उन नामों का पाठ करने से जो है जीवन में सुख और संपन्नता आती है
1: और इससे बेहतर कोई समय नहीं है। हालांकि ये तो पूरे साल करना चाहिए, लेकिन नवरात्र वो विशेष समय रहता है जब आप ऐसा कर सकते हैं और विशेष कृपा माँ की पा सकते हैं। आचार्य राजमिश्रा जी, चौथे स्वरूप की अब हम बात करेंगे, माँ कुष्मांडा की हम बात करेंगे। ऊर्जा और सृजन की देवी कहा जाता है, यहाँ तक कहा जाता है कि प्रकृति का भी जो सृजन हुआ है उसकी देवी भी माँ ही है। इनके स्वरूप के बारे में बताएं और साथ ही साथ पूजन कैसे किया जाए।
4: ये एक्चुअली सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माता अगर कुष्मांडा की बात की जाए, सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने का वेद ने इनके बारे में बहुत सुंदर शब्द कहा है, सुरा संपूर्ण कलसम चा रुद्रा लुप्तमेव चा तथा नाम हस्पद्माभ्याम कुष्मांडा सुभदास। में सबसे पहले बहुत सुंदर विषय है, अगर माता कुष्मांडा की बात की जाए, ये वो देवी है जिनकी आराधना से वास्तविकता में जीवन के अंदर कोई कमी नहीं रहती। ये वो देवी हैं क्योंकि सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, इस कारण से इनकी आराधना से वो रिस्पेक्ट मिलती है, वो मान सम्मान मिलता है जिसको आप डिजर्व करते हैं और जिसके लिए आप सदैव मेहनत करते हैं। जिन लोगों को भी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त होती है, जिन लोगों को विशेष ये मन के अंदर एक पेन हमेशा रहता है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूं लेकिन मैं जिस रिस्पेक्ट को डिजर्व करता हूं करती हूं वो मुझे नहीं प्राप्त होता है, तो इन देवी की आराधना से वो चीजें प्राप्त होती है। इन देवी के हाथों से अगर आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथ में गदा भी है, इनके हाथ में चक्र भी है, इनके हाथ में धनुष बाण भी है, लेकिन इनके हाथ में माला भी है, लेकिन इनके हाथ में पुष्प भी है, इनके हाथ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गंगा जल भी है, जिसने ये दिखाया श्वेता जी कि अगर आप जीवन में सब कुछ आपको आना चाहिए, आपके हाथ में धनुष बाण भी होना चाहिए ताकि यदि कोई आप पर प्रहार करे तो आप उसके लिए तैयार रहे। वो किसी ने कहा था वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, लेकिन शीतलता भी गंगा जल के अंदर आप गंगा जल की तरह आपके अंदर जरूर होना चाहिए, कोमलता भी पुष्प की तरह आपके अंदर जरूर होना चाहिए, एकाग्रता भी ध्यान की तरह आपके अंदर जरूर होना चाहिए। इनके पूजन के लिए बड़ा सुंदर विषय होता है कद्दू, जिसको कुष्मांडा कहते हैं, वो कोहड़ा का फल होता है जो कद्दू कहा जाता है, तो स्पेशली इनको वो बहुत प्रिय है। और पूजन के बाद देवी को वो सायंकाल की पूजा में जरूर अर्पण करना चाहिए। कोहड़े की बलि दी जाती है इनको, कोहड़ा काट करके दो पीस करके और पूजन में इनको श्रद्धा से अर्पण किया जाता है। इनको जायफल बहुत प्रिय है, जायफल इनको अर्पण किया जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। जायफल लेकर के और उसको दो जायफल जोड़ा लेकर के और उसको काट करके दो भाग में इनको श्रद्धा पूर्वक अर्पण किया जाए, बहुत फायदेमंद होता है। गंगा जल देवी को जरूर अर्पण करना चाहिए, कमल का पुष्प देवी को जरूर अर्पण करना चाहिए। कमल पुष्प, गंगा जल, जायफल और कुमड़ा यानी पेठा, ये चार चीजें देवी के पूजन में जरूर उपयोग करना चाहिए। बाकी जो पंचोपचार पूजा विधि है जिसमें रोली है, मोली है, चावल है, पुष्प है, फल है, बिखा ये चीजें तो आप साधारणतया देवी को अर्पण करते हैं, तो इसके साथ ही जो चार विशेष चीजें है ये जरूर अर्पण करना चाहिए। देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्रद्धा से बैठ करके 108 बार निश्चित रूप से करना चाहिए चतुर्थ नवरात्र के दिन, और ये करने से मैं सत्य कहता हूं, ये इस दिन इस मंत्र को करके और रेगुलर किया जाए तो जीवन में प्रसिद्धि आप निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
4: आपको
1: प्रसिद्धि। राजमिश्रा जी, माता को प्रसाद कौन सा चढ़े माता कुष्मांडा को, ये जरा बताएं, और रंग उनको प्रिय कौन सा है?
4: अगर माता कुष्मांडा क्योंकि सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है इसलिए लाल कलर माता कुष्मांडा को सबसे प्रिय कलर में से है, ठीक है। सूर्य के रंग की तरह जो पिंक स्पेशली जिसको कहा जा सकता है वो माता कुष्मांडा को विशेष प्रिय रंग में से एक है। अगर मैं भोग की बात करूं तो स्पेशली पेठे से बना हुआ कोई भी जो पदार्थ है वो माता को सबसे प्रिय है, उससे बनी चीजें आप निश्चित रूप से चढ़ा सकती हैं। नारियल से बनी हुई मिठाई का भी भोग माता को लगाया जा सकता है, लेकिन इनका नाम ही कुष्मांडा कोहड़ा से यानी पेठा से निकल करके आया है तो वो सबसे प्रिय है, वो विशेष रूप से लगाना।
1: बिल्कुल, चलिए अभी बाकी बचे जो पांच और स्वरूप है माता के उसके बारे में भी हम जानेंगे। तमाम ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बन रहे हमारे साथ, देखते रहिए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: नौ दिन नौ रूप नौ वरदान, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दुर्गोत्सव बस आ ही गया है। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुमित्रा, आपके पास आते हुए माता के जो पांचवे स्वरूप है स्कंद माता, उसकी अगर हम रूप की बात करें तो किस तरह का रूप है, क्योंकि वात्सल्य और स्नेह का रूप उन्हें कहा जाता है।
6: इस रूप में अगर आप देखें, इनका नाम स्कंद इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 6 सर वाले कार्तिक है इनके गोद में बैठे हुए, तो इनके अंदर जो वात्सल्य है, प्रेम है और जो भावुकता है, ये चाहती है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो और हम एक संगठित रूप से चले। जब भी आप स्कंद माता की पूजा करते, सिर्फ देवी की पूजा ना करते हुए कार्तिकेय जो उनके गोदी में बैठे हैं उनकी भी पूजा जरूर करें। एक चीज ध्यान रखने की बात है इसमें, क्योंकि 5th डे है, इस दिन येलो कलर का कपड़ा जरूर पहने और माँ को केले का भोग जरूर चढ़ाएं। केला चढ़ाने से अगर आपकी कोई भी बीमारी है या कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो वो जरूर सॉल्व होते हैं। एक बात आप जरूर मानेंगे कि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। हम कितना अच्छा बात करते हैं, कितना करुणा से बात करते हैं, कितना प्रेम से बात करते हैं और कितना किसी को माफ करने की कैपेसिटी रखते हैं, ये दिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कंद, जिस दिन स्कंद उत्सव हम लोग करेंगे, स्कंद माता की पूजा करेंगे 5th डे में, उस दिन हम अपने विशुद्ध चक्रम जो हमारे कंठ के जो चक्र है ना, इस पे हम ध्यान करेंगे और हम इस मंत्र का जाप करेंगे। और एक और खास चीज कर सकते हैं, अगर हम इसको हम का जाप अगर हम कर रहे हैं 108 टाइम्स भी अगर करते हैं
0: जी,
6: इतना नहीं कर पाते 28 टाइम्स करें, इससे हमारे आकर्षण भी बढ़ेगा, बातों में प्रभाव बढ़ेगा, लोग हमसे इन्फ्लुएंस भी होंगे। 5th डे पे यहाँ पे हाथ पे 555 की लिखें, इसको 28 टाइम्स बोलें। अगर आप बैठ के पूजा नहीं कर सकते तो भी आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा।
0: बिल्कुल नितिशा जी, आपके पास आते हुए अगला स्वरूप माता का जो छठा स्वरूप है वो माँ कात्यायनी का है, कहते हैं कि विजय का स्वरूप है अपने आप में, इस स्वरूप के बारे में बताएं और पूजा विधि।
7: थैंक यू श्रोता जी। देखिए, ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया, तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये सफलता तख्त की देवी मानी जाती है क्योंकि महिषासुर का उन्होंने नाश किया था और साथ ही साथ माँ को सम्मानजनक जो सामाजिक परिस्थितियां उनसे भी जोड़ा गया है, साथ ही साथ रिश्तों की गहराई से जोड़ा गया, रिश्तों की ईमानदारी से जोड़ा गया और दाम्पत्य जीवन के सुख से भी जोड़ा गया। नव ग्रहों में जो गुरु तत्व है उसका प्रतिनिधित्व करती है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से हमारे जीवन में, हमारे जो रिश्ते हैं उसमें मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा या जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा, वो अगर आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते तो उनके विवाह के रास्ते खुल जाते हैं, उनको अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और सम्मानजनक सीमाओं की अगर मैं बात करूं, जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने सम्मान को बनाते हुए, अपनी लॉयल्टी को क्रिएट करते हुए जब वो अपने नाम को आगे बढ़ाते हैं तो माँ उनको वहां पे सफलता प्रदान करती है। तो अगर आपके भी रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तो माँ को आज के दिन शहद चढ़ाएं। लाल वस्त्र माँ को बहुत प्रिय है, पीला वस्त्र माँ को आज बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता है, तो पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र, हल्दी के 7 गांठों की माला अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो आपको सफलता प्राप्ति का वरदान मिलता है। आपके डिसीजन सही नहीं हो पा रहे, चाहे वो रिश्तों में या बाहर आपके जॉब प्लेस पर, आपके डिसीजन सही होने लगते हैं क्योंकि गुरु तत्व की प्रधानता हमें प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ शहद का भोग लगाने के बाद अगर पति पत्नी दोनों उस शहद को ग्रहण करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। साथ ही साथ कहूंगी माँ को गुलाब के पुष्पों में कपूर से अगर आज के दिन आरती की जाए और उनसे प्रार्थना की जाए आपकी किसी भी सफलता के लिए, सक्सेस के लिए मैनिफेस्ट किया जाए, तो आज का दिन जो छठा रूप है वो आपको सक्सेस और सम्मान और साथ ही साथ प्रेम दाम्पत्य जीवन भी देता है।
8: बिल्कुल संजय जी, आपके पास आते हुए माँ का जो 7वां स्वरूप है वो है माँ काल रात्रि, भय से मुक्ति का स्वरूप, देख के ही लगता है उनका जो स्वरूप है, उनकी आराधना कैसे की जाए, जीवन से नकारात्मकता और भय कैसे दूर किया जाए?
9: जी, कहा जाता है कि काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी यद पूजितम माया देवी परिपूर्णम तदस्तु। जो काली का स्वरूप है या काल स्वरूप है, कहते कि सभी भयों से मुक्त करने वाला है। उनका एक भयंकर रूप जो है दिखाई देता है, कहते कि माँ जो है सभी नेगेटिव पावर को जो है नष्ट कर देती है। इस स्वरूप की जो आराधना करता है कि इनकी जो सवारी है वो गधे की सवारी है, तो इस स्वरूप की जब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो माँ जो है आपके हाथों में, कहते हैं जैसे खड़ग है, चक्र है, त्रिशूल है, भाला है, ये सारे माँ के अस्त्र शस्त्र होते हैं। परंतु जो है ये भयंकर रूप है माँ का, जब इस भयंकर रूप को कोई देखता है तो डर जाता है। कहते कि चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे, क्योंकि चंड और मुंड को संहारने वाली माँ है। और कहा जाता है कि इनका जो स्वरूप है, हंकार मात्र से जो है व्यक्ति जो है भयभीत हो जाता है। और माँ की जितनी उपासना हम करते हैं मंत्रों के द्वारा, जितने भी दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, आप देखें 700 मंत्र उसके अंदर दुर्गा सप्तशती में, उनका अगर पाठ करते हैं तो हर मंत्र का एक अपना प्रभाव होता है। कि मंत्र को जपना भी, क्योंकि एक आदमी मन में करता है, एक मध्यम स्वर में करता है, एक दीर्घ स्वर में करता है। अगर आप थोड़ा सा लाउडली करते हैं किसी भी मंत्र को, या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या फिर जो है उसके स्वरूप की निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी अनेरणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। जब मंत्रों का साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, अगर आपका तेज होगा तो किसी भी प्रकार का भय और रोग, किसी भी प्रकार का शत्रु से मुक्त हो जाते हैं। तो ये माँ एक ऐसी माँ है जो हमेशा सदा वरदान देती है। और आपने बड़ी अच्छी बात पूछी थी कि भोग की बात आपने पूछा था कि क्या क्या भोग लगाए, तो माँ काली को जो भोग लगना चाहिए वो गुड़ का जो है, गुड़ कहते हैं कि गन्ने का जो रस होता है उसे गुड़ बना करके उसका भोग अगर माँ को अर्पित किया जाए तो वो सबसे ज्यादा जो है शुभता प्रदान करने वाली है। और यही भोग जो है काली को दिया जाता है, और इस भोग को देने से जो है काली शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। इसके अलावा जो है लौंग का बेड़ा और इलायची, ये सब जो है अंगारी करके माँ को जो है दिया जाता है, और लाल रंग का जो कलर है, सिंदूर है, वो अर्पित किया जाता है। तो ये स्वरूप माँ का जो है हमेशा वरदान देने वाला होता है और भयों से मुक्त जीवन को कर देता है, सारी विघ्न बाधाएं व्यक्ति की जो है
8: वो दूर कर देता है।
9: सबसे बड़ी शक्ति कर्म है, तो अपने कर्म प्रधान रखें जिससे कि माँ का आशीर्वाद सदा मिलता रहे।
8: बिल्कुल, जो 8वां स्वरूप है अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। राजमिश्र जी आपसे जाना चाहेंगे, माता महागौरी ये 8वां स्वरूप है, शुद्धता, निर्मलता, शांति, क्या कहेंगे, कैसे पूजा करें?
10: शक्ति का जो 8वां स्वरूप है यही तो वास्तविक स्वरूप है, जो समस्त अमंगल को हरण करके जो मंगल को प्रदान करने वाला स्वरूप है, और शिवत्व से उत्पन्न होकर के शिवत्व की तरफ जो बढ़ने का स्वरूप है वह एक्चुअल में यह स्वरूप है। जब देवी की आराधना की जाती है तो हम सभी लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, सर्व मंगल मांगल्य, देवी मंगल का स्वरूप है। और मंगल को प्रदान करने वाली है। शिवे सर्वार्थ साधि के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये वो देवी हैं। आप जब पहले स्वरूप की चर्चा कर रही हैं श्वेता जी, तो आप देखेंगे जो पहला स्वरूप है आदिशक्ति का, वहां पर वो वृक पर सवार उनका स्वरूप है, बैल पर सवार है। यानी बैल को धर्म कहा जाता है। किसी भी आराधना को जब आप प्रारंभ करते हैं तो आप धर्म से प्रारंभ करते हैं, सत से प्रारंभ करते हैं, और आराधना की पूर्णता की तरफ बढ़ते बढ़ते आपके अंदर धर्म ही होना चाहिए। बीच में कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो लेकिन धर्म से आपको नहीं डिगना चाहिए। इस चीज को आदिशक्ति ने सिखाया। जब आप महागौरी के स्वरूप को याद करेंगे तो महागौरी का जो वास्तविक वाहन है वो बैल का ही है, जो कि माँ शैलपुत्री का है, वही माता महागौरी का है। यानी धर्म से नवरात्र को प्रारंभ करके, सत्य से प्रारंभ करके और नौ दिन सत्यता के साथ पालन करके अगर आया जाए तो माँ गौरी वो सब कुछ प्रदान करती है जो आपके जीवन में आपको चाहिए। समस्त मंगल का हरण करके आपके जीवन में मंगल को प्रदान करती हैं। और यहां से आपका वो जो सिद्धदात्री का जो स्वरूप प्रारंभ होता है, नवम सिद्धदात्री चानो दुर्गा प्रकृतिता, उस सिद्धि की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। मुझे लगता है कि मैं महागौरी के बारे में जितना भी चर्चा करूं बहुत कम होगा, बट पुनः एक बार धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को इन स्वरूपों के चर्चा का सौभाग्य प्राप्त।
8: बिल्कुल, और हम यहाँ पर सुन पा रहे हैं आप लोगों की बात, जो आप लोग खुद अपने अपने क्षेत्र में प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, आप लोगों की बात हमें सुनना और इस पर चर्चा कर पाना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा मौका मिलता है। डॉक्टर सुमित्रा जी, आपके पास आते हुए अब माता के जो नवा स्वरूप है, उनका जो आखिरी स्वरूप है नौ दिनों में, उसके बारे में अगर हम बात कर ले, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, सिद्धिदात्री अपने नाम से ही इससे पता चलता है कि आपको सिद्धि की प्राप्ति मिलती है, आपको पूर्णता की प्राप्ति मिलती है जीवन में। ऐसे में इस दिन माता को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या भोग लगे विशेष करके, उसके बारे में बताएं।
6: देखिए, सबसे हम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। शिव और शक्ति दोनों के आधार पर ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जब भगवान को ये अर्धनारेश्वर स्वरूप लेना था तब उन्होंने सिद्धिदात्री देवी की ही पूजा की थी और प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि वरदान में दी थी। तो अगर हम अपने जीवन में कोई भी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इनका सीधा रिलेशन है हमारे सबसे ऊपर वाले चक्र, हमारे सहस्रार चक्र के साथ, तो अगर हम अपने जीवन में कोई भी चीज पाना चाहते हैं तो इस देवी को तो जरूर पकड़ना। और हमारा एक बीज मंत्र जो हम जानते हैं, सब जिसको कोई मंत्र नहीं आता उसको ओम बोलने जरूर आता है, तो ओम मंत्र का जाप हम करेंगे और इस देवी को प्रसन्न करने के लिए अगर हम पीकॉक ग्रीन कलर का अगर कपड़ा पहन के बैठते हैं रेड कलर के मैट पर नॉर्थ ईस्ट कोने पर, और भगवान को हलवा पूरी और चना चढ़ाते हुए हम भगवान की आराधना करते हैं, और जो हमने पहले दिन संकल्प किया था उस संकल्प की आज कंप्लीशन होगा, क्योंकि हम बोलेंगे हमने जो नौ दिन हमने जो आपसे संकल्प किया था मैंने उसकी पूरी पूरा किया है, मैंने नौ दिन आपकी आराधना की है, और जो हमारा विश होता है वो हम भगवान से मांगेंगे। जो लोग भी ये नौ दिन अलग अलग रिचुअल्स नहीं कर सकते, अलग अलग प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, या जो आपकी तरह ऑफिस में या जीएनपी पे बैठे हैं, वो हर दिन जैसे फर्स्ट डे पे 111 लिखेंगे हाथ में और 28 टाइम्स आप देवी का आराधना करेंगे, 222 लिखेंगे सेकेंड डे, थर्ड डे 333, फोर्थ डे 444, फिफ्थ डे 555, सिक्स डे 666, सेवन डे 777, एट डे 888 और नाइन्थ में 999 लिखेंगे। जो आपकी विश है रेड पेन से पहले यहाँ पे लिख लें और भगवान को ध्यान करते हुए बोले कि हे माँ मेरी इन मनोकामना को जरूर पूरा करें, तो मन और श्रद्धा के साथ अगर आप इसको करेंगे तो देवी आपकी बात जरूर सुनेगी।
8: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही सुमित्रा जी। नितिशा जी, आपके पास आते हुए हमने देवी के नौ स्वरूप की बात कर ली है, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि घट स्थापना को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही है, समय को लेकर के कहा जा रहा है, लेकिन शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें, जो लोग घर में पूजा करने वाले हैं वो किस समय घट स्थापना करें, या फिर जयंती वगैरह जो लोग लगाते हैं घर में वो किस समय लगे, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या?
7: जी श्वेता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वेदिति योग बन रहा है, चित्रा नक्षत्र बन रहा है और कहा जाता है कि इस समय घट स्थापना नहीं की जाती है, तो सिर्फ अभिजीत नक्षत्र ही सबसे बेस्ट है जिस समय हम घट स्थापना कर सकते हैं। ये नक्षत्र श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और इसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह पाती है, इसलिए ये नक्षत्र सबसे शुभ है। दो शुभ समय हमें मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है सुबह 6:19 से शुरू हो रहा है और 10:12 तक रहने वाला है, एक मिल रहा है जो अभिजीत नक्षत्र चक्र जो सबसे बेस्ट है वो शुरू हो रहा है 11:44 से शुरू हो रहा है और 12:31 तक पर दोपहर में समाप्त हो रहा है। तो ये जो 44 मिनट का ये जो नक्षत्र है, इसी समय अगर घट स्थापना की जाए, अखंड ज्योति अपने घर में जलाई जाए, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस दिन ग्रह सहयोग बहुत शुभ बन रहे हैं। श्वेता जी, गज केसरी राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग की स्थापना हो रही है, शुक्र और बुध एक साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग की स्थापना कर रहे हैं, शनि महाराज मीन राशि में शश नामक राजयोग की स्थापना कर रहे हैं और गुरु उच्च ग्रह बने हुए हैं और इस समय हंस नामक राजयोग की स्थापना कर रहे हैं। तो ये जो ग्रह योग बने ये बेहद शुभ है और इस समय अगर हम अभिजीत नक्षत्र को पकड़कर जवारे बीजते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा। श्वेता जी, एक उपाय जरूर बताना चाहूंगी कि जो लोग इस समय 9 के 9 दिन सिर्फ दुर्गा सप्तशती पढ़ लेते हैं अखंड जोत जला के, पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसका कवच, कीलक, सिद्ध कुंजिका, अर्गला स्त्रोत और रात्रि सूक्तम, जो काली माँ काली की महिमा है, आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और जिस घर में अखंड जोत जलती है, ना वहां पे कभी दरिद्रता का वो रहता है, वास रहता है, और ना ही वहां पे कभी अल्प आयु में मृत्यु होती है। तो अखंड जोत जो लोग जॉब नहीं करते हैं, घर पे है, वो लोग जरूर जला सकते हैं, और जो लोग नहीं जला सकते वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ को आखिरी दिन नारियल चढ़ाने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और नव ग्रहों की पूरी हमें जो हमारी दशा भुक्ति चल रही होती है वो भी समाप्त होती है।
8: बिल्कुल, एकदम सरल शब्दों में एक बार दर्शकों को, जिन्होंने आप लोगों ने सुना ही, अभी बताया ही नितिशा जी ने, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से सिर्फ कवच, अर्गला, कील, ये पढ़ा जाता है, जिनके घर में भी पाठ होता है वो जानते हैं ये क्या होता है। तो जोत जलाकर अगर आप ये पढ़ ले तो उसी से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो माता अवश्य पूर्ण करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तो देखिए, त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में छा जाता है रंगों और रौनक का जादू, और जब बात नवरात्र की हो तो गरबा के रंग में रंगने का उत्साह ही कुछ अलग होता है। वहीं चनिया चोली की चमक तो कहीं केडिया कुर्ते और पगड़ी का स्वैग। इस बार गरबा फैशन में परंपरा के साथ दिख रहा है मॉडर्न स्टाइल का तड़का। गुजरात के राजकोट से राजस्थान के पारी तक गरबा ड्रेस का क्रेज हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है।

0: रंग बिरंगे लहंगे, चमचमाती चनिया चोली, माथे पर सजी पगड़ी और कदमों में गरबा की थिरकन। नवरात्रि की आहट के साथ ही बाजारों में त्योहार का रंग चढ़ने लगा है। कहीं पारंपरिक गुजराती पहनावे की चमक है तो कहीं जेन ज़ी के फैशन का नया अंदाज। माँ की भक्ति में डूबकर गरबा खेलने की तैयारी है और इस बार हर कोई अपने लुक को खास बनाने में जुटा है। गुजरात के बाजारों से लेकर देश के दूसरे शहरों तक गरबा की ड्रेस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। नवरात्र की नौ रातें, माँ दुर्गा की आराधना और गरबा के संगीत पर थिरकते कदम। इस उत्सव में जितनी अहमियत भक्ति और संगीत की है, उतना ही खास है पारंपरिक पहनावा। महिलाओं के लिए चनिया चोली और लहंगा, तो पुरुषों के लिए केडिया, कुर्ता और पगड़ी गरबा के रंग को और खूबसूरत बना देते हैं ये परिधान। यही वजह है कि त्योहार करीब आते ही बाजारों में खरीदारी की रौनक बढ़ने लगी है। दुकानों पर नई डिजाइन सज चुकी हैं और ग्राहक अपनी पसंद का परिधान तलाश रहे हैं।
1: परसों से चनिया चोली और जेंट्स वेयर का कपड़ा बने थे। चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है और हम बनाते हैं। सब बाहर गाँव जाते हैं, बॉम्बे साइड और जाते हैं और उसकी रेट 2000 से लेके 15000 तक चनिया चोली का रहता है। कपल सेट भी हम बनाते हैं।
2: इसमें कौन सा कौन सा वर्क होता है?
1: उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है और आरी वर्क होता है और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, सब यहाँ बनता है।
0: इस बार गरबा फैशन में परंपरा और आधुनिकता का शानदार मेल देखने को मिल रहा है। क्लासिक मिरर वर्क, कच्ची कढ़ाई, बंधेज और पारंपरिक गुजराती पैटर्न के साथ नए डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं।
3: अपनी चोली का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, फ्रेंड्स भी यहाँ से ही लेने का प्रेफर करते हैं और हमें यहाँ का काम बहुत पसंद है।
4: कितने साल से यहाँ पे खरीदी करते हैं?
3: 10 साल से यहाँ से।
4: और कैसा लगा यहाँ का हैंड वर्क वगैरह?
3: बहुत अच्छा होता है।
0: कहीं क्रॉप टॉप के साथ चनिया चोली का नया अंदाज है तो कहीं कटआउट ब्लाउज और जैकेट के साथ लहंगे को मॉडर्न लुक दिया गया है। अजरक सिल्क, हैंड पेंटिंग और प्लेन चोलियों के विकल्प भी मौजूद हैं। यानी अपनी पसंद और स्टाइल के हिसाब से इस बार गरबा का लुक चुनने की पूरी आजादी।
5: नया कॉस्ट्यूम में, यानी कि समझो कि आप बॉयज के लिए देखो तो नया 5 पीस किड़ी आया हुआ है। बॉयज के लिए जब्बा और कुर्ते में प्रिंट वाले है, वेलवेट में है और ये सब नया ट्रेंडिंग आया हुआ है। गर्ल्स के लिए समझो तो आप चनिया, केड़िया और ब्लाउज ऐसा सब पहनने को अच्छा पसंद करते हैं और समझो कि आप उसको केड़िया, चनिया और पाग 2 फीट 3 फीट का पाग पहनने को गर्ल्स अभी ज्यादा इंसिस्ट करते हैं।
0: गुजरात के राजकोट में भी बाजारों में परिधानों की खरीदारी चल रही है। कॉस्ट्यूम कारोबारी के मुताबिक इस साल युवतियों में सफेद थीम वाली अलग अलग डिजाइन की चोलियों की मांग देखने को मिल रही है। कच्ची वर्क, हैंड पेंटिंग, अजरक सिल्क और प्लेन चोली भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है।
5: डिजाइनर पीसेज है, जो 5 पीस है वो सब कच्ची पैच में है। जो पुरानी जो हमारी रबारी ड्रेस है, भरवाड़ी ड्रेस है, भरवाड़ जो कम्युनिटी है वो ड्रेस पहनती है, वैसा सब रैंक के लिए पहन।
0: गरबा के लिए हर रात नया लुक अपनाने की चाहत भी बाजार को रफ्तार दे रही है। ऐसे में बहुत से लोग ड्रेस खरीदने के बजाय किराए पर लेना पसंद कर रहे हैं। राजकोट में 9 दिनों के लिए कॉस्ट्यूम बुक कराने का चलन भी देखने को मिल रहा है। एक दिन के परिधान का किराया करीब 1000 से 3000 रुपए तक बताया जा रहा है। इससे लोग अपने बजट के मुताबिक पसंदीदा ड्रेस चुन सकते हैं और अलग अलग रातों में अलग अंदाज के साथ गरबा का आनंद ले सकते हैं। इस बार सिर्फ महिलाओं के पहनावे में ही नहीं बल्कि पुरुषों और युवाओं के फैशन में भी नए प्रयोग हो रहे हैं। पारंपरिक केड़िया कुर्ते के साथ आकर्षक पगड़ी का क्रेज बढ़ रहा है। गुजराती भाषा में पाग कही जाने वाली इस पारंपरिक पगड़ी को युवा अपने लुक का खास हिस्सा बना रहे हैं। कुछ जगहों पर 2-2 फीट तक की बड़ी पगड़ियां भी आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। वहीं रंगीन छतरियों के साथ गरबा खेलने की परंपरा भी उत्सव को अलग पहचान देती है। इन परिधानों में संस्कृति की झलक भी है और युवाओं का उत्साह भी। राजकोट में गरबा ड्रेस का क्रेज तो है ही, लेकिन वहीं राजस्थान के पाली में भी गरबा को लेकर बाजारों में उत्साह नजर आने लगा है। यहां महिलाएं सिर्फ ड्रेस खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी पसंद के डिजाइन तैयार करके आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई और डिजाइनिंग के जरिए महिलाएं अपने हुनर को कारोबार में बदल रही हैं। गरबा के लिए हर साल कुछ नया पहनने की चाहत ने इस काम को नया अवसर दिया है।
6: यहाँ पर बेटाइन के लिए ड्रेसेस देखने के लिए आई हूँ और मुझे मैंने यहाँ पर 5 ड्रेसेस लिए, वो मुझे सारी अच्छी लगी है और जिस तरीके की मुझे चाहिए थे वैसी मुझे अच्छी, और यहाँ पर वैरायटी भी बहुत ज्यादा है।
7: मतलब मुझे चीज की चीज वैरायटी देखी, क्या चीज नहीं देखी आपने जो पसंद आई आपको उसके अंदर?
6: मुझे यहाँ पर जो मतलब आज के टाइम में जो डिजाइन और जो जैसे ड्रेसेस मतलब चल रही है वैसे मुझे ड्रेसेस यहाँ पर मिली है और मैंने यहाँ पर ड्रेसेस बुक की है।
0: पाली में डिजाइनर पारंपरिक गुजराती और काठियावाड़ी पैटर्न के साथ नए प्रयोग कर रहे हैं। कॉटन फैब्रिक के जैकेट और लहंगे के साथ मिलाकर नए लुक तैयार किए जा रहे हैं।
8: हम हर साल ऐसा कुछ नया सोचते हैं कि इस बार मतलब ऐसी डिजाइन बनानी है कि सबको देखते ही पसंद आ जाए कि वाह ये कुछ इस बार अलग नया है, वैसा पैटर्न ही हम चूज
7: करते हैं। अगर आज की बात करें तो आप इस बार कौन सी नई डिजाइन बने जो दिखा सकते हैं आपको?
8: इस बार बहुत ज्यादा तो जॉर्जेट का कपड़े में चल रहा है और अभी थोड़ा सा गुजराती वर्क का थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत कम होता जा रहा है, पर हमने वो सब मिक्स करा है, गुजराती वर्क एंड दूसरा फैब्रिक, दोनों मॉडर्न स्टाइल और गुजराती दोनों को मिक्स करके और कुछ अलग न्यू बनाया है हमने। हम आपको वो बताते हैं, जैसे कि कॉटन और कॉटन के ऊपर लपे की लेस आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, गामती भी हो गई, और जिनको ऐसा होता है कि हमको लॉन्ग में चाहिए वगैरह में, तो हम जैकेट स्टाइल में और पूरा लहंगा स्टाइल में दोनों लुक को इकट्ठा करके एक नया पीस बनाया है।
0: रंगों और कारीगरी के मेल से ऐसी पोशाकें बनाई जा रही हैं जो गरबा करते वक्त आकर्षक नजर आए। युवतियाँ ड्रेस पहनकर उसकी फिटिंग जांचती हैं, घूमकर लहंगे का घेर देखती हैं और दोस्तों या परिवार की राय लेकर पसंद तय करती हैं, क्योंकि गरबा में सिर्फ कपड़ों का रंग ही नहीं घूमते हुए लहंगे का अंदाज भी खास मायने रखता है।
9: लहंगे में वैरायटीज है और लहंगे में फुल घेर भी मिल जाता है, जब हम डांस करते तो ऑब्वियसली लहंगा अच्छा दिखना चाहिए, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है।
0: गुजरात की पहचान बन चुका गरबा अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी खूब लोकप्रिय है। यही वजह है कि गुजरात में तैयार होने वाली चनिया चोली, लहंगे, केड़िया कुर्ते और पगड़ियों की मांग दूसरे राज्यों तक पहुंचती है। नवरात्रि नजदीक आते ही इन परिधानों की डिलीवरी शुरू हो जाती है। दुकानदारों के लिए ये कारोबार का अहम समय है, ग्राहकों के लिए अपनी पसंद का रंग और डिजाइन चुनने का मौका। पारंपरिक कारीगरी से लेकर आधुनिक कट तक बाजार हर उम्र के लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर सजाए गए हैं। पाली से भरत भूषण जोशी, राजकोट से रौनक योगेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर। राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या है नवरात्रि की महिमा, क्या है कलश स्थापना का विधान, देवी की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
9: कल से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ श्रद्धा भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक होगी। माँ दुर्गा के विधिवत स्वरूपों की पूजा अर्चना, पंडालों में सजी माता की प्रतिमाएं। नवरात्र के अवसर पर गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे राम कथा वाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु उसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था। जोधपुर एयरबेस पे गर्ज लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना कदम, तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हो शामिल। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इसका मकसद। साल 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर हुई थी इसकी शुरुआत।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और अच्छी खबर सच्ची खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात शारदीय नवरात्र की, भक्ति शक्ति और साधना के महापर्व की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। कल यानी कि 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 पावन स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल मान्यता है कि देवी उपासना का ये महापर्व नया उजाला, नई शक्ति और असीम ऊर्जा लेकर आता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में घटना स्थापना काफी ज्यादा जरूरी मानी जाती है। हम आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त तो बताएंगे ही, ये भी बताएंगे कि क्यों विशेष है इस बार का शारदीय नवरात्रा।

0: शारदीय नवरात्र। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के सामने आत्मसमर्पण का महायज्ञ है। माँ जगदम्बा जो सृष्टि की सृजनकर्ता भी है, उसका पोषण भी है और अधर्म का विनाश करने वाली महाकालिका भी, उनकी उपासना का पर्व का शुभारंभ होने वाला है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 पवित्र स्वरूपों की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। इस बार नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर यानी कल रविवार को हो रही है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में की गई कलश स्थापना घर में सुख समृद्धि और शांति लाती है, लेकिन देवी की उपासना की महानवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना के साथ होता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त जानना बेहद जरूरी है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को रात 9:19 से हो रहा है। प्रतिपदा तिथि का समापन 11 अक्टूबर रात 9:30 माना जा रहा है। उदय तिथि को मानते हुए कल स्थापना या घट स्थापना 11 अक्टूबर को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से लेकर 10:26 तक होगा। इस अवधि में किसी कारणवश आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते, तब अभिजीत मुहूर्त में ये कार्य आप पूर्ण करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:51 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा।
1: घट स्थापन के लिए प्रमुख समय जो होगा प्रातः 10:51 से लेके दिन में 1:09 तक होगा। इस समय काल में, इस समय अवधि में घट स्थापन करें। घट स्थापन करने के बाद बंदनवार से सुशोभित करें, फिर माता पराम्बा का 550, 1650 या 1050 पूजन अर्चन वंदन करें। माँ की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, जिन लोगों को इतना न कर पावे उन लोगों को माँ का नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें।
0: शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र इस वर्ष शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में नवरात्र के दौरान तिथि का बढ़ना शुभ माना गया है और इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण शारदीय नवरात्र 10 दिनों के होंगे। यानी घरों से लेकर पूजा पंडालों तक 10 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होगी और वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देगी। क्यों खास है अश्विन माह के नवरात्र? इस बार माता रानी का आगमन रविवार को हो रहा है। माता इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्र का समापन मंगलवार को माना जा रहा है। इस तिथि पर माता रानी का प्रस्थान घोड़े पर होगा। नवरात्र का समापन दशहरे पर 20 अक्टूबर को होगा। नवरात्र में रात्रि की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब जब संसार में अंधकार छाया, जब जब भक्तों ने सच्चे मन से बुलाया, तब तब माँ भगवती अपनी दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट हुई। माँ केवल शक्ति नहीं, माँ करुणा का सागर है, माँ ममता का आंचल है और अपने भक्तों की रक्षा करने वालों की ढाल है। लेकिन इस बार माँ के आगमन पर ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन के तमाम कष्टों को खत्म कर देंगे। लगभग 100 साल बाद गजकेसरी राजयोग बन रहा है, जो मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला और कुंभ समेत कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायी माना जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्ल पक्ष और ब्रह्म योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में की गई पूजा और साधना का कई गुना फल मिलता है। इसके साथ ही 19 अक्टूबर को विशेष संधि पूजा का अत्यंत अहम महासंयोग बन रहा है। शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का उत्सव है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार 11 अक्टूबर से हो रही है और जैसा कि हम जानते हैं माँ के आगमन का पहला कदम होता है घट स्थापना। पूरे मन श्रद्धा और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखकर घट स्थापना करें और माँ जगदम्बा को अपने घर आमंत्रित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुलाबी नगरी जयपुर में भी मां के आगमन की तैयारियां तेज हैं। मूर्तिकार दिन रात काम कर रहे हैं और मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस बार मां की सबसे भव्य 23 फीट ऊंची मूर्ति आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही रेगिस्तान की धरा पर इस बार बंगाल की भव्य कला और संस्कृति का अनूठा संगम भी देखने को मिलेगा। 70 साल

0: जगत जननी माँ दुर्गा के आगमन में अब चंद घंटे शेष हैं, लिहाजा देश भर में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कहीं माँ की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं दुर्गा पंडालों को आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें गुलाबी नगरी जयपुर की है, जहाँ इन दिनों भक्ति, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मूर्तिकार दिन रात एक करके माँ की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कोई मिट्टी के रूप गढ़ रहा है, कोई रंगों से माँ के चेहरे के नए नक्श को जीवंत कर रहा है।
1: जयपुर के एक कारखाने में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मूर्तियाँ जो है वो बनने लग गई हैं। तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। अलग अलग मूर्तियाँ, अभी हर एक मूर्ति अपने अलग चरण पे है। कुछ का ढांचा अभी तैयार हुआ है, तो कुछ का पेंट चल रहा है, कुछ मूर्तियों में नैन नक्श दिए जा रहे हैं, तो कुछ में पोशाक पहना के श्रृंगार किया जा रहा है। दुर्गा माता की जो मूर्तियां हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई जा रही हैं, और कुछ जो पोशाक में ऑलरेडी हैं उनके अलावा भी जो बची हुई मूर्तियां हैं, जिनको जिस तरीके से उनका श्रृंगार किया जाने वाला है, उसकी पोशाकें भी यहाँ पे रखी हुई हैं। हर एक मूर्ति एक अलग संदेश देती है, अपना आशीर्वाद लेके आती है। हर साइज में यहाँ पे मूर्तियां हैं, और 23 फिट तक की यहाँ पे मूर्तियां हैं। ये छोटी सी मूर्ति यहाँ पे दुर्गा माता की बहुत खूबसूरत है, और ऐसे ही ये छोटी मूर्ति थोड़ी बड़ी और 23 फिट सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे है।
0: इन तैयारियों के पीछे बंगाल के हुनरमंद कारीगरों की मेहनत है, जो पिछले 3 से 4 महीनों से इन प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हैं।
2: इसको बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि सब कुछ जो भी इसके अंदर खड़ और मट्टी वगैरह जो भी होता है वो बाहर कलकत्ता से मंगाई जाती है, गंगा की मट्टी होती है, वहाँ से आने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए प्रोसेस लंबा हो जाता है। उस मट्टी के अंदर फिर गौमूत्र होता है, और रेड लाइट एरिया के आंगन से वहाँ मट्टी लाई जाती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब इनको मिक्स करके जब बनाया जाता है तो उसको एकदम सही तरीके से बनने में कम से कम 2 या 3 महीने तो लगते ही हैं, और जब तक वो अच्छी तरीके से सूख नहीं जाए तब तक उसको फिनिशिंग चलती रहती है, उसी में समय लगता है।
0: हालांकि सबकी निगाहें इस बार माँ की 23 फीट ऊंची प्रतिमा पर होगी। इसकी भव्यता में पारंपरिक पीली साड़ी 4 चांद लगाएगी, साथ ही उनका श्रृंगार चांदी के आभूषणों से किया जाएगा।
2: हमारी मूर्ति का जो साइज है वो कम से कम 23 फुट से ऊपर जा रहा है, एकदम नीचे से लेकर ऊपर के मार के एकदम ऊपर तक, तो ये 23 फुट तक जाएगा। और इस बार पूरा का पूरा चांदी के द्वारा ही बनाया जा रहा है, और वही उसी थीम पे हमने लिया है। चांदी का इतना भव्य रूप दिखेगा कि आप देख के वाकई में बोलेंगे कि हाँ वाकई में हमने बहुत कुछ मेहनत किया है।
0: एक तरफ मूर्तिकार माँ की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ माँ के स्वागत के लिए तैयार किए गए दुर्गा पंडाल में अद्भुत छटा बिखरी है। ये करीब 70 साल पुरानी परंपरा वाली दुर्गा बाड़ी, हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा बाड़ी श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए तैयार है। यहाँ वियतनामी मार्बल से बनी महिषासुर मर्दिनी की अद्भुत प्रतिमा के साथ साथ हर साल की तरह विशेष मिट्टी की प्रतिमा की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। रेगिस्तान की धरती पर इस बार बंगाली संस्कृति और वास्तुकला का एक ऐसा अलौकिक रूप देखने को मिलेगा, जो श्रद्धालुओं को सीधे कोलकाता के भव्य पंडालों की याद दिला देगा। पंडाल का सबसे बड़ा आकर्षण होगा इसका भव्य प्रवेश द्वार, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है। बंगाल के पारंपरिक प्राचीन मंदिरों की तर्ज पर इसे डिजाइन किया जा रहा है। पंडाल को पूरी तरह से प्रमाणिक रूप देने के लिए सजावट के विशेष प्रॉप्स और साजो सामान सीधे कोलकाता से मंगाए गए हैं।
3: हमने कोशिश की है कि जो बंगाल की संस्कृति हो वो यहाँ पे जीवंत हो, उसके लिए जो हमारा पंडाल है उसका जो मेन गेट बन रहा है वो 50 फीट ऊंचा है, और ये एक बंगाल के एक भव्य मंदिर का मेन गेट की अनुकृति बनाई है हमने। और उसके बाद अंदर की जो हमारा 100 फुट लंबा जो हमारा दलान है, ये वहाँ के एक जमींदार दलान को हमने यहाँ पर जीवंत करने की कोशिश की है, जिसमें माता के 3 जो स्वरूप है, सृष्टि, स्थिति और विनाश, वो तीनों की प्रतिकृतियां हम दोनों साइड में इसके अंदर डेमो करने वाले हैं। और सामने जो हमारा यहाँ पे जो संगमरमर की जो वियतनाम से पत्थर लाके हमने ये मूर्ति बना के यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, इसके अलावा जो एक और मूर्ति मिट्टी की बनने वाली है, उस मिट्टी की मूर्ति का भी प्राण प्रतिष्ठा होकर उनकी पूजा होगी। तो ये पूरी एक मंदिर की थीम है हमारी, जो एक दुर्गा के मंदिर के ऊपर है।
0: इस बार का पंडाल सिर्फ अपनी ऊंचाई या विशालता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी गहराई के लिए भी जाना जाएगा। इस बार दुर्गाबाड़ी पंडाल को सृष्टि, स्थिति और विनाश की बेहद खास थीम पर सजाया जा रहा है। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य पूजा क्षेत्र तक हर हिस्से में बंगाली कला और धार्मिक दर्शन की अद्भुत छाप साफ नजर आएगी। पीतम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात शारदीय नवरात्र से पहले होने वाली दुर्गा पूजा की, जो महालया के दिन ही पूरी हो जाती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के धेनुआ गांव में मां दुर्गा की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी की पूजा महालया के दिन ही संपन्न हो जाती है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ पर ये पूजा माँ के आशीर्वाद से ही पूरी की जाती है।

0: माँ दुर्गा का पावन त्योहार दुर्गा पूजा, जिसका साल भर सभी भक्त करते हैं इंतजार। पूरे देश भर में ये पावन त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चारों ओर माँ दुर्गा के भव्य और दिव्य पंडाल नजर आते हैं। बंगाल में एक जगह ऐसी भी है जहाँ दुर्गा पूजा कुछ अलग अंदाज में मनाई जाती है। जगह है आसनसोल का धेनुआ गांव, जहाँ पर आगमनी दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहाँ की पूजा की परंपरा बेहद अनोखी है। यहाँ महालया के दिन ही सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी की पूजा विधि विधान के साथ एक ही दिन में पूरी की जाती है और इसे माँ का विशेष आशीर्वाद माना जाता है।
1: ये पूजा महालय का दिन ही होता है। इसमें पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं एक ही दिन में हो जाता है, हैं? और इसके लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं। आज ही खत्म हो जाने के बाद फिर एक साल का इंतजार करेंगे। इसमें हम लोग का अगल बगल से और इधर डिस्ट्रिक्ट से बहुत आदमी आता है।
0: दामोदर नदी के किनारे स्थित काली कृष्ण आश्रम में होने वाली इस पूजा की खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ माँ दुर्गा के साथ उनके परिवार की नहीं बल्कि उनके दो सखियों जया और विजया की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु लोक में असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा अपने परिवार को स्वर्ग लोक में छोड़कर असुरों से युद्ध करने धरती पर आई थी। इस दौरान उनकी दो सखियां जया और विजया उनके साथ आई थी।
2: ये माँ स्वर्ग से मर्त्यलोक में एक बार आया था। जब मर्त्यलोक में आदमी को बीमारी फैल गया था, असुर लोग आकर तांडव उठा मचा रहा था, तो आदमी सब रब ऐसा हो गया जो हम लोग जा रहा सब। वही टाइम माँ स्वर्ग लोग थे, मर्त्यलोक में आशा आने के लिए चिंता हमने किया था, तो उसीलिए उसका अपना लड़का बच्चे जो लड़का लड़की लक्ष्मी सरस्वती एवं कार्तिक गणेश को छोड़ करके आ रहा था अकेला। जहाँ मर्त्यवासी का हमको बचाना होगा, हम भक्त लोग जब नहीं रहेगा तो हम क्या करेगा। तब उस टाइम बोला उसका जो दुसखी था जया विजया, वो दोनों बोला जो हम लोग माँ आपको साथ में जाएगा मर्त्यलोक में, जो होगा मर्त्यवासी को जो होगा हमको भी वही होगा, हम छोड़ आपको नहीं छोड़ेगा।
0: महालया के इस खास दिन पर होने वाले विशेष पूजा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये पूजा सिर्फ साल में एक बार शारदीय नवरात्रि से पहले महालया के दिन होती है और माँ दुर्गा के आगमन के साथ ही पूरा इलाका भक्ति के रंग में रंग जाता है। आसनसोल से अनिल गिरी, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कन्याकुमारी अम्मन मंदिर की, जो तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर है। ये मंदिर देवी पार्वती के कुवारी रूप को समर्पित है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह से पहले महादेव को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। ये मंदिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इन तीन समुद्रों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है।
4: कन्याकुमारी अम्मन मंदिर, कन्याकुमारी नाम से ही पता चलता है कि माँ कन्या के रूप में यहाँ विराजमान है। माँ गौरी, माँ पार्वती, जिनको तपस्या करनी पड़ी थी बहुत लंबे समय तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और कहा जाता है कि माँ ने यहाँ बहुत लंबे समय तक समंदर के किनारे बैठकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तो एक तरफ आपको समंदर की ऊंची ऊंची लहरें नजर आएंगी, चारों ही तरफ पानी ही पानी नजर आएगा, और बिल्कुल उसी के छोर पर बसा हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर। हम कह सकते हैं कि कन्याकुमारी की पहचान सिर्फ समुद्र, खूबसूरत नजारे नहीं है, बल्कि गहरी आस्था है, और इस आस्था का प्रमुख केंद्र है कन्याकुमारी अम्मन मंदिर। बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा मंदिर है, चारों ही तरफ अलग अलग मंदिर यहाँ बने हुए हैं, समुद्र के किनारे है, प्राचीन देवी मंदिर है, देवी माँ को समर्पित, पार्वती के कन्या रूप को यहाँ पूजा जाता है, और पौराणिक कथाओं के हिसाब से कहा भी जाता है कि देवी ने यहाँ पर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या की थी और बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी, और इसीलिए कहा जाता है कि दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं माँ की प्रार्थना के लिए, माँ को पूजने के लिए। और कहा जाता है कि खास तौर से जो कुवारी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छा उनको पति मिले उसके लिए यहाँ इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुँचती हैं। समंदर के किनारे देखिए किस तरीके से, किस खूबसूरती के साथ इस पूरे के पूरे मंदिर को बनाया गया है, और बहुत बड़े प्रांगण में ये मंदिर फैला हुआ है। दर्शनों के लिए भी बड़ी संख्या में दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। कहा जाता है कि अगर आप कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं, तो जब तक आप देवी यात्रा नहीं कर लेते, इस मंदिर में यहाँ नहीं पहुंच जाते, तब तक आपकी जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। तो समुद्र की विशालता के साथ साथ अटूट आस्था इस मंदिर में लोगों की नजर आती है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं माँ के कन्या रूप को देखने के लिए, उन्हें पूजने के लिए।
3: महालय के पावन अवसर पर पितृपक्ष की समाप्ति और देव पक्ष शुभारंभ के साथ दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए पवित्र जल में तर्पण करने के लिए दूर दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पावन नदियों और कन्याकुमारी और गंगा सागर पहुंचे। तीन तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रामेश्वरम, गंगा सागर। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अपने पितरों के तर्पण के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आपको बता दें कि धार्मिक अनुष्ठानों का माहौल इस वक्त देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा के आगमन की खुशी भी लोगों के चेहरे पर इस दौरान नजर आई। हावड़ा से लेकर गंगा सागर तक और रामेश्वरम तक लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करते हुए दिखाई दिए। हावड़ा में बेलूर मठ की तरफ से तर्पण का आयोजन किया गया तो रामेश्वरम के अग्नि तीर्थ में श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूर्वजों के लिए तर्पण किया। हर तरफ धार्मिक आस्था, भक्ति और दुर्गा पूजा के उत्साह का अनूठा संगम इस दौरान देखने को मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात वैष्णो देवी के। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और माता वैष्णो देवी में भी तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। बाजार से लेकर भवन तक हर जगह भव्य और सुंदर सजावट की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम व्यवस्था जो है नवरात्रों से पहले ही कर ली गई है। जगह जगह फूलों, लाइटों और तोरण द्वारों से रास्ते और भवन को विशेष तौर पर सजाया गया है, क्योंकि मौका ही ऐसा है, नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के साथ सुविधाओं के भी बेहतर इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आपको बता दें कि इस बार दिव्यांग श्रद्धालुओं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं पर खास फोकस किया गया है। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा, पिट्ठू सेवा, पालकी, निःशुल्क व्यवस्था इन सभी चीजों की गई है, जबकि अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी की भी फ्री सेवा श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। और देखिए यही नहीं, विशेष दर्शन आरती में शामिल होने के साथ साथ रैंप और लिफ्ट की सुविधाएं भी दी जाएंगी। माता वैष्णो देवी के प्रांगण में 11 से 19 अक्टूबर तक नवरात्र महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हिमालय की गोद में 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिख पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट अरदास और धार्मिक परंपराओं के साथ ही शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सेना के बैंड की मधुर धुनों, शबद कीर्तन और गुरु महाराज की अरदास के बीच कपाट बंद होने का पल भावुक और आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर रहा। इलाके में भारी बर्फबारी, बर्फीले रास्तों और कड़ाके की ठंड के बावजूद 6,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस पावन अवसर पर मौजूद थे। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 23 मई को शुरू हुई थी और रिकॉर्ड 3,84,573 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुरुद्वारे में इस दौरान मत्था टेका। अब बात देश दुनिया की गुड न्यूज की कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि चीन में इन दोनों आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी एक साथ उड़ते हुए नजर आए। आसमान में उड़ते इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगा मानो हवा में लहरें उठ रही हों। कैसे, आप भी देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में।
5: ये तस्वीरें चीन के शानदोंग प्रांत की है जहां येलो रिवर डेल्टा नेशनल नेचर रिजर्व में पक्षियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। जैसे ही शरद ऋतु ने दस्तक दी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पहुंचने लगे। ये पक्षी झुंड में उड़ते हैं, कभी एक साथ ऊपर उड़ते हैं तो कभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। आसमान में इनकी उड़ान ऐसी लगती है जैसे नीले आसमान में लहरें उठ रही हो। दूर तक फैले पानी और हरे भरे इलाकों के बीच पक्षियों का ये नजारा हर किसी का ध्यान खींच रहा है। पक्षियों को देखने के शौकीन लोग इस खूबसूरत पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कई लोग इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों का ये नजारा न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ये दिखाता है कि प्रकृति में हर मौसम के साथ कितना कुछ बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है जो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां, डिप्रेशन और तनाव के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करना, साथ ही मानसिक समस्याओं को अन्य शारीरिक बीमारियों की तरह ही सामान्य मानकर समय पर सही इलाज कराने से प्रेरित करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत पहली बार 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर की गई थी। इस साल इस दिवस की जो थीम है वो है लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज। इसका ये मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अनुभव करने वाले लोगों की बात सुनी जाए और उनके अनुभवों को फैसले लेने तथा बेहतर सेवाएं विकसित करने में महत्व दिया जाए। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे नवरात्रि के महत्व की और कलश स्थापना के नियमों की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात के 10:32 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:04 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और चंद्रमा विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है और सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि का और इसके दिनों का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि साल में 4 पड़ती है, माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में। नवरात्रि जब आरंभ होती है तो वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की शुरुआत होती है। नवरात्रि के आरंभ से मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति, चाहे वो धन की हो, वैभव की हो, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, ये शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है। इसीलिए नवरात्रि में शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है और इन 9 स्वरूपों से अलग अलग विशेष तरह का वरदान मिलता है। और अगर नवरात्रि में आप 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं तो ग्रहों की बाधा समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 11 अक्टूबर को आरंभ हो रही है, 19 अक्टूबर को अष्टमी नवमी तक की पूजा होगी और 20 अक्टूबर को दोपहर बाद दशहरे का पर्व मनाया जाएगा, यानी नवरात्रि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगी। नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, आकस्मिक यात्रा हो सकती है, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जो लोग नवरात्रि में 9 दिन की साधना करते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे लोग कलश की स्थापना भी करते हैं, तो नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करेंगे? घर के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में या पूर्व दिशा में एक चौकी या एक ऊंचा आसन स्थापित करिए। इस पर लाल कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करिए। उसके सामने एक मिट्टी का कलश स्थापित करें, कलश में जल भरें और उसमें एक सिक्का डालेंगे। कलश के मुख पर एक जटा वाला नारियल रखेंगे। नारियल रखने के पहले उसको मौली से रक्षा सूत्र से बांध देंगे। कलश के ऊपर आप चाहें तो मिट्टी लगाकर जौ बो सकते हैं या अलग से वेदी बनाकर भी आप जौ बो सकते हैं। कलश का मतलब आप स्वयं हैं, आपका शरीर है। तो कलश की स्थापना के साथ एक अखंड घी का दीपक भी जला दीजिएगा, और जब तक 9 रातें बीत नहीं जाती तब तक ये दीपक निरंतर जलता रहेगा और कलश निरंतर स्थापित बना रहेगा। कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, सर्दी जुकाम हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, करियर में दबाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, जब नवरात्रि शुरू होती है, देवी का आगमन होता है, तो किस वाहन से देवी का आगमन हो रहा है, कौन सी सवारी है देवी की, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आने वाले समय का अनुमान लगाया जाता है। तो इस बार जो शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है, उसमें देवी के आगमन से क्या सूचना मिल रही है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, और इस वाहन के आधार पर आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन हाथी पर यानी गज पर हो रहा है। हाथी पर देवी का आगमन संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर देवी का आगमन बहुत शुभ है, और इससे लोगों के जीवन में शांति और आनंद आएगा, लोगों के जीवन की मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, कलश स्थापित करने का मतलब है कि आपने अपने आप को देवी के सामने स्थापित कर दिया है, ताकि 9 दिनों तक आपको आपके शरीर को देवी की कृपा मिलती रहे। तो कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? देखिए, कलश की स्थापना की जाती है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 11 अक्टूबर को रात में 9:30 तक रहेगी, इसलिए कलश की स्थापना 11 अक्टूबर की रात 9:30 के पहले कर लेना चाहिए। आपको दो बड़े विशेष मुहूर्त बताते हैं। सबसे अच्छा समय है प्रातः काल 11 अक्टूबर को 6:18 से सुबह 10:11 के बीच का। अगर इसमें स्थापित नहीं कर पाते तो दूसरा समय है दोपहर 11:44 से 12:30 के बीच का। इस समय भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और जब कलश की स्थापना करें, उसके बगल में एक अखंड ज्योति आपको जला देनी चाहिए और ये ज्योति लगातार 9 दिनों तक जलती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर की स्थितियां अच्छी रहेंगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन आसानी से मिलेगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में आप दिन में पूजा करें या ना करें, लेकिन हर रात को देवी की उपासना और ध्यान जरूर करें। ऐसा करने से आपको देवी की विशेष कृपा अपने जीवन में मिल पाएगी। अब जान लेते हैं 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माँ दुर्गा को, देवी को एक लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ श्रद्धा भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक होगी। माँ दुर्गा के विधिवत स्वरूपों की पूजा अर्चना, पंडालों में सजी माता की प्रतिमाएं। नवरात्रि के अवसर पर गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में माँ की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे राम कथावाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु उसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था। जोधपुर एयरबेस पे गर्जे लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना कदम, तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हो शामिल। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इसका मकसद। साल 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर हुई थी इसकी शुरुआत।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट

जंग के मैदान में जब से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है तब से इस हवाई खतरे ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली हैं। ये साइलेंट किलर की तरह आते हैं और बड़ी तबाही मचा देते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 100 या 500 ड्रोन्स का झुंड किसी सैन्य ठिकाने, एयरबेस या रिफाइनरी की तरफ भेजते तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। एक रेडार और मिसाइल बैटरी एक बार में सिर्फ सीमित संख्या में ही टारगेट्स को ट्रैक और फायर कर सकती है, और जब ड्रोन की तादाद

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। भारत की निजी रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने अपने ज्वाला माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम के तहत दो सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण 3 अक्टूबर 2026 को किया गया। ज्वाला भारत का पहला स्वदेशी निजी माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम है जो हार्ड किल काउंटर यूएस यानी कि ड्रोन को तबाह करने वाला सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।
1: ज्वाला MK1 एक स्वदेशी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर माइक्रो मिसाइल है जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन स्वार्म को हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी ढंग से हमला कर सकती है। इंगेजमेंट एल्टीट्यूड यानी मारक ऊंचाई की बात करें तो इसका मारक दायरा न्यूनतम 50 मीटर से लेकर मैक्सिमम 5000 मीटर की ऊंचाई तक है। मैक्सिमम दूरी पर भी इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 2 मीटर से कम है, यानी ये अपने लक्ष्य के 2 मीटर के दायरे के अंदर अचूक वार कर सकती है। टारगेट डिटेक्ट होने से लेकर मिसाइल लॉन्च होने तक का रिएक्शन टाइम भी इसका 7 सेकंड से कम है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि ये अगर दुश्मन का ड्रोन जमीन के पास बहुत लो अल्टीट्यूड पे भी आ रहा है 50 मीटर की दूरी पर तो भी उसको ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन का ड्रोन अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तब भी ज्वाला के जद्दोजहद के अंदर रहता है। इसका जो फायरिंग एनवेलप है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन का जो ड्रोन है अगर वो मल्टीपल वेव्स में आ रहा है तो जो जमीन पर जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोलर है, उसको तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है और एक AI लॉगरिथम से जो लॉन्चर हैं या जो कमांडर है वो अलग अलग ड्रोन्स को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग झुंड में एंगेज कर सकता है।
3: थ्रेट डिटेक्टेड, टारगेट लॉक्ड, द मिसाइल इज अवे।
1: ज्वाला MK1 मिसाइल में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। ये लॉन्च के समय मिसाइल को तुरंत तेज रफ्तार देता है। इसमें 0.5 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन का प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से लेस है। इसका मतलब ये कि ड्रोन से सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती। ड्रोन के बेहद करीब पहुंचते ही ये ब्लास्ट हो जाता है और धातु के घातक टुकड़ों की बौछार से ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स में किसी भी मिसाइल सिस्टम की तरह से 2 तरह की फ्यूज लगे हैं। एक तो है इंपैक्ट फ्यूज, यानी जब ये टारगेट से टकराता है तो फ्यूज ऑपरेशनलाइज हो जाता है और एक्टिवेट होकर जो मेन चार्ज है वॉरहेड को एक्सप्लोड कर देता है। दूसरा ये है कि यह अगर दुश्मन के ड्रोन को महज 1 या 2 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है तो इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। ये एक फ्यूज होता है जिसमें से कि लगातार रेडियो वेव्स निकलती हैं और ड्रोन से टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसको भांप लेता है और ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो एक्टिवेट हो जाता है, फट जाता है।
1: ज्वाला को एक माइक्रो मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टारगेटेड ड्रोन को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ट्रक माउंटेड मल्टी कैनिस्टर लॉन्चर से दागा जा सकता है जिसे सेना के 4x4 व्हीकल पर आसानी से तैनात किया जा सकता है।
0: ज्वाला MK1 मिसाइल अकेले काम नहीं करती बल्कि आईजी डिफेंस के AI संचालित ग्रिड डिफेंड बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है। ये नेटवर्क कई सेंसरों से रडार और डेटा फ्यूजन का उपयोग करके खतरों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करता है।
1: आईजी डिफेंस का AI कंट्रोल्ड ग्रिड डिफेंड बैटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और इसके साथ इंटीग्रेटेड ज्वाला मिसाइल सिस्टम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने के लिए उन्नत एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस हैं। ग्रिड डिफेंड एक AI इनेबल्ड बैटल मैनेजमेंट और कमांड नेटवर्क है। इस प्लेटफॉर्म को आधुनिक

0: युद्ध प्रणालियों और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशंस और हाई लेवल के एनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स का इस्तेमाल करता है, ताकि डेटा ट्रांसफर के दौरान हैकिंग या इंटरसेप्शन का कोई खतरा न रहे। ये सिस्टम अलग अलग सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक साथ जोड़कर रियल टाइम में स्ट्राइक को कमांड देता है। इसे सेंसर टू शूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स इस नेटवर्क में सेंध नहीं लगा सकते और न ही मिसाइल के कमांड सिग्नल को ब्लॉक या हैक कर सकते हैं।
1: इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए यानी लॉन्च के बाद टारगेट की तरफ अग्रसर होने के लिए एक एनक्रिप्टेड कमांड गाइडेंस सिस्टम है, यानी इसको लगातार रेडियो सिग्नल के द्वारा दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये जो रेडियो लिंक है ये टोटली एंटी जैम प्रूफ है, यानी दुश्मन इस लिंक के अंदर हैक करके घुस नहीं सकता, दुश्मन इस कमांड गाइडेंस लिंक को जैम नहीं कर सकता।
0: ग्रिड डिफेंड सिर्फ एक ही रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडार पर निर्भर नहीं है, ये मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगर दुश्मन किसी रेडार फ्रिक्वेंसी को जैम करने की कोशिश करता है तो ग्रिड तुरंत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज, थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के इनपुट पर स्विच कर जाता है। इससे सिस्टम बगैर रुके काम करता रहता है।
2: आधुनिक युद्धों में अक्सर जीपीएस या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि मिसाइलें रास्ता भटक जाए। ज्वाला मिसाइल और इसके नेटवर्क को जैम रेसिस्टेंट नेविगेशन आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया गया है। अगर दुश्मन मेन सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी को जैम भी कर देता है, तब भी यह सिस्टम वैकल्पिक वेव बैंड और इंटरनल गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को सटीकता से ट्रैक करना जारी रखता है।
0: आज के युद्ध में ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम लागत और बड़ी संख्या है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेजता है तो हर एक ड्रोन के खिलाफ बहुत महंगी एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल करना आर्थिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इसे कॉस्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम कहा जा सकता है। दुश्मन को पता है कि उनके स्वार्म ड्रोन में से अगर आधे से ज्यादा ड्रोन का नुकसान हो भी गया तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही इनकी लागत इतनी कम होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन का एक सुसाइड या एफपीवी ड्रोन महज 500 से $2,000 यानी करीब 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस छोटे से ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है उसकी कीमत $1 मिलियन से $3 मिलियन यानी करीब 9.6 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक होती है। युद्ध के लंबा खींचने पर लागत में इतना बड़ा अंतर किसी भी देश पर भारी पड़ सकता है। वो युद्ध में पिछड़ सकता है या हार की दहलीज तक जा सकता है।
2: दुश्मन सस्ते ड्रोनों की बाढ़ लाकर असल में बड़े देशों को कीमती मिसाइल भंडार को जानबूझकर खाली करवाता है, ताकि युद्ध में उसे बढ़त मिल सके। जब एक बार महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया, तब दुश्मन अपने असली और घातक हथियार जैसे कि उसके ताकतवर फाइटर जेट या भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है, क्योंकि उस समय देश का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका होता है।
0: भारत के पास दुश्मन के ड्रोन और स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर मौजूद है। ये सिस्टम बॉर्डर, सैन्य ठिकानों से लेकर शहरी और वीवीआईपी सुरक्षा तक तीन प्रमुख स्तर यानी डिटेक्शन, सॉफ्ट किल, हार्ड किल पर काम करती है। हाल ही में भारत ने एक और स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का एक और ट्रायल किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपने अंतिम परीक्षण में पहुंच गया है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन लॉयटरिंग, मुनिशन और खासकर स्वार्म अटैक को खत्म करने के लिए बनाई गई है।
2: सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड भार्गवास्त्र को तैयार कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C41 से भी जोड़ा जा सकता है। C41 का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस।
3: भार्गवा स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जो महज 10 सेकंड के अंदर 64 माइक्रो रॉकेट्स दागकर दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को नेस्तनाबूद कर सकता है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि ये एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र को भारत की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढंग से काम करता है। ये क्षमता इसे सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए बेस्ट बनाती है और ये कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है, जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते, बल्कि एक बड़े दायरे को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम हैं। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है, जो ड्रोन के झुंड को बगैर नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये कि इसे भारतीय सेना की गाड़ियों पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी इसे आसानी से किसी भी संवेदनशील सीमा पर तैनात किया जा सकता है।
1: भारत में निर्मित भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिनिएचर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें दो तरह की मिसाइलें होंगी। एक तो वह मिसाइल जो कि अनगाइडेड होंगी, इनको स्वार्म ड्रोन यानी दुश्मन अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेजे उनकी तरफ लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये मिसाइलें दुश्मन के स्वार्म ड्रोन की तरफ जाकर जब फटेंगी तो 20 मीटर की दूरी तक इसके जो टुकड़े होंगे, शार्पनल होंगे, वो दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर देंगे।
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियारों और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और किल कर सके।
2: सरहद पार से आने वाले ड्रोन को खाक में मिलाने के लिए भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को एक खास एंटी ड्रोन गन भी मिल चुकी है। नाम है वज्रा शॉट। इस गन को चेन्नई की बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने बनाया है। ये बेहद हल्की और हाथ से चलाई जाने वाली गन है, जिसे सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और ईरान के बीच झड़प, ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम जारी है और कई स्टार्टअप इस पर काम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ डिटेक्टर की जोड़ी है, जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है, जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है, साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे तक ऑपरेट किया जा सकता है।
1: वज्रा शॉट भारत में डिजाइन डेवलप्ड और निर्मित एक हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है। इसको दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल एक राइफल को दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रिगर दबाने पर इसमें से एक जैमिंग तरंगे निकलती हैं, यानी रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो कि दुश्मन के ड्रोन और उसके कमांड सेंटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी में अपलिंक और डाउनलिंक है, यानी जो आदेश दिए जा रहे हैं और जो आदेश लिए जा रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है, जैम कर देता है।
3: सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, यानी D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 3 सालों में विकसित किया।
2: ड्रोन या UAV काफी नीचे उड़ान भरते हैं, जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट करना चुनौती है तो इन्हें रोकना और तबाह करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम से ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा, साथ ही तबाह भी किया जा सकेगा।
3: DRDO के अनुसार D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये दो तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब किसी भी ड्रोन को जाम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना होता है। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन, चौथा ड्रोन किल सिस्टम, जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है, और पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे स्वार्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वार्म ड्रोन ऑपरेट होते हैं।
1: भारत में फिलहाल बहुत सारी कंपनियां ड्रोन को गिराने के लिए सॉफ्ट किल या हार्ड किल ऑप्शन पर काम कर रही हैं। सॉफ्ट किल का मतलब है कि दुश्मन का ड्रोन आया और दुश्मन के जो ड्रोन को दुश्मन का कमांड सेंटर जो अपलिंक से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको लिंक को जैम कर देना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन का जो अपलिंक है, रेडियो कमांड सिस्टम है, उसको हैक कर सकें, उसकी फ्रीक्वेंसी को जांच कर सकें और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन के कमांड गाइडेंस सिस्टम को जैम कर देना। हार्ड किल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होगा जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को, समझिए एक माइक्रो या मिनी मिसाइल को, दुश्मन की ड्रोन की तरफ लॉन्च किया जाएगा। वो जाके दुश्मन के ड्रोन से टकराएगा, उसका इम्पैक्ट फ्यूज जो है टच करने पर एक्टिवेट हो जाएगा, वॉरहेड फट जाएगा।
3: ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रडार के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किया जा रहा है, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।

0: दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं।
1: ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर, दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो हैं, ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है।
0: दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है जिसे आम भाषा में लेजर वेपन कहते हैं। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइटवेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था।
2: DIU यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को बेकार कर देता है।

0: दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत ही छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है।
1: वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: 2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे यानी दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स को खत्म करने से अहम भूमिका निभाई थी। आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। इसका काम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना है।
7: आकाश तीर रेडार सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाता है जो रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। आकाश तीर एयरफोर्स के साथ मिलकर 4 लेयर की सिक्योरिटी पर काम करता है जिसका दायरा करीब 200 किलोमीटर तक है। सभी लेयर को जोड़कर ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार करता है। आकाश तीर के जरिए एक ही जगह पर अलग अलग तरह के रडार की पूरी पिक्चर नजर आती है। आर्मी के एयर डिफेंस के पास जो रडार हैं और एयरफोर्स के पास जो मीडियम और हाई पावर रडार हैं, वो सब इंटीग्रेट होकर एक कंप्लीट पिक्चर दे रहे हैं। इससे हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूती मिलती है।
8: आकाश तीर वेपन सिस्टम जो कि असल में एक AI ड्रिवन सिस्टम है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स जो डिप्लॉयड हैं टैक्टिकल बैटल एरिया में, उन सबके अलग अलग कमांडर्स के बीच में डेटा शेयरिंग की जाती है। यानी टारगेट अगर एक कमांडर के एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरे कमांडर के एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर जाता है या ट्रांजिट कर जाता है, तो आकाश तीर जो है ऑटोमेटिकली वेपन फायरिंग सॉल्यूशन, यानी कौन सा मिसाइल सिस्टम किस रेजिमेंट से, किस स्क्वाड्रन से, किस तरफ कब फायर करेगा, ताकि दुश्मन का जो ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है या अटैक एयरक्राफ्ट है, उसको सक्सेसफुली एंगेज किया जा सके।
7: एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में आकाश तीर अलग अलग क्षेत्रों में लगे एयर डिफेंस रिस्पांस टीम के बीच कोऑर्डिनेट करने में सक्षम है। ये नेत्रा और फाल्कन जैसी हवाई वार्निंग सिस्टम के साथ ग्राउंड बेस्ड मिसाइल यूनिट्स को जोड़ता है। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत सभी एयर डिफेंस सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। कुल 455 सिस्टम की दरकार है। अब तक करीब 275 सिस्टम डिलीवर हो गए हैं। इंडियन आर्मी के हर कोर लेवल पर आकाश तीर का इंडक्शन हो गया है। अगले साल के आखिर तक हर ब्रिगेड और यूनिट लेवल पर भी ये पूरा हो जाएगा। दरअसल आकाश तीर को भविष्य के युद्धों के लिए विशेष तौर पर डेवलप किया गया है। अब आकाश तीर काम कैसे करता है ये भी जान लीजिए। रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट में आकाश तीर सिस्टम, रेडार स्टेशन, मिसाइल यूनिट्स और एयर सेंसर जैसे अलग अलग सोर्स से रियल टाइम डेटा लेता है और उन्हें सिंगल लाइव एयर सिचुएशन पिक्चर में बदल देता है। कुछ ही सेकंड में डिफेंस यूनिट के पास दुश्मन की ओर से आ रहे खतरे की क्लियर इमेज होती है, फिर इसे वेपन सिस्टम हवा में ही मार गिराता है। वही इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है एक ही समय में अलग अलग मशीन्स के साथ काम करना। आकाश तीर एक ही वक्त में सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर सिस्टम और स्वदेशी रडार नेटवर्क जैसे रोहिणी और अरुद्रा के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। ये सभी यूनिट्स एक साथ डेटा कलेक्ट कर टारगेट की जानकारी मिसाइल सिस्टम या इंटरसेप्ट यूनिट को देते हैं। भविष्य के खतरों को देखते हुए आकाश तीर को खास तौर पर डेवलप किया गया है। इसके कमांड सिस्टम में AI की मदद से भविष्य के खतरे का एनालिसिस, दुश्मन के टारगेट का रूट मैपिंग और उसके मुताबिक ऑटोमेटिक हथियार का चुनाव ये पहले ही कर लेता है।

0: यह प्रणाली इंडियन एयरफोर्स की जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट की गई है। यानी अगर दुश्मन का टारगेट एक रेडार का जो एनवलप है उसको छोड़कर दूसरे रेडार के एनवलप में घुस जाता है और दूसरे रेडार के एनवलप से निकलकर तीसरे रेडार के एनवलप में अग्रसर होता है, तो यह जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली फायर सॉल्यूशन जो है और ट्रैकिंग सॉल्यूशन जो है वो पहले रेडार के कमांडर से दूसरे रेडार के कमांडर को और दूसरे रेडार के कमांडर से तीसरे रेडार के कमांडर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है।
1: वाहन पर रखे जाने के कारण आकाश तीर बेहद गतिशील रहता है और इसलिए दुर्गम और सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में तैनाती के लिए ये सर्वोत्तम है।
2: आकाश तीर एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो इन हथियारों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इनमें डायरेक्ट कोई वेपन सिस्टम शामिल नहीं होता। ये मिसाइल या फिर बंदूक जैसी एयर डिफेंस एसेट्स का मैनेज और कंट्रोल करता है, लेकिन सीधे टारगेट पर हमला नहीं करता।
1: स्वदेशी आकाश तीर की पूरी कार्यप्रणाली को समझने के लिए हम इसकी तुलना इसराइल के आयरन डोम सिस्टम से करते हैं, ताकि आपके मन में उठ रहे सवालों का सही जवाब मिल पाए। स्वदेशी आकाश तीर एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वहीं आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट डिटेक्ट करता है, वहीं आयरन डोम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को किल कर सकता है। आकाश तीर की रेंज 400 किलोमीटर है, वहीं आयरन डोम की रेंज करीब 70 किलोमीटर है। कॉम्बैट प्रूवन की बात करें तो आकाश तीर का सक्सेस रेशियो 100% है, वहीं आयरन डोम के कॉम्बैट प्रूवन की बात करें तो साल 2011 से इसका सक्सेस रेट 90% रहा है। टाइप की बात करें तो आकाश तीर रेडार, सर्विलांस और वेपन सिस्टम तीनों का इंटीग्रेशन है, वहीं आयरन डोम इंटरसेप्ट और रेडार से लैस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर का मुख्य रोल आकाश S-400, बराक 8, D-4 एंटी ड्रोन जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इंटीग्रेशन करता है, वहीं आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स और मोर्टार को डायरेक्ट टारगेट करता है। आकाश तीर की मदद से एयरक्राफ्ट ड्रोन और मिसाइल्स को टारगेट किया जाता है, वहीं आयरन डोम रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार को टारगेट करता है। चीन पाकिस्तान के एरियल अटैक को आकाश तीर नाकाम करने की ताकत रखता है। खास बात यह है कि ये महज 5 मिनट में डिप्लॉय हो सकता है।
0: इसराइल की आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी जब थार्ड फेल हो गया, हॉक या पेट्रियोटिक भी दुश्मन को नहीं रोक पाया और दुश्मन महज 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पास आ गया, तब आयरन डोम में एक इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जो कि दुश्मन के ड्रोन को या मिसाइल को तब शूट डाउन करता है जब वो महज 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके मुकाबले आकाश तीर जो है वो अलग अलग वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करता है, यानी दुश्मन की मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को या फाइटर विमान को 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूर से एंगेज करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर इसलिए है कि एक मल्टी लेयर, मल्टी डायरेक्शनल, यानी सभी तरफ 360 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पर देखने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दुश्मन का जहाज जो इतने सारे सर्विलेंस रेडार हैं, किसी ना किसी की जद्दोजहद में पकड़ा जाएगा।
1: आकाश तीर आकाश मिसाइल सिस्टम से अलग है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे DRDO ने डेवलप किया है, वहीं BEL और BDL ने मिलकर बनाया है। आकाश सिस्टम एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिसाइल लॉन्च करता है, जबकि आकाश तीर एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो इन हथियारों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है।
2: भारतीय सेना ने दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को मार गिराने के लिए नए जेनरेशन के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को लगातार परखा है। इसी कड़ी में DRDO ने चौथी पीढ़ी के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जून में तीसरा सफल परीक्षण किया है।
1: वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल्स की मारक क्षमता कम दूरी की होती है और इससे दुश्मन के विमानों को सटीकता से गिराया जा सकता है। शराट्स को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइल्स दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस आए हों, तो शराट्स ही उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है।
3: किसी भी इंस्टॉलेशन पर लगाया जा सकता है पहली बार, जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखती हो, टैक्टिकल इम्पोर्टेंस रखती हो, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे कोई हेडक्वार्टर्स हैं, कोई वाटरवर्क्स हैं, कोई थर्मल स्टेशन है, इस तरह के सभी टारगेट्स के ऊपर लगाया जा सकता है। बट अपने आप में अगर देखा जाए इसकी इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस है कि एयर डिफेंस सिस्टम की जो ग्रिड है, ये अपने आप में एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इस डिफेंस की लाइन को, शॉर्ट रेंज वाली को, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल या कोई भी दुश्मन का एक्शन अगर उसके अंदर आ जाता है, तो ये बात गारंटेड है कि वो टारगेट पर लगेगा ही लगेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर ग्रिड सिस्टम में तीन से चार अगर लेयर हैं, तो ये टारगेट की सबसे नज़दीक वाली लेयर है, जो कि अपने आप में उस टारगेट को, जो अपनी जगह है इम्पोर्टेंट को, उसको एक क्लोज एयर प्रोटेक्शन देता है, एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देता है।
1: यही वजह है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी अहम सैन्य ठिकानों या बड़े शहरों के करीब तैनात किया जाता है। ये सुरक्षा का वो अंतिम घेरा होता है जो किसी भी सैन्य बेस की हिफाजत के लिए सबसे अहम रहता है। अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत क्या है और इससे दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार कितनी है, इसे भी जानना जरूरी है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वारहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को आसानी से तबाह कर सकता है।
3: ताकत बहुत ज्यादा नहीं होगी कि वो 100 किलोमीटर चला जाए, 200, मे बी 4 से 6 किलोमीटर चला जाए, वो एक बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी ताकत ये है कि जो इंसान, जो टारगेट अपने आप में, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है कि अगर किसी भी तरह से कोई भी मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, रॉकेट अगर उस टारगेट के ऊपर आ रहा है, और अगर सब चीज़ें वो प्रेग्नेट कर पाया है, अवॉइड कर पाया है, डिसेप्शन कर पाया है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कर आ गया है, तो भी एक भरोसा होता है कि जो दिख रहा है हम उसको शूट कर पाए। और दिख कर शूट करने वाली चीज़ के ऊपर आदमी का भरोसा जनरली ज़्यादा होता है।
1: वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूअल बैंड IIR सीकर मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, साथ ही इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, जो इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है।
2: वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जा सकता है, यानी कि इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह ले जाकर दाग सकता है, चाहे वो चीन की सीमा से सटा हिमालय का इलाका हो या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा। इसे कहीं भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। यही नहीं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें किसी भी बड़े शहर या फिर स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन की सेफ्टी के लिए भी कारगर साबित होगी।
1: वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को देश में ही डेवलप किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चला है। शोराट्स को 3 मिनट के अंदर ट्रांसपोर्ट से फायरिंग मोड में लाने की क्षमता होगी। इसे 3 सेनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा और ये जमीन और जहाजों पर तैनात की जा सकेगी। मुख्य तौर पर इसे 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मेन पोर्टेबल सिंगल लॉन्चर और दूसरा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन के रूप में।
2: एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन देशों की ओर से होने वाले हर हवाई हमलों को रोकने में सक्षम माने जाते हैं। दुश्मन चाहे फाइटर जेट से हमला करे, एक साथ कई मिसाइल फायर कर दे या फिर कई सारे ड्रोन से अटैक कर दे, एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। और भारत के पास दुश्मन से निपटने के लिए मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिन्हें धारदार बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आती है।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
9: कल से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदि शक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू। कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु। इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो। मैं हूं श्वेता झा। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जो अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी फराग दिली और नेक नियति के किस्से उदास फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी के साथ गूंज रहे हैं। आज की खास पेशकश में बात उस महामानव की होगी जिसकी पहचान तो रील के हीरो के तौर पर है, लेकिन सही मायने में वो रियल से ज्यादा रियल लाइफ का हीरो था।
1: आए और गए, खेल खत्म। पहुंची ये मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं।
2: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल।
0: आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी पेशकश बॉलीवुड के बिंदास हीरो नाना पाटेकर के जीवन से जुड़ी है। बॉलीवुड का सबसे जिंदा दिल इंसान अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। 8 अक्टूबर को तड़के हुई उनकी मौत से बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया। पर नाना की मौत से सबसे ज्यादा सदमे में वो किसान हैं जिनकी जिंदगी को संवारने के लिए इस महामानव ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। नाना की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र के किसान खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। दरअसल नाना रुपहले पर्दे के एकमात्र ऐसे हीरो थे जिन्होंने रील को रियल लाइफ के दर्द और दुश्वारियों को अभिव्यक्ति देने का जरिया बनाया। नाना की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे अद्भुत और अनोखे किस्से हैं जिन्हें जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
4: हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। That is my final property. बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसमें जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलतफहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
5: नाना काश आप अपने जिगरी दोस्त मकरंद अनासपुरे को बेतहाशा बिलखते हुए देख पाते तो शायद आपकी आखिरी गलतफहमी दूर हो जाती। यकीनन आपकी जलती चिता को देखकर बहने वाले अशकों की बूंदे 100% असली हैं, प्योर हैं, ठीक आफी की तरह। काश आप देख पाते कि आपकी अचानक हुई

0: कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, क्योंकि वो दोनों माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। एक नॉर्मल आदमी की तरह जितना कपड़े वगैरह से आपको मालूम पड़ेगा, और अपने बहुत लोगों की मदद करते थे वो, जहाँ भी, चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, इसलिए।
1: आप ये जान लीजिए कि थिएटर के माध्यम से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने बड़े पर्दे का रुख स्टारडम हासिल करने या पैसे कमाने के लिए नहीं किया। वो बॉलीवुड की शायद अकेली शख्सियत थे जिन्होंने देश और समाज में व्याप्त अव्यवस्था, असमानता, अनाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ धधकते कलेजे का बिंब पर्दे पर हूबहू उतारने के लिए सिल्वर स्क्रीन को चुना था। यही वजह है कि उनके जाने के बाद रुपहले पर्दे की दुनिया उदास है।
2: It's terrible. It's not fair. It's not fair. Some people, you don't think that they will ever go. Nana was one of them. Nana was larger than life. Nana had the largest heart in the world. Nana's anger was all kindness, actually. It's not right. He should have not gone.
1: नाना बड़े पर्दे के हीरो नहीं थे, वो तो असल जिंदगी के महानायक थे। असल जिंदगी के नायकत्व को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने पर्दे को माध्यम बना लिया। पर्दे की वर्चुअल दुनिया में फौजी बनकर देश के लिए मर मिटने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असली जंग के दरमियान सरहद पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले वो अकेले नायक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने तत्कालीन जनरल पाटाड़कर को फोन कर कहा था कि मैं बतौर फौजी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। जनरल पाटाड़कर ने जब मना कर दिया तो नाना ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन कर सेना में शामिल होने की अनुमति मांगी। नाना का देश प्रेम और जोश देखकर फर्नांडिस ने अनुमति दे दी और नाना वाकई मोर्चे पर पहुंच गए।
3: हमने फोन किया, तुम जानते थे मुझे, नाना सिविलियन को अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा सिविलियन 6 महीने में तो कमीशन हो जाता है, हमने 3 साल गुजारे हुए, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा अब बता रहा हूँ कब जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आज, निकल गया। तो 60 दिन था मैं सभी जगह, मुगलपुरा में था, द्रास में था, लेह में था, कुपवारा में था, बारामुल्ला में था, सोपर में था।
1: काबिले गौर है कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा बनकर पूरे 2 महीने तक दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। क्विक रिएक्शन टीम सेना के अंदर एलीट टीम मानी जाती है। दरअसल नाना ने 1991 में आई प्रहार द फाइनल अटैक फिल्म की मेकिंग से पहले करीब 3 साल की बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ उन्होंने कड़ी सैन्य और कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू की।
3: 3 साल तक मैं वहाँ आते जाते, मैं बहुत बहुत सीखा यार। मैं 40 की उम्र में कमांडो कोर्स का वो सभी किया हुआ है, BOC, बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स, और बाकी का वो सभी। 28 तो उनके आउटर लिमिट है ना।
1: ऐसे महानायक थे नाना। रुपहले पर्दे पर शोषितों, वंचितों, गरीबों, मजलूमों की आवाज बनकर त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में बेबस लाचार किसानों का मसीहा बनने वाले वे अकेले नायक थे। साल 2015 में नाना ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1.5 करोड़ की कार खरीदने का मन बनाया, लेकिन उसी दौरान एक शाम उन्होंने टीवी पर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी खबर देख ली। नाना ने तुरंत फैसला कर लिया कि कार के लिए जोड़ी गई 1.5 करोड़ की रकम जान गंवा चुके किसानों के परिजनों को दे दूंगा। दरअसल नाना को लगा कि जिनका पति मर गया, जिनका पिता मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनका दुख दर्द बांटने की जगह 1.5 करोड़ की गाड़ी की सवारी करना इंसानियत को मारने जैसा है।
3: उनके चेहरे पे बाप मर गया, मर्द मर गया, बेटा मर गया, उससे ज्यादा रात की शाम की भूख थी आंखों में, बोलने में उनका ना तो कोई आंसू है ना तो कुछ है। वो जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं तो डर गया यार। मैंने कहा हम काहे की गाड़ियां खरीदे यार। हमारा ये दोस्त है मकरंद अनासपुरे, वो मराठवाड़ा का है।

0: उसको हमने उनके मैंने कहा 1,000 जो है जिन्होंने आत्महत्या किए उनके फैमिली को 15,000 का एक चेक भेज दो, 15, 15, 15, 15, 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे।
1: लग्जरी कार के लिए बड़ी ही हसरत से जमा की गई रकम को पीड़ित किसान परिवारों के बीच बांटने का फैसला लेने में नाना को एक पल भी नहीं लगा। अलबत्ता इस मदद के बाद उन्हें प्रेरणा हुई कि एक बार कुछ कर देना ही काफी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे मजलूम किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए लंबे कार्यक्रम की जरूरत है। इस पवित्र उद्देश्य के साथ सितंबर 2015 में नाना ने नाम फाउंडेशन की स्थापना की। नाम फाउंडेशन के तहत उन्होंने न सिर्फ किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई, बल्कि उनके बच्चों की एजुकेशन का भी बीड़ा उठाया। इसके साथ ही नाम फाउंडेशन ने भूजल स्तर सुधारने, पुरानी नहरों और जल परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के साथ ही गांवों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर पहल की। साफ है कि नाना पाटेकर रील के कम रियल लाइफ के ज्यादा बड़े नायक थे। उनके यूं अचानक चले जाने से महाराष्ट्र के किसान आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं।
2: नाना पाटेकर का यूं चले जाना सबको रोला गया। दरअसल नाना ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके सामने कभी 2 जून की रोटी का भी संकट था, पर नाना को बचपन से ही हालात के आगे घुटने टेक कर रोना कतई ना पसंद था। हालात कितना भी कठिन क्यों ना हो, नाना डरने की जगह लड़ना पसंद करते थे। एक समय जब इनके पिता का कारोबार किसी वजह से बर्बाद हो गया तो नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। तब वो बमुश्किल 13 साल के थे, लेकिन अपनी कमाई से पूरे परिवार का पेट पालने लगे।

0: छुटा रेत सा हाथों से है हयात तेरा वो दामन, रह गई कुछ खाबों की कलिया और कुछ भीगे सावन। आया था सौगात में लेकर कुछ सांसों के वादे, बोझ उन्हीं का कैसे ढोए तू ही मुझे बतला दे।
1: श्वासों की सौगात वादों की मंजिल के पार जाकर सदा के लिए शून्य में विलीन हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई महकती यादों की ऐसी खूबसूरत लड़ियां जो अदाकारी के साथ इंसानियत का भी चिराग बनकर इस जहां में ताकयामत रोशनी बिखेरती रहेंगी। गमन से शुरू होकर ओ रोमियो तक नाना पाटेकर का फिल्मी सफर रुपहले पर्दे पर निसंदेह अत्यंत गहरी छाप छोड़ता है, पर पर्दे के सामने दिखने वाली अदाकारी की रानाइयों से कहीं ज्यादा असरदार हैं पर्दे के पीछे के वो फौलादी किस्से जो आम जनों के लिए किसी न किसी वजह से पोशीदा हो गए। 3 नवंबर 1989 को रिलीज हुई परिंदा के अन्ना को कौन भूल सकता है, जो पर्दे के सामने आग से बहुत ज्यादा खौफ खाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उसी अन्ना यानी नाना ने आग वाले सीक्वेंस की शूटिंग के समय फायर सूट पहनने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि अगर आग की तपिश महसूस नहीं होगी तो शॉट की संजीदगी मर जाएगी। फिल्म के एक अदद दृश्य में जान फूंकने के लिए नाना पाटेकर ने अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया था।
2: Can you imagine this is real fire? रबर सॉल्यूशन के साथ आग लगाई। दिस इज व्हेन ही गॉट बर्न्ड। ये देख, ओ माय गॉड, आई हैव नेवर सीन इट लाइक दिस। ओ माय गॉड, हाथ पे आग लगी और ये अब उसने छलांग मारी है। ये देख, यहां तक आया, ये देखा, ये जंप मारा है उसने इनटू द सेफ एरिया। ओ माय गॉड, यू नो आई हैव नेवर सीन इट लाइक दिस इन माय लाइफ। It's the first time I'm watching this because इतना control मेरे पास कभी था ही नहीं। नाना तू अगर देखेगा ना ये तो यार क्या किया तूने? It's unbelievable।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि परिंदा के इस दृश्य की शूटिंग के दौरान नाना बुरी तरह झुलस गए थे। ऐसे झुलस गए थे कि 2 महीने से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और 1 साल तक वो कोई भी काम करने की हालत में नहीं थे।
0: आग लगी, वाकई आग लगी थी, मैं जल रहा था। उसके बाद 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ऐसे था 60 दिन अस्पताल में। वो जो सीन देखते हो ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा, वो मैं बाकायदा जल रहा था। हम 60 दिन, हमारा ये यहाँ से यहाँ कुछ नहीं था, ये सब ये निकल के वो गिर गया था मेरे चप्पल पे और इधर पैजामा पे। स्किन थी ही नहीं, दाढ़ी नहीं थी, मूछें नहीं थी, बवे नहीं थी, आईलिड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सब जल गया।
1: परिंदा से पहले साल 1988 में रिलीज हुई मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में भी नाना बुरी तरह जख्मी हो गए थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट शफीक सैयद को नाना पाटेकर को चाकू मारना था। एहतियात के तौर पर नाना ने पेट के पास एक टायर बांधा था, लेकिन फिल्म में कृष्णा का किरदार निभा रहे शफीक ने चाकू इतना तेज मारा कि वो टायर को भेद कर नाना के पेट में घुस गया। पर नाना तो नाना ही थे, शॉट ओके होने तक किसी को पता ही नहीं चला कि नाना के कपड़ों में दिख रहा लाल रंग नकली नहीं बल्कि उनका असली खून है।
0: वो जो एंड में मुझे वो बच्चा भोग देता है ना चाकू, टायर लगाया था, टायर ऐसे काट के इधर, तो वो सारा चाकू टायर के आर पार गया और मेरे गया अंदर। तो मैं घुस गया, चाकू ऐसे इधर से किधर मारा तो घुस गया और उनको लगा क्या एक्टिंग की है। फॉर्चुनेटली वो स्पाइन में नहीं गया, इधर बाजू में गया।
1: अलग ही मिट्टी का बना था ये शख्स। नाना ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की। सभी फिल्मों में उनकी अदाकारी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की जमी जमाई लीक को तोड़ती दिखाई देती है। नाना के ज्यादातर प्रशंसक इस सच को स्वीकार भी करते हैं। पर नाना ने अदाकारी की ही नई लीक नहीं खींची, शूटिंग के सेट पर कई ऐसे विस्मयकारी कारनामे किए जिसे सुनकर सहसा यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म क्रांति वीर के क्लाइमेक्स सीक्वेंस ने दर्शकों पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। क्लाइमेक्स में नाना करीब 3.5 मिनट तक मर्म को छूने वाला संवाद बोलते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि नाना ने जो कुछ भी बोला था वो फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये जानेंगे कि सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त नाना अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टरों के साथ सेट पर पहुंचे थे।
0: 2:30 बजे शुरू, हमारे 7 दिन का ये था क्लाइमैक्स का शूटिंग। 2:30 बजे शुरू किया हमने, 5 बजे खत्म हो गए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हमको क्या बोला। हम गए, अपना बोलना शुरू कर दिया। जिस वक्त मेरे को लगा कि अभी कुछ नहीं सोता है, लारे ला ला ला मैंने पहना देता था, वो जो अपने फांसी लेने का है ना, वो लाश का, वो उसके पास से वो लेता है, वो ऐसा काली पहना चल, क्योंकि उसके बाद कुछ सूझ नहीं रहा था।
1: हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसका क्लाइमेक्स इस तरह शूट किया गया हो। नाना का कमाल देखिए कि जिस क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए मेहुल कुमार ने 7 दिन का वक्त मुकर्रर किया था वो 2.5 घंटे में ही पूरा हो गया और फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा बन गया। दरअसल स्टारडम मिलने के पहले से ही नाना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए तमाम कलाकारों को क्या क्या समझौते नहीं करने पड़ते हैं, पर नाना ने कभी कोई समझौता नहीं किया। नाना जब थिएटर्स करते थे उसी दौरान उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने उन्हें बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा से मिलवाया। रवि चोपड़ा तब आज की आवाज फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्होंने नाना को रेपिस्ट का रोल ऑफर किया। रेपिस्ट के रोल की पेशकश पर नाना ऐसे भड़के कि रवि चोपड़ा को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे।
0: तो जबरदस्ती मुझे ले गई बीआर चोपड़ा जी के साथ। उनका बेटा रवि चोपड़ा डायरेक्ट कर रहा था आज की आवाज, और वो उसमें एक 4 हेंचमैन थे, जो एक ऐसे ही रेपिस्ट बच्चे थे, उसमें से एक रोल हमको ऑफर किया। अब मैं यहाँ, मैंने क्या बोला वो बोल नहीं सकता।
1: बॉलीवुड में चोपड़ा परिवार की क्या हैसियत है ये किसी से छिपी नहीं है, पर उसी चोपड़ा परिवार के चश्मो चिराग रवि चोपड़ा को नाना ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद सारे के सारे सन्नाटे में चले गए। पर उसके बाद रवि चोपड़ा को भी समझ में आ गया कि जिस शख्स को मैं थिएटर का छोटा मोटा अदाकार समझ रहा था वो जरूरत से ज्यादा कद्दावर है। बाद में रवि चोपड़ा ने आज की आवाज फिल्म के लिए नाना को मेन विलेन जगमोहन दास का किरदार ऑफर किया। हालांकि नाना ने जगमोहन दास के किरदार के लिए भी शर्त रख दी कि अपने संवाद मैं खुद लिखूंगा। जिसे भरोसा सिर्फ अपने हुनर का होता है वो नफे नुकसान का गुणा गणित नहीं करता। दरअसल नाना को स्टारडम पाने या पैसे कमाने की वैसी कोई भूख कभी नहीं थी जैसा कि बॉलीवुड के अंदर हर कलाकार की आमतौर पर होती है। इसीलिए नाना कभी किसी निर्माता निर्देशक के पास रोल पाने के लिए हाथ पसारते नहीं देखे गए। गिड़गिड़ाना या रोना नाना की फितरत का हिस्सा कभी नहीं था।
0: वो हर चीज पे अपने हंसने की जो आदत थी ना, वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो एटीट्यूड बहुत अच्छी थी। रोते बैठने की, रोए नहीं हम, रोए कैमरा के सामने और उसके पैसे वसूले हमने।
1: 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुंड जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी 75 साल जिंदगी के रियल किस्से रील की फैंटेसी से भी ज्यादा रोमांचक, विस्मयकारी और प्रेरणादायक हैं। बेहद साधारण परिवेश में पले बड़े होने के बावजूद बचपन से ही एक अजीब जिदो जुनून था नाना के अंदर। काम कितना भी दुष्कर हो, असाध्य हो, असंभव हो, नाना के शब्दकोश में ना नहीं था। नाना जब महज 13 साल के थे तो इनके पिता का कारोबार किसी वजह से ठप हो गया। पूरे परिवार के सामने पापी पेट को पालने का सवाल था। पूरा परिवार गहरी चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन 13 साल के नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। जिस जगह काम मिला वो घर से 8 किलोमीटर दूर था। 35 रुपए की मासिक पगार के लिए 13 साल के नाना रोज 16 किलोमीटर पैदल चलते थे।
0: तो हमको 35 रुपए मिलता था महीने का। 35 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त, मैं ये बात कर रहा हूँ 63-64 की। 13 साल के थे हम, तो 8 किलोमीटर पैदल जाओ, 8 किलोमीटर पैदल चल के आ जाओ, 16 किलोमीटर चलना पड़ता था, 35 रुपए मिलता था और एक वक्त का खाना मिलता था। और रात को खाते वक्त हमको दिक्कत होती थी कि यार माँ ने खाया होगा, पिताजी ने खाया होगा, भाई ने खाया होगा। जहन में तो आता था लेकिन हम खा लेते थे यार, भूख इतनी बड़ी थी उनसे, प्यार से हम खा लेते थे।
1: नाना पाटेकर के व्यक्तित्व की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि 90 के दशक में एक फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान खान से भी ज्यादा पैसे लेने वाले नाना पाटेकर ने कभी 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की रंगाई का काम भी किया है?
0: जेब्रा क्रॉसिंग रहती थी ना, वो हम पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे एक एक क्रॉसिंग के, एक कर दिया तो 15 रुपए। तो रात को हम शुरू करते थे, जैसे ट्रैफिक बंद हो जाए 1:30 बजे शुरू करते थे, नहीं तो फिर उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए तो वो धब्बे आ जाएंगे टायर के, तो मार्क्स आते, तो फिर वो दूसरे दिन 15 रुपए मिलेंगे नहीं। तो पहले दोनों बाजू तीन जन दूसरे जो हमारे दोस्त थे वो खड़े रहते थे, फटाफट लगा दो, फिर अगला वो करेगा, ऐसे करके एक रात में 25-30 जेब्रा क्रॉसिंग हो गई तो पैसे मिल जाते।
1: 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग करने वाला इंसान बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा की इस बात के लिए फजीहत कर देता है कि उन्होंने उसे रेपिस्ट का रोल कैसे ऑफर कर दिया। बॉलीवुड की बिंदास दुनिया में अदाकारी की अलग ही मिसाल कायम कर दुनिया से रुखसत हो चुके नाना पाटेकर ने अपनी 75 साल की जिंदगी में बेपनाह दुश्वारियां झेली। जब ये काफी छोटे थे, इनके बड़े भाई की 14 साल की उम्र में एक हादसे में मौत हो गई। एक और भाई की मुंबई सीरियल धमाकों में दर्दनाक मौत हुई। नाना का खुद का एक बेटा 2.5 की उम्र में असमय काल कौलित हो गया। पर इस तरह के तमाम दर्द को झेलने के बाद भी इस इंसान ने अपने अश्कों को आंखों से बाहर नहीं निकलने दिया, और जब कैमरे के सामने रोने का दृश्य फिल्माने की नौबत आई तो सीने में दफ्न उन्हीं आंसुओं को नैनों का रास्ता दिखा दिया।
0: और हम थोड़ी एक्टिंग थोड़ी करते हैं यार, हम तो हमारे इमोशंस बेचते हैं। जो उस दिन हम रोए नहीं, वो रखा है हमने अंदर, तो फिर कैमरा के सामने रो देते हैं तो आपको लगता है हाँ क्या एक्टिंग की, पैसे भी मिलते हैं और भड़ास भी निकलती है।
1: नाना अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने चाहने वालों के लिए छोड़ गए हैं उन्हीं आंसुओं का सैलाब जिन्हें कभी उन्होंने अपने सीने में जज्ब कर लिया था। नाना का नश्वर शरीर बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व से जुड़ी बेशुमार कहानियां आने वाले वक्त में बड़े चाव से सुनी और सुनाई जाएंगी।
3: आज आपने नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: कल से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ, अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदिशक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पर नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा, महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरे रंग। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथावाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: कल से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 9 दिनों तक होगी माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना, पंडालों में सजी माता की प्रतिमा। नवरात्र में 9 देवियों की होगी आराधना, कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा का होगा शुभारंभ। माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान गजवाहन पर होगा। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की होगी पूजा अर्चना। कल पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना होगी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी दुर्गा अष्टमी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होगी और महानवमी होगी। देश भर में आस्था और उल्लास के साथ नवरात्र उत्सव की रौनक, दुर्गा पूजा के लिए सजाए गए भव्य पंडाल। नवरात्र से पहले कटरा में वैष्णो देवी दरबार में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माँ के दर्शन को पहुंच रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जय माता दी के जयकारों से गूंजा पूरा धाम। माता वैष्णो देवी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह, माँ वैष्णो देवी के दरबार की अलौकिक छटा, रंग बिरंगे फूलों से सजा पवित्र भवन। शारदीय नवरात्रि में भक्तों के स्वागत के लिए कटरा तैयार, देश भर से पहुंच रहे माता के भक्त, चारों ओर दिख रहा अद्भुत और अलौकिक नजारा। वैष्णो देवी यात्रा पर सुरक्षा का पहरा, कटरा से भवन तक चाक चौबंद सुरक्षा, 564 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात। श्रद्धालुओं की सुविधा पर प्रशासन का फोकस, वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हाईटेक निगरानी, 13 किलोमीटर के रास्ते पर सुरक्षा सख्त, कंट्रोल सेंटर से हर गतिविधि पर नजर। नवरात्र के अवसर पर गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। लाखों श्रद्धालु करेंगे मां दुर्गा की आराधना, गरबा मैदानों में 3-लेयर सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी शी टीम, सादे कपड़ों में तैनात रहेगी महिला पुलिसकर्मी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में महालया का भव्य आयोजन, लाइट डिस्प्ले में दिखा मां दुर्गा का दिव्य स्वरूप, संगीत और नृत्य से गूंजा ईडन गार्डन्स, लाइट एंड साउंड शो ने बांधा समा। हजारों ड्रोन से सजा कोलकाता का आसमान, देवी दुर्गा और खिलते कमल की आकृति बनी, आदिवासी नृत्य और ढाक के थाप से हुआ इसका आगाज। सिंगर शान लग्नजिता और कौशिका चक्रवर्ती ने दी गीतों की शानदार प्रस्तुति, कई कलाकारों और चर्चित हस्तियों ने की इसमें शिरकत, महालया के रंग में रंगा पूरा कोलकाता। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, हेमकुंड साहिब में अंतिम अरदास के लिए उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़, धार्मिक परंपराओं के साथ दोपहर 2 बजे कपाट हुए बंद। सुबह 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ से शुरू हुआ कार्यक्रम, 11:20 पे शब्द कीर्तन और दोपहर 12:30 हेमकुंड साहिब में हुई साल की अंतिम अरदास। हेमकुंड साहिब यात्रा के समापन पर सेना के बैंड ने बांधा समा, बैंड ने दी शानदार और मनमोहक प्रस्तुति, बर्फबारी के बीच 6,000 से ज्यादा श्रद्धालु बने स्थल के साक्षी। बर्फ की मोटी चादर से ढके सप्तशृंग घाटी, पंज प्यारों की अगुवाई में सचखंड साहिब पहुंचे गुरु ग्रंथ साहिब, पाकिस्तान से आए 40 सदस्यीय सिख श्रद्धालु का जत्था। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हेमकुंड साहिब, इस साल 23 मई को शुरू हुई थी पवित्र यात्रा, हेमकुंड साहिब में श्रद्धालु का बना रिकॉर्ड, 3,84,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आज है महालया का पावन दिन, धरती पर आगमन के लिए माँ दुर्गा के आह्वान की तिथि, आज से देवी पक्ष का शुभारंभ। महालया के अवसर पर है पितृ विसर्जन की परंपरा, 16 दिनों तक चलने वाले पितृ पक्ष का है ये अंतिम दिन। महालया के ही दिन देवताओं ने किया था माँ दुर्गा का आह्वान, महिषासुर के आतंक से मुक्ति के लिए प्रकट हुई थी माँ दुर्गा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कहते हैं महालया, पितृपक्ष समापन का है पावन दिन सर्व पितृ अमावस्या। आसन सोल में अनोखी आगमनी दुर्गा पूजा, दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। आसन सोल में महालया पे दामोदर नदी में उमड़ा आस्था का सैलाब, पूर्वजों को तर्पण देने पहुंचे हजारों लोग। दामोदर नदी में स्नान के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए विधि विधान से किया गया तर्पण, पुरोहितों ने किया मंत्रोच्चार। हावड़ा के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालु की भारी भीड़, पवित्र जल में तर्पण के लिए दूर दराज से पहुंचे लोग। हरिद्वार में पितृ विसर्जनी अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़, श्राद्ध के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। नारायणी शिला मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस बल की निगरानी में श्रद्धालु को कतार में पूजा के लिए दिया जा रहा प्रवेश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महालया अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी, भक्तों ने पूजा अर्चना कर कमाया पुण्य लाभ। महालया अमावस्या के अवसर पर रामेश्वरम में श्रद्धालुओं ने किया तर्पण, बड़ी संख्या में भक्तों ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, स्नान दान के साथ किया तर्पण। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में सुबह से स्नान ध्यान के लिए जुटे लोग, कपिल मुनि आश्रम में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। असम के डिब्रूगढ़ में भक्तों ने महालया पे ब्रह्मपुत्र नदी में लगाया आस्था की डुबकी, पितरों के लिए किया तर्पण। उज्जैन में मुस्लिम महिला नाजिया इलाही खान ने किया पिंड दान, क्षिप्रा नदी में किया तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की पूजा अर्चना। सर्व पितृ मावस पे रामघाट पहुंची थी। पूर्वजों के मोक्ष के लिए किया पिंडदान, तर्पण के बाद मन हल्का होने की बात कही। उज्जैन में पूजा को बताया जीवन का खास फैसला, बोले जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। क्षिप्रा तट पर पूरे विधि विधान से श्राद्ध, नाजिया ने पूर्वजों के निमित्त किया जलदान, दुग्ध जल अर्पित कर निभाई श्राद्ध की परंपरा। रामघाट में पूजा करते हुए नजर आई नाजिया। धर्म और परंपराओं पर खुलकर रखी अपनी राय, मुस्लिम होकर तर्पण करने के अधिकार पर उठाए सवाल, गयाजी में दूसरे धर्मों के लोगों के तर्पण का दिया उदाहरण। अपने विचारों के समर्थन में तथ्य रखने का किया दावा, नाजिया ने सनातन परंपराओं को समझने की बात कही। उज्जैन में पूजा के बाद भावुक नजर आई नाजिया। जोधपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में लिया हिस्सा। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया रक्षा मंत्री का स्वागत, अभ्यास में कई देशों के जवान शामिल। भारत के आसमान में दिख रही है देशी ताकत और विदेशी फाइटर जेट्स की शानदार जुगलबंदी, रक्षा मंत्री के सामने युद्धाभ्यास। देशी विदेशी सेना के जवानों से रक्षा मंत्री ने की मुलाकात, आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमानों की लगी प्रदर्शनी। तरंग शक्ति 2026 में भारत और दूसरे देशों की वायुसेनाएं एक साथ कर रही हैं अभ्यास, आपसी तालमेल और सैन्य सहयोग को मिल रही है इससे मजबूती। आरबीआई ने 12 अक्टूबर से आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल के लिए डॉलर की जरूरत पूरी करने की शुरू की विशेष व्यवस्था, रुपए पे दबाव कम करने में मिलेगी इससे मदद। कटियार में डीएम के सादगी भरे अंदाज ने जीता सभी का दिल, बच्चों के साथ जमीन पे बैठ के खाया खाना। कटियार डीएम ने क्लास में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया लाइट चैप्टर, बच्चों का बढ़ाया आत्मविश्वास। पटना में चलाया जा रहा स्वच्छता सेवा अभियान, केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी लिया इसमें हिस्सा। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पे सैफे में उमड़ी भीड़, लोगों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। सलमान खान ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीइंग द सलमान खान किया लॉन्च, फैंस को इस चैनल पे उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और बिहाइंड द सीन से जुड़ी ए टू जेड तक की मिलेगी सभी जानकारी। फिल्म रामायण में लारा दत्ता, महारानी केकई और शिवा चड्डा मंथरा के किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म में दोनों अभिनेत्रियों के किरदार कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बिग बॉस 17 फेम ईशा मालविया फिल्म में तुम मेरे हो से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली है, जिसमें वो अभिनेता गुरमीत चौधरी के साथ नजर आएंगे। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी क्राइम सीरीज टास्करी ने नेटफ्लिक्स पे लहराया सफलता का परचम, ग्लोबल नॉन इंग्लिश टीवी लिस्ट में पहला स्थान हासिल करने वाली बनी पहली भारतीय सीरीज। रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पैटी ने दुनिया भर में किया शानदार प्रदर्शन, शुरुआती दिनों में ही 235 करोड़ रुपए की करी कमाई। करण जौहर ने कॉफी विद करण के सीजन 9 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, कहा कि ये शो का आखिरी सीजन होगा, शो की शुरुआत 14 अक्टूबर से होगी। विजय देवकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म रणबाली का ट्रेलर रिलीज हो गया, फिल्म में दोनों सितारों की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएगी। अनीत पड्डा ने फिल्म शक्तिशालिनी में नाना पाटेकर के साथ अपने काम करने के अनुभव को साझा किया, नाना पाटेकर के साथ काम करने को सिखाने वाला अनुभव बताया। मलयालम फिल्म उड्डुम नचोला विजन का ट्रेलर हुआ रिलीज, मैथ्यू थॉमस और मिलिंद सोमन अहम भूमिकाओं में इसमें नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी मीडिया की दुनिया और खबरों के पीछे की सच्चाई को दिखाएगी। करीना कपूर हाल ही में फॉर्मूला 1 स्टार लैंडो नॉरिस से मुलाकात को लेकर चर्चा में आई, इस दौरान करीना ने अपनी फिल्म तारा रंपम का भी जिक्र किया। जर्मनी में रोशनी का शानदार उत्सव, बर्लिन में शुरू हुआ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का 22वां एडिशन, कलर्स ऑफ लव थीम से जगमगाया शहर के मशहूर स्मारक। ब्रांडनबर्ग गेट से बर्लिन डोम तक रोशनी का चला जादू, बारिश के बीच भी लाइट फेस्टिवल देखने उमड़े लोग, करीब 40 इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से हुई जगमग। मोबाइल कैमरों में खूबसूरत नजारे कैद करते हुए नजर आए दर्शक। पॉड्स लामर प्लाज भी हुआ रोशन, 18 अक्टूबर तक चलेगा बर्लिन का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। चीन के सांगची में क्लिफ साइड लाइट शो का भव्य समापन, 37,000 वर्ग मीटर की चट्टान पे दिखा रोशनी का नजारा। अप्रैल 2027 में फिर शुरू होगा ये शानदार शो। वाई हैंगिंग टेम्पल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, 2.5 लाख दर्शकों ने देखा ये शानदार शो। पहाड़ पे टिका सदियों पुराना हैंगिंग टेम्पल। चीन में गूंजे नन्हे बाघों की किलकारियां, जेजियांग प्रांत के निंगबो वाइल्ड लाइफ पार्क में 5 शावकों का हुआ जन्म, 2 दिनों में जन्मे 3 साइबेरियन और 2 सफेद बंगाल टाइगर। इंक्यूबेटर में रखे गए सभी 5 शावक स्वस्थ, कांच की दीवार से पर्यटक देख सकेंगे नन्हे बाघों की अटखेलियां, 3 महीने बाद आउटडोर एग्जीबिशन एरिया में आएंगे शावक। चीन के रेगिस्तान में इंद्रधनुषीय झील का जादू, इनर मंगोलिया में दिखे रंग बिरंगे खारे पानी की झील, गुलाबी लाल नीले और हरे रंगों से चमक उठा पूरा रेगिस्तान। सुनहरे रेत के टीलों के बीच दिखा कुदरत का अनोखा नजारा, झील के रंगों के पीछे एक खास सूक्ष्म शैवाल डुनालियाला सलीना, नमक की अधिकता और तापमान से बदलते हैं पानी के रंग। चीन के 5 रंगों वाला पहाड़ बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, पतझड़ के रंगों ने मोहा सभी का मन। यूचिन के 40 लाख हेक्टेयर जंगल रंग बिरंगे नजारों से सजे, पेड़ों के बदलते रंगों को देखने उमड़े पर्यटक। चीन में हॉटपॉट का जलवा, बड़ी संख्या में उमड़े पर्यटक, चोंगकिंग में हॉटपॉट रेस्टोरेंट में लिया स्वाद का आनंद। सात दिनों में परोसी गई 1,57,00,000 टेबल पे लजीज व्यंजन, हॉटपॉट के साथ पर्यटन को भी मिला बूस्ट, चोंगकिंग के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचे 91,00,000 सैलानी। फ्रांस के एलेक्सिया बैरियो विशाल ट्रिमरान से रचेंगे इतिहास, 1 नवंबर को रूट टू रूम के अल्टिम रेस में लेंगे हिस्सा, इस श्रेणी में अकेले रेस करने वाली पहली महिला बनने का लक्ष्य। महिला सेलर्स के लिए नहीं रहा खोलने का सपना, 105 फुट लंबी ट्रिमरान नाव से समंदर में उतरेंगे बैरियर, 100 किलो से ज्यादा वजनी पाल संभालना होगी बड़ी चुनौती। चीन में स्मार्ट डिटेक्टर से रेलवे सुरक्षा होगी और भी ज्यादा मजबूत, हार्बिन युचुन रेलवे पर इंटेलिजेंस मोबाइल डिटेक्टर होंगे तैनात, स्मार्ट डिटेक्टर से ट्रेन के खोखले एक्सल की जांच होगी आसान। मंडालिका में स्पेन के मार्केज ने जीती इंडोनेशियाई जीपी स्प्रिंट, जॉर्ज मार्टिन को पछाड़ चैंपियनशिप में बनाई अपने बढ़त, 343 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंचे मार्केज। जॉर्ज मार्टिन की टायर समस्या ने बिगाड़ा खेल, इसी मौके का फायदा उठा के मार्केज ने जीत हासिल की, मार्टिन चौथे स्थान पर पहुंचे जबकि रहे ओगरा दूसरे स्थान पर। इजान गुएवारा ने मोटो टू में पोल पोजीशन हासिल की जबकि ब्रायन उरियाटे मोटो थ्री में सबसे आगे रहे, दोनों ने खिताबी दावेदारी को मजबूती दी। रॉबिन गोमेज ने लगातार 3 बार रेड बुल रैंपेज जीतकर रच दिया इतिहास, लगातार 3 खिताब जीतने वाली पहली राइडर बनी। न्यूजीलैंड के गेम्स ने 93.50 अंक हासिल किए। हन्ना बर्गमैन ने 92.75 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। कर्स्टन वैन हॉर्न 86.50 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। रॉबिन गोम्स ने कड़े मुकाबले के बीच खिताब अपने नाम कर लिया। नासा का साइग्नस एक्सेल कार्गो स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से रवाना, कानाडाम 2 रोबोटिक आर्म की मदद से हुआ अलग, मिशन पूरा कर सुरक्षित दूरी पर बढ़ा स्पेसक्राफ्ट। साइग्नस एक्सेल कार्गो ने स्पेस स्टेशन तक पहुंचा 4,990 किलो का सामान, वैज्ञानिक उपकरण और जरूरी सामान की हुई डिलीवरी, नॉर्थरोप ग्रमनान के बड़े कार्गो व्हीकल की पहली उड़ान। आईएसएस पहुंचने से पहले इंजन बंद होने पर मिशन में हुई थी देरी, रेंडेस वर्स के दौरान सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या आई थी, सफल डिलीवरी के बाद साइग्नस एक्सेल ने पूरी की वापसी प्रक्रिया। चीन के फास्ट टेलीस्कोप ने दुर्लभ ट्रिपल स्टार सिस्टम खोजा, सिस्टम में पल्सर सफेद बोना और सूरज जैसे तारा शामिल, खोज से तारों के विकास को समझने में मिलेगी मदद। एक सिस्टम में 3 तारों की अनोखी कहानी, सबसे भारी तारा सुपरनोवा के बाद पल्सर बना, दूसरा तारा बदल के सफेद बोना बना, तीसरा तारा अब भी विकास की प्रक्रिया में, ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने में मिलेगी इससे मदद। चीन के मोहे में पतझड़ के बीच सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटा शहर, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई, फिसलन भरी सड़कों को लेकर येलो अलर्ट किया गया जारी। मोहे में विंटर टूरिज्म सीजन की हुई शुरुआत, बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की हलचल, स्नोफॉल को देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, बर्फीले नजारों के बीच तस्वीरें लेते नजर आए। मेक्सिको में कैटेगरी 4 तूफान का खतरा, मेक्सिको के तट की ओर तेजी से बड़ा तूफान साइमन 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हवाएं। मंजालिनो और प्लूटो वालाटा पर मंडराया खतरा, तूफान से पहले अलर्ट, समुद्र तट बंद। मंजालिनो में मछुआरों ने नावें समुद्र से हटाई, खतरनाक हालात के चलते तटों पर लगाए गए काले झंडे। प्रशासन ने तूफान से निपटने की तैयारी तेज की, कल मेक्सिको के तट पे लैंडफॉल की आशंका, लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन प्लूटो वाल्ट्रा भी खतरे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट दिखा ला सही दिखा सही लाल।
3: कल से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माथा के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदिशक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पर नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा, महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरा रहा।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम की आज से शुरुआत करते हैं। और पहले आप सभी को बता दूं कि नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में गुड न्यूज टुडे के हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना जो की जाती है वो किस तरीके से की जाती है और नवरात्रि के पहले दिन का क्या महत्व है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, नवरात्रि के लिए एक बात जान लीजिए कि नवरात्रि में आपके आहार का, आप क्या खाते हैं, क्या ग्रहण करते हैं और आपकी दिनचर्या का विशेष महत्व है। अगर आप अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान नहीं देंगे तो बिना इसके नवरात्रि का शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए नवरात्रि में अपने आहार पर और अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 11 अक्टूबर 2026 यानी दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात के 10:32 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:04 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि जो नवरात्रि है वो क्यों इतनी खास है और ये जो 9 है इनका क्या महत्व है। पंडित जी,
1: जी देखिए, अगर हम नवरात्रि की बात करें तो दो शब्द हैं ना, नव और रात्रि। यानी नवरात्रि की जो साधना है वो दरअसल रात्रि की साधना है और 9 की ये महत्वपूर्ण साधना नवरात्रि कही जाती है। क्या महत्व है इसका? नवरात्रि साल में 4 आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, निगेटिविटी खत्म होती है और सात्विकता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में किसी भी तरह की शक्ति हो, धन की, मन की, रूप की, सौंदर्य की, युद्ध की, हर तरह की शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है। इसीलिए इसमें देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि के 9 में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है और हर स्वरूप से विशेष तरीके का वरदान जीवन में मिलता है। और अगर आप 9 की साधना वास्तव में करते हैं तो ग्रहों की किसी भी तरह की बाधा को समाप्त कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है, 19 अक्टूबर को नवमी है और 20 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष ऋषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, आकस्मिक यात्रा हो सकती है, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना आखिरकार कैसे की जा सकती है।
1: जो लोग नवरात्रि में 9 दिन की साधना करते हैं, 9 दिन की उपासना करते हैं, वो कलश की स्थापना करते हैं। कलश का मतलब ये है कि आपने अपने आप को वहां रखा है, मिट्टी का कलश है, वो मिट्टी के शरीर का प्रतीक है। कलश की स्थापना कैसे करेंगे? घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में एक चौकी रखें या एक ऊंचा आसन स्थापित करें, इस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करेंगे, एक मिट्टी का कलश स्थापित करिए चौकी के सामने, कलश में जल भरिए और उसमें जल में

0: लगाकर उसमें जौ भी बो सकते हैं या अलग से वेदी बनाकर उसमें जौ बोइएगा। जब आप कलश की स्थापना कर लेंगे तो उसके साथ कलश के बगल में एक बड़ा सा घी का अखंड दीपक जला देंगे। कलश का मतलब आप स्वयं हैं और जो दीपक है वो ईश्वर का या देवी की शक्ति का प्रतीक है। तो ये अखंड दीपक पूरे 9 रातों को जलता रहेगा और कलश भी वहां पर पूरी नवरात्रि तक स्थापित रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, बेवजह की चिंता और तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, सर्दी जुकाम हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम में फिलहाल समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अनन्या ने हमें लिखा है और अनन्या हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर सन 2000, जन्म का समय शाम के 3:55, जन्म स्थान है लखनऊ। अनन्या कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या इस क्षेत्र में मुझे सफलता मिलने की संभावना बनती है। अनन्या, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एजुकेशन सेक्टर की, शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की तैयारी करें तो इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना जरूर है, इस क्षेत्र में आप सफलता पा जाएंगी। थोड़ी एकाग्रता बढ़ाने की और मेहनत करने की जरूरत दिखाई दे रही है, तो एक मूंगा बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में।

0: लूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में उनसे जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और सोचते हैं कि पंडित जी से सवाल पूछना है कैसे पूछे, तो आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस पर अपने सवाल, अपने डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स के साथ आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब पंडित जी जरूर देंगे। तो चलिए पंडित जी, अब हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न वंदना जी ने हमें लिखा है और वंदना जी हमें पंजाब से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1983। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है अबोहर, पंजाब। वंदना जी कह रही हैं कि काफी समय से अपनी प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पति के साथ मिल करके प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो संपत्ति कब तक खरीद पाएंगे, कब तक उसका लाभ हो सकेगा। वंदना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट अगले साल खरीद पाएंगी मई के बाद। जब भी प्रॉपर्टी खरीदें इतना ध्यान जरूर रखें कि जरूरत से ज्यादा लोन मत लीजिएगा, कम से कम लोन लेने का प्रयास करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि इस बार देवी के आगमन से क्या सूचना मिल रही है, यानी कि देवी माँ की सवारी कौन सी है।
0: देखिए, देवी का आगमन ये बताता है कि आने वाला समय देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा। जिस दिन से नवरात्रि का आरंभ होता है उस दिन के हिसाब से देवी का एक वाहन होता है। इस बार की क्या सूचना है? हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है और इस वाहन के आधार पर आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन हाथी पर यानी गज पर हो रहा है। ये जो हाथी का वाहन है, गज है, ये संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। लोगों के जीवन में इस वाहन की वजह से शांति और आनंद आएगा और आने वाला समय लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो देवी की सवारी, देवी का वाहन इस बार बहुत ही शुभ है और इसके शुभ परिणाम लोगों को अपने जीवन में दिखाई देंगे।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृषभ और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, रुके हुए काम आपके इस समय पूरे होंगे, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, करियर में दबाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर की स्थितियां अच्छी रहेंगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, लेकिन ऐसे में अगर आप भी कलश स्थापना करना चाहते हैं और शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, आइए पंडित जी से उसके बारे में जान लेते हैं।
0: कलश का मतलब आपने स्वयं अपने प्राण को स्थापित कर दिया 9 दिन के लिए देवी के चरणों में। तो कलश की स्थापना का मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या मुहूर्त है इस बार? कलश की स्थापना आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है और इस बार प्रतिपदा तिथि 11 अक्टूबर को रात में 9:30 तक है। तो कलश की स्थापना किसी भी हाल में 11 अक्टूबर को रात में 9:30 के पहले कर लेनी होगी। सबसे अच्छा समय प्रातः 11 अक्टूबर को सुबह 6:18 से 10:11 के बीच का रहेगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर को दोपहर 11:44 से 12:30 के बीच में भी कलश की स्थापना की जा सकती है। जो लोग कलश की स्थापना करते हैं, 9 रात बीत जाने के बाद दशमी तिथि पर दशहरे के दिन इस कलश को हटाएंगे, कलश के जल का प्रयोग करेंगे और कलश का विसर्जन करेंगे, लेकिन ऐसा 9 रातें बीत जाने के बाद करेंगे।
1: तो नवरात्रि के हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे में पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी पहले दिन देवी के किस स्वरूप की उपासना होती है।
0: नवरात्रि के प्रथम दिन जिस देवी के स्वरूप की पूजा होती है वो आरोग्य देने वाली देवी, स्वास्थ्य देने वाली देवी हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, तो प्रथम दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। इनकी पूजा से साधना करने की संकल्प शक्ति मिलती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए और पहले दिन आपको स्वास्थ्य का और लंबी आयु का वरदान मिले इसलिए पहले दिन देवी कवच का पाठ करना अच्छा होता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय के दूध का बना हुआ शुद्ध घी भोग में अर्पित करना चाहिए। तो अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, साधना में डिटर्मिनेशन चाहते हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, धन आपको आसानी से मिलेगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न नीरज जी ने हमें लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। नीरज जी की जन्म की तारीख है 24 अप्रैल 1979। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। नीरज कह रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी छूट गई है और काफी समय से मैं नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नीरज, आपकी नौकरी मिलने का समय चल रहा है और लगता है कि अभी नवंबर दिसंबर में आप नौकरी पा जाएंगे, लेकिन नौकरी पाने के लिए मुंबई से दूर जाना पड़ेगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है, करियर को लेकर के बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी व्यापार में जाने का प्रयत्न मत करिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। तो चलिए पंडित जी हमारे दर्शकों को बता दें कि आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न हमें दिनेश लाल जी ने लिखा है और दिनेश लाल जी हमें मेल लिखते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1994। जन्म का समय रात में 9:30। जन्म स्थान है इंदौर। दिनेश जी कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दिनेश जी आपकी पुत्री के विवाह का समय अगले साल है 2027 के आखिरी में या 2028 के आरंभ में इनका विवाह होने के योग बनते हैं। और विवाह जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुंडली में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहनाइए 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करवाएं और अपनी बेटी को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी। आज बात नवरात्रों की हो रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नवरात्र के व्रत रखते ही रखते हैं और कोई व्रत रखे ना रखे, कोई एक दिन का व्रत रखता है, कोई फर्स्ट और लास्ट रखता है, कोई 9 के 9 व्रत रखता है। तो ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि व्रत कैसे रखने हैं, इसके क्या कुछ नियम है, क्या कुछ खा सकते हैं और कैसे माँ का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है।
0: जी जैसा सरगम ने कहा कि बहुत सारे लोग कोई व्रत रखें या ना रखें नवरात्रि का व्रत जरूर रखते हैं। 2 या 3 तरीके से व्रत रखा जाता है। पहला तो ये है कि पूरे के पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो नवरात्रि में किसी भी एक दिन व्रत रख लेते हैं अपनी मान्यता के अनुसार। और तीसरे लोग होते हैं जो पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। तो जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो व्रत का समापन करेंगे नवमी बीतने के बाद यानी दशहरे के दिन। जो लोग केवल 1 दिन व्रत रखते हैं वो अगले दिन व्रत का समापन कर सकते हैं। और जो लोग पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर व्रत रखते हैं वो नवमी तिथि पर व्रत का समापन कर सकते हैं। अब देखिए एक बड़ी मुश्किल है, व्रत का मतलब 2 है। पहला तो ये कि आपको इन 9 रातों में साधना करनी है। आप साधना नहीं करते, सुबह शाम दीपक जला के आप काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि का लाभ चाहिए तो 9 रातों को जग करके साधना करिए। आहार में अगर आपने व्रत रखा है तो आप फल और जल ग्रहण करिए, वो भी कम से कम लिक्विड पर जितना रह सकें। नींबू पानी, फलों का रस, वो उतना अच्छा होगा। और अगर दिक्कत ज्यादा है तो फल ग्रहण कर सकते हैं। ये जो व्रत की थाली आती है, कुट्टू के आटे की पूड़ी, शामक के चावल, आलू की सब्जी, और ये खा के आप अपने आप को दिलासा देते हैं कि मैंने व्रत रखा है, ये व्रत नहीं है। ये केवल आपके मन का एक संतोष है। ऐसा कोई व्रत नहीं लिखा गया कि जिसमें सब कुछ खा करके आप व्रत रख रहे हैं। न तो आहार पे कंट्रोल है, न तो जीवनचर्या पे कंट्रोल है, दबा के आलू पूरी खा रहे हैं और व्रत रखे हैं, ऐसा कोई व्रत नहीं होता। वास्तव में 9 दिन आपको लिक्विड पे रहना चाहिए, जरूरत पड़े तो फल खाइए, और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप और ज्यादा से ज्यादा साधना करिए, तब नवरात्रि का फायदा होगा। जो लोग बीमार हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयां खानी होती हैं, वो डॉक्टर से एक बार बात कर लें, हो सकता है वो दवाई का डोज थोड़ा घटा बढ़ा दें, तो अगर घटा बढ़ा दें तो वैसा कर लें, और अगर ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा दवाइयां खानी हैं, तो कृपा करके व्रत ना रखें। आप सात्विक भोजन ग्रहण करके पूजा करिएगा, और नवरात्रि में जो भी भोजन बनाएं उसमें प्याज लहसुन आदि का इस्तेमाल ना करें। तो फिर से बता दूं कि जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो 9 रात पूरा होने के बाद दशमी को पारण करेंगे। बहुत सारे लोग 9 दिन व्रत रखते हैं और नवमी को हवन के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं, वो उचित नहीं है, फिर वो 9 दिनों का व्रत नहीं होता है। और नवरात्रि में आप व्रत रखें या ना रखें, घर में जो भी भोजन बने कृपा करके उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिए। पवित्र भोजन, पवित्र आहार, पवित्र विचार और व्यवहार रखेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा।
1: तो चलिए, जिनका जन्मदिन 11 अक्टूबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसे रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 11 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, करियर में स्थिरता आएगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में केवल माता दुर्गा की ही उपासना की जा सकती है? देखिए, नवरात्रि शक्ति प्राप्त करने का पर्व है, इसीलिए नवरात्रि में माता दुर्गा की या शक्ति के किसी भी स्वरूप की पूजा की जा सकती है। नव दुर्गा की सामान्य साधना या 10 महाविद्या की तंत्र साधना भी की जा सकती है।
1: और अब पंडित जी से आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आखिरकार 11 अक्टूबर 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 11 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: आज की गुडलक राशि है मिथुन, और मिथुन वालों को कैसी बीमारियां होती हैं? आम तौर पर मिथुन वालों को इन्फेक्शन वाली बीमारियां ज्यादा परेशान करती हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप नियमित रूप से व्रत उपवास रखें तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी आप अपनी बड़ी से बड़ी जेन्युइन मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, नवरात्रि में क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब इसको लाल धागे में बांधकर माला की तरह बना लें और इस माला को मां दुर्गा के गले में पहना दें। अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने पर इसको जल में प्रवाहित कर दें या 6 महीने बाद जब अगली नवरात्रि आएगी तब भी आप इसको निकाल करके जल में प्रवाहित कर दीजिएगा।
1: पंडित जी हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: जंग के मैदान में जब से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तब से इस हवाई खतरे ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली हैं। ये साइलेंट किलर की तरह आते हैं और बड़ी तबाही मचा देते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 100 या 500 ड्रोन्स का झुंड किसी सैन्य ठिकाने, एयरबेस या रिफाइनरी की तरफ भेज दे, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। एक रेडार और मिसाइल बैटरी एक बार में सिर्फ सीमित संख्या में ही टारगेट्स को ट्रैक और फायर कर सकती है, और जब ड्रोन की तादाद मिसाइल्स की क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो एयर डिफेंस सैचुरेट हो जाता है और बचे हुए ड्रोन रक्षा कवच को भेदकर तबाही मचा देते हैं। ऐसे में ड्रोन स्वार्म खतरे की कार्ड तैयार करना बेहद जरूरी है, और भारत भी बखूबी समझता है कि इस खतरे से निपटने के लिए मल्टी लेवल तैयारी कितनी जरूरी है।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। भारत की निजी रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने अपने ज्वाला माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम के तहत 2 सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण 3 अक्टूबर 2026 को किया गया। ज्वाला भारत का पहला स्वदेशी निजी माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम है, जो हार्ड किल काउंटर यूएस यानी कि ड्रोन को तबाह करने वाला सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।
0: ज्वाला MK1 एक स्वदेशी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर माइक्रो मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन स्वार्म को हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी ढंग से हमला कर सकती है। इंगेजमेंट एल्टीट्यूड यानी मारक ऊंचाई की बात करें तो इसका मारक दायरा न्यूनतम 50 मीटर से लेकर मैक्सिमम 5000 मीटर की ऊंचाई तक है। मैक्सिमम दूरी पर भी इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 2 मीटर से कम है, यानी ये अपने लक्ष्य के 2 मीटर के दायरे के अंदर अचूक वार कर सकती है। टारगेट डिटेक्ट होने से लेकर मिसाइल लॉन्च होने तक का रिएक्शन टाइम भी इसका 7 सेकंड से कम है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि ये अगर दुश्मन का ड्रोन जमीन के पास बहुत लो अल्टीट्यूड पे भी आ रहा है, 50 मीटर की दूरी पर, तो भी उसको ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन का ड्रोन अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तब भी ज्वाला के जद्दोजहद के अंदर रहता है। इसका जो फायरिंग एनवलप है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन का जो ड्रोन है अगर वो मल्टीपल वेव्स में आ रहा है तो जो जमीन पर जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोलर है, उसको तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है, और एक AI लॉगरिथम से जो लॉन्चर हैं या जो कमांडर है वो अलग अलग ड्रोन्स को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग झुंड में एंगेज कर सकता है।
3: थ्रेट डिटेक्टेड, टारगेट लॉक्ड, द मिसाइल इज अवे।
0: ज्वाला MK1 मिसाइल में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। ये लॉन्च के समय मिसाइल को तुरंत तेज रफ्तार देता है। इसमें 0.5 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन का प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से लेस है। इसका मतलब ये कि ड्रोन से सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती। ड्रोन के बेहद करीब पहुंचते ही ये ब्लास्ट हो जाता है और धातु के घातक टुकड़ों की बौछार से ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स में किसी भी मिसाइल सिस्टम की तरह से 2 तरह की फ्यूज लगे हैं। एक तो है इंपैक्ट फ्यूज, यानी जब ये टारगेट से टकराता है तो फ्यूज ऑपरेशनलाइज हो जाता है और एक्टिवेट होकर जो मेन चार्ज है वॉरहेड को एक्सप्लोड कर देता है। दूसरा ये है कि यह अगर दुश्मन के ड्रोन को महज 1 या 2 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है तो इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। ये एक फ्यूज होता है जिसमें से कि लगातार रेडियो वेव्स निकलती हैं और ड्रोन से टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसको भांप लेता है, और ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो एक्टिवेट हो जाता है, फट जाता है।
0: ज्वाला को एक माइक्रो मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टारगेटेड ड्रोन को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ट्रक माउंटेड मल्टी कैनिस्टर लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसे सेना के 4x4 व्हीकल पर आसानी से तैनात किया जा सकता है।
1: ज्वाला MK1 मिसाइल अकेले काम नहीं करती, बल्कि IG डिफेंस के AI संचालित ग्रिड डिफेंस बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है। ये नेटवर्क कई सेंसरों से रडार और डेटा फ्यूजन का उपयोग करके खतरों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करता है।
0: IG डिफेंस का AI कंट्रोल्ड ग्रिड डिफेंड बैटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और इसके साथ इंटीग्रेटेड ज्वाला मिसाइल सिस्टम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने के लिए उन्नत एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस हैं। ग्रिड डिफेंड एक AI इनेबल्ड बैटल मैनेजमेंट और कमांड नेटवर्क है। इस प्लेटफॉर्म को आधुनिक युद्ध प्रणालियों और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशंस और हाई लेवल के एनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स का इस्तेमाल करता है, ताकि डेटा ट्रांसफर के दौरान हैकिंग या इंटरसेप्शन का कोई खतरा न रहे। ये सिस्टम अलग अलग सेंसर से मिलने वाले डेटा को

0: इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए यानी लॉन्च के बाद टारगेट की तरफ अग्रसर होने के लिए एक एनक्रिप्टेड कमांड गाइडेड गाइडेंस सिस्टम है, यानी इसको लगातार रेडियो सिग्नल के द्वारा दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये जो रेडियो लिंक है ये टोटली एंटी जैम प्रूफ है, यानी दुश्मन इस लिंक के अंदर हैक करके घुस नहीं सकता, दुश्मन इस कमांड गाइडेंस लिंक को जैम नहीं कर सकता।
1: ग्रिड डिफेंड सिर्फ एक ही रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडार पर निर्भर नहीं है, ये मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगर दुश्मन किसी रेडार फ्रिक्वेंसी को जैम करने की कोशिश करता है तो ग्रिड तुरंत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज, थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के इनपुट पर स्विच कर जाता है। इससे सिस्टम बगैर रुके काम करता रहता है।
2: आधुनिक युद्धों में अक्सर जीपीएस या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि मिसाइलें रास्ता भटक जाए। ज्वाला मिसाइल और इसके नेटवर्क को जैम रेसिस्टेंट नेविगेशन आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया गया है। अगर दुश्मन मेन सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी को जैम भी कर देता है तब भी यह सिस्टम वैकल्पिक वेव बैंड और इंटरनल गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को सटीकता से ट्रैक करना जारी रखता है।
1: आज के युद्ध में ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम लागत और बड़ी संख्या है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेजता है तो हर एक ड्रोन के खिलाफ बहुत महंगी एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल करना आर्थिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इसे कॉस्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम कहा जा सकता है। दुश्मन को पता है कि उनके स्वार्म ड्रोन में से अगर आधे से ज्यादा ड्रोन का नुकसान हो भी गया तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही इनकी लागत इतनी कम होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन का एक सुसाइड या FPV ड्रोन महज 500 से $2,000 यानी करीब 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस छोटे से ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है उसकी कीमत $1 मिलियन से $3 मिलियन यानी करीब 9.6 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक होती है। युद्ध के लंबा खींचने पर लागत में इतना बड़ा अंतर किसी भी देश पर भारी पड़ सकता है। वो युद्ध में पिछड़ सकता है या हार की दहलीज तक जा सकता है।
2: दुश्मन सस्ते ड्रोनों की बाढ़ लाकर असल में बड़े देशों को कीमती मिसाइल भंडार को जानबूझकर खाली करवाता है ताकि युद्ध में उसे बढ़त मिल सके। जब एक बार महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया तब दुश्मन अपने असली और घातक हथियार जैसे कि उसके ताकतवर फाइटर जेट या भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है, क्योंकि उस समय देश का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका होता है।
1: भारत के पास दुश्मन के ड्रोन और स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर मौजूद है। ये सिस्टम बॉर्डर, सैन्य ठिकानों से लेकर शहरी और VVIP सुरक्षा तक तीन प्रमुख स्तर यानी डिटेक्शन, सॉफ्ट किल, हार्ड किल पर काम करती है। हाल ही में भारत ने एक और स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का एक और ट्रायल किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपने अंतिम परीक्षण में पहुँच गया है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन लॉयटरिंग, मुनिशन और खासकर स्वार्म अटैक को खत्म करने के लिए बनाई गई है।
2: सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड भार्गवास्त्र को तैयार कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C41 से भी जोड़ा जा सकता है। C41 का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस।
1: भार्गवास स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जो महज 10 सेकंड के अंदर 64 माइक्रो रॉकेट्स दागकर दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को नेस्तनाबूद कर सकता है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है।

0: ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि ये एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र को भारत की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढंग से काम करता है। ये क्षमता इसे सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए बेस्ट बनाती है और ये कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है, जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते, बल्कि एक बड़े दायरे को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम हैं। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है, जो ड्रोन के झुंड को बगैर नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये कि इसे भारतीय सेना की गाड़ियों पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी इसे आसानी से किसी भी संवेदनशील सीमा पर तैनात किया जा सकता है।
1: भारत में निर्मित भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिनिएचर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें दो तरह की मिसाइलें होंगी। एक तो वह मिसाइल जो कि अनगाइडेड होंगी, इनको स्वार्म ड्रोन यानी दुश्मन अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेजे उनकी तरफ लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये मिसाइलें दुश्मन के स्वार्म ड्रोन की तरफ जाकर जब फटेंगी तो 20 मीटर की दूरी तक इसके जो टुकड़े होंगे, शार्पनल होंगे, वो दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर देंगे।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियारों और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और किल कर सके।
2: सरहद पार से आने वाले ड्रोन को खाक में मिलाने के लिए भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को एक खास एंटी ड्रोन गन भी मिल चुकी है। नाम है वज्रा शॉट। इस गन को चेन्नई की बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने बनाया है। ये बेहद हल्की और हाथ से चलाई जाने वाली गन है, जिसे सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और ईरान के बीच झड़प, ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम जारी है और कई स्टार्टअप इस पर काम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ डिटेक्टर की जोड़ी है, जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है, जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है, साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे तक ऑपरेट किया जा सकता है।
1: वज्रा शॉट भारत में डिजाइन डेवलप्ड और निर्मित एक हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है। इसको दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल एक राइफल को दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रिगर दबाने पर इसमें से एक जैमिंग तरंगे निकलती हैं, यानी रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो कि दुश्मन के ड्रोन और उसके कमांड सेंटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी में अपलिंक और डाउनलिंक है, यानी जो आदेश दिए जा रहे हैं और जो आदेश लिए जा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है, जैम कर देता है।
0: सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम यानी D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 3 सालों में विकसित किया।
2: ड्रोन या UAV काफी नीचे उड़ान भरते हैं जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट करना चुनौती है तो इन्हें रोकना और तबाह करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम से ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा, साथ ही तबाह भी किया जा सकेगा।
0: DRDO के अनुसार D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये दो तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब किसी भी ड्रोन को जाम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना होता है। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन, चौथा ड्रोन किल सिस्टम जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है, और पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम जिसे स्वार्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वार्म ड्रोन ऑपरेट होते हैं।
1: भारत में फिलहाल बहुत सारी कंपनियां ड्रोन को गिराने के लिए सॉफ्ट किल या हार्ड किल ऑप्शन पर काम कर रही हैं। सॉफ्ट किल का मतलब है कि दुश्मन का ड्रोन आया और दुश्मन के जो ड्रोन को दुश्मन का कमांड सेंटर जो अपलिंक से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको लिंक को जैम कर देना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन का जो अपलिंक है, रेडियो कमांड सिस्टम है, उसको हैक कर सकें, उसकी फ्रीक्वेंसी को जांच कर सकें और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन के कमांड गाइडेंस सिस्टम को जैम कर देना। हार्ड किल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होगा जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को, समझिए एक माइक्रो या मिनी मिसाइल को, दुश्मन की ड्रोन की तरफ लॉन्च किया जाएगा। वो जाके दुश्मन के ड्रोन से टकराएगा, उसका इम्पैक्ट फ्यूज जो है टच करने पर एक्टिवेट हो जाएगा, वॉरहेड फट जाएगा।
0: ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रडार के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किया जा रहा है जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।

0: दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं।
1: ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर, दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो हैं, ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है।
0: दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है जिसे आम भाषा में लेजर वेपन कहते हैं। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइटवेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था।
2: DIU यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को बेकार कर देता है।

0: दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत ही छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है।
1: वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर, न शोहरत का गुरू, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: आज से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदि शक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा, महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरा रंग। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो। मैं हूं श्वेता झा। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जो अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी फराख दिली और नेक नियति के किस्से उदास फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी के साथ गूंज रहे हैं। आज की खास पेशकश में बात उस महामानव की होगी जिसकी पहचान तो रील के हीरो के तौर पर है, लेकिन सही मायने में वो रील से ज्यादा रियल लाइफ का हीरो था।
1: आए और गए, खेल खत्म। पहुंची ये मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं।
2: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं। कंट्रोल।
0: आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी पेशकश बॉलीवुड के बिंदास हीरो नाना पाटेकर के जीवन से जुड़ी है। बॉलीवुड का सबसे जिंदा दिल इंसान अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। 8 अक्टूबर को तड़के हुई उनकी मौत से बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया। पर नाना की मौत से सबसे ज्यादा सदमे में वो किसान हैं जिनकी जिंदगी को संवारने के लिए इस महामानव ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। नाना की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र के किसान खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। दरअसल नाना रुपहले पर्दे के एकमात्र ऐसे हीरो थे जिन्होंने रील को रियल लाइफ के दर्द और दुश्वारियों को अभिव्यक्ति देने का जरिया बनाया। नाना की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे अद्भुत और अनोखे किस्से हैं जिन्हें जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
3: हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माय फाइनल प्रॉपर्टी। बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसमें जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलत फहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलत फहमी नहीं होनी चाहिए।
4: नाना, काश आप अपने जिगरी दोस्त मकरंद अनासपुरे को बेतहाशा बिलखते हुए देख पाते तो शायद आपकी आखिरी गलत फहमी दूर हो जाती। यकीनन आपकी जलती चिता को देखकर बहने वाले अशकों की बूंदे 100% असली हैं, प्योर हैं, ठीक आफी की तरह। काश आप देख पाते कि आपकी अचानक हुई मृत्यु के बाद रुपहले पर्दे के उस कोने में सन्नाटा है जहां कभी आप कड़वी जीवनाभूतियों के सच्चे चित्र अपने दिल की आवाज सुनकर उकेरा करते थे। नाना, आप यकीन मानिए, आप जैसे जिंदा दिल और सच्चे इंसान की अंतिम विदाई के मौके पर नकली आंसू के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।
5: वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, क्योंकि वो दोनों माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। एक नॉर्मल आदमी की तरह चित्रता कपड़े बदले से आपको मालूम पड़ेगा, और अपने बहुत लोगों की मदद करते थे वो, जहां भी, चाहे वो किसान हो, कोई भी हो।
4: आप ये जान लीजिए कि थिएटर के माध्यम से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने बड़े पर्दे का रुख स्टारडम हासिल करने या पैसे कमाने के लिए नहीं किया। वो बॉलीवुड की शायद अकेली शख्सियत थे जिन्होंने देश और समाज में व्याप्त अव्यवस्था, असमानता, अनाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ धधकते कलेजे का बिंब पर्दे पर हूबहू उतारने के लिए सिल्वर स्क्रीन को चुना था। यही वजह है कि उनके जाने के बाद रुपहले पर्दे की दुनिया उदास है।
6: It's terrible. It's not fair. It's not fair. Some people, you don't think that they will ever go. Nana was one of them. Nana was larger than life. Nana had the largest heart in the world. Nana's anger was all kindness, actually. It's not right. He should have not gone.
4: नाना बड़े पर्दे के हीरो नहीं थे, वो तो असल जिंदगी के महानायक थे। असल जिंदगी के नायकत्व को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने पर्दे को माध्यम बना लिया। पर्दे की वर्चुअल दुनिया में फौजी बनकर देश के लिए मर मिटने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असली जंग के दरमियान सरहद पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले वो अकेले नायक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने तत्कालीन जनरल पाटाड़कर को फोन कर कहा था कि मैं बतौर फौजी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। जनरल पाटाड़कर ने जब मना कर दिया तो नाना ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन कर सेना में शामिल होने की अनुमति मांगी। नाना का देश प्रेम और जोश देखकर फर्नांडिस ने अनुमति दे दी और नाना वाकई मोर्चे पर पहुंच गए।
3: हमने फोन किया, तुम जानते थे मुझे, नाना सिविलियन को अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा सिविलियन 6 महीने में तो कमीशन हो जाता है, हमने 3 साल गुजारे हुए, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा अब बता रहा हूँ, कब जाना चाहता हूँ। मैंने कहा आज, निकल गया। तो 60 दिन था मैं सभी जगह, मुगलपुरा में था, द्रास में था, लेह में था, कुपवारा में था, बारामुल्ला में था, सोपर में था।
4: काबिले गौर है कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा बनकर पूरे 2 महीने तक दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। क्विक रिएक्शन टीम सेना के अंदर एलीट टीम मानी जाती है। दरअसल नाना ने 1991 में आई प्रहार द फाइनल अटैक फिल्म की मेकिंग से पहले करीब 3 साल की बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ उन्होंने कड़ी सैन्य और कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू की।
3: 3 साल तक मैं वहाँ आते जाते, मैं बहुत बहुत सीखा यार। मैं 40 की उम्र में कमांडो कोर्स का वो सभी किया हुआ है, BOC बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स और बाकी का वो सभी। 28 तो उनके आउटर लिमिट है ना।
4: ऐसे महानायक थे नाना। रुपहले पर्दे पर शोषितों, वंचितों, गरीबों, मजलूमों की आवाज बनकर त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में बेबस लाचार किसानों का मसीहा बनने वाले वे अकेले नायक थे। साल 2015 में नाना ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1.5 करोड़ की कार खरीदने का मन बनाया, लेकिन उसी दौरान एक शाम उन्होंने टीवी पर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी खबर देख ली। नाना ने तुरंत फैसला कर लिया कि कार के लिए जोड़ी गई 1.5 करोड़ की रकम जान गंवा चुके किसानों के परिजनों को दे दूंगा। दरअसल नाना को लगा कि जिनका पति मर गया, जिनका पिता मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनका दुख दर्द बांटने की जगह 1.5 करोड़ की गाड़ी की सवारी करना इंसानियत को मारने जैसा है।
3: उनके चेहरे पे बाप मर गया, मर्द मर गया, बेटा मर गया, उससे ज्यादा रात की शाम की भूख थी आंखों में, बोलने में उनका ना तो कोई आंसू है ना तो कुछ है। वो जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं तो डर गया यार। मैंने कहा हम काहे की गाड़ियां खरीदे यार। हमारा ये दोस्त है मकरंद अनासपुरे, वो मराठवाड़ा का, तो उसको हमने फोन किया। मैंने कहा 1,000 जो है जिन्होंने आत्महत्या किए उनके फैमिली को 15,000 का एक चेक भेज दो, 15, 15, 15, 15, 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे।
4: लग्जरी कार के लिए बड़ी ही हसरत से जमा की गई रकम को पीड़ित किसान परिवारों के बीच बांटने का फैसला लेने में नाना को एक पल भी नहीं लगा। अलबत्ता इस मदद के बाद उन्हें प्रेरणा हुई कि एक बार कुछ कर देना ही काफी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे मजलूम किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए लंबे कार्यक्रम की जरूरत है। इस पवित्र उद्देश्य के साथ सितंबर 2015 में नाना ने नाम फाउंडेशन की स्थापना की। नाम फाउंडेशन के तहत उन्होंने न सिर्फ किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई, बल्कि उनके बच्चों की एजुकेशन का भी बीड़ा उठाया। इसके साथ ही नाम फाउंडेशन ने भूजल स्तर सुधारने, पुरानी नहरों और जल परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के साथ ही गांवों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर पहल की। साफ है कि नाना पाटेकर रील के कम रियल लाइफ के ज्यादा बड़े नायक थे। उनके यूं अचानक चले जाने से महाराष्ट्र के किसान आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं।
0: नाना पाटेकर का यूं चले जाना सबको रोला गया। दरअसल नाना ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके सामने कभी 2 जून की रोटी का भी संकट था, पर नाना को बचपन से ही हालात के आगे घुटने टेक कर रोना कतई नापसंद था। हालात कितना भी कठिन क्यों ना हो, नाना डरने की जगह लड़ना पसंद करते थे। एक समय जब इनके पिता का कारोबार किसी वजह से बर्बाद हो गया तो नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। तब वो बमुश्किल 13 साल के थे, लेकिन अपनी कमाई से पूरे परिवार का पेट पालने लगे।
3: छुटा रेत सा हाथों से है हयात तेरा वो दामन, रह गई कुछ खाबों की कलिया और कुछ भीगे सावन। आया था सौगात में लेकर कुछ सांसों के वादे, बोझ उन्हीं का कैसे ढोए तू ही मुझे बतला दे।
4: श्वासों की सौगात वादों की मंजिल के पार जाकर सदा के लिए शून्य में विलीन हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई महकती यादों की ऐसी खूबसूरत लड़ियां जो अदाकारी के साथ इंसानियत का भी चिराग बनकर इस जहां में ताकयामत रोशनी बिखेरती रहेंगी। गमन से शुरू होकर ओ रोमियो तक नाना पाटेकर का फिल्मी सफर रुपहले पर्दे पर निसंदेह अत्यंत गहरी छाप छोड़ता है, पर पर्दे के सामने दिखने वाली अदाकारी की रानाइयों से कहीं ज्यादा असरदार हैं पर्दे के पीछे के वो फौलादी किस्से जो आम जनों के लिए किसी न किसी वजह से पोशीदा हो गए। 3 नवंबर 1989 को रिलीज हुई परिंदा के अन्ना को कौन भूल सकता है, जो पर्दे के सामने आग से बहुत ज्यादा खौफ खाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उसी अन्ना यानी नाना ने आग वाले सीक्वेंस की शूटिंग के समय फायर सूट पहनने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि अगर आग की तपिश महसूस नहीं होगी तो शॉट की संजीदगी मर जाएगी। फिल्म के एक अदद दृश्य में जान फूंकने के लिए नाना पाटेकर ने अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया था।
7: Can you imagine this is real fire? रबर सॉल्यूशन के साथ आग लगाई। See, this is when he got burnt. ये देख, oh my God, I've never seen it like this. Oh my God, हाथ पे आग लगी और ये अब उसने छलांग मारी है। ये देख, यहां तक आया, ये देखा, ये जंप मारा है उसने into the safe area. Oh my God, you know I have never seen it like this in my life. It's the first time I'm watching this because इतना कंट्रोल मेरे पास कभी था ही नहीं। नाना तू अगर देखेगा ना ये तो यार क्या किया तूने, it's unbelievable।
4: बहुत कम लोग जानते हैं कि परिंदा के इस दृश्य की शूटिंग के दौरान नाना बुरी तरह झुलस गए थे। ऐसे झुलस गए थे कि 2 महीने से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और 1 साल तक वो कोई भी काम करने की हालत में नहीं थे।
3: आग लगी, अगल बाकी आग लगी थी, मैं जल रहा था। उसके बाद 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ऐसे था 60 दिन अस्पताल में। वो जो सीन देखते हो ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो मैं बाकायदा जल रहा था। हम 60 दिन, हमारा ये यहाँ से यहाँ कुछ नहीं था, ये सब ये निकल के वो गिर गया था मेरे चप्पल पे और इधर पैजामा पे। स्किन थी ही नहीं, दाढ़ी नहीं थी, मूछे नहीं थी, बवे नहीं थी, आईलेट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सब जल गया।
4: परिंदा से पहले साल 1988 में रिलीज हुई मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में भी नाना बुरी तरह जख्मी हो गए थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट शफीक सैयद को नाना पाटेकर को चाकू मारना था। एहतियात के तौर पर नाना ने पेट के पास एक टायर बांधा था, लेकिन फिल्म में कृष्णा का किरदार निभा रहे शफीक ने चाकू इतना तेज मारा कि वो टायर को भेद कर नाना के पेट में घुस गया। पर नाना तो नाना ही थे, शॉट ओके होने तक किसी को पता ही नहीं चला कि नाना के कपड़ों में दिख रहा लाल रंग नकली नहीं बल्कि उनका असली खून है।
3: वो जो एंड में मुझे वो बच्चा भोग देता है ना चाकू, टायर लगाया था, टायर ऐसे काट के इधर, तो वो सारा चाकू टायर के आर पार गया और मेरे गया अंदर। तो मैं घुस गया, चाकू ऐसे इधर से किधर मारा तो घुस गया और उनको लगा क्या एक्टिंग की है। फॉर्चुनेटली वो स्पाइन में नहीं गया, इधर बाजू में गया।
4: अलग ही मिट्टी का बना था ये शख्स। नाना ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की। सभी फिल्मों में उनकी अदाकारी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की जमी जमाई लीक को तोड़ती दिखाई देती है। नाना के ज्यादातर प्रशंसक इस सच को स्वीकार भी करते हैं। पर नाना ने अदाकारी की ही नई लीक नहीं खींची, शूटिंग के सेट पर कई ऐसे विस्मयकारी कारनामे किए जिसे सुनकर सहसा यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म क्रांति वीर के क्लाइमेक्स सीक्वेंस ने दर्शकों पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। क्लाइमेक्स में नाना करीब 3.5 मिनट तक मर्म को छूने वाला संवाद बोलते हैं, पर क्या आप यकीन करेंगे कि नाना ने जो कुछ भी बोला था वो फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये जानेंगे कि सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त नाना अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टरों के साथ सेट पर पहुंचे थे।
3: 2:30 बजे शुरू, हमारे 7 दिन का ये था क्लाइमैक्स का शूटिंग। 2:30 बजे शुरू किया हमने, 5 बजे खत्म हो गए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हमको क्या बोला। हम गए अपना बोलना शुरू कर दिया, जिस वक्त मेरे को लगा कि अभी कुछ नहीं सोता, लारे ला ला ला मैंने पहना देता था, वो जो अपने फांसी लेने का है ना, वो लाश का, वो उसके पास से वो लेता है, वो ऐसा काली पहना चल, क्योंकि उसके बाद कुछ सूझ नहीं रहा था।
4: हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसका क्लाइमेक्स इस तरह शूट किया गया हो। नाना का कमाल देखिए कि जिस क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए मेहुल कुमार ने 7 दिन का वक्त मुकर्रर किया था वो 2.5 घंटे में ही पूरा हो गया और फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा बन गया। दरअसल स्टारडम मिलने के पहले से ही नाना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए तमाम कलाकारों को क्या क्या समझौते नहीं करने पड़ते हैं, पर नाना ने कभी कोई समझौता नहीं किया। नाना जब थिएटर्स करते थे उसी दौरान उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने उन्हें बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा से मिलवाया। रवि चोपड़ा तब आज की आवाज फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्होंने नाना को रेपिस्ट का रोल ऑफर किया। रेपिस्ट के रोल की पेशकश पर नाना ऐसे भड़के कि रवि चोपड़ा को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे।
3: तो जबरदस्ती मुझे ले गई बीआर चोपड़ा जी के साथ, उनका बेटा रवि चोपड़ा डायरेक्ट कर रहा था आज की आवाज, और वो उसमें एक 4 हेंचमैन थे, जो एक ऐसे ही रेपिस्ट बच्चे थे, उसमें से एक रोल हमको ऑफर किया। अब मैं यहाँ मैंने क्या बोला वो बोल नहीं सकता।
4: बॉलीवुड में चोपड़ा परिवार की क्या हैसियत है ये किसी से छिपी नहीं है, पर उसी चोपड़ा परिवार के चश्मो चिराग रवि चोपड़ा को नाना ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद सारे के सारे सन्नाटे में चले गए। पर उसके बाद रवि चोपड़ा को भी समझ में आ गया कि जिस शख्स को मैं थिएटर का छोटा मोटा अदाकार समझ रहा था वो जरूरत से ज्यादा कद्दावर है। बाद में रवि चोपड़ा ने आज की आवाज फिल्म के लिए नाना को मेन विलेन जगमोहन दास का किरदार ऑफर किया। हालांकि नाना ने जगमोहन दास के किरदार के लिए भी शर्त रख दी कि अपने संवाद मैं खुद लिखूंगा। जिसे भरोसा सिर्फ अपने हुनर का होता है वो नफे नुकसान का गुणा गणित नहीं करता। दरअसल नाना को स्टारडम पाने या पैसे कमाने की वैसी कोई भूख कभी नहीं थी जैसा कि बॉलीवुड के अंदर हर कलाकार की आमतौर पर होती है। इसीलिए नाना कभी किसी निर्माता निर्देशक के पास रोल पाने के लिए हाथ पसारते नहीं देखे गए। गिड़गिड़ाना या रोना नाना की फितरत का हिस्सा कभी नहीं था।
3: वो हर चीज पे अपने हंसने की जो आदत थी ना, वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो एटीट्यूड बहुत अच्छी थी। रोते बैठने की, रोए नहीं हम, रोए कैमरा के सामने और उसके पैसे वसूले हमने।
4: 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुंड जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी 75 साल जिंदगी के रियल किस्से रील की फैंटेसी से भी ज्यादा रोमांचक, विस्मयकारी और प्रेरणादायक हैं। बेहद साधारण परिवेश में पले बड़े होने के बावजूद बचपन से ही एक अजीब जिदो जुनून था नाना के अंदर। काम कितना भी दुष्कर हो, असाध्य हो, असंभव हो, नाना के शब्दकोश में ना नहीं था। नाना जब महज 13 साल के थे तो इनके पिता का कारोबार किसी वजह से ठप हो गया। पूरे परिवार के सामने पापी पेट को पालने का सवाल था। पूरा परिवार गहरी चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन 13 साल के नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। जिस जगह काम मिला वो घर से 8 किलोमीटर दूर था। 35 रुपए की मासिक पगार के लिए 13 साल के नाना रोज 16 किलोमीटर पैदल चलते थे।
3: तो हमको 35 रुपए मिलता था महीने का। 35 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त। मैं ये बात कर रहा हूँ 63-64 की। 13 साल के थे हम, तो 8 किलोमीटर पैदल जाओ, 8 किलोमीटर पैदल चल के आ जाओ, 16 किलोमीटर चलना पड़ता था, 35 रुपए मिलता था और एक वक्त का खाना मिलता था। और रात को खाते वक्त हमको दिक्कत होती थी कि यार माँ ने खाया होगा, पिताजी ने खाया होगा, भाई ने खाया होगा। जहन में तो आता था, लेकिन हम खा लेते थे यार, भूख इतनी बड़ी थी उनसे, प्यार से हम खा लेते थे।
4: नाना पाटेकर के व्यक्तित्व की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि 90 के दशक में एक फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान खान से भी ज्यादा पैसे लेने वाले नाना पाटेकर ने कभी 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की रंगाई का काम भी किया है?
3: जेब्रा क्रॉसिंग रहती थी ना, वो हम पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे एक एक क्रॉसिंग के, एक कर दिया तो 15 रुपए। तो रात को हम शुरू करते थे, जैसे ट्रैफिक बंद हो जाए 1-1.5 बजे शुरू करते थे, नहीं तो फिर उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए तो वो धब्बे आ जाएंगे टायर के, तो मार्क्स आते, तो फिर वो दूसरे दिन 15 रुपए मिलेंगे नहीं। तो पहले दोनों बाजू तीन जन दूसरे जो हमारे दोस्त थे वो खड़े रहते थे, फटाफट लगा दो, फिर अगला वो करेगा, ऐसे करके एक रात में 25-30 जेब्रा क्रॉसिंग हो गई तो पैसे मिल जाते।
4: 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग करने वाला इंसान बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा की इस बात के लिए फजीहत कर देता है कि उन्होंने उसे रेपिस्ट का रोल कैसे ऑफर कर दिया। बॉलीवुड की बिंदास दुनिया में अदाकारी की अलग ही मिसाल कायम कर दुनिया से रुखसत हो चुके नाना पाटेकर ने अपनी 75 साल की जिंदगी में बेपनाह दुश्वारियां झेली। जब ये काफी छोटे थे, इनके बड़े भाई की 14 साल की उम्र में एक हादसे में मौत हो गई। एक और भाई की मुंबई सीरियल धमाकों में दर्दनाक मौत हुई। नाना का खुद का एक बेटा 2.5 की उम्र में असमय काल कौलित हो गया। पर इस तरह के तमाम दर्द को झेलने के बाद भी इस इंसान ने अपने अश्कों को आंखों से बाहर नहीं निकलने दिया, और जब कैमरे के सामने रोने का दृश्य फिल्माने की नौबत आई तो सीने में दफ्न उन्हीं आंसुओं को नैनों का रास्ता दिखा दिया।
3: और हम थोड़ी एक्टिंग थोड़ी करते हैं यार, हम तो हमारे इमोशंस बेचते हैं। जो उस दिन हम रोए नहीं, वो रखा है हमने अंदर, तो फिर कैमरा के सामने रो देते हैं तो आपको लगता है हाँ क्या एक्टिंग की, पैसे भी मिलते हैं और भड़ास भी निकलती है।
4: नाना अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने चाहने वालों के लिए छोड़ गए हैं उन्हीं आंसुओं का सैलाब जिन्हें कभी उन्होंने अपने सीने में जज्ब कर लिया था। नाना का नश्वर शरीर बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व से जुड़ी बेशुमार कहानियां आने वाले वक्त में बड़े चाव से सुनी और सुनाई जाएंगी।
0: आज आपने नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अब बात देश दुनिया की गुड न्यूज की कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि चीन में इन दोनों आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी एक साथ उड़ते हुए नजर आए। आसमान में उड़ते इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगा मानो हवा में लहरें उठ रही हों। कैसे, आप भी देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में।
3: ये तस्वीरें चीन के शानडोंग प्रांत की है, जहां येलो रिवर डेल्टा नेशनल नेचर रिजर्व में पक्षियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। जैसे ही शरद ऋतु ने दस्तक दी, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पहुंचने लगे। ये पक्षी झुंड में उड़ते हैं, कभी एक साथ ऊपर उड़ते हैं तो कभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। आसमान में इनकी उड़ान ऐसी लगती है जैसे नीले आसमान में लहरें उठ रही हो। दूर तक फैले पानी और हरे भरे इलाकों के बीच पक्षियों का ये नजारा हर किसी का ध्यान खींच रहा है। पक्षियों को देखने के शौकीन लोग इस खूबसूरत पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कई लोग इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों का ये नजारा न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ये दिखाता है कि प्रकृति में हर मौसम के साथ कितना कुछ बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खुशी का तूफान। न दिखावे का शोर, न शोहरत का गुरूर। रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार। क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सोच दिखाती तो कुछ दिखाती।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: आज से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदि शक्ति के दर्शन को उमड़े उठा। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर। ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा। महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरा रंग। गुजरात में सबसे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल। आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू। कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ। साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु। इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जंग के मैदान में जब से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तब से इस हवाई खतरे ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली हैं। ये साइलेंट किलर की तरह आते हैं और बड़ी तबाही मचा देते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 100 या 500 ड्रोन्स का झुंड किसी सैन्य ठिकाने, एयरबेस या रिफाइनरी की तरफ भेज दे, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। एक रेडार और मिसाइल बैटरी एक बार में सिर्फ सीमित संख्या में ही टारगेट्स को ट्रैक और फायर कर सकती है, और जब ड्रोन की तादाद मिसाइल्स की क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो एयर डिफेंस सैचुरेट हो जाता है और बचे हुए ड्रोन रक्षा कवच को भेद कर तबाही मचा देते हैं। ऐसे में ड्रोन स्वार्म खतरे की कार्ड तैयार करना बेहद जरूरी है, और भारत भी बखूबी समझता है कि इस खतरे से निपटने के लिए मल्टी लेवल तैयारी कितनी जरूरी है।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। भारत की निजी रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने अपने ज्वाला माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम के तहत 2 सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण 3 अक्टूबर 2026 को किया गया। ज्वाला भारत का पहला स्वदेशी निजी माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम है, जो हार्ड किल काउंटर यूएस यानी कि ड्रोन को तबाह करने वाला सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।
0: ज्वाला MK1 एक स्वदेशी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर माइक्रो मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन स्वार्म को हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी ढंग से हमला कर सकती है। इंगेजमेंट एल्टीट्यूड यानी मारक ऊंचाई की बात करें तो इसका मारक दायरा न्यूनतम 50 मीटर से लेकर मैक्सिमम 5000 मीटर की ऊंचाई तक है। मैक्सिमम दूरी पर भी इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 2 मीटर से कम है, यानी ये अपने लक्ष्य के 2 मीटर के दायरे के अंदर अचूक वार कर सकती है। टारगेट डिटेक्ट होने से लेकर मिसाइल लॉन्च होने तक का रिएक्शन टाइम भी इसका 7 सेकंड से कम है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि ये अगर दुश्मन का ड्रोन जमीन के पास बहुत लो अल्टीट्यूड पे भी आ रहा है, 50 मीटर की दूरी पर, तो भी उसको ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन का ड्रोन अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तब भी ज्वाला के जद्दोजहद के अंदर रहता है। इसका जो फायरिंग एनवलप है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन का जो ड्रोन है अगर वो मल्टीपल वेव्स में आ रहा है तो जो जमीन पर जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोलर है, उसको तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है, और एक AI लॉगरिथम से जो लॉन्चर हैं या जो कमांडर है वो अलग अलग ड्रोन्स को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग झुंड में एंगेज कर सकता है।
3: थ्रेट डिटेक्टेड, टारगेट लॉक्ड, द मिसाइल इज अवे।
0: ज्वाला MK1 मिसाइल में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। ये लॉन्च के समय मिसाइल को तुरंत तेज रफ्तार देता है। इसमें 0.5 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन का प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से लेस है। इसका मतलब ये कि ड्रोन से सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती। ड्रोन के बेहद करीब पहुंचते ही ये ब्लास्ट हो जाता है और धातु के घातक टुकड़ों की बौछार से ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स में किसी भी मिसाइल सिस्टम की तरह से 2 तरह के फ्यूज लगे हैं। एक तो है इंपैक्ट फ्यूज, यानी जब ये टारगेट से टकराता है तो फ्यूज ऑपरेशनलाइज हो जाता है और एक्टिवेट होकर जो मेन चार्ज है वॉरहेड को एक्सप्लोड कर देता है। दूसरा ये है कि यह अगर दुश्मन के ड्रोन को महज 1 या 2 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है तो इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। ये एक फ्यूज होता है जिसमें से कि लगातार रेडियो वेव्स निकलती हैं और ड्रोन से टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसको भांप लेता है, और ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो एक्टिवेट हो जाता है, फट जाता है।
0: ज्वाला को एक माइक्रो मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टारगेटेड ड्रोन को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ट्रक माउंटेड मल्टी कैनिस्टर लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसे सेना के 4x4 व्हीकल पर आसानी से तैनात किया जा सकता है।
1: ज्वाला MK1 मिसाइल अकेले काम नहीं करती, बल्कि IG डिफेंस के AI संचालित ग्रिड डिफेंस बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है। ये नेटवर्क कई सेंसरों से रडार और डेटा फ्यूजन का उपयोग करके खतरों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करता है।
0: IG डिफेंस का AI कंट्रोल्ड ग्रिड डिफेंस बैटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और इसके साथ इंटीग्रेटेड ज्वाला मिसाइल सिस्टम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने के लिए उन्नत एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस हैं। ग्रिड डिफेंस एक AI इनेबल्ड बैटल मैनेजमेंट और कमांड नेटवर्क है। इस प्लेटफॉर्म को आधुनिक युद्ध प्रणालियों और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशंस और हाई लेवल के एनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स का इस्तेमाल करता है, ताकि डेटा ट्रांसफर के दौरान हैकिंग या इंटरसेप्शन का कोई खतरा न रहे। ये सिस्टम अलग अलग सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक साथ जोड़कर रियल टाइम में स्ट्राइक को कमांड देता है। इसे सेंसर टू शूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स इस नेटवर्क में सेंध नहीं लगा सकते और न ही मिसाइल के कमांड सिग्नल को ब्लॉक या हैक कर सकते हैं।
2: इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए यानी लॉन्च के बाद टारगेट की तरफ अग्रसर होने के लिए एक एनक्रिप्टेड कमांड गाइडेड गाइडेंस सिस्टम है, यानी इसको लगातार रेडियो सिग्नल के द्वारा दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये जो रेडियो लिंक है ये टोटली एंटी जैम प्रूफ है, यानी दुश्मन इस लिंक के अंदर

0: नहीं कर सकते।
1: ग्रिड डिफेंड सिर्फ एक ही रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडार पर निर्भर नहीं है, ये मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगर दुश्मन किसी रेडार फ्रिक्वेंसी को जैम करने की कोशिश करता है तो ग्रिड तुरंत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज, थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के इनपुट पर स्विच कर जाता है। इससे सिस्टम बगैर रुके काम करता रहता है।
2: आधुनिक युद्धों में अक्सर जीपीएस या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि मिसाइलें रास्ता भटक जाए। ज्वाला मिसाइल और इसके नेटवर्क को जैम रेसिस्टेंट नेविगेशन आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया गया है। अगर दुश्मन मेन सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी को जैम भी कर देता है तब भी यह सिस्टम वैकल्पिक वेव बैंड और इंटरनल गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को सटीकता से ट्रैक करना जारी रखता है।
1: आज के युद्ध में ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम लागत और बड़ी संख्या है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेजता है तो हर एक ड्रोन के खिलाफ बहुत महंगी एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल करना आर्थिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इसे कॉस्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम कहा जा सकता है। दुश्मन को पता है कि उनके स्वार्म ड्रोन में से अगर आधे से ज्यादा ड्रोन का नुकसान हो भी गया तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही इनकी लागत इतनी कम होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन का एक सुसाइड या FPV ड्रोन महज 500 से $2,000 यानी करीब 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस छोटे से ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है उसकी कीमत $1 मिलियन से $3 मिलियन यानी करीब 9.6 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक होती है। युद्ध के लंबा खींचने पर लागत में इतना बड़ा अंतर किसी भी देश पर भारी पड़ सकता है। वो युद्ध में पिछड़ सकता है या हार की दहलीज तक जा सकता है।
2: दुश्मन सस्ते ड्रोनों की बाढ़ लाकर असल में बड़े देशों को कीमती मिसाइल भंडार को जानबूझकर खाली करवाता है ताकि युद्ध में उसे बढ़त मिल सके। जब एक बार महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया तब दुश्मन अपने असली और घातक हथियार जैसे कि उसके ताकतवर फाइटर जेट या भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है, क्योंकि उस समय देश का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका होता है।
1: भारत के पास दुश्मन के ड्रोन और स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर मौजूद है। ये सिस्टम बॉर्डर, सैन्य ठिकानों से लेकर शहरी और VVIP सुरक्षा तक तीन प्रमुख स्तर यानी डिटेक्शन, सॉफ्ट किल, हार्ड किल पर काम करती है। हाल ही में भारत ने एक और स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का एक और ट्रायल किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपने अंतिम परीक्षण में पहुँच गया है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन लॉयटरिंग, मुनिशन और खासकर स्वार्म अटैक को खत्म करने के लिए बनाई गई है।
2: सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड भार्गवास्त्र को तैयार कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C41 से भी जोड़ा जा सकता है। C41 का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस।
1: भार्गवास स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जो महज 10 सेकंड के अंदर 64 माइक्रो रॉकेट्स दागकर दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को नेस्तनाबूद कर सकता है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि ये एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र को भारत की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढंग से काम करता है। ये क्षमता इसे सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए बेस्ट बनाती है और ये कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड

0: रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते बल्कि एक बड़े दायरे को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम है। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है जो ड्रोन के झुंड को बगैर नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये कि इसे भारतीय सेना की गाड़ियों पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी इसे आसानी से किसी भी संवेदनशील सीमा पर तैनात किया जा सकता है।
1: भारत में निर्मित भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिनिएचर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें दो तरह की मिसाइलें होंगी, एक तो वह मिसाइल जो कि अनगाइडेड होंगी, इनको स्वार्म ड्रोन यानी दुश्मन अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेजे उनकी तरफ लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये मिसाइलें दुश्मन के स्वार्म ड्रोन की तरफ जाकर जब फटेंगी तो 20 मीटर की दूरी तक इसके जो टुकड़े होंगे, शार्पनल होंगे, वो दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर देंगे।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियारों और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और किल कर सके।
2: सरहद पार से आने वाले ड्रोन को खाक में मिलाने के लिए भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को एक खास एंटी ड्रोन गन भी मिल चुकी है। नाम है वज्रा शॉट। इस गन को चेन्नई की बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने बनाया है। ये बेहद हल्की और हाथ से चलाई जाने वाली गन है जिसे सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और ईरान के बीच झड़प, ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम जारी है और कई स्टार्टअप इस पर काम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ डिटेक्टर की जोड़ी है जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है, साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे तक ऑपरेट किया जा सकता है।
1: वज्रा शॉट भारत में डिजाइन डेवलप्ड और निर्मित एक हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है। इसको दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल एक राइफल को दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रिगर दबाने पर इसमें से एक जैमिंग तरंगे निकलती हैं, यानी रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो कि दुश्मन के ड्रोन और उसके कमांड सेंटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी में अपलिंक और डाउनलिंक है, यानी जो आदेश दिए जा रहे हैं और जो आदेश लिए जा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है, जैम कर देता है।
0: सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, यानी D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 3 सालों में विकसित किया।
2: ड्रोन या UAV काफी नीचे उड़ान भरते हैं जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट करना चुनौती है तो इन्हें रोकना और तबाह करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम से ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा, साथ ही तबाह भी किया जा सकेगा।
0: डीआरडीओ के अनुसार D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये दो तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रेडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब किसी भी ड्रोन को जाम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना होता है। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन, चौथा ड्रोन किल सिस्टम, जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है, और पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे स्वार्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वार्म ड्रोन ऑपरेट होते हैं।
1: भारत में फिलहाल बहुत सारी कंपनियां ड्रोन को गिराने के लिए सॉफ्ट किल या हार्ड किल ऑप्शन पर काम कर रही हैं। सॉफ्ट किल का मतलब है कि दुश्मन का ड्रोन आया और दुश्मन के जो ड्रोन को दुश्मन का कमांड सेंटर जो अपलिंक से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको लिंक को जैम कर देना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन का जो अपलिंक है, रेडियो कमांड सिस्टम है, उसको हैक कर सकें, उसकी फ्रीक्वेंसी को जांच कर सकें और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन के कमांड गाइडेंस सिस्टम को जैम कर देना। हार्ड किल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होगा जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को, समझिए एक माइक्रो या मिनी मिसाइल को, दुश्मन की ड्रोन की तरफ लॉन्च किया जाएगा। वो जाके दुश्मन के ड्रोन से टकराएगा, उसका इम्पैक्ट फ्यूज जो है टच करने पर एक्टिवेट हो जाएगा, वॉरहेड फट जाएगा।
0: ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रेडार के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रेडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किया जा रहा है, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।

0: दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं।
1: ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर, दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो हैं, ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है।
0: दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है, जिसे आम भाषा में लेजर वेपन कहते हैं। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइटवेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था।
2: ड्यू यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को बेकार कर देता है।

0: दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत ही छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है।
1: वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: रुत्र पहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर न शोहरत का गुरूर, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: आज से पवित्र श्रावणी नवरात्रि का शुभारंभ, पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदिशक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा, महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरा रंग। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो। मैं हूं श्वेता झा। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जो अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी फराग दिली और नेक नियति के किस्से उदास फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी के साथ गूंज रहे हैं। आज की खास पेशकश में बात उस महामानव की होगी जिसकी पहचान तो रील के हीरो के तौर पर है, लेकिन सही मायने में वो रील से ज्यादा रियल लाइफ का हीरो था।
1: आए और गए, खेल खत्म। तो जीए मालूम नहीं, तो मरे मालूम नहीं।
2: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल।
0: आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी पेशकश बॉलीवुड के बिंदास हीरो नाना पाटेकर के जीवन से जुड़ी है। बॉलीवुड का सबसे जिंदा दिल इंसान अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। 8 अक्टूबर को तड़के हुई उनकी मौत से बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया। पर नाना की मौत से सबसे ज्यादा सदमे में वो किसान हैं जिनकी जिंदगी को संवारने के लिए इस महामानव ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। नाना की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र के किसान खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। दरअसल नाना रुपहले पर्दे के एकमात्र ऐसे हीरो थे जिन्होंने रील को रियल लाइफ के दर्द और दुश्वारियों को अभिव्यक्ति देने का जरिया बनाया। नाना की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे अद्भुत और अनोखे किस्से हैं जिन्हें जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
3: हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। That is my final property. बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसे में जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलत फहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलत फहमी नहीं होनी चाहिए।
4: नाना काश आप अपने जिगरी दोस्त मकरंद अनासपुरे को बेतहाशा बिलखते हुए देख पाते तो शायद आपकी आखिरी गलत फहमी दूर हो जाती। यकीनन आपकी जलती चिता को देखकर बहने वाले अशकों की बूंदे 100% असली हैं, प्योर हैं, ठीक आफी की तरह। काश आप देख पाते कि आपकी अचानक हुई मृत्यु के बाद रुपहले पर्दे के उस कोने में सन्नाटा है जहां कभी आप कड़वी जीवनाभूतियों के सच्चे चित्र अपने दिल की आवाज सुनकर उकेरा करते थे। नाना आप यकीन मानिए, आप जैसे जिंदा दिल और सच्चे इंसान की अंतिम विदाई के मौके पर नकली आंसू के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।
5: वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी की तरह चिकित्सा कपड़े बदले से आपको मालूम पड़ेगा, और अपने बहुत लोगों की मदद करते थे, वो जहां भी चाहे वो किसान हो कोई भी हो।
4: आप ये जान लीजिए कि थिएटर के माध्यम से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने बड़े पर्दे का रुख स्टारडम हासिल करने या पैसे कमाने के लिए नहीं किया। वो बॉलीवुड की शायद अकेली शख्सियत थे जिन्होंने देश और समाज में व्याप्त अव्यवस्था, असमानता, अनाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ धधकते कलेजे का बिंब पर्दे पर हूबहू उतारने के लिए सिल्वर स्क्रीन को चुना था। यही वजह है कि उनके जाने के बाद रुपहले पर्दे की दुनिया उदास है।
6: It's terrible. It's not fair. It's not fair. Some people, you don't think that they will ever go. Nana was one of them. Nana was larger than life. Nana had the largest heart in the world. Nana's anger was all kindness, actually. It's not right. He should have not gone.
4: नाना बड़े पर्दे के हीरो नहीं थे, वो तो असल जिंदगी के महानायक थे। असल जिंदगी के नायकत्व को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने पर्दे को माध्यम बना लिया। पर्दे की वर्चुअल दुनिया में फौजी बनकर देश के लिए मर मिटने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असली जंग के दरमियान सरहद पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले वो अकेले नायक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने तत्कालीन जनरल पाटाड़कर को फोन कर कहा था कि मैं बतौर फौजी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। जनरल पाटाड़कर ने जब मना कर दिया तो नाना ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन कर सेना में शामिल होने की अनुमति मांगी। नाना का देश प्रेम और जोश देखकर फर्नांडिस ने अनुमति दे दी और नाना वाकई मोर्चे पर पहुंच गए।
3: हमने फोन किया, तुम जानते थे मुझे, नाना सिविलियन को अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा सिविलियन 6 महीने में तो कमीशन हो जाता है, हमने 3 साल गुजारे हुए, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा अब बता रहा हूँ कब जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आज निकल गया। तो 60 दिन था मैं सभी जगह, मुगलपुरा में था, द्रास में था, लेह में था, कुपवारा में था, बारामुल्ला में था, सोपर में था।
4: काबिले गौर है कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा बनकर पूरे 2 महीने तक दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। क्विक रिएक्शन टीम सेना के अंदर एलीट टीम मानी जाती है। दरअसल नाना ने 1991 में आई प्रहार द फाइनल अटैक फिल्म की मेकिंग से पहले करीब 3 साल की बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ उन्होंने कड़ी सैन्य और कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू की।
3: 3 साल तक मैं वहाँ आते जाते, मैं बहुत बहुत सीखा यार। मैं 40 की उम्र में कमांडो कोर्स का वो सभी किया हुआ है, BOC बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स और बाकी का वो सभी। 28 तो उनके आउटर लिमिट है ना।
4: ऐसे महानायक थे नाना। रुपहले पर्दे पर शोषितों, वंचितों, गरीबों, मजलूमों की आवाज बनकर त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में बेबस लाचार किसानों का मसीहा बनने वाले वे अकेले नायक थे। साल 2015 में नाना ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1.5 करोड़ की कार खरीदने का मन बनाया, लेकिन उसी दौरान एक शाम उन्होंने टीवी पर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी खबर देख ली। नाना ने तुरंत फैसला कर लिया कि कार के लिए जोड़ी गई 1.5 करोड़ की रकम जान गंवा चुके किसानों के परिजनों को दे दूंगा। दरअसल नाना को लगा कि जिनका पति मर गया, जिनका पिता मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनका दुख दर्द बांटने की जगह 1.5 करोड़ की गाड़ी की सवारी करना इंसानियत को मारने जैसा है।
3: उनके चेहरे पे बाप मर गया, मर्द मर गया, बेटा मर गया, उससे ज्यादा रात की शाम की भूख थी आंखों में, बोलने में उनका ना तो कोई आंसू है ना तो कुछ है। वो जिस तरह से बात कर रहे थे मैं तो डर गया यार। मैंने कहा हम काहे की गाड़ियां खरीदे यार। तो हमारा ये दोस्त है मकरंद अनासपुरे, वो मराठवाड़ा का, तो उसको हमने फोन किया। मैंने कहा 1,000 जो है जिन्होंने आत्महत्या किए उनके फैमिली को 15,000 का एक चेक भेज दो, 15, 15, 15, 15, 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे।
4: लग्जरी कार के लिए बड़ी ही हसरत से जमा की गई रकम को पीड़ित किसान परिवारों के बीच बांटने का फैसला लेने में नाना को एक पल भी नहीं लगा। अलबत्ता इस मदद के बाद उन्हें प्रेरणा हुई कि एक बार कुछ कर देना ही काफी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे मजलूम किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए लंबे कार्यक्रम की जरूरत है। इस पवित्र उद्देश्य के साथ सितंबर 2015 में नाना ने नाम फाउंडेशन की स्थापना की। नाम फाउंडेशन के तहत उन्होंने न सिर्फ किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई, बल्कि उनके बच्चों की एजुकेशन का भी बीड़ा उठाया। इसके साथ ही नाम फाउंडेशन ने भूजल स्तर सुधारने, पुरानी नहरों और जल परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के साथ ही गांवों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर पहल की। साफ है कि नाना पाटेकर रील के कम रियल लाइफ के ज्यादा बड़े नायक थे। उनके यूं अचानक चले जाने से महाराष्ट्र के किसान आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं।
0: नाना पाटेकर का यूं चले जाना सबको रोला गया। दरअसल नाना ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके सामने कभी 2 जून की रोटी का भी संकट था, पर नाना को बचपन से ही हालात के आगे घुटने टेक कर रोना कतई नापसंद था। हालात कितना भी कठिन क्यों ना हो, नाना डरने की जगह लड़ना पसंद करते थे। एक समय जब इनके पिता का कारोबार किसी वजह से बर्बाद हो गया तो नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। तब वो बमुश्किल 13 साल के थे, लेकिन अपनी कमाई से पूरे परिवार का पेट पालने लगे।
3: छुटा रेत सा हाथों से है हयात तेरा वो दामन, रह गई कुछ खाबों की कलिया और कुछ भीगे सावन। आया था सौगात में लेकर कुछ सांसों के वादे, बोझ उन्हीं का कैसे ढोए तू ही मुझे बतला दे।
4: श्वासों की सौगात वादों की मंजिल के पार जाकर सदा के लिए शून्य में विलीन हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई महकती यादों की ऐसी खूबसूरत लड़ियां जो अदाकारी के साथ इंसानियत का भी चिराग बनकर इस जहां में ताकयामत रोशनी बिखेरती रहेंगी। गमन से शुरू होकर ओ रोमियो तक नाना पाटेकर का फिल्मी सफर रुपहले पर्दे पर निसंदेह अत्यंत गहरी छाप छोड़ता है, पर पर्दे के सामने दिखने वाली अदाकारी की रानाइयों से कहीं ज्यादा असरदार हैं पर्दे के पीछे के वो फौलादी किस्से जो आम जनों के लिए किसी न किसी वजह से पोशीदा हो गए। 3 नवंबर 1989 को रिलीज हुई परिंदा के अन्ना को कौन भूल सकता है, जो पर्दे के सामने आग से बहुत ज्यादा खौफ खाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उसी अन्ना यानी नाना ने आग वाले सीक्वेंस की शूटिंग के समय फायर सूट पहनने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि अगर आग की तपिश महसूस नहीं होगी तो शॉट की संजीदगी मर जाएगी। फिल्म के एक अदद दृश्य में जान फूंकने के लिए नाना पाटेकर ने अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया था।
7: Can you imagine this is real fire? रबर सॉल्यूशन के साथ आग लगाई। See, this is when he got burnt. ये देख, oh my God, I've never seen it like this. Oh my God, हाथ पे आग लगी और ये अब उसने छलांग मारी है। ये देख, यहां तक आया, ये देखा, ये जंप मारा है उसने इनटू द सेफ एरिया। Oh my God, you know I have never seen it like this in my life. It's the first time I'm watching this because ये इतना कंट्रोल मेरे पास कभी था ही नहीं। नाना तू अगर देखेगा ना ये तो यार क्या किया तूने, it's unbelievable।
4: बहुत कम लोग जानते हैं कि परिंदा के इस दृश्य की शूटिंग के दौरान नाना बुरी तरह झुलस गए थे। ऐसे झुलस गए थे कि 2 महीने से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और 1 साल तक वो कोई भी काम करने की हालत में नहीं थे।
3: आग लगी, आग लगी थी, मैं जल रहा था। उसके बाद 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ऐसे था 60 दिन अस्पताल में। वो जो सीन देखते हो ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा, वो मैं बाकायदा जल रहा था। हम 60 दिन, हमारा ये यहाँ से यहाँ कुछ नहीं था, ये सब ये निकल के वो गिर गया था मेरे चप्पल पे और इधर पैजामा पे। स्किन थी ही नहीं, दाढ़ी नहीं थी, मूछें नहीं थी, बवे नहीं थी, आईलिड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सब जल गया।
4: परिंदा से पहले साल 1988 में रिलीज हुई मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में भी नाना बुरी तरह जख्मी हो गए थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट शफीक सैयद को नाना पाटेकर को चाकू मारना था। एहतियात के तौर पर नाना ने पेट के पास एक टायर बांधा था, लेकिन फिल्म में कृष्णा का किरदार निभा रहे शफीक ने चाकू इतना तेज मारा कि वो टायर को भेद कर नाना के पेट में घुस गया। पर नाना तो नाना ही थे, शॉट ओके होने तक किसी को पता ही नहीं चला कि नाना के कपड़ों में दिख रहा लाल रंग नकली नहीं बल्कि उनका असली खून है।
3: वो जो एंड में मुझे वो बच्चा भोग देता है ना चाकू, टायर लगाया था, टायर ऐसे काट के इधर, तो वो सारा चाकू टायर के आर पार गया और मेरे गया अंदर, तो मैं घुस गया चाकू ऐसे इधर से किधर मारा तो घुस गया और उनको लगा क्या एक्टिंग की है। फॉर्चुनेटली वो स्पाइन में नहीं गया, इधर बाजू में गया।
4: अलग ही मिट्टी का बना था ये शख्स। नाना ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की। सभी फिल्मों में उनकी अदाकारी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की जमी जमाई लीक को तोड़ती दिखाई देती है। नाना के ज्यादातर प्रशंसक इस सच को स्वीकार भी करते हैं। पर नाना ने अदाकारी की ही नई लीक नहीं खींची, शूटिंग के सेट पर कई ऐसे विस्मयकारी कारनामे किए जिसे सुनकर सहसा यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म क्रांति वीर के क्लाइमेक्स सीक्वेंस ने दर्शकों पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। क्लाइमेक्स में नाना करीब 3.5 मिनट तक मर्म को छूने वाला संवाद बोलते हैं, पर क्या आप यकीन करेंगे कि नाना ने जो कुछ भी बोला था वो फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये जानेंगे कि सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त नाना अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टरों के साथ सेट पर पहुंचे थे।
3: 2:30 बजे शुरू, हमारे 7 दिन का ये था क्लाइमेक्स का शूटिंग। 2:30 बजे शुरू किया हमने, 5 बजे खत्म हो गए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हमको क्या बोला। हम गए अपना बोलना शुरू कर दिया, जिस वक्त मेरे को लगा कि अभी कुछ नहीं सुता, लारे ला ला ला मैंने पहना देता था, वो जो अपने फांसी लेने का है ना, वो लास्ट का वो उसके पास से वो लेता है, वो ऐसे काली पहना चल, क्योंकि उसके बाद कुछ सूझ नहीं रहा था।
4: हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसका क्लाइमेक्स इस तरह शूट किया गया हो। नाना का कमाल देखिए कि जिस क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए मेहुल कुमार ने 7 दिन का वक्त मुकर्रर किया था वो 2.5 घंटे में ही पूरा हो गया और फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा बन गया। दरअसल स्टारडम मिलने के पहले से ही नाना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए तमाम कलाकारों को क्या क्या समझौते नहीं करने पड़ते हैं, पर नाना ने कभी कोई समझौता नहीं किया। नाना जब थिएटर्स करते थे उसी दौरान उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने उन्हें बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा से मिलवाया। रवि चोपड़ा तब आज की आवाज फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्होंने नाना को रेपिस्ट का रोल ऑफर किया। रेपिस्ट के रोल की पेशकश पर नाना ऐसे भड़के कि रवि चोपड़ा को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे।
3: तो जबरदस्ती मुझे ले गई बीआर चोपड़ा जी के साथ, उनका बेटा रवि चोपड़ा डायरेक्ट कर रहा था आज की आवाज, और वो उसमें एक 4 हेंचमैन थे, जो एक ऐसे ही रेपिस्ट बच्चे थे, उसमें से एक रोल हमको ऑफर किया। अब मैं यहाँ मैंने क्या बोला वो बोल नहीं सकता।
4: बॉलीवुड में चोपड़ा परिवार की क्या हैसियत है ये किसी से छिपी नहीं है, पर उसी चोपड़ा परिवार के चश्मो चिराग रवि चोपड़ा को नाना ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद सारे के सारे सन्नाटे में चले गए। पर उसके बाद रवि चोपड़ा को भी समझ में आ गया कि जिस शख्स को मैं थिएटर का छोटा मोटा अदाकार समझ रहा था वो जरूरत से ज्यादा कद्दावर है। बाद में रवि चोपड़ा ने आज की आवाज फिल्म के लिए नाना को मेन विलेन जगमोहन दास का किरदार ऑफर किया। हालांकि नाना ने जगमोहन दास के किरदार के लिए भी शर्त रख दी कि अपने संवाद मैं खुद लिखूंगा। जिसे भरोसा सिर्फ अपने हुनर का होता है वो नफे नुकसान का गुणा गणित नहीं करता। दरअसल नाना को स्टारडम पाने या पैसे कमाने की वैसी कोई भूख कभी नहीं थी जैसा कि बॉलीवुड के अंदर हर कलाकार की आमतौर पर होती है। इसीलिए नाना कभी किसी निर्माता निर्देशक के पास रोल पाने के लिए हाथ पसारते नहीं देखे गए। गिड़गिड़ाना या रोना नाना की फितरत का हिस्सा कभी नहीं था।
3: वो हर चीज पे अपने हंसने की जो आदत थी ना, वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो एटीट्यूड बहुत अच्छी थी। रोते बैठने की, रोए नहीं हम, रोए कैमरा के सामने और उसके पैसे वसूले हमने।
4: 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुंड जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी 75 साल जिंदगी के रियल किस्से रील की फैंटेसी से भी ज्यादा रोमांचक, विस्मयकारी और प्रेरणादायक हैं। बेहद साधारण परिवेश में पले बड़े होने के बावजूद बचपन से ही एक अजीब जिदो जुनून था नाना के अंदर। काम कितना भी दुष्कर हो, असाध्य हो, असंभव हो, नाना के शब्दकोश में ना नहीं था। नाना जब महज 13 साल के थे तो इनके पिता का कारोबार किसी वजह से ठप हो गया। पूरे परिवार के सामने पापी पेट को पालने का सवाल था। पूरा परिवार गहरी चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन 13 साल के नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। जिस जगह काम मिला वो घर से 8 किलोमीटर दूर था। 35 रुपए की मासिक पगार के लिए 13 साल के नाना रोज 16 किलोमीटर पैदल चलते थे।
3: तो हमको 35 रुपए मिलता था महीने का। 35 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त। मैं ये बात कर रहा हूँ 63-64 की। 13 साल के थे हम, तो 8 किलोमीटर पैदल जाओ, 8 किलोमीटर पैदल चल के आ जाओ, 16 किलोमीटर चलना पड़ता था, 35 रुपए मिलता था और एक वक्त का खाना मिलता था। और रात को खाते वक्त हमको दिक्कत होती थी कि यार माँ ने खाया होगा, पिताजी ने खाया होगा, भाई ने खाया होगा, जहन में तो आता था, लेकिन हम खा लेते थे यार। भूख इतनी बड़ी थी उनसे, प्यार से हम खा लेते थे।
4: नाना पाटेकर के व्यक्तित्व की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि 90 के दशक में एक फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान खान से भी ज्यादा पैसे लेने वाले नाना पाटेकर ने कभी 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की रंगाई का काम भी किया है?
3: जेब्रा क्रॉसिंग रहती थी ना, वो हम पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे एक क्रॉसिंग के, एक कर दिया तो 15 रुपए। तो रात को हम शुरू करते थे, जैसे ट्रैफिक बंद हो जाए 1-1.5 बजे शुरू करते थे, नहीं तो फिर उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए तो वो धब्बे आ जाएंगे टायर के, तो मार्क्स आते, तो फिर वो दूसरे दिन 15 रुपए मिलेंगे नहीं। तो पहले दोनों बाजू तीन जन दूसरे जो हमारे दोस्त थे वो खड़े रहते थे, फटाफट लगा दो, फिर अगला वो करेगा, ऐसे करके एक रात में 25-30 जेब्रा क्रॉसिंग हो गई तो पैसे मिल जाते।
4: 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग करने वाला इंसान बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा की इस बात के लिए फजीहत कर देता है कि उन्होंने उसे रेपिस्ट का रोल कैसे ऑफर कर दिया। बॉलीवुड की बिंदास दुनिया में अदाकारी की अलग ही मिसाल कायम कर दुनिया से रुखसत हो चुके नाना पाटेकर ने अपनी 75 साल की जिंदगी में बेपनाह दुश्वारियां झेली। जब ये काफी छोटे थे, इनके बड़े भाई की 14 साल की उम्र में एक हादसे में मौत हो गई। एक और भाई की मुंबई सीरियल धमाकों में दर्दनाक मौत हुई। नाना का खुद का एक बेटा 2.5 की उम्र में असमय काल कौलित हो गया। पर इस तरह के तमाम दर्द को झेलने के बाद भी इस इंसान ने अपने अश्कों को आंखों से बाहर नहीं निकलने दिया, और जब कैमरे के सामने रोने का दृश्य फिल्माने की नौबत आई तो सीने में दफ्न उन्हीं आंसुओं को नैनों का रास्ता दिखा दिया।
3: और हम थोड़ी एक्टिंग थोड़ी करते हैं यार, हम तो हमारे इमोशंस बेचते हैं। जो उस दिन हम रोए नहीं, वो रखा है हमने अंदर, तो फिर कैमरा के सामने रो देते हैं तो आपको लगता है हाँ क्या एक्टिंग की, पैसे भी मिलते हैं और भड़ास भी निकलती है।
4: नाना अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने चाहने वालों के लिए छोड़ गए हैं उन्हीं आंसुओं का सैलाब जिन्हें कभी उन्होंने अपने सीने में जज्ब कर लिया था। नाना का नश्वर शरीर बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व से जुड़ी बेशुमार कहानियां आने वाले वक्त में बड़े चाव से सुनी और सुनाई जाएंगी।
0: आज आपने नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: अब बात देश दुनिया की गुड न्यूज की कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि चीन में इन दोनों आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी एक साथ उड़ते हुए नजर आए। आसमान में उड़ते इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगा मानो हवा में लहरें उठ रही हों। कैसे, आप भी देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में।
4: ये तस्वीरें चीन के शानदोंग प्रांत की है, जहां येलो रिवर डेल्टा नेशनल नेचर रिजर्व में पक्षियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। जैसे ही शरद ऋतु ने दस्तक दी, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पहुंचने लगे। ये पक्षी झुंड में उड़ते हैं, कभी एक साथ ऊपर उड़ते हैं तो कभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। आसमान में इनकी उड़ान ऐसी लगती है जैसे नीले आसमान में लहरें उठ रही हो। दूर तक फैले पानी और हरे भरे इलाकों के बीच पक्षियों का ये नजारा हर किसी का ध्यान खींच रहा है। पक्षियों को देखने के शौकीन लोग इस खूबसूरत पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कई लोग इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों का ये नजारा न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ये दिखाता है कि प्रकृति में हर मौसम के साथ कितना कुछ बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: नवरात्रि की महिमा। नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: कि भाग्य कहीं दूर,
2: रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर, न शोहरत का गुरु, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां,

0: सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: कम से कम लोग
2: आज से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदि शक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा। महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरा रंग। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू। कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु। इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जंग के मैदान में जब से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तब से इस हवाई खतरे ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली हैं। ये साइलेंट किलर की तरह आते हैं और बड़ी तबाही मचा देते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 100 या 500 ड्रोन्स का झुंड किसी सैन्य ठिकाने, एयरबेस या रिफाइनरी की तरफ भेज दे, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। एक रेडार और मिसाइल बैटरी एक बार में सिर्फ सीमित संख्या में ही टारगेट्स को ट्रैक और फायर कर सकती है, और जब ड्रोन की तादाद मिसाइल्स की क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो एयर डिफेंस सैचुरेट हो जाता है और बचे हुए ड्रोन रक्षा कवच को भेद कर तबाही मचा देते हैं। ऐसे में ड्रोन स्वार्म खतरे की कार्ड तैयार करना बेहद जरूरी है, और भारत भी बखूबी समझता है कि इस खतरे से निपटने के लिए मल्टी लेवल तैयारी कितनी जरूरी है।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। भारत की निजी रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने अपने ज्वाला माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम के तहत 2 सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण 3 अक्टूबर 2026 को किया गया। ज्वाला भारत का पहला स्वदेशी निजी माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम है, जो हार्ड किल काउंटर यूएस यानी कि ड्रोन को तबाह करने वाला सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।
0: ज्वाला MK1 एक स्वदेशी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर माइक्रो मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के अनमैन एरियल व्हीकल और ड्रोन स्वार्म को हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी ढंग से हमला कर सकती है। इंगेजमेंट एल्टीट्यूड यानी मारक ऊंचाई की बात करें तो इसका मारक दायरा न्यूनतम 50 मीटर से लेकर मैक्सिमम 5000 मीटर की ऊंचाई तक है। मैक्सिमम दूरी पर भी इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 2 मीटर से कम है, यानी ये अपने लक्ष्य के 2 मीटर के दायरे के अंदर अचूक वार कर सकती है। टारगेट डिटेक्ट होने से लेकर मिसाइल लॉन्च होने तक का रिएक्शन टाइम भी इसका 7 सेकंड से कम है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि ये अगर दुश्मन का ड्रोन जमीन के पास बहुत लो अल्टीट्यूड पे भी आ रहा है, 50 मीटर की दूरी पर, तो भी उसको ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन का ड्रोन अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तब भी ज्वाला के जद्दोजहद के अंदर रहता है। इसका जो फायरिंग एनवलप है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन का जो ड्रोन है अगर वो मल्टीपल वेव्स में आ रहा है तो जो जमीन पर जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोलर है, उसको तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है, और एक AI लॉगरिथम से जो लॉन्चर हैं या जो कमांडर है वो अलग अलग ड्रोन्स को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग झुंड में एंगेज कर सकता है।
3: थ्रेट डिटेक्टेड, टारगेट लॉक्ड, द मिसाइल इज अवे।
0: ज्वाला MK1 मिसाइल में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। ये लॉन्च के समय मिसाइल को तुरंत तेज रफ्तार देता है। इसमें 0.5 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन का प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से लेस है। इसका मतलब ये कि ड्रोन से सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती। ड्रोन के बेहद करीब पहुंचते ही ये ब्लास्ट हो जाता है और धातु के घातक टुकड़ों की बौछार से ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है।
2: ज्वाला Mark 1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स में किसी भी मिसाइल सिस्टम की तरह से 2 तरह के फ्यूज लगे हैं। एक तो है इंपैक्ट फ्यूज, यानी जब ये टारगेट से टकराता है तो फ्यूज ऑपरेशनलाइज हो जाता है और एक्टिवेट होकर जो मेन चार्ज है वॉरहेड को एक्सप्लोड कर देता है। दूसरा ये है कि यह अगर दुश्मन के ड्रोन को महज 1 या 2 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है तो इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। ये एक फ्यूज होता है जिसमें से कि लगातार रेडियो वेव्स निकलती हैं और ड्रोन से टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसको भांप लेता है, और ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो एक्टिवेट हो जाता है, फट जाता है।
0: ज्वाला को एक माइक्रो मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टारगेटेड ड्रोन को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ट्रक माउंटेड मल्टी कैनिस्टर लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसे सेना के 4x4 व्हीकल पर आसानी से तैनात किया जा सकता है।
1: ज्वाला MK1 मिसाइल अकेले काम नहीं करती, बल्कि IG डिफेंस के AI संचालित ग्रिड डिफेंड बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है। ये नेटवर्क कई सेंसरों से रडार और डेटा फ्यूजन का उपयोग करके खतरों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करता है।
0: IG डिफेंस का AI कंट्रोल्ड ग्रिड डिफेंड बैटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और इसके साथ इंटीग्रेटेड ज्वाला मिसाइल सिस्टम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने के लिए उन्नत एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस हैं। ग्रिड डिफेंड एक AI इनेबल्ड बैटल मैनेजमेंट और कमांड नेटवर्क है। इस प्लेटफॉर्म को आधुनिक युद्ध प्रणालियों और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशंस और हाई लेवल के एनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स का इस्तेमाल करता है, ताकि डेटा ट्रांसफर के दौरान हैकिंग या इंटरसेप्शन का कोई खतरा न रहे। ये सिस्टम अलग अलग सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक साथ जोड़कर रियल टाइम में स्ट्राइक को कमांड देता है। इसे सेंसर टू शूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स इस नेटवर्क में सेंध नहीं लगा सकते और न ही मिसाइल के कमांड सिग्नल को ब्लॉक या हैक कर सकते हैं।
2: इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए यानी लॉन्च के बाद टारगेट की तरफ अग्रसर होने के लिए एक एनक्रिप्टेड कमांड गाइडेड गाइडेंस सिस्टम है, यानी इसको लगातार रेडियो सिग्नल के द्वारा दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये जो रेडियो लिंक है ये टोटली एंटी जैम प्रूफ है, यानी दुश्मन इस लिंक के अंदर हैक करके घुस नहीं सकता, दुश्मन इस कमांड गाइडेंस लिंक को जैम नहीं कर सकता।
0: ग्रिड डिफेंड सिर्फ एक ही रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडार पर निर्भर नहीं है, ये मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगर दुश्मन किसी रेडार फ्रिक्वेंसी को जैम करने की कोशिश करता है तो ग्रिड तुरंत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज, थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के इनपुट पर स्विच कर जाता है। इससे सिस्टम बगैर रुके काम करता रहता है।
1: आधुनिक युद्धों में अक्सर GPS या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि मिसाइलें रास्ता भटक जाए। ज्वाला मिसाइल और इसके नेटवर्क को जैम रेसिस्टेंट नेविगेशन

0: फ्रीक्वेंसी को जाम भी कर देता है तब भी ये सिस्टम वैकल्पिक वेव बैंड और इंटरनल गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को सटीकता से ट्रैक करना जारी रखता है।
1: आज के युद्ध में ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम लागत और बड़ी संख्या है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेजता है तो हर एक ड्रोन के खिलाफ बहुत महंगी एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल करना आर्थिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इसे कॉस्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम कहा जा सकता है। दुश्मन को पता है कि उनके स्वार्म ड्रोन में से अगर आधे से ज्यादा ड्रोन का नुकसान हो भी गया तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही इनकी लागत इतनी कम होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन का एक सुसाइड या FPV ड्रोन महज 500 से $2,000 यानी करीब 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस छोटे से ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है उसकी कीमत $1 मिलियन से $3 मिलियन यानी करीब 9.6 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक होती है। युद्ध के लंबा खींचने पर लागत में इतना बड़ा अंतर किसी भी देश पर भारी पड़ सकता है। वो युद्ध में पिछड़ सकता है या हार की दहलीज तक जा सकता है।
0: दुश्मन सस्ते ड्रोनों की बाढ़ लाकर असल में बड़े देशों को कीमती मिसाइल भंडार को जानबूझकर खाली करवाता है ताकि युद्ध में उसे बढ़त मिल सके। जब एक बार महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया तब दुश्मन अपने असली और घातक हथियार जैसे कि उसके ताकतवर फाइटर जेट या भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है, क्योंकि उस समय देश का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका होता है।
1: भारत के पास दुश्मन के ड्रोन और स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर मौजूद है। ये सिस्टम बॉर्डर, सैन्य ठिकानों से लेकर शहरी और VVIP सुरक्षा तक तीन प्रमुख स्तर यानी डिटेक्शन, सॉफ्ट किल, हार्ड किल पर काम करती है। हाल ही में भारत ने एक और स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का एक और ट्रायल किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपने अंतिम परीक्षण में पहुँच गया है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन लॉयटरिंग, मुनिशन और खासकर स्वार्म अटैक को खत्म करने के लिए बनाई गई है।
0: सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड भार्गवास्त्र को तैयार कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C41 से भी जोड़ा जा सकता है। C41 का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस।
1: भार्गवास स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों, खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जो महज 10 सेकंड के अंदर 64 माइक्रो रॉकेट्स दागकर दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को नेस्तनाबूद कर सकता है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि ये एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र को भारत की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढंग से काम करता है। ये क्षमता इसे सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए बेस्ट बनाती है और ये कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते बल्कि एक बड़े दायरे को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम हैं। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है जो ड्रोन के झुंड को बगैर नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये कि इसे भारतीय सेना की गाड़ियों पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी इसे आसानी से किसी भी संवेदनशील सीमा पर तैनात किया जा सकता है।
2: भारत में निर्मित भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिनिएचर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें

0: दो तरह की मिसाइलें होंगी। एक तो वह मिसाइल जो कि अनगाइडेड होंगी, इनको स्वार्म ड्रोन यानी दुश्मन अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेजे उनकी तरफ लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये मिसाइलें दुश्मन के स्वार्म ड्रोन की तरफ जाकर जब फटेंगी तो 20 मीटर की दूरी तक इसके जो टुकड़े होंगे, शार्पनल होंगे, वो दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर देंगे।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियारों और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और किल कर सके।
2: सरहद पार से आने वाले ड्रोन को खाक में मिलाने के लिए भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को एक खास एंटी ड्रोन गन भी मिल चुकी है। नाम है वज्रा शॉट। इस गन को चेन्नई की बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने बनाया है। ये बेहद हल्की और हाथ से चलाई जाने वाली गन है जिसे सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और ईरान के बीच झड़प, ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम जारी है और कई स्टार्टअप इस पर काम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ डिटेक्टर की जोड़ी है जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है, साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे तक ऑपरेट किया जा सकता है।
0: वज्रा शॉट भारत में डिजाइन डेवलप्ड और निर्मित एक हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है। इसको दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल एक राइफल को दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रिगर दबाने पर इसमें से एक जैमिंग तरंगे निकलती हैं, यानी रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो कि दुश्मन के ड्रोन और उसके कमांड सेंटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी में अपलिंक और डाउनलिंक है, यानी जो आदेश दिए जा रहे हैं और जो आदेश लिए जा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है, जैम कर देता है।
1: सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम यानी D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 3 सालों में विकसित किया।
2: ड्रोन या UAV काफी नीचे उड़ान भरते हैं जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट करना चुनौती है तो इन्हें रोकना और तबाह करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम से ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा, साथ ही तबाह भी किया जा सकेगा।
1: DRDO के अनुसार D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये दो तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है। जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब किसी भी ड्रोन को जाम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना होता है। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन, चौथा ड्रोन किल सिस्टम, जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है, और पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे स्वार्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वार्म ड्रोन ऑपरेट होते हैं।
0: भारत में फिलहाल बहुत सारी कंपनियां ड्रोन को गिराने के लिए सॉफ्ट किल या हार्ड किल ऑप्शन पर काम कर रही हैं। सॉफ्ट किल का मतलब है कि दुश्मन का ड्रोन आया और दुश्मन के जो ड्रोन को दुश्मन का कमांड सेंटर जो अपलिंक से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको लिंक को जैम कर देना। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुश्मन का जो अपलिंक है, रेडियो कमांड सिस्टम है, उसको हैक कर सकें, उसकी फ्रीक्वेंसी को जांच कर सकें और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन के कमांड गाइडेंस सिस्टम को जैम कर देना। हार्ड किल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होगा जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को, समझिए एक माइक्रो या मिनी मिसाइल को, दुश्मन की ड्रोन की तरफ लॉन्च किया जाएगा। वो जाके दुश्मन के ड्रोन से टकराएगा, उसका इम्पैक्ट फ्यूज जो है टच करने पर एक्टिवेट हो जाएगा, वॉरहेड फट जाएगा।
1: ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रेडार के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रेडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किया जा रहा है, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।

0: दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं।
1: ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो हैं, ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है।
0: दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है जिसे आम भाषा में लेजर वेपन कहते हैं। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइटवेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था।
2: ड्यू यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को बेकार कर देता है।

0: दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत ही छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है।
1: वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर न शोहरत का गुरू, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: आज से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्रि को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदि शक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा, महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरा रंग। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो। मैं हूं श्वेता झा। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जो अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी फराग दिली और नेक नियति के किस्से उदास फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी के साथ गूंज रहे हैं। आज की खास पेशकश में बात उस महामानव की होगी जिसकी पहचान तो रील के हीरो के तौर पर है, लेकिन सही मायने में वो रील से ज्यादा रियल लाइफ का हीरो था।
1: आए और गए, खेल खत्म। कोई जीए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं।
2: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल।
0: आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी पेशकश बॉलीवुड के बिंदास हीरो नाना पाटेकर के जीवन से जुड़ी है। बॉलीवुड का सबसे जिंदा दिल इंसान अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। 8 अक्टूबर को तड़के हुई उनकी मौत से बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया। पर नाना की मौत से सबसे ज्यादा सदमे में वो किसान हैं जिनकी जिंदगी को संवारने के लिए इस महामानव ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। नाना की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र के किसान खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। दरअसल नाना रुपहले पर्दे के एकमात्र ऐसे हीरो थे जिन्होंने रील को रियल लाइफ के दर्द और दुश्वारियों को अभिव्यक्ति देने का जरिया बनाया। नाना की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे अद्भुत और अनोखे किस्से हैं जिन्हें जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
3: हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माय फाइनल प्रॉपर्टी। बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसे में जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलत फहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलत फहमी नहीं होनी चाहिए।
4: नाना काश आप अपने जिगरी दोस्त मकरंद अनासपुरे को बेतहाशा बिलखते हुए देख पाते तो शायद आपकी आखिरी गलत फहमी दूर हो जाती। यकीनन आपकी जलती चिता को देखकर बहने वाले अशकों की बूंदे 100% असली हैं, प्योर हैं, ठीक आफी की तरह। काश आप देख पाते कि आपकी अचानक हुई मृत्यु के बाद रुपहले पर्दे के उस कोने में सन्नाटा है जहां कभी आप कड़वी जीवनाभूतियों के सच्चे चित्र अपने दिल की आवाज सुनकर उकेरा करते थे। नाना आप यकीन मानिए, आप जैसे जिंदा दिल और सच्चे इंसान की अंतिम विदाई के मौके पर नकली आंसू के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।
5: वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी की तरह जितना कपड़े बदले से आपको मालूम पड़ेगा, और अपने बहुत लोगों की मदद करते थे वो, जहाँ भी चाहे वो किसान हो कोई भी हो।
4: आप ये जान लीजिए कि थिएटर के माध्यम से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने बड़े पर्दे का रुख स्टारडम हासिल करने या पैसे कमाने के लिए नहीं किया। वो बॉलीवुड की शायद अकेली शख्सियत थे जिन्होंने देश और समाज में व्याप्त अव्यवस्था, असमानता, अनाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ धधकते कलेजे का बिंब पर्दे पर हूबहू उतारने के लिए सिल्वर स्क्रीन को चुना था। यही वजह है कि उनके जाने के बाद रुपहले पर्दे की दुनिया उदास है।
6: It's terrible. It's not fair. It's not fair. Some people, you don't think that they will ever go. Nana was one of them. Nana was larger than life. Nana had the largest heart in the world. Nana's anger was all kindness, actually. It's not right. He should have not gone.
4: नाना बड़े पर्दे के हीरो नहीं थे, वो तो असल जिंदगी के महानायक थे। असल जिंदगी के नायकत्व को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने पर्दे को माध्यम बना लिया। पर्दे की वर्चुअल दुनिया में फौजी बनकर देश के लिए मर मिटने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असली जंग के दरमियान सरहद पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले वो अकेले नायक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने तत्कालीन जनरल पाटाड़कर को फोन कर कहा था कि मैं बतौर फौजी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। जनरल पाटाड़कर ने जब मना कर दिया तो नाना ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन कर सेना में शामिल होने की अनुमति मांगी। नाना का देश प्रेम और जोश देखकर फर्नांडिस ने अनुमति दे दी और नाना वाकई मोर्चे पर पहुंच गए।
3: हमने फोन किया, तुम जानते थे मुझे, नाना सिविलियन को अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा सिविलियन 6 महीने में तो कमीशन हो जाता है, हमने 3 साल गुजारे हुए, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा अब बता रहा हूँ, कब जाना चाहता हूँ। मैंने कहा आज, निकल गया। तो 60 दिन था मैं सभी जगह, मुगलपुरा में था, द्रास में था, लेह में था, कुपवारा में था, बारामुल्ला में था, सोपर में था।
4: काबिले गौर है कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा बनकर पूरे 2 महीने तक दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। क्विक रिएक्शन टीम सेना के अंदर एलीट टीम मानी जाती है। दरअसल नाना ने 1991 में आई प्रहार द फाइनल अटैक फिल्म की मेकिंग से पहले करीब 3 साल की बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ उन्होंने कड़ी सैन्य और कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू की।
3: 3 साल तक मैं वहाँ आते जाते, मैं बहुत बहुत सीखा यार। मैं 40 की उम्र में कमांडो कोर्स का वो सभी किया हुआ है, BOC बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स और बाकी का वो सभी। 28 तो उनके आउटर लिमिट है ना।
4: ऐसे महानायक थे नाना। रुपहले पर्दे पर शोषितों, वंचितों, गरीबों, मजलूमों की आवाज बनकर त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में बेबस लाचार किसानों का मसीहा बनने वाले वे अकेले नायक थे। साल 2015 में नाना ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1.5 करोड़ की कार खरीदने का मन बनाया, लेकिन उसी दौरान एक शाम उन्होंने टीवी पर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी खबर देख ली। नाना ने तुरंत फैसला कर लिया कि कार के लिए जोड़ी गई 1.5 करोड़ की रकम जान गंवा चुके किसानों के परिजनों को दे दूंगा। दरअसल नाना को लगा कि जिनका पति मर गया, जिनका पिता मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनका दुख दर्द बांटने की जगह 1.5 करोड़ की गाड़ी की सवारी करना इंसानियत को मारने जैसा है।
3: उनके चेहरे पे बाप मर गया, मर्द मर गया, बेटा मर गया, उससे ज्यादा रात की शाम की भूख थी आंखों में, बोलने में उनका ना तो कोई आंसू है ना तो कुछ है। वो जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं तो डर गया यार। मैंने कहा हम काहे की गाड़ियां खरीदे यार। तो हमारा ये दोस्त है मकरंद अनासपुरे, वो मराठवाड़ा का, तो उसको हमने फोन किया। मैंने कहा 1,000 जो है जिन्होंने आत्महत्या किए उनके फैमिली को 15,000 का एक चेक भेज दो, 15, 15, 15, 15, 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे।
4: लग्जरी कार के लिए बड़ी ही हसरत से जमा की गई रकम को पीड़ित किसान परिवारों के बीच बांटने का फैसला लेने में नाना को एक पल भी नहीं लगा। अलबत्ता इस मदद के बाद उन्हें प्रेरणा हुई कि एक बार कुछ कर देना ही काफी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे मजलूम किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए लंबे कार्यक्रम की जरूरत है। इस पवित्र उद्देश्य के साथ सितंबर 2015 में नाना ने नाम फाउंडेशन की स्थापना की। नाम फाउंडेशन के तहत उन्होंने न सिर्फ किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई, बल्कि उनके बच्चों की एजुकेशन का भी बीड़ा उठाया। इसके साथ ही नाम फाउंडेशन ने भूजल स्तर सुधारने, पुरानी नहरों और जल परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के साथ ही गांवों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर पहल की। साफ है कि नाना पाटेकर रील के कम रियल लाइफ के ज्यादा बड़े नायक थे। उनके यूं अचानक चले जाने से महाराष्ट्र के किसान आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं।
0: नाना पाटेकर का यूं चले जाना सबको रोला गया। दरअसल नाना ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके सामने कभी 2 जून की रोटी का भी संकट था, पर नाना को बचपन से ही हालात के आगे घुटने टेक कर रोना कतई ना पसंद था। हालात कितना भी कठिन क्यों ना हो, नाना डरने की जगह लड़ना पसंद करते थे। एक समय जब इनके पिता का कारोबार किसी वजह से बर्बाद हो गया तो नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। तब वो बमुश्किल 13 साल के थे, लेकिन अपनी कमाई से पूरे परिवार का पेट पालने लगे।
3: छुटा रेत सा हाथों से है हयात तेरा वो दामन, रह गई कुछ खाबों की कलिया और कुछ भीगे सावन। आया था सौगात में लेकर कुछ सांसों के वादे, बोझ उन्हीं का कैसे ढोए तू ही मुझे बतला दे।
4: श्वासों की सौगात वादों की मंजिल के पार जाकर सदा के लिए शून्य में विलीन हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई महकती यादों की ऐसी खूबसूरत लड़ियां जो अदाकारी के साथ इंसानियत का भी चिराग बनकर इस जहां में ताकयामत रोशनी बिखेरती रहेंगी। गमन से शुरू होकर ओ रोमियो तक नाना पाटेकर का फिल्मी सफर रुपहले पर्दे पर निसंदेह अत्यंत गहरी छाप छोड़ता है, पर पर्दे के सामने दिखने वाली अदाकारी की रानाइयों से कहीं ज्यादा असरदार हैं पर्दे के पीछे के वो फौलादी किस्से जो आम जनों के लिए किसी न किसी वजह से पोशीदा हो गए। 3 नवंबर 1989 को रिलीज हुई परिंदा के अन्ना को कौन भूल सकता है, जो पर्दे के सामने आग से बहुत ज्यादा खौफ खाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उसी अन्ना यानी नाना ने आग वाले सीक्वेंस की शूटिंग के समय फायर सूट पहनने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि अगर आग की तपिश महसूस नहीं होगी तो शॉट की संजीदगी मर जाएगी। फिल्म के एक अदद दृश्य में जान फूंकने के लिए नाना पाटेकर ने अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया था।
7: Can you imagine this is real fire? रबर सॉल्यूशन के साथ आग लगाई। See, this is when he got burnt. ये देख, oh my God, I've never seen it like this. Oh my God, हाथ पे आग लगी और ये अब उसने छलांग मारी है। ये देख, यहां तक आया, ये देखा, ये जंप मारा है उसने इनटू द सेफ एरिया। Oh my God, you know I have never seen it like this in my life. It's the first time I'm watching this because इतना कंट्रोल मेरे पास कभी था ही नहीं। नाना तू अगर देखेगा ना ये तो यार क्या किया तूने, it's unbelievable।
4: बहुत कम लोग जानते हैं कि परिंदा के इस दृश्य की शूटिंग के दौरान नाना बुरी तरह झुलस गए थे। ऐसे झुलस गए थे कि 2 महीने से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और 1 साल तक वो कोई भी काम करने की हालत में नहीं थे।
3: आग लगी, आग लगी थी, मैं जल रहा था। उसके बाद 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ऐसे था 60 दिन अस्पताल में। वो जो सीन देखते हो ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा, वो मैं बाकायदा जल रहा था। हम 60 दिन, हमारा ये यहाँ से यहाँ कुछ नहीं था, ये सब ये निकल के वो गिर गया था मेरे चप्पल पे और इधर पैजामा पे। स्किन थी ही नहीं, दाढ़ी नहीं थी, मूछे नहीं थी, बवे नहीं थी, आईलेट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सब जल गया।
4: परिंदा से पहले साल 1988 में रिलीज हुई मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में भी नाना बुरी तरह जख्मी हो गए थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट शफीक सैयद को नाना पाटेकर को चाकू मारना था। एहतियात के तौर पर नाना ने पेट के पास एक टायर बांधा था, लेकिन फिल्म में कृष्णा का किरदार निभा रहे शफीक ने चाकू इतना तेज मारा कि वो टायर को भेद कर नाना के पेट में घुस गया। पर नाना तो नाना ही थे, शॉट ओके होने तक किसी को पता ही नहीं चला कि नाना के कपड़ों में दिख रहा लाल रंग नकली नहीं बल्कि उनका असली खून है।
3: वो जो एंड में मुझे वो बच्चा भोग देता है ना चाकू, टायर लगाया था, टायर ऐसे काट के इधर, तो वो सारा चाकू टायर के आर पार गया और मेरे गया अंदर, तो मैं घुस गया चाकू ऐसे इधर से किधर मारा तो घुस गया और उनको लगा क्या एक्टिंग की है। फॉर्चुनेटली वो स्पाइन में नहीं गया, इधर बाजू में गया।
4: अलग ही मिट्टी का बना था ये शख्स। नाना ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की। सभी फिल्मों में उनकी अदाकारी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की जमी जमाई लीक को तोड़ती दिखाई देती है। नाना के ज्यादातर प्रशंसक इस सच को स्वीकार भी करते हैं, पर नाना ने अदाकारी की ही नई लीक नहीं खींची, शूटिंग के सेट पर कई ऐसे विस्मयकारी कारनामे किए जिसे सुनकर सहसा यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म क्रांति वीर के क्लाइमेक्स सीक्वेंस ने दर्शकों पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। क्लाइमेक्स में नाना करीब 3.5 मिनट तक मर्म को छूने वाला संवाद बोलते हैं, पर क्या आप यकीन करेंगे कि नाना ने जो कुछ भी बोला था वो फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये जानेंगे कि सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त नाना अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टरों के साथ सेट पर पहुंचे थे।
3: 2:30 बजे शुरू, हमारे 7 दिन का ये था क्लाइमैक्स का शूटिंग। 2:30 बजे शुरू किया हमने, 5 बजे खत्म हो गए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हमको क्या बोला। हम गए अपना बोलना शुरू कर दिया, जिस वक्त मेरे को लगा कि अभी कुछ नहीं सोता, लारे ला ला ला मैंने पहना देता था, वो जो अपने फांसी लेने का है ना, वो लास्ट का वो उसके पास से वो लेता है, वो ऐसा काली पहना चल, क्योंकि उसके बाद कुछ सूझ नहीं रहा था।
4: हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसका क्लाइमेक्स इस तरह शूट किया गया हो। नाना का कमाल देखिए कि जिस क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए मेहुल कुमार ने 7 दिन का वक्त मुकर्रर किया था वो 2.5 घंटे में ही पूरा हो गया और फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा बन गया। दरअसल स्टारडम मिलने के पहले से ही नाना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए तमाम कलाकारों को क्या क्या समझौते नहीं करने पड़ते हैं, पर नाना ने कभी कोई समझौता नहीं किया। नाना जब थिएटर्स करते थे उसी दौरान उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने उन्हें बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा से मिलवाया। रवि चोपड़ा तब आज की आवाज फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्होंने नाना को रेपिस्ट का रोल ऑफर किया। रेपिस्ट के रोल की पेशकश पर नाना ऐसे भड़के कि रवि चोपड़ा को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे।
3: तो जबरदस्ती मुझे ले गई बीआर चोपड़ा जी के साथ, उनका बेटा रवि चोपड़ा डायरेक्ट कर रहा था आज की आवाज। और वो उसमें एक 4 हेंचमैन थे, जो एक ऐसे ही रेपिस्ट बच्चे थे, उसमें से एक रोल हमको ऑफर किया। अब मैं यहाँ मैंने क्या बोला वो बोल नहीं सकता।
4: बॉलीवुड में चोपड़ा परिवार की क्या हैसियत है ये किसी से छिपी नहीं है, पर उसी चोपड़ा परिवार के चश्मो चिराग रवि चोपड़ा को नाना ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद सारे के सारे सन्नाटे में चले गए। पर उसके बाद रवि चोपड़ा को भी समझ में आ गया कि जिस शख्स को मैं थिएटर का छोटा मोटा अदाकार समझ रहा था वो जरूरत से ज्यादा कद्दावर है। बाद में रवि चोपड़ा ने आज की आवाज फिल्म के लिए नाना को मेन विलेन जगमोहन दास का किरदार ऑफर किया। हालांकि नाना ने जगमोहन दास के किरदार के लिए भी शर्त रख दी कि अपने संवाद मैं खुद लिखूंगा। जिसे भरोसा सिर्फ अपने हुनर का होता है वो नफे नुकसान का गुणा गणित नहीं करता। दरअसल नाना को स्टारडम पाने या पैसे कमाने की वैसी कोई भूख कभी नहीं थी जैसा कि बॉलीवुड के अंदर हर कलाकार की आमतौर पर होती है। इसीलिए नाना कभी किसी निर्माता निर्देशक के पास रोल पाने के लिए हाथ पसारते नहीं देखे गए। गिड़गिड़ाना या रोना नाना की फितरत का हिस्सा कभी नहीं था।
3: वो हर चीज पे अपने हंसने की जो आदत थी ना, वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो एटीट्यूड बहुत अच्छी थी। रोते बैठने की, रोए नहीं हम, रोए कैमरा के सामने और उसके पैसे वसूले हमने।
4: 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुंड जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी 75 साल जिंदगी के रियल किस्से रील की फैंटेसी से भी ज्यादा रोमांचक, विस्मयकारी और प्रेरणादायक हैं। बेहद साधारण परिवेश में पले बड़े होने के बावजूद बचपन से ही एक अजीब जिदो जुनून था नाना के अंदर। काम कितना भी दुष्कर हो, असाध्य हो, असंभव हो, नाना के शब्दकोश में ना नहीं था। नाना जब महज 13 साल के थे तो इनके पिता का कारोबार किसी वजह से ठप हो गया। पूरे परिवार के सामने पापी पेट को पालने का सवाल था। पूरा परिवार गहरी चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन 13 साल के नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। जिस जगह काम मिला वो घर से 8 किलोमीटर दूर था। 35 रुपए की मासिक पगार के लिए 13 साल के नाना रोज 16 किलोमीटर पैदल चलते थे।
3: तो हमको 35 रुपए मिलता था महीने का। 35 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त। मैं ये बात कर रहा हूँ 63-64 की। 13 साल के थे हम, तो 8 किलोमीटर पैदल जाओ, 8 किलोमीटर पैदल चल के आ जाओ। 16 किलोमीटर चलना पड़ता था, 35 रुपए मिलता था और एक वक्त का खाना मिलता था। और रात को खाते वक्त हमको दिक्कत होती थी कि यार माँ ने खाया होगा, पिताजी ने खाया होगा, भाई ने खाया होगा। जहन में तो आता था लेकिन हम खा लेते थे यार, भूख इतनी बड़ी थी उनसे, प्यार से हम खा लेते थे।
4: नाना पाटेकर के व्यक्तित्व की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि 90 के दशक में एक फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान खान से भी ज्यादा पैसे लेने वाले नाना पाटेकर ने कभी 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की रंगाई का काम भी किया है?
3: जेब्रा क्रॉसिंग रहती थी ना, वो हम पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे एक क्रॉसिंग के, एक कर दिया तो 15 रुपए। तो रात को हम शुरू करते थे, जैसे ट्रैफिक बंद हो जाए 1-1.5 बजे शुरू करते थे, नहीं तो फिर उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए तो वो धब्बे आ जाएंगे टायर के, तो मार्क्स आते, तो फिर वो दूसरे दिन 15 रुपए मिलेंगे नहीं। तो पहले दोनों बाजू तीन जन दूसरे जो हमारे दोस्त थे वो खड़े रहते थे, फटाफट लगा दो, फिर अगला वो करेगा, ऐसे करके एक रात में 25-30 जेब्रा क्रॉसिंग हो गई तो पैसे मिल जाते।
4: 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग करने वाला इंसान बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा की इस बात के लिए फजीहत कर देता है कि उन्होंने उसे रेपिस्ट का रोल कैसे ऑफर कर दिया। बॉलीवुड की बिंदास दुनिया में अदाकारी की अलग ही मिसाल कायम कर दुनिया से रुखसत हो चुके नाना पाटेकर ने अपनी 75 साल की जिंदगी में बेपनाह दुश्वारियां झेली। जब ये काफी छोटे थे, इनके बड़े भाई की 14 साल की उम्र में एक हादसे में मौत हो गई। एक और भाई की मुंबई सीरियल धमाकों में दर्दनाक मौत हुई। नाना का खुद का एक बेटा 2.5 की उम्र में असमय काल कौलित हो गया। पर इस तरह के तमाम दर्द को झेलने के बाद भी इस इंसान ने अपने अश्कों को आंखों से बाहर नहीं निकलने दिया, और जब कैमरे के सामने रोने का दृश्य फिल्माने की नौबत आई तो सीने में दफ्न उन्हीं आंसुओं को नैनों का रास्ता दिखा दिया।
3: और हम थोड़ी एक्टिंग थोड़ी करते हैं यार, हम तो हमारे इमोशंस बेचते हैं। जो उस दिन हम रोए नहीं, वो रखा है हमने अंदर, तो फिर कैमरा के सामने रो देते हैं तो आपको लगता है हाँ क्या एक्टिंग की, पैसे भी मिलते हैं और भड़ास भी निकलती है।
4: नाना अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने चाहने वालों के लिए छोड़ गए हैं उन्हीं आंसुओं का सैलाब जिन्हें कभी उन्होंने अपने सीने में जज्ब कर लिया था। नाना का नश्वर शरीर बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व से जुड़ी बेशुमार कहानियां आने वाले वक्त में बड़े चाव से सुनी और सुनाई जाएंगी।
0: आज आपने नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: अब बात देश दुनिया की गुड न्यूज की कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि चीन में इन दोनों आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी एक साथ उड़ते हुए नजर आए। आसमान में उड़ते इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगा मानो हवा में लहरें उठ रही हों। कैसे, आप भी देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में।
3: ये तस्वीरें चीन के शानडोंग प्रांत की है, जहां येलो रिवर डेल्टा नेशनल नेचर रिजर्व में पक्षियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। जैसे ही शरद ऋतु ने दस्तक दी, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पहुंचने लगे। ये पक्षी झुंड में उड़ते हैं, कभी एक साथ ऊपर उड़ते हैं, तो कभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। आसमान में इनकी उड़ान ऐसी लगती है जैसे नीले आसमान में लहरें उठ रही हो। दूर तक फैले पानी और हरे भरे इलाकों के बीच पक्षियों का ये नजारा हर किसी का ध्यान खींच रहा है। पक्षियों को देखने के शौकीन लोग इस खूबसूरत पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कई लोग इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों का ये नजारा न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि ये दिखाता है कि प्रकृति में हर मौसम के साथ कितना कुछ बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
9: रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर, न शोहरत का गुरु, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आज से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदि शक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा। महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने बिखेरा रंग। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू। कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु। इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जंग के मैदान में जब से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तब से इस हवाई खतरे ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली हैं। ये साइलेंट किलर की तरह आते हैं और बड़ी तबाही मचा देते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 100 या 500 ड्रोन्स का झुंड किसी सैन्य ठिकाने, एयरबेस या रिफाइनरी की तरफ भेज दे, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। एक रेडार और मिसाइल बैटरी एक बार में सिर्फ सीमित संख्या में ही टारगेट्स को ट्रैक और फायर कर सकती है, और जब ड्रोन की तादाद मिसाइल्स की क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो एयर डिफेंस सैचुरेट हो जाता है और बचे हुए ड्रोन रक्षा कवच को भेदकर तबाही मचा देते हैं। ऐसे में ड्रोन स्वार्म खतरे की कार्ड तैयार करना बेहद जरूरी है, और भारत भी बखूबी समझता है कि इस खतरे से निपटने के लिए मल्टी लेवल तैयारी कितनी जरूरी है।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। भारत की निजी रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने अपने ज्वाला माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम के तहत 2 सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण 3 अक्टूबर 2026 को किया गया। ज्वाला भारत का पहला स्वदेशी निजी माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम है, जो हार्ड किल काउंटर यूएस यानी कि ड्रोन को तबाह करने वाला सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।
0: ज्वाला MK-1 एक स्वदेशी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर माइक्रो मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के अनमैन एरियल व्हीकल और ड्रोन स्वार्म को हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी ढंग से हमला कर सकती है। इंगेजमेंट एल्टीट्यूड यानी मारक ऊंचाई की बात करें तो इसका मारक दायरा न्यूनतम 50 मीटर से लेकर मैक्सिमम 5000 मीटर की ऊंचाई तक है। मैक्सिमम दूरी पर भी इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 2 मीटर से कम है, यानी ये अपने लक्ष्य के 2 मीटर के दायरे के अंदर अचूक वार कर सकती है। टारगेट डिटेक्ट होने से लेकर मिसाइल लॉन्च होने तक का रिएक्शन टाइम भी इसका 7 सेकंड से कम है।
2: ज्वाला Mark-1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि ये अगर दुश्मन का ड्रोन जमीन के पास बहुत लो अल्टीट्यूड पे भी आ रहा है, 50 मीटर की दूरी पर, तो भी उसको ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन का ड्रोन अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तब भी ज्वाला के जद्दोजहद के अंदर रहता है। इसका जो फायरिंग एनवलप है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन का जो ड्रोन है अगर वो मल्टीपल वेव्स में आ रहा है तो जो जमीन पर जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोलर है, उसको तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है, और एक AI लॉगरिथम से जो लॉन्चर हैं या जो कमांडर है वो अलग अलग ड्रोन्स को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग झुंड में एंगेज कर सकता है।
3: थ्रेट डिटेक्टेड, टारगेट लॉक्ड, द मिसाइल इज अवे।
0: ज्वाला MK-1 मिसाइल में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। ये लॉन्च के समय मिसाइल को तुरंत तेज रफ्तार देता है। इसमें 0.5 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन का प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से लेस है। इसका मतलब ये कि ड्रोन से सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती। ड्रोन के बेहद करीब पहुंचते ही ये ब्लास्ट हो जाता है और धातु के घातक टुकड़ों की बौछार से ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है।
2: ज्वाला Mark-1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स में किसी भी मिसाइल सिस्टम की तरह से 2 तरह के फ्यूज लगे हैं। एक तो है इंपैक्ट फ्यूज, यानी जब ये टारगेट से टकराता है तो फ्यूज ऑपरेशनलाइज हो जाता है और एक्टिवेट होकर जो मेन चार्ज है वॉरहेड को एक्सप्लोड कर देता है। दूसरा ये है कि यह अगर दुश्मन के ड्रोन को महज 1 या 2 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है तो इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। ये एक फ्यूज होता है जिसमें से कि लगातार रेडियो वेव्स निकलती हैं और ड्रोन से टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसको भांप लेता है, और ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो एक्टिवेट हो जाता है, फट जाता है।
0: ज्वाला को एक माइक्रो मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टारगेटेड ड्रोन को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ट्रक माउंटेड मल्टी कैनिस्टर लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसे सेना के 4x4 व्हीकल पर आसानी से तैनात किया जा सकता है।
1: ज्वाला MK1 मिसाइल अकेले काम नहीं करती, बल्कि IG डिफेंस के AI संचालित ग्रिड डिफेंस बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है। ये नेटवर्क कई सेंसरों से रडार और डेटा फ्यूजन का उपयोग करके खतरों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करता है।
0: IG डिफेंस का AI कंट्रोल्ड ग्रिड डिफेंस बैटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और इसके साथ इंटीग्रेटेड ज्वाला मिसाइल सिस्टम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने के लिए उन्नत एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस हैं। ग्रिड डिफेंस एक AI इनेबल्ड बैटल मैनेजमेंट और कमांड नेटवर्क है। इस प्लेटफॉर्म को आधुनिक युद्ध प्रणालियों और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशंस और हाई लेवल के एनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स का इस्तेमाल करता है, ताकि डेटा ट्रांसफर के दौरान हैकिंग या इंटरसेप्शन का कोई खतरा न रहे। ये सिस्टम अलग अलग सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक साथ जोड़कर रियल टाइम में स्ट्राइक को कमांड देता है। इसे सेंसर टू शूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स इस नेटवर्क में सेंध नहीं लगा सकते और न ही मिसाइल के कमांड सिग्नल को ब्लॉक या हैक कर सकते हैं।
2: इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए, यानी लॉन्च के बाद टारगेट की तरफ अग्रसर होने के लिए एक एनक्रिप्टेड कमांड गाइडेड गाइडेंस सिस्टम है, यानी इसको लगातार रेडियो सिग्नल के द्वारा दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये जो रेडियो लिंक है, ये टोटली एंटी जैम प्रूफ है, यानी दुश्मन इस लिंक के अंदर हैक करके घुस नहीं सकता, दुश्मन इस कमांड गाइडेंस लिंक को जैम नहीं कर सकता।
0: ग्रिड डिफेंस सिर्फ एक ही रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडार पर निर्भर नहीं है, ये मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगर दुश्मन किसी रेडार फ्रिक्वेंसी को जैम करने की कोशिश करता है, तो ग्रिड तुरंत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास, थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के इनपुट पर स्विच कर जाता है। इससे सिस्टम बगैर रुके काम करता रहता है।
1: आधुनिक युद्धों में अक्सर GPS या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि मिसाइलें रास्ता भटक जाए। ज्वाला मिसाइल और इसके नेटवर्क को जैम रेसिस्टेंट नेविगेशन आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया गया है। अगर दुश्मन मेन सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी को जैम भी कर देता है, तब भी यह सिस्टम वैकल्पिक वेव बैंड और इंटरनल गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को सटीकता से ट्रैक करना जारी रखता है।
0: आज के युद्ध में ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम लागत और बड़ी संख्या है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेजता है, तो हर एक ड्रोन के खिलाफ बहुत महंगी एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल करना आर्थिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इसे कॉस्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम कहा जा सकता है। दुश्मन को पता है कि उनके स्वार्म ड्रोन में से अगर आधे से ज्यादा ड्रोन का नुकसान हो भी गया, तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही इनकी लागत इतनी कम होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन का एक सुइसाइड या FPV ड्रोन महज 500 से $2,000 यानी करीब 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख

0: सकता है या हार की दहलीज तक जा सकता है।
1: दुश्मन सस्ते ड्रोनों की बार लाकर असल में बड़े देशों को कीमती मिसाइल भंडार को जानबूझकर खाली करवाता है ताकि युद्ध में उसे बढ़त मिल सके। जब एक बार महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया तब दुश्मन अपने असली और घातक हथियार जैसे कि उसके ताकतवर फाइटर जेट या भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है क्योंकि उस समय देश का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका होता है।
0: भारत के पास दुश्मन के ड्रोन और स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर मौजूद है। ये सिस्टम बॉर्डर, सैन्य ठिकानों से लेकर शहरी और वीवीआईपी सुरक्षा तक तीन प्रमुख स्तर यानी डिटेक्शन, सॉफ्ट किल, हार्ड किल पर काम करती है। हाल ही में भारत ने एक और स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का एक और ट्रायल किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपने अंतिम परीक्षण में पहुंच गया है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन लॉयटरिंग, मुनिशन और खासकर स्वार्म अटैक को खत्म करने के लिए बनाई गई है।
1: सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड भार्गवास्त्र को तैयार कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C41 से भी जोड़ा जा सकता है। C41 का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस।
0: भार्गवास्त्र स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है जो महज 10 सेकंड के अंदर 64 माइक्रो रॉकेट्स दागकर दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को नेस्तनाबूद कर सकता है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि ये एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र को भारत की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढंग से काम करता है। ये क्षमता इसे सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए बेस्ट बनाती है और ये कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते बल्कि एक बड़े दायरे को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम है। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है जो ड्रोन के झुंड को बगैर नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये कि इसे भारतीय सेना की गाड़ियों पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है यानी इसे आसानी से किसी भी संवेदनशील सीमा पर तैनात किया जा सकता है।
2: भारत में निर्मित भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिनिएचर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें दो तरह की मिसाइलें होंगी, एक तो वह मिसाइल जो कि अनगाइडेड होंगी, इनको स्वार्म ड्रोन यानी दुश्मन अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेजे उनकी तरफ लॉन्च कर दिया जाएगा और ये मिसाइलें दुश्मन के स्वार्म ड्रोन की तरफ जाकर जब फटेंगी तो 20 मीटर की दूरी तक इसके जो टुकड़े होंगे, शार्पनल होंगे, वो दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर देंगे।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियारों और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और किल कर सके।
1: सरहद पार से आने वाले ड्रोन को खाक में मिलाने के लिए भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को एक खास एंटी ड्रोन गन भी मिल चुकी है। नाम है वज्रा शॉट। इस गन को चेन्नई की बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने बनाया है। ये बेहद हल्की और हाथ से चलाई जाने वाली गन है जिसे सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की

0: बात कर रही है। चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और ईरान के बीच झड़प, ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम जारी है और कई स्टार्टअप इस पर काम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ डिटेक्टर की जोड़ी है जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है, जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है, साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे तक ऑपरेट किया जा सकता है।
1: वज्रा शॉट भारत में डिजाइन डेवलप्ड और निर्मित एक हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन है। इसको दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल एक राइफल को दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रिगर दबाने पर इसमें से एक जैमिंग तरंगे निकलती हैं, यानी रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो कि दुश्मन के ड्रोन और उसके कमांड सेंटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी में अपलिंक और डाउनलिंक है, यानी जो आदेश दिए जा रहे हैं और जो आदेश लिए जा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है, जैम कर देता है।
0: सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, यानी D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 3 सालों में विकसित किया।
2: ड्रोन या UAV काफी नीचे उड़ान भरते हैं, जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट करना चुनौती है तो इन्हें रोकना और तबाह करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम से ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा, साथ ही तबाह भी किया जा सकेगा।
0: DRDO के अनुसार D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये दो तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब किसी भी ड्रोन को जाम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना होता है। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन, चौथा ड्रोन किल सिस्टम, जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है, और पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे स्वार्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वार्म ड्रोन ऑपरेट होते हैं।
1: भारत में फिलहाल बहुत सारी कंपनियां ड्रोन को गिराने के लिए सॉफ्ट किल या हार्ड किल ऑप्शन पर काम कर रही हैं। सॉफ्ट किल का मतलब है कि दुश्मन का ड्रोन आया और दुश्मन के जो ड्रोन को दुश्मन का कमांड सेंटर जो अपलिंक से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको लिंक को जैम कर देना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन का जो अपलिंक है, रेडियो कमांड सिस्टम है, उसको हैक कर सकें, उसकी फ्रीक्वेंसी को जांच कर सकें और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन के कमांड गाइडेंस सिस्टम को जैम कर देना। हार्ड किल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होगा जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को, समझिए एक माइक्रो या मिनी मिसाइल को दुश्मन की ड्रोन की तरफ लॉन्च किया जाएगा, वो जाके दुश्मन के ड्रोन से टकराएगा, उसका इंपैक्ट फ्यूज जो है टच करने पर एक्टिवेट हो जाएगा, वॉरहेड फट जाएगा।
0: ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रेडार के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रेडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किया जा रहा है, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।

0: दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं।
1: ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर, दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो हैं, ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है।
0: दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है, जिसे आम भाषा में लेजर वेपन कहते हैं। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइटवेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था।
2: ड्यू यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को बेकार कर देता है।

0: दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत ही छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है।
1: वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: त्रिपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर, न शोहरत का गुरूर, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
2: आज से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदिशक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा, महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरा रंग। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो। मैं हूं श्वेता झा। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जो अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी फराग दिली और नेक नियति के किस्से उदास फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी के साथ गूंज रहे हैं। आज की खास पेशकश में बात उस महामानव की होगी जिसकी पहचान तो रील के हीरो के तौर पर है, लेकिन सही मायने में वो रियल से ज्यादा रियल लाइफ का हीरो था।
1: आए और गए, खेल खत्म। तो जीए मालूम नहीं, तो मरे मालूम नहीं।
2: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल।
0: आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी पेशकश बॉलीवुड के बिंदास हीरो नाना पाटेकर के जीवन से जुड़ी है। बॉलीवुड का सबसे जिंदा दिल इंसान अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। 8 अक्टूबर को तड़के हुई उनकी मौत से बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया। पर नाना की मौत से सबसे ज्यादा सदमे में वो किसान हैं जिनकी जिंदगी को संवारने के लिए इस महामानव ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। नाना की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र के किसान खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। दरअसल नाना रुपहले पर्दे के एकमात्र ऐसे हीरो थे जिन्होंने रील को रियल लाइफ के दर्द और दुश्वारियों को अभिव्यक्ति देने का जरिया बनाया। नाना की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे अद्भुत और अनोखे किस्से हैं जिन्हें जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
3: हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माय फाइनल प्रॉपर्टी। बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसे में जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलतफहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
4: नाना, काश आप अपने जिगरी दोस्त मकरंद अनासपुरे को बेतहाशा बिलखते हुए देख पाते तो शायद आपकी आखिरी गलतफहमी दूर हो जाती। यकीनन आपकी जलती चिता को देखकर बहने वाले अशकों की बूंदे 100% असली हैं, प्योर हैं, ठीक आफी की तरह। काश आप देख पाते कि आपकी अचानक हुई मृत्यु के बाद रुपहले पर्दे के उस कोने में सन्नाटा है जहां कभी आप कड़वी जीवनाभूतियों के सच्चे चित्र अपने दिल की आवाज सुनकर उकेरा करते थे। नाना, आप यकीन मानिए, आप जैसे जिंदा दिल और सच्चे इंसान की अंतिम विदाई के मौके पर नकली आंसू के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।
5: वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, क्योंकि वो दोनों माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। एक नॉर्मल आदमी की तरह जितना कपड़े बदले से आपको मालूम पड़ेगा, और अपने बहुत लोगों की मदद करते थे वो, जहां भी चाहे वो किसान हो, कोई भी हो।
4: आप ये जान लीजिए कि थिएटर के माध्यम से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने बड़े पर्दे का रुख स्टारडम हासिल करने या पैसे कमाने के लिए नहीं किया। वो बॉलीवुड की शायद अकेली शख्सियत थे जिन्होंने देश और समाज में व्याप्त अव्यवस्था, असमानता, अनाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ धधकते कलेजे का बिंब पर्दे पर हूबहू उतारने के लिए सिल्वर स्क्रीन को छुरा था। यही वजह है कि उनके जाने के बाद रुपहले पर्दे की दुनिया उदास है।
6: It's terrible. It's not fair. It's not fair. Some people, you don't think that they will ever go. Nana was one of them. Nana was larger than life. Nana had the largest heart in the world. Nana's anger was all kindness, actually. It's not right. He should have not gone.
4: नाना बड़े पर्दे के हीरो नहीं थे, वो तो असल जिंदगी के महानायक थे। असल जिंदगी के नायकत्व को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने पर्दे को माध्यम बना लिया। पर्दे की वर्चुअल दुनिया में फौजी बनकर देश के लिए मर मिटने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असली जंग के दरमियान सरहद पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले वो अकेले नायक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने तत्कालीन जनरल पाटाड़कर को फोन कर कहा था कि मैं बतौर फौजी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। जनरल पाटाड़कर ने जब मना कर दिया तो नाना ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन कर सेना में शामिल होने की अनुमति मांगी। नाना का देश प्रेम और जोश देखकर फर्नांडिस ने अनुमति दे दी और नाना वाकई मोर्चे पर पहुंच गए।
3: हमने फोन किया, तुम जानते थे मुझे, नाना सिविलियन को अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा सिविलियन 6 महीने में तो कमीशन हो जाता है, हमने 3 साल गुजारे हुए, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा अब बता रहा हूँ कब जाना चाहता हूँ। मैंने कहा आज निकल गया तो 60 दिन था मैं, सभी जगह मुगलपुरा में था, द्रास में था, लेह में था, कुपवारा में था, बारामुल्ला में था, सोपर में था।
4: काबिले गौर है कि कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा बनकर पूरे 2 महीने तक दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। क्विक रिएक्शन टीम सेना के अंदर एलीट टीम मानी जाती है। दरअसल नाना ने 1991 में आई प्रहार द फाइनल अटैक फिल्म की मेकिंग से पहले करीब 3 साल की बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ उन्होंने कड़ी सैन्य और कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू की।
3: 3 साल तक मैं वहाँ आते जाते, मैं बहुत बहुत सीखा यार। मैं 40 की उम्र में कमांडो कोर्स का वो सभी किया हुआ है, BOC बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स और बाकी का वो सभी। 28 तो उनके आउटर लिमिट है ना।
4: ऐसे महानायक थे नाना। रुपहले पर्दे पर शोषितों, वंचितों, गरीबों, मजलूमों की आवाज बनकर त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनने वाले अनेक नायक आपने देखे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में बेबस लाचार किसानों का मसीहा बनने वाले वे अकेले नायक थे। साल 2015 में नाना ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1.5 करोड़ की कार खरीदने का मन बनाया, लेकिन उसी दौरान एक शाम उन्होंने टीवी पर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी खबर देख ली। नाना ने तुरंत फैसला कर लिया कि कार के लिए जोड़ी गई 1.5 करोड़ की रकम जान गंवा चुके किसानों के परिजनों को दे दूंगा। दरअसल नाना को लगा कि जिनका पति मर गया, जिनका पिता मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनका दुख दर्द बांटने की जगह 1.5 करोड़ की गाड़ी की सवारी करना इंसानियत को मारने जैसा है।
3: उनके चेहरे पे बाप मर गया, मर्द मर गया, बेटा मर गया, उससे ज्यादा रात की शाम की भूख थी आंखों में, बोलने में उनका ना तो कोई आंसू है ना तो कुछ है, वो जिस तरह से बात कर रहे थे मैं तो डर गया यार। मैंने कहा हम काहे की गाड़ियां खरीदे यार, हमारा ये दोस्त है मकरंद अनासपुरे, वो मराठवाड़ा का, तो उसको हमने फोन किया। मैंने कहा 1,000 जो है जिन्होंने आत्महत्या किए उनके फैमिली को 15,000 का एक चेक भेज दो, 15, 15, 15, 15, 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे।
4: लग्जरी कार के लिए बड़ी ही हसरत से जमा की गई रकम को पीड़ित किसान परिवारों के बीच बांटने का फैसला लेने में नाना को एक पल भी नहीं लगा। अलबत्ता इस मदद के बाद उन्हें प्रेरणा हुई कि एक बार कुछ कर देना ही काफी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे मजलूम किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए लंबे कार्यक्रम की जरूरत है। इस पवित्र उद्देश्य के साथ सितंबर 2015 में नाना ने नाम फाउंडेशन की स्थापना की। नाम फाउंडेशन के तहत उन्होंने न सिर्फ किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई बल्कि उनके बच्चों की एजुकेशन का भी बीड़ा उठाया। इसके साथ ही नाम फाउंडेशन ने भूजल स्तर सुधारने, पुरानी नहरों और जल परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के साथ ही गांवों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर पहल की। साफ है कि नाना पाटेकर रील के कम रियल लाइफ के ज्यादा बड़े नायक थे। उनके यूं अचानक चले जाने से महाराष्ट्र के किसान आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं।
0: नाना पाटेकर का यूं चले जाना सबको रोला गया। दरअसल नाना ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके सामने कभी 2 जून की रोटी का भी संकट था, पर नाना को बचपन से ही हालात के आगे घुटने टेक कर रोना कतई नापसंद था। हालात कितना भी कठिन क्यों ना हो, नाना डरने की जगह लड़ना पसंद करते थे। एक समय जब इनके पिता का कारोबार किसी वजह से बर्बाद हो गया तो नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। तब वो बमुश्किल 13 साल के थे, लेकिन अपनी कमाई से पूरे परिवार का पेट पालने लगे।

0: छुटा रेत सा हाथों से है हयात तेरा वो दामन, रह गई कुछ खाबों की कलिया और कुछ भीगे सावन। आया था सौगात में लेकर कुछ सांसों के वादे, बोझ उन्हीं का कैसे ढोए तू ही मुझे बतला दे।
1: श्वासों की सौगात वादों की मंजिल के पार जाकर सदा के लिए शून्य में विलीन हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई महकती यादों की ऐसी खूबसूरत लड़ियां जो अदाकारी के साथ इंसानियत का भी चिराग बनकर इस जहां में ताकयामत रोशनी बिखेरती रहेंगी। गमन से शुरू होकर ओ रोमियो तक नाना पाटेकर का फिल्मी सफर रुपहले पर्दे पर निसंदेह अत्यंत गहरी छाप छोड़ता है, पर पर्दे के सामने दिखने वाली अदाकारी की रानाइयों से कहीं ज्यादा असरदार हैं पर्दे के पीछे के वो फौलादी किस्से जो आम जनों के लिए किसी न किसी वजह से पोशीदा हो गए। 3 नवंबर 1989 को रिलीज हुई परिंदा के अन्ना को कौन भूल सकता है, जो पर्दे के सामने आग से बहुत ज्यादा खौफ खाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उसी अन्ना यानी नाना ने आग वाले सीक्वेंस की शूटिंग के समय फायर सूट पहनने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि अगर आग की तपिश महसूस नहीं होगी तो शॉट की संजीदगी मर जाएगी। फिल्म के एक अदद दृश्य में जान फूंकने के लिए नाना पाटेकर ने अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया था।
2: Can you imagine this is real fire? रबर सॉल्यूशन के साथ आग लगाई। See, this is when he got burnt. ये देख, oh my God, I've never seen it like this. Oh my God, हाथ पे आग लगी और ये अब उसने छलांग मारी है। ये देख, यहां तक आया है, ये देखा, ये जंप मारा है उसने इनटू द सेफ एरिया। ओह माय गॉड, यू नो आई हैव नेवर सीन इट लाइक दिस इन माय लाइफ, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग दिस, बिकॉज ये इतना कंट्रोल मेरे पास कभी था ही नहीं। नाना तू अगर देखेगा ना ये तो यार क्या किया तूने, इट्स अनबिलीवेबल।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि परिंदा के इस दृश्य की शूटिंग के दौरान नाना बुरी तरह झुलस गए थे। ऐसे झुलस गए थे कि 2 महीने से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और 1 साल तक वो कोई भी काम करने की हालत में नहीं थे।
0: आग लगी, आग लगी थी, मैं जल रहा था, उसके बाद 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ऐसे था 60 दिन अस्पताल में। वो जो सीन देखते हो ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा, वो मैं बाकायदा जल रहा था। हम 60 दिन, हमारा ये यहाँ से यहाँ कुछ नहीं था, ये सब ये निकल के वो गिर गया था मेरे चप्पल पे और इधर पैजामा पे, स्किन थी ही नहीं, दाढ़ी नहीं थी, मूछें नहीं थी, बवे नहीं थी, आईलिड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सब जल गया था।
1: परिंदा से पहले साल 1988 में रिलीज हुई मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में भी नाना बुरी तरह जख्मी हो गए थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट शफीक सैयद को नाना पाटेकर को चाकू मारना था। एहतियात के तौर पर नाना ने पेट के पास एक टायर बांधा था, लेकिन फिल्म में कृष्णा का किरदार निभा रहे शफीक ने चाकू इतना तेज मारा कि वो टायर को भेद कर नाना के पेट में घुस गया। पर नाना तो नाना ही थे, शॉट ओके होने तक किसी को पता ही नहीं चला कि नाना के कपड़ों में दिख रहा लाल रंग नकली नहीं बल्कि उनका असली खून है।
0: वो जो एंड में मुझे वो बच्चा भोग देता है ना चाकू, टायर लगाया था, टायर ऐसे काट के इधर, तो वो सारा चाकू टायर के आर पार गया और मेरे गया अंदर, तो मैं घुस गया चाकू ऐसे इधर से किधर मारा तो घुस गया और उनको लगा क्या एक्टिंग की है। फॉर्चुनेटली वो स्पाइन में नहीं गया, इधर बाजू में गया।
1: अलग ही मिट्टी का बना था ये शख्स। नाना ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की। सभी फिल्मों में उनकी अदाकारी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की जमी जमाई लीक को तोड़ती दिखाई देती है। नाना के ज्यादातर प्रशंसक इस सच को स्वीकार भी करते हैं। पर नाना ने अदाकारी की ही नई लीक नहीं खींची, शूटिंग के सेट पर कई ऐसे विस्मयकारी कारनामे किए जिसे सुनकर सहसा यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म क्रांति वीर के क्लाइमेक्स सीक्वेंस ने दर्शकों पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। क्लाइमेक्स में नाना करीब 3.5 मिनट तक मर्म को छूने वाला संवाद बोलते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि नाना ने जो कुछ भी बोला था वो फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये जानेंगे कि सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त नाना अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टरों के साथ सेट पर पहुंचे थे।
0: 2:30 बजे शुरू, हमारे 7 दिन का ये था क्लाइमैक्स का शूटिंग। 2:30 बजे शुरू किया हमने, 5 बजे खत्म हो गए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हमको क्या बोला। हम गए अपना बोलना शुरू कर दिया, जिस वक्त मेरे को लगा कि अभी कुछ नहीं सोता है, लारे लाला ला मैंने पहना जाता था वो जो अपने फांसी लेने का है ना वो लास्ट का, वो उसके पास से वो लेता है वो ऐसे काली पहना चल, क्योंकि उसके बाद कुछ सूझ नहीं रहा था।
1: हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसका क्लाइमेक्स इस तरह शूट किया गया हो। नाना का कमाल देखिए कि जिस क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए मेहुल कुमार ने 7 दिन का वक्त मुकर्रर किया था वो 2.5 घंटे में ही पूरा हो गया और फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा बन गया। दरअसल स्टारडम मिलने के पहले से ही नाना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए तमाम कलाकारों को क्या क्या समझौते नहीं करने पड़ते हैं, पर नाना ने कभी कोई समझौता नहीं किया। नाना जब थिएटर्स करते थे उसी दौरान उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने उन्हें बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा से मिलवाया। रवि चोपड़ा तब आज की आवाज फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्होंने नाना को रेपिस्ट का रोल ऑफर किया। रेपिस्ट के रोल की पेशकश पर नाना ऐसे भड़के कि रवि चोपड़ा को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे।
0: तो जबरदस्ती मुझे ले गई बीआर चोपड़ा जी के साथ, उनका बेटा रवि चोपड़ा डायरेक्ट कर रहा था आज की आवाज। और वो उसमें एक 4 हेंचमैन थे जो एक ऐसे ही रेपिस्ट बच्चे थे, उसमें से एक रोल हमको ऑफर किया। अब मैं यहाँ मैंने क्या बोला वो बोल नहीं सकता।
1: बॉलीवुड में चोपड़ा परिवार की क्या हैसियत है ये किसी से छिपी नहीं है, पर उसी चोपड़ा परिवार के चश्मो चिराग रवि चोपड़ा को नाना ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद सारे के सारे सन्नाटे में चले गए। पर उसके बाद रवि चोपड़ा को भी समझ में आ गया कि जिस शख्स को मैं थिएटर का छोटा मोटा अदाकार समझ रहा था वो जरूरत से ज्यादा कद्दावर है। बाद में रवि चोपड़ा ने आज की आवाज फिल्म के लिए नाना को मेन विलेन जगमोहन दास का किरदार ऑफर किया। हालांकि नाना ने जगमोहन दास के किरदार के लिए भी शर्त रख दी कि अपने संवाद मैं खुद लिखूंगा। जिसे भरोसा सिर्फ अपने हुनर का होता है वो नफे नुकसान का गुणा गणित नहीं करता। दरअसल नाना को स्टारडम पाने या पैसे कमाने की वैसी कोई भूख कभी नहीं थी जैसा कि बॉलीवुड के अंदर हर कलाकार की आमतौर पर होती है। इसीलिए नाना कभी किसी निर्माता निर्देशक के पास रोल पाने के लिए हाथ पसारते नहीं देखे गए। गिड़गिड़ाना या रोना नाना की फितरत का हिस्सा कभी नहीं था।
0: वो हर चीज पे अपने हंसने की जो आदत थी ना वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो एटीट्यूड बहुत अच्छी थी। रोते बैठने की रोए नहीं, हम रोए कैमरा के सामने और उसके पैसे वसूले हमने।
1: 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुंड जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी 75 साल जिंदगी के रियल किस्से रील की फैंटेसी से भी ज्यादा रोमांचक, विस्मयकारी और प्रेरणादायक हैं। बेहद साधारण परिवेश में पले बड़े होने के बावजूद बचपन से ही एक अजीब जिदो जुनून था नाना के अंदर। काम कितना भी दुष्कर हो, असाध्य हो, असंभव हो, नाना के शब्दकोश में ना नहीं था। नाना जब महज 13 साल के थे तो इनके पिता का कारोबार किसी वजह से ठप हो गया। पूरे परिवार के सामने पापी पेट को पालने का सवाल था। पूरा परिवार गहरी चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन 13 साल के नाना घर से निकल गए कमाने के लिए। जिस जगह काम मिला वो घर से 8 किलोमीटर दूर था। 35 रुपए की मासिक पगार के लिए 13 साल के नाना रोज 16 किलोमीटर पैदल चलते थे।
0: तो हमको 35 रुपए मिलता था महीने का। 35 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त, मैं ये बात कर रहा हूँ 63-64 की। 13 साल के थे हम, तो 8 किलोमीटर पैदल जाओ, 8 किलोमीटर पैदल चल के आ जाओ, 16 किलोमीटर चलना पड़ता था, 35 रुपए मिलता था और एक वक्त का खाना मिलता था। और रात को खाते वक्त हमको दिक्कत होती थी कि यार माँ ने खाया होगा, पिताजी ने खाया होगा, भाई ने खाया होगा। जहन में तो आता था लेकिन हम खा लेते थे यार, भूख इतनी बड़ी थी उनसे, प्यार से हम खा लेते थे।
1: नाना पाटेकर के व्यक्तित्व की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि 90 के दशक में एक फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान खान से भी ज्यादा पैसे लेने वाले नाना पाटेकर ने कभी 15 रुपए के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की रंगाई का काम भी किया है?
0: जेब्रा क्रॉसिंग रहती थी ना, वो हम पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे एक एक क्रॉसिंग के, एक कर दिया तो 15 रुपए। तो रात को हम शुरू करते थे, जैसे ट्रैफिक बंद हो जाए 1-1.5 बजे शुरू करते थे, नहीं तो फिर उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए तो वो धब्बे आ जाएंगे टायर के, तो मार्क्स आते, तो फिर वो दूसरे दिन 15 रुपये मिलेंगे नहीं। तो पहले दोनों बाजू तीन जन दूसरे जो हमारे दोस्त थे वो खड़े रहते थे, फटाफट लगा दो, फिर अगला वो करेगा, ऐसे करके एक रात में 25-30 जेब्रा क्रॉसिंग हो गई तो पैसे मिल जाते।
1: 15 रुपये के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग करने वाला इंसान बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा की इस बात के लिए फजीहत कर देता है कि उन्होंने उसे रेपिस्ट का रोल कैसे ऑफर कर दिया। बॉलीवुड की बिंदास दुनिया में अदाकारी की अलग ही मिसाल कायम कर दुनिया से रुखसत हो चुके नाना पाटेकर ने अपनी 75 साल की जिंदगी में बेपनाह दुश्वारियां झेली। जब ये काफी छोटे थे, इनके बड़े भाई की 14 साल की उम्र में एक हादसे में मौत हो गई। एक और भाई की मुंबई सीरियल धमाकों में दर्दनाक मौत हुई। नाना का खुद का एक बेटा 2.5 की उम्र में असमय काल कौलित हो गया। पर इस तरह के तमाम दर्द को झेलने के बाद भी इस इंसान ने अपने अश्कों को आंखों से बाहर नहीं निकलने दिया, और जब कैमरे के सामने रोने का दृश्य फिल्माने की नौबत आई तो सीने में दफ्न उन्हीं आंसुओं को नैनों का रास्ता दिखा दिया।
0: और हम थोड़ी एक्टिंग थोड़ी करते हैं यार, हम तो हमारे इमोशंस बेचते हैं। जो उस दिन हम रोए नहीं, वो रखा है हमने अंदर, तो फिर कैमरा के सामने रो देते हैं तो आपको लगता है हाँ क्या एक्टिंग की, पैसे भी मिलते हैं और भड़ास भी निकलती है।
1: नाना अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने चाहने वालों के लिए छोड़ गए हैं उन्हीं आंसुओं का सैलाब जिन्हें कभी उन्होंने अपने सीने में जज्ब कर लिया था। नाना का नश्वर शरीर बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व से जुड़ी बेशुमार कहानियां आने वाले वक्त में बड़े चाव से सुनी और सुनाई जाएंगी।
3: आज आपने नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अब बात देश दुनिया की गुड न्यूज की कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि चीन में इन दोनों आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी एक साथ उड़ते हुए नजर आए। आसमान में उड़ते इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगा मानो हवा में लहरें उठ रही हों। कैसे, आप भी देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में।
3: ये तस्वीरें चीन के शानदोंग प्रांत की है, जहां येलो रिवर डेल्टा नेशनल नेचर रिजर्व में पक्षियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। जैसे ही शरद ऋतु ने दस्तक दी, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पहुंचने लगे। ये पक्षी झुंड में उड़ते हैं, कभी एक साथ ऊपर उड़ते हैं तो कभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। आसमान में इनकी उड़ान ऐसी लगती है जैसे नीले आसमान में लहरें उठ रही हो। दूर तक फैले पानी और हरे भरे इलाकों के बीच पक्षियों का ये नजारा हर किसी का ध्यान खींच रहा है। पक्षियों को देखने के शौकीन लोग इस खूबसूरत पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कई लोग इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों का ये नजारा न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ये दिखाता है कि प्रकृति में हर मौसम के साथ कितना कुछ बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे

0: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
2: रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर, न शोहरत का गुरू, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आज से पवित्र शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगले 9 दिनों तक विधिवत होगी पूजा अर्चना। नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी के धाम में भव्य सजावट, सुंदर फूलों से बनाए गए माता के स्वरूप, ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान आदि शक्ति के दर्शन को उमड़े भक्त। दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता शहर, ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे नृत्य संगीत के साथ शानदार लाइट डिस्प्ले का नजारा, महालया कार्यक्रम में ड्रोन शो ने भी बिखेरा रंग। गुजरात में सजे 22,000 से ज्यादा गरबा पंडाल, आस्था उल्लास के साथ शक्ति उत्सव में मां की आराधना, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। सनातन धर्म का संदेश लेकर निकलेंगे रामकथा वाचक मुरारी बापू, कन्याकुमारी से केदारनाथ तक भारत स्वास्थ्य की यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ, साधु संतों के सहित 900 श्रद्धालु इसमें शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 5,000 श्रद्धालु, इस साल करीब 3,84,000 श्रद्धालु ने टेका मत्था।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जंग के मैदान में जब से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तब से इस हवाई खतरे ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली हैं। ये साइलेंट किलर की तरह आते हैं और बड़ी तबाही मचा देते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 100 या 500 ड्रोन्स का झुंड किसी सैन्य ठिकाने, एयरबेस या रिफाइनरी की तरफ भेज दे, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। एक रेडार और मिसाइल बैटरी एक बार में सिर्फ सीमित संख्या में ही टारगेट्स को ट्रैक और फायर कर सकती है, और जब ड्रोन की तादाद मिसाइल्स की क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो एयर डिफेंस सैचुरेट हो जाता है और बचे हुए ड्रोन रक्षा कवच को भेद कर तबाही मचा देते हैं। ऐसे में ड्रोन स्वार्म खतरे की कार्ड तैयार करना बेहद जरूरी है, और भारत भी बखूबी समझता है कि इस खतरे से निपटने के लिए मल्टी लेवल तैयारी कितनी जरूरी है।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। भारत की निजी रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने अपने ज्वाला माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम के तहत 2 सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण 3 अक्टूबर 2026 को किया गया। ज्वाला भारत का पहला स्वदेशी निजी माइक्रो मिसाइल कार्यक्रम है जो हार्ड किल काउंटर यूएस यानी कि ड्रोन को तबाह करने वाला सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।
0: ज्वाला MK-1 एक स्वदेशी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर माइक्रो मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के अनमैन एरियल व्हीकल और ड्रोन स्वार्म को हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी ढंग से हमला कर सकती है। इंगेजमेंट एल्टीट्यूड यानी मारक ऊंचाई की बात करें तो इसका मारक दायरा न्यूनतम 50 मीटर से लेकर मैक्सिमम 5000 मीटर की ऊंचाई तक है। मैक्सिमम दूरी पर भी इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 2 मीटर से कम है, यानी ये अपने लक्ष्य के 2 मीटर के दायरे के अंदर अचूक वार कर सकती है। टारगेट डिटेक्ट होने से लेकर मिसाइल लॉन्च होने तक का रिएक्शन टाइम भी इसका 7 सेकंड से कम है।
2: ज्वाला Mark-1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि ये अगर दुश्मन का ड्रोन जमीन के पास बहुत लो अल्टीट्यूड पे भी आ रहा है, 50 मीटर की दूरी पर, तो भी उसको ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन का ड्रोन अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तब भी ज्वाला के जद्दोजहद के अंदर रहता है। इसका जो फायरिंग एनवलप है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन का जो ड्रोन है अगर वो मल्टीपल वेव्स में आ रहा है तो जो जमीन पर जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोलर है, उसको तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है, और एक AI लॉगरिथम से जो लॉन्चर हैं या जो कमांडर है वो अलग अलग ड्रोन्स को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग झुंड में एंगेज कर सकता है।
3: थ्रेट डिटेक्टेड, टारगेट लॉक्ड, द मिसाइल इज अवे।
0: ज्वाला MK-1 मिसाइल में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। ये लॉन्च के समय मिसाइल को तुरंत तेज रफ्तार देता है। इसमें 0.5 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन का प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से लेस है। इसका मतलब ये कि ड्रोन से सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती। ड्रोन के बेहद करीब पहुंचते ही ये ब्लास्ट हो जाता है और धातु के घातक टुकड़ों की बौछार से ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है।
2: ज्वाला Mark-1 एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स में किसी भी मिसाइल सिस्टम की तरह से 2 तरह की फ्यूज लगे हैं। एक तो है इंपैक्ट फ्यूज, यानी जब ये टारगेट से टकराता है तो फ्यूज ऑपरेशनलाइज हो जाता है और एक्टिवेट होकर जो मेन चार्ज है वॉरहेड को एक्सप्लोड कर देता है। दूसरा ये है कि यह अगर दुश्मन के ड्रोन को महज 1 या 2 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है तो इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। ये एक फ्यूज होता है जिसमें से कि लगातार रेडियो वेव्स निकलती हैं और ड्रोन से टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसको भांप लेता है, और ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो एक्टिवेट हो जाता है, फट जाता है।
0: ज्वाला को एक माइक्रो मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टारगेटेड ड्रोन को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ट्रक माउंटेड मल्टी कैनिस्टर लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसे सेना के 4x4 व्हीकल पर आसानी से तैनात किया जा सकता है।
1: ज्वाला MK1 मिसाइल अकेले काम नहीं करती, बल्कि IG डिफेंस के AI संचालित ग्रिड डिफेंस बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है। ये नेटवर्क कई सेंसरों से रडार और डेटा फ्यूजन का उपयोग करके खतरों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करता है।
0: IG डिफेंस का AI कंट्रोल्ड ग्रिड डिफेंस बैटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और इसके साथ इंटीग्रेटेड ज्वाला मिसाइल सिस्टम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने के लिए उन्नत एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस हैं। ग्रिड डिफेंस एक AI इनेबल्ड बैटल मैनेजमेंट और कमांड नेटवर्क है। इस प्लेटफॉर्म को आधुनिक युद्ध प्रणालियों और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशंस और हाई लेवल के एनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स का इस्तेमाल करता है, ताकि डेटा ट्रांसफर के दौरान हैकिंग या इंटरसेप्शन का कोई खतरा न रहे। ये सिस्टम अलग अलग सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक साथ जोड़कर रियल टाइम में स्ट्राइक को कमांड देता है। इसे सेंसर टू शूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स इस नेटवर्क में सेंध नहीं लगा सकते और न ही मिसाइल के कमांड सिग्नल को ब्लॉक या हैक कर सकते हैं।
2: इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए यानी लॉन्च के बाद टारगेट की तरफ अग्रसर होने के लिए एक एनक्रिप्टेड कमांड गाइडेड गाइडेंस सिस्टम है, यानी इसको लगातार रेडियो सिग्नल के द्वारा दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये जो रेडियो लिंक है ये टोटली एंटी जैम प्रूफ है, यानी दुश्मन इस लिंक के अंदर हैक करके घुस नहीं सकता, दुश्मन इस कमांड गाइडेंस लिंक को जैम नहीं कर सकता।
0: ग्रिड डिफेंस सिर्फ एक ही रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडार पर निर्भर नहीं है, ये मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगर दुश्मन किसी रेडार फ्रिक्वेंसी को जैम करने की कोशिश करता है तो ग्रिड तुरंत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज, थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के इनपुट पर स्विच कर जाता है। इससे सिस्टम बगैर रुके काम करता रहता है।
1: आधुनिक युद्धों में अक्सर GPS या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि मिसाइलें रास्ता भटक जाए। ज्वाला मिसाइल और इसके नेटवर्क को जैम रेसिस्टेंट नेविगेशन आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया गया है। अगर दुश्मन मेन सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी को जैम भी कर देता है, तब भी यह सिस्टम वैकल्पिक वेव बैंड और इंटरनल गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को सटीकता से ट्रैक करना जारी रखता है।
0: आज के युद्ध में ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम लागत और बड़ी संख्या है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेजता है तो हर एक ड्रोन के खिलाफ बहुत महंगी एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल करना आर्थिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इसे कॉस्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम कहा जा सकता है। दुश्मन को पता है कि उनके स्वार्म ड्रोन में से अगर आधे से ज्यादा ड्रोन का नुकसान हो भी गया तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही इनकी लागत इतनी कम होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन का एक सुसाइड या FPV ड्रोन महज $500 से $2,000 यानी करीब ₹50,000 से लेकर ₹2,00,000 में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस छोटे से ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है उसकी कीमत $1 million से $3 million यानी करीब 9.6 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक होती है। युद्ध के लंबा खींचने पर लागत में इतना बड़ा अंतर किसी भी देश पर भारी पड़ सकता है। वो युद्ध में पिछड़ सकता है या हार की दहलीज तक जा सकता है।
1: दुश्मन सस्ते ड्रोनों की बाढ़ लाकर असल में बड़े देशों को कीमती मिसाइल भंडार को जानबूझकर खाली करवाता है, ताकि युद्ध में उसे बढ़त मिल सके। जब एक बार महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया, तब दुश्मन अपने असली और घातक हथियार जैसे कि उसके ताकतवर फाइटर जेट या भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है, क्योंकि उस समय देश का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका होता है।
0: भारत के पास दुश्मन के ड्रोन और स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर मौजूद है। ये सिस्टम बॉर्डर, सैन्य ठिकानों से लेकर शहरी और वीवीआई

0: सिस्टम भार्गवास्त्र का एक और ट्रायल किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपने अंतिम परीक्षण में पहुंच गया है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन लॉयटरिंग मुनिशन और खासकर स्वार्म अटैक को खत्म करने के लिए बनाई गई है।
1: सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड भार्गवास्त्र को तैयार कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C41 से भी जोड़ा जा सकता है। C41 का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस।
0: भार्गवास्त्र स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जो महज 10 सेकंड के अंदर 64 माइक्रो रॉकेट्स दागकर दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को नेस्तनाबूद कर सकता है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि ये एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र को भारत की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये रेगिस्तान मैदानी इलाकों और 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढंग से काम करता है। ये क्षमता इसे सीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए बेस्ट बनाती है और ये कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है, जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते, बल्कि एक बड़े दायरे को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम हैं। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है, जो ड्रोन के झुंड को बगैर नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये कि इसे भारतीय सेना की गाड़ियों पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी इसे आसानी से किसी भी संवेदनशील सीमा पर तैनात किया जा सकता है।
2: भारत में निर्मित भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिनिएचर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें दो तरह की मिसाइलें होंगी। एक तो वह मिसाइल जो कि अनगाइडेड होंगी, इनको स्वार्म ड्रोन यानी दुश्मन अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेजे उनकी तरफ लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये मिसाइलें दुश्मन के स्वार्म ड्रोन की तरफ जाकर जब फटेंगी तो 20 मीटर की दूरी तक इसके जो टुकड़े होंगे शार्पनल होंगे वो दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर देंगे।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियारों और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और किल कर सके।
1: सरहद पार से आने वाले ड्रोन को खाक में मिलाने के लिए भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को एक खास एंटी ड्रोन गन भी मिल चुकी है। नाम है वज्रा शॉट। इस गन को चेन्नई की बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने बनाया है। ये बेहद हल्की और हाथ से चलाई जाने वाली गन है, जिसे सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और ईरान के बीच झड़प, ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम जारी है और कई स्टार्टअप इस पर काम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ डिटेक्टर की जोड़ी है, जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन

0: किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है, जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है, साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे तक ऑपरेट किया जा सकता है।
1: वज्रा शॉट भारत में डिजाइन डेवलप्ड और निर्मित एक हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन है। इसको दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल एक राइफल को दुश्मन के ड्रोन की तरफ पॉइंट करते हैं। ट्रिगर दबाने पर इसमें से एक जैमिंग तरंगे निकलती हैं, यानी रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो कि दुश्मन के ड्रोन और उसके कमांड सेंटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी में अपलिंक और डाउनलिंक है, यानी जो आदेश दिए जा रहे हैं और जो आदेश लिए जा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है, जैम कर देता है।
0: सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, यानी D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 3 सालों में विकसित किया।
2: ड्रोन या UAV काफी नीचे उड़ान भरते हैं, जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट करना चुनौती है तो इन्हें रोकना और तबाह करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम से ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा, साथ ही तबाह भी किया जा सकेगा।
0: DRDO के अनुसार D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब किसी भी ड्रोन को जाम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना होता है। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन, चौथा ड्रोन किल सिस्टम, जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है, और पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे स्वार्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वार्म ड्रोन ऑपरेट होते हैं।
1: भारत में फिलहाल बहुत सारी कंपनियां ड्रोन को गिराने के लिए सॉफ्ट किल या हार्ड किल ऑप्शन पर काम कर रही हैं। सॉफ्ट किल का मतलब है कि दुश्मन का ड्रोन आया और दुश्मन के जो ड्रोन को दुश्मन का कमांड सेंटर जो अपलिंक से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको लिंक को जैम कर देना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन का जो अपलिंक है, रेडियो कमांड सिस्टम है, उसको हैक कर सकें, उसकी फ्रीक्वेंसी को जांच कर सकें और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन के कमांड गाइडेंस सिस्टम को जैम कर देना। हार्ड किल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होगा जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को, समझिए एक माइक्रो या मिनी मिसाइल को, दुश्मन की ड्रोन की तरफ लॉन्च किया जाएगा। वो जाके दुश्मन के ड्रोन से टकराएगा, उसका इम्पैक्ट फ्यूज जो है टच करने पर एक्टिवेट हो जाएगा वॉरहेड फट जाएगा।
0: ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रेडार के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रेडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किया जा रहा है, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।

0: दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं।
1: ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर, दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो हैं, ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है।
0: दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है जिसे आम भाषा में लेजर वेपन कहते हैं। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था।
2: ड्यू यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को बेकार कर देता है।

0: दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत ही छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है।
1: वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: क्या है नवरात्रि की महिमा? नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या है विधान? नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या होगा मुहूर्त? जानिए मेरे साथ नवरात्रि के पहले दिन की महिमा, कलश स्थापना का विधान, सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: रुपहले पर्दे का तूफान, न दिखावे का शोर, न शोहरत का गुरू, रियल रियल लाइफ में उसूलों पर टिका किरदार, क्रांति वीर की अनसुनी दास्तां, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।